साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है, कौन सा, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर तो हो ना, जब सर्वशक्तिमान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बारी आए हैं वह उठो। बाबा ने देखा सभा में पहली बारी बच्चे भी बहुत आए थे, तो बाबा उनको देखकर कहते उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। हाँ बाबा, मधुबन में आने की मुबारक देते हैं, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत? बाबा नए बच्चों से पूछते हैं, है हिम्मत कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएं? जो आज आए हैं उन्होंने ये हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ, फर्स्ट नंबर में। एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ, हो सकता है। जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं वह हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है? जिन्होंने भी हाथ उठाया उनको देखकर बाबा पूछते हैं, अपने में निश्चय है? अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो, हो सकता है। तो अगर हो सकता है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो बाबा के उठाओ। अच्छा, थोड़े हैं, फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं, इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो उस सेंटर पर यह अपना वायदा बार बार याद करना, हो सकता है, असंभव नहीं है, है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। हाँ, ये दिन तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, हजार कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। इसलिए बाबा कहे, एक कदम आपका, हजार कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना, दिल्ली ने की है, तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वह भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वह भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं, अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग नया उत्साह आए। तो बाबा कहते कोई नई बात करो, करेंगे ना। अच्छा है,
सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। यह जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं, वह भी है जरूरी। हाँ, साथ देना भी जरूरी है। ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है। तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा है, कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वह भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर वन ले, सेवा में और पुरुषार्थ में भी नंबर वन ले। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर, 6 मास निर्विघ्न रह कर दिखाएं। पुरुषार्थ ऐसा हो जो 6 मास निर्विघ्न रह कर दिखाएं, कोई भी विघ्न न आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर वन बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है। संतुष्टता का बोल बाला हो, चाहे सेवा में चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे, बाप दादा ने कहा है लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। हाँ, कौन सा सेंटर निर्विघ्न रहेगा? बाबा कहते ये नाम नहीं आया है, जोन नहीं। तो जो भी बड़े सेंटर है उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना, क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। कब होगा ये तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अचानक क्या भी हो सकता है। अच्छा, आगरा जोन, तो आगरा सब जोन वालों से भी बाबा ने अलग मुलाकात की। आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। है उम्मीद? है उम्मीद, है उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? क्या करेंगे और कितने समय में करेंगे? तो किसी ने कहा मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। तो बाबा कहते मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया है। ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपेगेंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसा कोई कार्य करो, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है, टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है तो कमाल करना। बाबा कहते कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो अभी। जो चल रहा है
समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकिलदा है, और बाप यही चाहते कि उड़ते रहो उड़ाते रहो। अच्छा अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। कितना प्यार बाबा करते हैं। चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबके दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे। कुछ न कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूरत बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सेवाए आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। त्यागी अर्थात कोई भी पुराना संकल्प संस्कार दिखाई न दे, उसका भी त्याग किया हुआ हो। और तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सेवाए आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र यानी शरीर को न देख चैतन और चरित्र को देखो। चैतनात्मा को और उसका चरित्र यानी उसकी श्रेष्ठता को देखो। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है,
वह एस

अनुभव होगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। अच्छा, ओम शांति।

ओम शांति। हमारा चेहरा और हमारी चलन देवकुल की आत्माओं को समीप लाती है। यही दोनों चीजें बाबा को प्रत्यक्ष भी करती हैं और अनेक आत्माओं को बाप से जोड़ती भी हैं। तो क्या करें हम, जो हमारे चेहरे पर रूहानियत हो, सदा खुशी की झलक हो, सभी के लिए शुभ भावनाएं हो, प्योरिटी से हमारा ललाट दैदीप्यमान रहता हो। हमें इन चीजों पर ध्यान देना है कि हमारा चेहरा, देखिए सब कुछ चेहरे पर आता है। चेहरा हमारी मनोस्थिति का दर्पण होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ये कहा गया है। जो कुछ हमारे अंदर चलता है वो सब हमारे चेहरे पर झलित होता है, झलकता है। हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपनी स्थिति को महान बनाएं, हम अपने स्वमान को आगे बढ़ाएं। यदि हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए अशुभ भाव रहेगा तो हमारे चेहरे पर उसके चिन्ह अवश्य अंकित होंगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, हमें उसे शुभ भावनाएं ही देनी है। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों की शत्रुता को समाप्त करेंगी। हमारे चेहरे पर रूहानियत हो, योग की झलक हो, इसका हमें बहुत ध्यान देना है। और रूहानियत आएगी अंतर्मुखता से, रूहानियत आएगी ज्ञान के चिंतन से, रूहानियत आएगी जब हमें शरीरी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, रूहानियत आएगी जब इस संसार के खेल को हम खेल की तरह साक्षी होकर देखेंगे। तो हमें अपनी स्थिति के द्वारा अपने चेहरे को बड़ा आकर्षक बनाना है। यही हमारी सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी होगी कि हमारे चेहरे पर संतुष्टता हो, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता के संपूर्ण चिन्ह हो। सोच लें, भगवान को पाकर ही यदि कोई संतुष्ट न हुआ तो भला कैसे होगा। भगवान को पाकर ही यदि किसी के मन में खुशी की लहरें न उठती हों तो भला क्या पाकर वो खुश होगा। हम इन बातों का चिंतन करें और आगे बढ़ें। अपने को तृप्त आत्मा बनाएं कि हे प्रभु, तुम्हें पाकर हमने सब कुछ पा लिया, तुम्हारे ज्ञान को पाकर हमने सब कुछ जान लिया, तुम्हारी दृष्टि पाकर हम निहाल हो गए, तुम्हारे वरदान पाकर हम भरपूर हो गए, तुम्हारी शक्तियाँ पाकर हम संपूर्ण शक्तिशाली हो गए। ये हमारे दिल की आवाज निकलती रहे और ऐसे ही हम बहुत प्रसन्न रहें। संसार में भी कई लोग बहुत खुश रहते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त हो या ना हो, उन्हें ज्यादा इच्छाएं नहीं रहती और वो सदा खुश रहते हैं। इच्छाएं ही मनुष्य की खुशी को छीनती हैं। हम अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाएं। जो छोटी इच्छाओं से भला हमें क्या मिलेगा, वो हमें कैसे तृप्त कर पाएंगी। हम तो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन जो आत्मा अपनी इच्छाओं के गुलाम रहेंगे वो भला दूसरों की इच्छाओं को कैसे पूर्ण करेंगे। तो चलें हम सभी अपने चेहरे को और अपनी चलन को महान बनाएं। हमारा हर कर्म हम बाबा का नाम रोशन करने वाला हो। चलन माना हमारा चरित्र, चलन माना जब हमारे हम कर्म क्षेत्र पर हैं तो हमारी मनोस्थिति क्या है, उसका संपूर्ण स्वरूप हमारे जीवन में दिखाई देता है। हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं, क्या चलते हुए भी हमसे प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आज सारा दिन एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। बाबा हजार भुजाओं सहित हमारे सिर पर छत्र छाया है। बाबा ने जैसे हजार भुजाएं फैला दी हैं, उसकी हजार भुजाओं की छत्र छाया के नीचे हम सुरक्षित हैं। हम पर कोई तंत्र मंत्र, कोई ब्लैक मैजिक, कोई निगेटिव एनर्जी
असर नहीं कर सकती। उनकी छत्र छाया में हम संपूर्ण रूप से निर्भय हैं। इस तरह हम इस तरह संसार में विचरण करेंगे जैसे कांटों के जंगल में शेर निर्भीक होकर विचरण करता है। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृत धारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वीकार कीजिए सुस्वागतम। दोस्तों सुबह के सुंदर समय पर जिस प्रकार से हम स्नान आदि कर्म करते भगवान को याद करते हैं, तो मन को भी स्नान डालना चाहिए, न केवल शरीर को स्नान डालना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ मन में ही श्रेष्ठ विचारों का निवास होता है। वैयक्तिक हो अथवा सामूहिक उन्नति हो अथवा अवनति हो, कोई भी विचारों की जो उत्कृष्टता है वो मन की स्वच्छता पर ही निर्भर करती है। और इसीलिए कहा गया है कि स्वच्छ मन मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। अगर किसी के मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, ये सारी दुष्ट प्रवृत्तियां मन में जब बढ़ती है तो वो मन सुमन नहीं लेकिन पिशाच बन जाता है। और इसलिए ऐसी सारी बातों के कारण संपूर्ण जीवन जो है उसमें भी अवनति होती है। मन को सदा स्वस्थ रखना, मन को हेल्दी रखना, प्रसन्न रखना, आनंदित करना, ये सारी बातें भी तन के हेल्थ के साथ मन की हेल्थ भी जरूरी है। इसलिए दोस्तों मन हमेशा प्रसन्न रखो, स्वच्छ रखो, पवित्र रखो। चलिए दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का हम स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी आपने सुबह सुबह बहुत अच्छी बात की हमारे लिए, हमारे श्रोतागण के लिए। मन को स्नान कराना इतनी बड़ी बात है। सुबह सुबह बहुत बार हमेशा हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करते समय जो भगवान की मूर्तियां होती है वो पात्र में रखते हैं, उसे नहलाते हैं। एक बार मैं देख रहा था कि हमारे मित्र कहीं गांव गए थे और गांव से वापस आ गए, 15-20 दिन हो गए थे, और फिर उन्होंने कहा कि चलो पहले मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान जो है काफी दिन से उन्होंने नहाया नहीं है और बासी हो गए होंगे। तो मन में सोचता रहा कि क्या भगवान कभी बासी होते हैं? हम उन्हें नहलाते हैं या खुद को नहलाते हैं? पूजा करना चाहिए, पूजा करना बड़ी बात है, भगवान को नहलाना वो भी बड़ी बात है, लेकिन उस समय अगर हम संकल्प करें कि ये भगवान की मूर्ति के ऊपर मैं जब पानी डाल रहा हूँ तो मेरे मन के ऊपर मैं पवित्रता का पानी डाल रहा हूँ, जैसे भगवान को मैं चंदन लगा रहा हूँ वैसे मैं भी खुद को चंदन लगा रहा हूँ और सुवासिक खुद को बहुत अच्छी खुशबू वाला बना रहा हूँ। मेरे विचार खुशबूदार हो, मेरा तन खुशबूदार हो, मेरा मन खुशबूदार हो, ताकि जो भी मेरे संपर्क में आए वो भी खुश हो जाए। ऐसे अगर हम विचार करें और फिर हम पूजा पाठ करें तो कितना अच्छा होगा, मन भी सदा प्रसन्न रहेगा और हम दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, मन प्रसन्न है तो मुख से भी बहुत सुंदर वचन निकलते हैं, और अगर किसी के मुख से कड़वे वचन निकलते हैं तो इसका मतलब ये जान लेना चाहिए कि कुछ न कुछ उसकी मन में अप्रसन्नता है। तो चलिए दोस्तों आज की जो कहानी है वो इसी विषय को बहुत ही सुंदर रीति से बताती है। सुंदर नगर में एक सेठ रहते थे और उनमें हर प्रकार के गुण थे, लेकिन एक ही बात की कमी थी, वो ये कि कोई भी प्रसंग पर जो उनका मन चाहा नहीं है वो खुद पर काबू नहीं रख पाते थे, बहुत क्रोधित हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाते थे, जरा सी बात क्या हो गए लेकिन वो चिल्लाने लगते थे। उनके घर वाले तथा उनके आसपास के मित्र संबंधी लोग सारे उससे परेशान थे। खुद उनके घर वाले तो परेशान थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो गया कि वो उनसे बोलना ही छोड़ दे। परंतु ये भी कब तक चलेगा, एक घर में रहते हुए ज्यादा देर तो ये बात नहीं हो सकती, फिर से उनके साथ तो बोलना ही पड़ेगा। अब इस प्रकार से काफी समय बीत गया, लेकिन कईयों के उपदेश करने पर भी सेठ जी की ये आदत जरा भी नहीं छूटी, बदली भी नहीं, छूटी भी नहीं, और उनके स्वभाव में तनिक फर्क भी नहीं आया। अब क्या करें? अंततः एक दिन उनके घर वाले एक साधु के पास गए और अपनी समस्या बताकर बोले, महाराज हम उनसे बहुत परेशान हो गए हैं, कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब साधु महाराज ने क्या किया, उन्होंने कुछ सोचा और कहा, कोई बात नहीं, सेठ जी को मेरे पास भेज दो। ठीक है महाराज, ये कहते हुए सारे घर वाले जो है वो वापस लौट आए। अब देखते हैं दोस्तों, साधु महाराज ने ऐसा कौन सा उपाय बताया, वो किस प्रकार से इसमें कामयाब हुए और सेठ जी ने अपना जो भी अवगुण था वो छोड़ा या नहीं छोड़ा। चलिए दोस्तों, इन सब बातों की चर्चा करेंगे, ये बातें सब सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों आइए कथा का अगला हिस्सा सुनते हैं। तो घर वाले सब सेठ जी के पास से वापस लौट गए। उन्होंने सेठ जी को अलग अलग उपायों के साथ वो साधु महाराज के पास ले जाना चाहा, परंतु सेठ जी की जिद बहुत बड़ी थी। वो साधु महात्माओं पर वैसे भी विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब क्या करें? फिर एक दिन क्या हुआ कि साधु महाराज स्वयं ही उनके घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक गिलास में कोई द्रव्य लेकर गए थे। साधु को देखकर वैसे तो सेठ जी बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन घर वालों के कारण उस समय तो चुप रहे। साधु महाराज सेठ जी से बोले, सेठ जी पता है मैं हिमालय पर्वत से आपके लिए ये पदार्थ लाया हूँ, जरा पीकर तो देखिए। पहले तो सेठ जी ने बहुत आनाकानी की, वैसे भी उनका विश्वास नहीं था, लेकिन फिर घर वाले भी आग्रह करने लगे तो इस बात को वो मान गए और उन्होंने उस द्रव्य का गिलास अपने मुंह पर लगाया, उस द्रव्य को जीभ से थोड़ा सा चाटा। ऐसा करते ही उन्होंने इतना सड़ा सा मुंह बनाया और गिलास होठों से दूर कर लिया। साधु से बोले, ये तो बहुत बहुत कड़वा है, क्या है यह? तो साधु महाराज ने कहा, अरे आपकी जबान जानती है कि कड़वा क्या होता है। तो सेठ जी कहे, यह तो हर कोई जानता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में उनको साधु की नजर से सब बातों का पता चलने लगा। साधु महाराज ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, अगर हर कोई जानता होता तो कड़वे पदार्थ से कई अधिक कड़वे शब्द मुंह से नहीं निकालता। बस फिर क्या था, सेठ जी को एक पल में सब बातों का पता चला और साधु महाराज ने कहा कि सेठ जी याद रखिए, आप इतने कटु वचन बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके कटु वचन के कारण औरों का दिल भी दुखता है और आपकी जबान भी तो गंदी होती है। सेठ जी अब हर बात को समझ गए। साधु ने जो कुछ कहा है उस पर विचार करने का तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया और फौरन साधु के पैरों में गिर पड़े। बोले, साधु महाराज सचमुच आपने मेरी तो आंखें खोल दी, अब आगे से मैं ऐसे कटु वचनों का प्रयोग कभी नहीं करूँगा। जैसे ही सेठ जी ने साधु महाराज के चरण पकड़े और इस प्रकार की बातें की, उनके घर वाले बहुत प्रसन्न हो गए। तभी सेठ जी ने साधु से पूछा, किंतु महाराज यह पदार्थ जो आप हिमालय से लाए ये क्या है? साधु महाराज मुस्कुराकर बोले, नीम के पत्तों का अर्क है। क्या? सेठ जी ने कहा और फिर वे धीरे से मुस्कुराने लगे। दोस्तों सचमुच कितनी छोटी सी कहानी है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख देने वाली। अगर हम कड़वा वचन बोलते हैं उस समय मुंह तो कड़वा होता ही है, मन भी कड़वा होता है। मन को अगर हमने सुबह सुबह स्नान डाला, बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठे, पूजा की, लेकिन अगर बाद में कड़वे वचन बोले तो सचमुच केवल जीभ ही नहीं दूसरों का अंतकरण भी कड़वा होता है और हमारा मन भी अस्वच्छ होता है। इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि कड़वे वचन से मन और आत्मा को चोट लगती है। ज्ञानेश्वर जी कितनी सुंदर छोटी सी बात एक कहानी के द्वारा सुनने के बाद हर एक को समझ मिलती है, आपका क्या ख्याल है?
2: बिल्कुल भक्ति जी, यहाँ जब मैं कहानी सुन रहा था तब मेरे मन में एक विचार आया, ये बहुत बार हम गीतों में ये कहते हैं, मीठे मीठे बोल बोल रे मनवा, हमारे मन को हम समझाते रहते हैं कि मीठा बोलो, हमारे शब्द हमेशा मीठे होने चाहिए। कड़वा शब्द जो है वो नुकसान करता है। लेकिन देखिए, सेठ जी जब कड़वे बोल बोलते थे और फिर साधु महाराज उनसे जब मिले, तब साधु महाराज भी उन्हें कड़वे बोल बोल के बोल सकते थे कि आपके कड़वे बोल की वजह से सारे घर वाले जो है वो दुखी है। लेकिन नहीं, उन्होंने युक्ति निकाली और युक्ति से उन्होंने समझाया कि कड़वे बोल से क्या नुकसान होता है। लेकिन उसके ऊपर जब मैं गौर कर रहा था, उसके ऊपर मैं सोच रहा था, तब मेरे मन में एक विचार आया कि ये युक्ति भी क्या थी, वो भी कड़वी थी, लेकिन कड़वे बोल नहीं थे, कड़वा रस था, और वो भी नीम के पत्तों का। देखिए, मजे की बात यह है कि शरीर स्वास्थ्य के लिए कड़वा रस जो है वो गुणकारी होता है, चाहे करेला हो या नीम के पत्ते हो, उनका जो रस है वो शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन कड़वे बोल जो है वो कभी भी मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं रहते। अगर किसी को ठीक करना है तो भी उसे युक्ति से कहना है। भले साधु महाराज ने उन्हें कड़वा रस पिलाया, लेकिन बोल तो उनके मीठे थे। वैसे ही अगर हम युक्ति से कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के दूसरों को सुधारने की कोशिश करें तो क्या होगा, वो सुधर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कभी हम विकारवश या क्रोधवश कड़वे बोल बोलते हैं, हमें लगता है कि उसमें सुधार आएगा, लेकिन सुधार तो आता नहीं है। तो ये कड़वे बोल जो है उसे डायबिटीज नहीं होता। कड़वा खाना जो है, कड़वा रस जो है, चाहे शक्कर हो या और कोई हो, उससे डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि वो शरीर स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो सकता है, लेकिन मन के स्वास्थ्य के लिए मीठे बोल हमेशा सुखदाई और फलदाई होते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, सचमुच देखिए ना, जब कोयल गीत गाती है तो लगता है कि सुनते रहे, लेकिन अगर वहाँ ही डाली पर कौवा आ गया तो वो बोल हम सुनना नहीं चाहते। दोस्तों सचमुच है तो दोनों काले, लेकिन ऊपर से कालापन ये तो अलग बात है। मन अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो काला हो जाता है, इसीलिए हम अपने मन को सदा स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, और ये रखने से औरों के मन को भी हम सुंदर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज़, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज़ को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज़ है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज़ उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज़ या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज़ वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूँ, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूँ, या वेट करती रहूँ, एक साल सेव करती रहूँ कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूँ। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूँ। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हैज हैपन्ड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्प्ररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज़ होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा अर्थात अमृत रसपान करना, और उसमें श्री कृष्ण की

0: जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का वर्णन जब हम सुनते हैं, हम करते हैं या कहो हम पढ़ते हैं, हर बार नित्य नवीनता का अनुभव होता है। तो दशम स्कंद का जो षोडशोध्याय है, इसमें हम सब जानते हैं कि कालिया मर्दन या कालिये पर कृपा इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रीति से भागवतकारों ने उसका वर्णन किया है। शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया जो नाग है उसने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। अब यमुना का जल शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकालने की योजना बना दी। ज्ञानेश्वर जी, ये भी एक रूपकात्मक हो सकता है, मुझे लगता है कि भगवान का जब इस धरा पर अवतरण होता है कहो, या भगवान अवतार लेते हैं, तो विष जैसी विकारी वृत्ति का भी विनाश कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्रह्मन, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार से सर्प का दमन किया? परीक्षित के मन में एक आशंका थी। उन्होंने पूछा, कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं है, ऐसी दशा में अनेक युगों तक वो जल में क्या कर रहा था, कैसे वो रहा उस जल में, वो सब मुझे बताइए। तो ये भी उन्होंने कहा कि गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीलाएं की है वह तो सचमुच अमृत स्वरूप है, और उसका सेवन हम जितना करें उतनी हमारी प्यास बढ़ती ही रहती है। इस प्रकार की सारी बातें जो है वो दोनों में चलने लगी। फिर श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जो जल था वो विष की गर्मी से सदा खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पंछी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। छोटी छोटी जो बूंदे थी तरंगों की, वो लेकर जब वायु बाहर आती तो तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी इनको स्पर्श करते ही वो मर जाते। ज्ञानेश्वर जी, कितना भयंकर वर्णन है। और इसीलिए मुझे लगता है, वैसे भी आज हमने कटु वचन की कहानी भी सुनी, उस पर भी चर्चा की, अगर किसी के अंदर कटुता है तो वो एक विकार है, वो एक विष है, और उसके संपर्क में आने से ही दूसरों का मन जो है वो कलुषित हो जाता है, ये भी बात शायद भागवतकार बताना चाहते हैं।
1: बिल्कुल भक्ति जी, हर कथा जो है, चाहे कालिया मर्दन हो, समुद्र मंथन हो, या शेषशाही भगवान विष्णु जी को हम देखते हैं कि वो शेष के ऊपर शयन करते हैं, हर कथा के पीछे भावार्थ तो है ही। लौकिक रूप से अगर हम देखें, कथा के रूप से देखें, तो अचंभित करने वाली कथा होती है। जैसे आपने कहा कि यमुना नदी, और इतनी बड़ी नदी में एक कालिया सर्प रहता है, और वो सर्प सारे पानी को विषैला कर देता है, और क्या होता है कि वही सर्प जो है वो भी कालिया है, लेकिन भगवान विष्णु जो है वो सोने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, शेष का, वो भी नाग है, वो भी सर्प है। अभी दोनों सर्प है, और एक के माथे के ऊपर वो डांस करते हैं और दूसरे के ऊपर शैया बना के सोते हैं। इसके पीछे भी बहुत गहनता छिपी हुई है। ऊपर ऊपर जब देखेंगे तब विस्मयकारी लगेगा। हमारी आस्था भी है, हम ये मानते भी है कि भगवान विष्णु जी जो है वो शेष शैया पे सोए हुए हैं, और छोटा सा बालक श्री कृष्ण जी, 6-7 साल का बालक, वो कालिया नाग जो है, कालिया सर्प जो है, उसके फन के ऊपर डांस करते रहता है। लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी वैसे हम उसका आनंद भी लेंगे और उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, फिर भागवतकार लिखते हैं कि भगवान का अवतार जो है वो दरअसल दुष्ट प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए होता है। दुष्टों का दमन करना अलग बात है और दुष्ट प्रवृत्ति का दमन करना अलग बात है। तो दुष्ट वृत्ति का, दुष्ट प्रवृत्ति का दमन करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। और जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि उस सांप के विष का वेग बहुत भयंकर है, वो भयानक विष ही उसका महान बल है और उसके कारण मेरे विहार का जो ये स्थान है, सुंदर सी यमुना, वो भी विषैली हो गई है। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदंब के वृक्ष पर वो चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। अब यमुना जी का जल तो सांप के विष के कारण पहले से खोल रहा था, उसकी तरंगे भी भयंकर, अत्यंत भयंकर लाल पीली ऐसी उठ रही थी। और जैसे ही श्री कृष्ण जी उसमें कूद पड़े तो जल और भी उछलने लगा। अब कालिया नाग, जो आंख से ही सुनने वाला था, उसने भी वो आवाज सुनी और देखा कि अरे, मेरे निवास स्थान का कौन तिरस्कार कर रहा है। ये बात उसको बिल्कुल सहन नहीं हुई और उसने चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने से जाने का फैसला किया। वो उनके सामने आ गया। उसने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर सावला सा सलोना सा बालक है, उसका शरीर बड़ा सुकुमार है। उसके ऊपर जब नजर जाती है तो आंखें हटने का नाम नहीं लेती। बहुत सुंदर, मधुर, मनोहर उसका मुख दिखाई दे रहा है, जिस पर मंद मंद मुस्कान है जो बहुत शोभादायक है। और उसके चरण तो इतने सुंदर सुकुमार, जैसे कि कमल की गद्दी हो, इतना आकर्षित रो। फिर भी जब कालिया नाग ने देखा कि ये सलोना सा बालक थोड़ा भी डरता नहीं, यहां से हटता नहीं, जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। देखिए दोस्तों, एक दुष्ट प्रवृत्ति का कालिया, जो बहुत भयंकर विषैला है, लेकिन श्री कृष्ण जी का मनमोहक रूप भी वो क्षण मात्र निहारता रहा। ज्ञानेश्वर जी, इसमें भी एक बहुत सुंदर मैसेज है। मुझे लगता है कि जो कोई बहुत ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है, अंतर्बाह्य शुद्ध पवित्र होने के कारण उस पर से दुष्ट लोगों की भी नजर हट नहीं सकती।
1: बिल्कुल, देखिए, लेकिन दूसरा भी मैसेज ये है कि नजर तो हट नहीं सकती, ये बात सही है। छोटा सा बालक, कल्पना कर दीजिए कि हमारे सामने चित्र खड़ा हो जाता है कि कन्हैया जो है, छोटा सा बालक, वो मुस्कुराता है और सामने भयंकर कालिया सर्प, कालिया नाग है, वो खड़ा है। अभी इसमें दो प्रकार के विचार मेरे मन में आ गए। एक तो कालिया के मन में बहुत खुशी थी, आश्चर्य था कि मैं इतना भयंकर हूं लेकिन ये बालक मंद मंद मुस्कुराता है और मेरे सामने खड़ा है, और इसलिए उसके मन में बहुत बड़ा कौतुक भी था, मन में बड़ी खुशी भी थी, आनंद था। लेकिन फिर भी उसे क्रोध आया, क्योंकि खुद की जो पहचान है, उसकी जो पहचान है, उसका बड़प्पन, जो खुद को मानता था, गर्व था कि मैं इतना बड़ा हूं और मेरे सामने कोई भी झुकना चाहिए, ये जो अहंकार है उसकी वजह से उसे क्रोध आ गया। और क्या हो गया, उसने उसको चैलेंज किया और ललकार दी। और भी एक मुझे एक विचार मन में आता है कि देखिए, संकट जो है हमारे पास, मुश्किलें जो आती है, वो भी कालिया जैसी भयंकर हो सकती है, लेकिन जैसे श्री कृष्ण जी इतना

भगवतकारों की रसीली वर्णन करने की शैली है, उनका जो वर्णन करने का ढंग है वो सचमुच ऐसा लगता है कि हम उस वर्णन को भी बार बार पढ़े, उस पर चर्चा करें। चलिए दोस्तों, आगे क्या होता है जरूर देखेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है। रेडियो

0: बनवारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, चलिए दशम स्कंद का 16वां अध्याय, जिसमें बहुत सुंदर कालिया मर्दन यह वर्णन राजा परीक्षित और शुकदेव जी हम सबके सामने रखते हैं, जैसे कि एक सुंदर चित्र तैयार हो जाता है। तो हमने देखा कि कालिया भी श्री कृष्ण जी के उस सुंदर रूप पर जैसे कि मोहित हो गया, लेकिन उसको ये भी अपमान लगा कि मैं इतना खूंखार और ये छोटा सा बालक तनिक भी डरता नहीं है, मौत से खेल रहा है इस जल में। और उसका क्रोध बढ़ गया और उसने क्या किया, श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डस लिया और अपने शरीर के बंधन से उसको जकड़ लिया। फिर क्या था, स्वयं भगवान जैसे श्री कृष्ण नागपाश में बंध गए और निश्चेष्ट हो गए। जब ये दृश्य उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल देख रहे थे तो उनकी पीड़ा की तो सीमा ही नहीं रही। उस समय दुख पश्चाताप भय से मूर्छित होकर एक एक ग्वाल बाल पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने अपने शरीर सुरु धन संपत्ति स्त्री पुत्र भोग सब कामनाएं सब कुछ भगवान को जैसे ही समर्पित कर रखा था। ज्ञानेश्वर जी, कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर रखा था। उनका अंग अंग का हिस्सा भौतिक और आध्यात्मिक सब कुछ केवल एक भगवान ही था, और इसीलिए जैसे ही वो मूर्छित हो गए सब मूर्छित हो गए। गाय बैल बछड़े सब दुखों से जैसे कि डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी नजर बार बार जा रही थी और जैसे कि वो डर रहे थे, न केवल डर रहे थे लेकिन रो रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि व्रज में भी पृथ्वी आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए हैं। जैसे लगता है वो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र बहुत अशुभ घटना घटने वाली है। तो नंद बाबा और बाकी सारे जो गोप थे उन्हें भी जैसे कि अशकुन का पता चला और उन्होंने पीछे ये भी जाना कि आज तो श्री कृष्ण बिना बलराम के गाय चराने ले गए हैं। और जैसे ही मन में संकल्प आया भय से व्याकुल हो गए। बिचारे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशकुनों को देखकर उनके मन में यही बात आती थी कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई होगी। उसी क्षण दुख शोक भय से वो बहुत आतुर हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे कि कहा उनके प्राण थे, उनका मन था, उनकी आत्मा थी। बस एक ही शब्द में कहे तो श्री कृष्ण ही उनका सर्वस्व था। राजा परीक्षित को शुकदेव जी बताते हैं कि व्रज के बालक वृद्ध स्त्रियों का स्वभाव भी वात्सल्यपूर्ण था, वो अत्यंत दीन हो गए और घर द्वार छोड़कर वो निकल पड़े। क्यों? कन्हैया को देखने के लिए, उसका हाल जानने के लिए। बलराम जी तो स्वयं भगवान के स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। वो जब देखने लगे कि व्रजवासियों का इतना कातर भाव है, इतने आतुर हो गए हैं, तो बलराम जी को तो हंसी आई। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण जी को तो भगवान कहा ही गया है, लेकिन बलराम जी ही भगवान ही थे। अब भगवान तो एक है, हम सब समझते हैं, हम सब मानते हैं, सबका मालिक एक है। यहाँ हरेक को ये भगवान की एक तो उपाधि दी है, अर्थात भगवान के जैसा वो स्वरूप है। और दूसरी बात, श्री कृष्ण जी पर जो भी अभी संकट आया है वो सब बातों को बाकी लोग नहीं जानते थे, लेकिन भागवतकार कहते हैं कि बलराम जी तो सब कुछ जानते थे, क्योंकि वो भी एक भगवान का रूप है, और वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ज्ञानेश्वर जी, इन सब बातों को भागवतकारों ने जो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इसमें हमें कुछ सीख भी मिलती है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल भक्ति जी, इतनी कथा सुंदर है और भागवतकारों ने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करके हमारे सामने तारा दृश्य जो है वो खड़ा कर दिया है। उनका प्रेम, नंद बाबा का प्रेम, ग्वालों का प्रेम और विरह, अभी एक भयचकित घटना हो गई और उनके मन में आशंका पैदा हो गई कि श्री कृष्ण शायद जीवित नहीं है और इसलिए दुख के पहाड़ जैसे गिर गए। अभी ये सब कथा जो है वो बहुत ही लुभावनी है, दिल को खींचने वाली है, मन को आकर्षित करने वाली है, लेकिन उसके पीछे का भाव जो है वो बहुत गहरा है। ये बलराम जी हंस पड़े, ये जो शब्द है इससे मुझे एक विचार मन में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो हमारे जिंदगी में मुश्किलें आती है, संकट आते हैं, हम भयचकित होते हैं, हमें मालूम है भगवान हमारे साथ है, लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान के ऊपर का विश्वास टूट जाता है। और फिर जैसे ग्वाल बालो और नंद बाबा की स्थिति हो गई थी, वैसे हमारी स्थिति हो जाती है। हमें लगता है कि शायद भगवान साथ छोड़ के चले गए हैं, हमारे साथ नहीं है। लेकिन जैसे बलराम जी जो सर्वज्ञ थे, जिन्हें भगवान का ही एक रूप दिखाया गया है, वो हंसते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसकी आध्यात्मिकता जागृत है, जिसे पूरा विश्वास है कि मेरा भगवान जो है मेरा साथी है, मेरा बाल भी बाका नहीं हो जाएगा, जो कुछ घटना घट रही है वो हमारी अच्छाई के लिए घट रही है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ये जब विश्वास मन में आता है, तब जैसे बलराम जी हंसे वैसे संत महंत भी थे, साधु थे, ऐसे बहुत सारी मिसाल है हमारे शास्त्रों में, हमारी कहानियों में, कि इतने संकट आने के बाद भी वो हंसते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि भगवान का सहारा, भगवान का साथ हमारे साथ हमेशा के लिए है। जब मन में संशय पैदा होता है भगवान के साथ के बारे में, भगवान के शक्ति के बारे में, तब मन भाव विभोर होता है, दुखी होता है। लेकिन जब हमें निश्चय होता है कि भगवान ही हमारे साथ है, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। यही संदेश शायद हमें भागवत का देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है दोस्तों। और यह वर्णन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हमें अपना वर्णन लगे, ऐसा लगे कि हमारी भी वही अवस्था है, भले हम उस समय नहीं थे, लेकिन हमारी वो अवस्था है, हमारे सामने ये सारा घटित हो रहा है। इतना जैसे कि लाइव जिसको कहते हैं, इतना सुंदर वर्णन जो है वो भागवतकारों ने किया है। और भगवान सर्वस्व जानता है, भगवान सब कुछ जानता है, ये बात को बताने के लिए बलराम जी का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ अब समय को देखते हुए मैं भक्ति अपने वाणी को विराम देती हूँ। फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: वो पहाड़ देख रहे हो?
4: हाँ, कितना सुंदर है।
3: और उनको देख रहे हो?
4: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
3: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
5: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, किसी ने कहा है, फेंको हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में। सर करेंगे आखिर सब मोर्चे कि मौत को भी आ जाने दो सामने। ऐसे हौसलों के साथ जब किसी भी बात, किसी भी समस्या का सामना किया जाता है तो समस्याएं घबराकर भाग जाती हैं, परिस्थितियां घबराकर भाग जाती हैं और हमारा जीवन पुनः पटरी पर आ जाता है, पुनः खुशियों से लबरेज हो जाता है। समाधान कार्यक्रम आपको ऐसे ही समस्याओं से जूझना और उनके समाधान तक पहुंचाना सिखाता है। और हमारे साथ हमेशा होते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: प्रता जी। इस प्रकार का जो एटीट्यूड होता है कि हम लड़ें और लड़ करके समस्याओं को हरा दें, भगा दें, ये जो एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं वीरता का द्योतक है, योद्धेपन का द्योतक है। और जब कभी हम इस प्रकार से अडिग होकर खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से परिस्थितियां और समस्याएं हल्की होने लगती हैं।
1: बिल्कुल यही बात है, लेकिन इसके लिए आज के परिवेश में बहुत ज्यादा मनोबल की जरूरत है, यानी मन की शक्ति की, दूसरे शब्दों में कहें ईश्वरीय शक्ति की। क्योंकि आज मनुष्य भौतिकवादी होता जा रहा है, उसे पता नहीं कि उसका मनोबल क्यों कमजोर पड़ रहा है। उसे इसका बिल्कुल एहसास नहीं कि जो वो सोच रहा है, जो वो निगेटिव हो रहा है, या उसको क्रोध आ रहा है, या उसकी वासनाएं बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं उसको वीक कर रही हैं। तो आज जरूरत इस चीज की है कि हम सच्चे अर्थों में वीर बने। केवल दुश्मनों से लड़ना ही वीरता नहीं, लेकिन अपने मन की निगेटिव शक्तियों से लड़कर उन्हें समाप्त कर देना, ये सचमुच आज के परिवेश में वीरता है और इसकी बहुत जरूरत है। तो अगर ऐसी बहादुरी हर व्यक्ति अपना ले, रिसीव कर ले परमात्म शक्तियों को, तो ये सब समस्याएं बहुत कमजोर नजर आती हैं। वास्तव में जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं, समस्याएं इतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी शक्तिशाली वो हमें प्रतीत होती हैं। किसी ने सच कहा, किसी बहुत अच्छे फिलोसोफर की का ये कथन है कि अगर ज्ञान युक्त होकर, विवेक युक्त होकर समस्याओं पर दृष्टि डाली जाए तो क्या पता चलेगा कि वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी वो प्रतीत हो रही है। हमने अपने को छोटा बना दिया है। आज भी कोई मेरे से मिल रहे थे तो कह रहे थे, मैं आपसे हमेशा पूछती थी, बहुत बीमार रहती है वो माता है, बुजुर्ग हो गई अब तो, उसने एक लंबा संघर्ष 30 साल का बीमारियों के साथ गुजारा है। तो कह रही थी, मैं आपसे पूछती थी मैं बड़ी हूँ या परिस्थिति, तो आप उत्तर देते थे नहीं, तुम शक्तिशाली हो, परिस्थितियाँ कमजोर हैं। और इसे एक वाक्य ने, इसको महावाक्य कहें, उस के मनोबल को बहुत बढ़ाए रखा। और अगर वो ये मान लेती कि परिस्थिति तो बहुत बड़ी है, मैं तो इनके सामने कमजोर पड़ गई हूँ, ये तो मुझे हरा कर ही छोड़ेंगी, तो शायद आज वो जीवित न होती, अभी भी हमारे यहाँ आई हुई है। तो बहुत अच्छी ये बात है कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने। और जैसा बहुतों के साथ अनुभव हो रहे हैं कि जब हम अपने शक्तिशाली स्वरूप में, अपने शक्तिशाली एटीट्यूड्स में, शक्तिशाली फीलिंग्स में रहते हैं, तो निश्चित रूप से समस्याओं का फोर्स बहुत कम हो जाता है।
0: और वैसे भी कहा भी जाता है प्रता जी कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेते। और जब हम हार स्वीकार कर लेते हैं तब तो परिस्थितियां हावी हो ही जाती हैं, फिर उससे निकलना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए हम हार स्वीकार ना करें लेकिन लड़ते रहें।
1: हाँ, बस इसके लिए स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है ना। देखिए, कहने के लिए तो सहज है कि हम हार स्वीकार न करें, लेकिन एक व्यक्ति जब बार बार हारता है, जब बार बार उसे निराशा और असफलता मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं हार मान ही लेता है कि अब तो बाजी अपने हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ किया नहीं जा सकता। इसी के लिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि मनुष्य को स्पिरिचुअल पावर कलेक्ट करनी चाहिए, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, और उसे ईश्वरीय ज्ञान की भी जरूरत है। केवल मेडिटेशन नहीं, लेकिन ज्ञान जिससे वो हर चीज को पॉजिटिवली देख सके, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए, उसकी विचारधाराएं बहुत ब्रॉड हो जाएं, ताकि वो हर छोटी बात को बहुत छोटा समझे और बड़ी बात को भी छोटा समझे।
0: बिल्कुल, जब युद्ध की बात चल रही थी भ्राता जी, तो आपने एक बात कही कि वास्तव में अपने अंतर के जो विकार हैं, अंतर की जो कमजोरियां हैं, उनसे करना और विजय प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे संसार में ये बात कही जाती है कि आप पूरे संसार को जीत सकते हैं लेकिन अपने आप को जीतना बहुत ज़्यादा कठिन है, तो इस कठिनाई को कैसे पार किया जा सकता है?
1: देखिए यही कि बहुत लोग जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनमें से बहुतों की एक प्रॉब्लम देखी जाती है, वो कहते हैं हमें भय लग रहा है। अच्छे अच्छे लोग जो बाहर से पावरफुल दिखते हैं वो कहते हैं पता नहीं क्यों हमें कुछ विशेष चीजों से डर लग रहा है, जैसे किसी ने बाहर से कुंडा खटखटा दिया हम भयभीत हो गए, पता नहीं क्या हुआ। तो ये जो भय है ये आंतरिक कमजोरी है ना, जो मनुष्य को हर फील्ड में कमजोर बना देता है, चाहे उनके सामने समस्याएं हों, किसी ने छोटी सी बात भी कह दी हो तो भी। तो इस भय से लड़ना निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है और एक महत्वपूर्ण चीज इसलिए है कि जब तक हम इससे नहीं लड़ेंगे और विकार जो बहुत छोटे हैं वो भी हमें प्रबल नजर आने लगेंगे। बस इसके लिए पहले तो हमें ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कुछ भय ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्मों से चले आ रहे होते हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के चिंतन के द्वारा उस तरह के भय को समाप्त करना चाहिए। जैसे बरसात हो रही थी, कई जगह बहुत ज्यादा हुई, तो कुछ लोगों ने मुझे फोन किए कि हमें पानी से बहुत डर लग रहा है, कुछ अभी सुन लिया उत्तराखंड में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, विदेशों में भी कई जगह बाढ़ आई उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो ये बारिश को देखकर भयभीत हो रहे थे। तो ये पूर्व जन्मों का होता है। जैसे आज एक बहुत वंडरफुल समाचार था कि कोई व्यक्ति विदेश से आया अपने घर भारत में, मुझे सिटी का नाम भूल गया, किसी नदी में बहुत पानी आया हुआ था, सब लोग उसे देखने जा रहे थे, वो भी देखने गया और उसकी छोटी बच्ची उसकी गोद में थी जो बहुत छोटी थी, पता नहीं 6 मास की या 9 मास की, और जैसे वो देख रहा था रेलिंग से नदी को क्या हुआ, वो बच्ची उसके हाथ से छिटकी और नदी में गिर गई। कोई तरीका नहीं था कि कुछ किया जा सके, 6 किलोमीटर दूर जाके उसका शव मिला। तो ये चीजें मनुष्य को भयभीत कर देती हैं और ये भय कंटिन्यू रहता है, ये अगले जन्म में चलता है जब तक कि इस भय से पावरफुल चीजें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट न करें। तो ये आंतरिक कमजोरियां मनुष्य को विघ्नों से लड़ने में बहुत कमजोर बना देती हैं, इसलिए इनको पहचानना कि कौन सी कमजोरी मेरे अंदर काम कर रही है और उसको समाप्त करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान की कुछ बातों का प्रयोग करना, जो हमारे पास जो ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं वो जानते हैं ज्ञान का एक अथाह भंडार है, जैसे परमात्मा ज्ञान के सागर हैं वैसे ही उसने हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया है, संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, तो उसका प्रयोग करके हम इन कमजोरियों को नष्ट करें। जैसे मुझे दूसरी बात भी याद आ गई, किसी ने कहा मुझे बार बार इरिटेशन होता है, अभी उसे चिड़चिड़ापन आता है, वो अपने बाह्य क्रोध को तो बंद कर लेता है, उसको नहीं आने देता, लेकिन एक सूक्ष्म इरिटेशन उसके अंदर बना रहता है, किसी ने कुछ किया और वो अंदर ही अंदर जैसे गर्म हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आत्मा कमजोर होती जाएगी, मन की शक्तियां क्षीण होती जाएंगी और जब समस्याओं का उसे सामना करना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने को वीक पाएगा। तो ये जो आंतरिक कमजोरियां हैं जो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें गिनाई जा सकती हैं। एक व्यक्ति दूसरे से कंपेयर करके अपनी खुशी को नष्ट कर रहा है, वो चिंतन में रहता है, खुश नहीं रहता, तो इन चीजों को पहले तो पहचानना, फिर राजयोग के साथ ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा इनको हल्का करना, इनको डिलीट करने का अभ्यास करना, क्योंकि ये मन एक चिंतन शक्ति है ना, तो पहली चीजें भी चिंतन से प्रिंट हुई हैं, जो निगेटिव चीजें हुई, और अगर हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो हमें पावरफुल चिंतन ही फिर से देना होगा, तो पावरफुल चिंतन से नई चीजें प्रिंट हो जाएंगी, पुरानी जो कमजोर हैं वो डिलीट हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, तो जो चीजें भरी हुई हैं हमारे अंदर उनको एक अच्छे चिंतन से, राजयोग के अभ्यास से हम जो पुरानी चीजें हैं निकालते चलें और नई जो अच्छी चीजें हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे अंदर साहस हो, दृढ़ता हो, धैर्यता हो, इन अच्छी चीजों को हम प्रिंट करते चलें ताकि जीवन में हम सफल हो।
1: और एक बात मुझे इम्पोर्टेंट बात कहनी है, अभी अभी 15 मिनट पहले ही मुझे किसी लेडी का फोन आ रहा था कि मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है, ये बुजुर्ग हैं लेकिन मैंने उनके साथ जो गलतियां की हैं पास्ट में, औरों के साथ भी जो गलतियां मैंने कर दी हैं, किसी को बुरा बोलकर मैंने कष्ट दे दिया है, अपने पति को भी थोड़ा कम सुख दिया है, उसकी भावनाओं को मैंने हर्ट बहुत किया था, वो मेरे से खुश नहीं रहते थे, तो अब जब वो चले गए मुझे वो बहुत याद आती हैं चीजें। कहा जाता है ना, मनुष्य जब चला जाता है तो उसकी बहुत याद आती है। पहले उससे घृणा करते थे, पहले उन्हें सुख नहीं देते थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो रो रहे हैं, उनकी याद आ रही है, वो कितने अच्छे थे। अगर काश वो तब सोच लेते ये कितने अच्छे हैं तो शायद इनको आज कम रोना पड़ता। तो बता रही थी कि जो पास्ट की बातें हैं मैं उन्हें भूल ही नहीं पा रही हूँ, बहुत चीजें मैंने करके देख ली, तो मेरे से इसका समाधान पूछ रही थी। तो इसके लिए मैंने उन्हें भी यही बताया, और अपने दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पास्ट हो गया उसको हल्का करें, क्योंकि वो उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब रिपीट नहीं होगा।
0: बिल्कुल प्रथा जी, आपने जो बात कही है कि हमने पास्ट की जो बातें हैं कई बार हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, वैसा ही मैं प्रथम मेल ले रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैं 2 वर्ष से ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 5000 वर्ष के बाद हूबहू ड्रामा के चक्र के रिपीट होने की बात से मैं दुखी हो जाती हूँ। मेरे पास्ट में ऐसी ऐसी दुखद घटनाएँ घटी हैं जिन्हें मैं दोबारा नहीं चाहती, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे ये घटनाएं अगले कल्प में मेरे साथ ना हो?
1: बहुत अच्छा सोच रही है, और ऐसे समाचार, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। वास्तव में उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख हुआ था, कईयों का तो ऐसा हुआ, वो बताते हैं कि अगर हम उस पीरियड को याद करते हैं तो रूह कांप उठती है, और निश्चित रूप से भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो समय दोबारा कभी ना देखना पड़े।
0: जैसे ये भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था दादाजी, तो कई लोग जो उस दौर से गुजरे थे बहुत ही गहरे सदमे से, बहुत बुरी घटनाओं से गुजरे।
1: देखिए, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ा हुआ है, जो अगले जन्म में भी कंटिन्यू रहता है। तो ये ऐसी चीजें होती ही हैं कि बहुत बुरा हो गया है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बाबा के पास क्यों आए? प्रभु मिलन हुआ है उनको, उनका उनको संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है, यों कहें कि उनकी जन्म जन्म की भक्ति का उन्हें फल भी मिला है, बहुत बड़ी चीज उनके साथ हुई है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्यों आए इधर? ब्रह्मा कुमारी का तो नाम आपने पहले भी सुना था, लेकिन नहीं आए थे? कहा, तब तो हम अपनी मस्ती में मस्त थे ना, भगवान की ओर तो देखते ही नहीं थे, सुख में सुमिरन कौन करे उसका। तो दुख आया तो शांति की, खुशी की तलाश, एक बेचैनी हो गई थी जीवन में, सब कुछ चला गया, तो तलाश हमें यहाँ ले आई खींच के। तो मैं उन्हें कहता हूँ, बलिहारी उस महादुख की, मान लो महादुख था, बलिहारी उस महादुख की जिसने आपको भगवान से मिला दिया, अभी प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करो। जो पास्ट का दुख था वो कल्याणकारी हुआ आपके लिए, कहीं कहीं दुख बहुत कल्याणकारी होता है, कहीं कहीं दुख हमारे सुखों के मार्ग खोल देता है, यही इनके साथ भी हुआ है, चांदनी के साथ, इनके लिए प्रभु मिलन का मार्ग खोल दिया, और जब तक वो दुख ना आते तब तक ये प्रभु मिलन को प्राप्त ना कर पाते, क्योंकि कुछ पाप कर्म प्रभु मिलन के मार्ग में दीवार बने हुए थे, उस दीवार के बाहर ये देख ही नहीं सकते थे। अभी वो जो पाप कर्म थे उनका ये फल हुआ दुख, वो नष्ट हो गए, सेटल हो गए, और इनके लिए मार्ग स्पष्ट हो गया, क्लीन हो गया कि ये प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करें। तो मैं अपनी चांदनी शर्मा को कहूंगा कि अब तो वर्तमान का आनंद लो, और रही बात कि वो दोबारा ना आए, दोबारा तो अब आएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो अगले कल्प में आएगा तब उसकी आपको कोई जानकारी नहीं होगी, वो बिल्कुल नया होगा, जैसे इस कल्प में आपके लिए नया था, अब आपको लगता है ना कि वो ना आए, इस फ्यूचर में, वर्तमान के जो फ्यूचर है, इस कल्प का जो फ्यूचर है, इसमें तो वो कभी नहीं आएगा, इसलिए निश्चिंत हो जाओ और अपने अंदर योग की ऐसी शक्ति प्राप्त करो, अपने अंदर परमात्म मिलन का इतना सुख भर लो कि वो दुख फीका लगने लगे। और अगर हम परमात्म मिलन का सुख, अतिन्द्रिय सुख जिसे कहते हैं, वो बहुत प्राप्त कर लेते हैं, तो पास्ट के दुख हमें ऐसे लगते हैं वो तो मनोरंजन था, वो तो एक साइड सीन था, वो कुछ नहीं है, वो तो पूरा हो गया, अब जो बीत गया उसको क्या याद करना है। तो मैं चांदनी शर्मा को कहूँगा वर्तमान का आनंद लो, वो घटनाएं आपके पास दोबारा कभी नहीं आएंगी, इसलिए राजयोग का अभ्यास कर्म करते हुए इन्हें 4 घंटे रोज अवश्य करना है। ईश्वरीय महावाक्य सुनने का भी बहुत ज्यादा सुख ये प्राप्त करें तो वो सुख उस दुख को आप ही भुला देगा।
0: बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम ईश्वरीय सुख वर्तमान में इतना प्राप्त कर लें कि जो पास्ट का दुख है बार बार जो हमें खींच रहा होता है उससे हम मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ईश्वरीय आनंद प्राप्त करें, इसलिए राजयोग का बहुत गहरा अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है। दादा जी, इसी से जुड़ा हुआ जो 5000 वर्ष की बात है, हमारे एक और दर्शक ने जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि जब हूबहू सब कुछ रिपीट होना है तो हमारा पुरुषार्थ भी तो रिपीट होगा, ऐसे में पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि सब चीजें तो फिक्स हैं ही, तो यदि मैंने पिछले कल्प में पुरुषार्थ किया होगा तो इस कल्प में भी कर लूंगा।
1: राजेश जी को मैं कहूंगा कि उत्तर तो इन्होंने दे दिया कि पिछले कल्प में अगर मैंने किया होगा तो इस कल्प में भी मैं कर लूंगा, लेकिन इन्हें ये बात भूल गई कि जो पार्ट है एक्टर्स को वो प्ले करना ही पड़ता है। हम इस विशाल नाटक के एक्टर हैं, जो पार्ट हमें मिला हुआ है वो बिना हमारे एक्ट किए तो नहीं होगा ना। हम एक्टर्स हैं तो हमें एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, इसलिए कल पहले जो एक्टिंग हमने की थी वो एक्टिंग भी हमें करनी है। हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट हमारी एक्टिंग क्या है, ये हमें कोई जानकारी नहीं। आज शाम तक हमारी एक्टिंग क्या होगी ये हमें कुछ पता नहीं, अगले 2 साल में हम क्या करेंगे ये हमें कुछ पता नहीं, इसलिए मनुष्य प्लानिंग करता है ना। लेकिन जब उसकी मनोस्थिति, जब उसकी स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठ जाता है तब जो उसका पार्ट है जो उसे करना है वैसे ही विचार उसके मन में उठने लगते हैं और वो उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोच के ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, अगर ये सोच के निष्क्रिय हो जाता है तो इसका अर्थ है उसने किया ही नहीं है, वो पहले भी निष्क्रिय था। इसलिए ये सोचना ही गलत है। हमें एक पार्ट मिला हो ये तो सत्य है कि हमारा पार्ट फिक्स है, लेकिन उसका एक्ट करने में हम स्वतंत्र हैं कि हम कितना अच्छे से अच्छा करें। तो अब हमें वर्तमान में यही सोचना चाहिए कि हमें जो पार्ट मिला जो कल पहले भी हमने किया था उसको हम अच्छे से अच्छा करें, और सवेरे उठकर हम बहुत ज़्यादा सुख लें। मान लो हम कल पहले भी सवेरे उठे थे, अब हम सो नहीं पाएंगे, हमारी जो चेतना है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें वैसा ही जागृत रखेगा। इसलिए सब कुछ रिपीट हो रहा है तो एक्टिंग करना भी रिपीट करना है, ये याद रखते हुए एक अच्छा पुरुषार्थ इन्हें करना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो मतलब पुरुषार्थ करने के पश्चात ही हमें प्रारब्ध की प्राप्ति होगी, यदि अभी हमने छोड़ दिया तो हमें श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोग ब्रदर जी, जैसे इन्होंने राजेश जी ने प्रश्न किया है इसी के आधार पे, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने भी कहा है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस नियति के होते हैं कि चलो अजगर भी तो कोई काम नहीं करता और यदि उसकी नियति में है उसके नसीब में है तो खुद ब खुद चूहा चल के उसके वहां जहां वो है वहां तक पहुंच जाता है। तो ये जो भविष्य है, भविष्य के गर्भ में यदि श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ होगा ही, ऐसा भी मान करके कई लोग चलते हैं। तो भाग्य वास्तव में क्या है? भाग्य में है तो हो जाएगा, कई लोग ऐसा कह के अपने आप को सहज रूप से चलाते रहते हैं। तो इस विषय को थोड़ा सा
1: देखिए, भाग्य कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि भाग्य हरेक का भाग्य भगवान ने बना दिया है। हर आत्मा अपना भाग्य बनाने के लिए स्वतंत्र है और मूल रूप से मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। जैसे कोई मनुष्य आज ये कहे भाई मेरा तो भाग्य काम नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है मुझे, मेरा तो भाग्य पता नहीं कैसा है, भगवान ने मेरे लिए तो इनजस्टिस कर दिया है, लेकिन उसको जो ये अनुभूति हो रही है अप्राप्ति की, असफलता की, इसका कारण उसके कर्म ही हैं, चाहे इस जन्म के कर्म चाहे इससे पूर्व जन्मों के कर्म। तो जन्म जन्म समझो हजार साल से हमने जो कर्म किए हैं उसका फल ही भाग्य कहलाता है। तो ये कर्म और फल का साइकिल चलता रहता है, कर्म करता है उसका फल मिलता है, उस अनुसार फिर मनुष्य कर्म करता है क्योंकि फल की छाया कहीं ना कहीं कर्म पर फिर रहती है, फिर उसका फल मिलता है। ये जो साइकिल है ये भाग्य बन जाता है। तो अगर ये मनुष्य सोचे कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाई अजगर के मुंह में भी तो आवे, लेकिन अजगर के पास बुद्धि कहाँ है इतनी, मनुष्य बुद्धिमान है, वो निरंतर एक्टिव है, वो क्रिएटिव है। मनुष्य अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी एक्टिवनेस को नष्ट नहीं कर सकता। अगर वो उनके अनुसार उन्हें यूज नहीं करेगा तो डल हो जाएगा। तो भाग्य ने ही मनुष्य को चिंतन शक्ति दी है, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि दी है जो जानवरों के लिए नहीं है। तो हमें भाग्य पर ठहर कर निष्क्रिय नहीं हो जाना है, हम तो एक्टर्स हैं, हमें एक्टिव होना है, हमें मेहनत करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं है। जैसे मैंने कहा, हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, इसमें भगवान का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है। सच तो यही है, भले ही भगवान को हम भाग्य विधाता कहते हैं लेकिन भाग्य निर्माण भी वो हमारे कर्म अनुसार ही करता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने एग्जाम में 5 क्वेश्चंस का जैसा आंसर दिया हो, जो एग्जामिनर होगा मार्क करने देने वाला, वो उसके अनुसार ही तो देगा ना। ये तो नहीं उसने पूरा गलत उत्तर लिख दिया है और वो उसको 10 में से 10 दे देंगे परफेक्ट उत्तर है वो, आज की बात अलग है कि कोई दे देते हों, लेकिन ये नियम तो नहीं है ना। तो भगवान भाग्य विधाता

0: आ रहा है, लोग कहते हैं बड़े भाग्यवान हैं, सचमुच भाग्य लेकर पैदा हुए, भगवान ने इन पर भाग्य की बरसात की है। लेकिन रहस्य यही है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उन आत्माओं ने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनको यहाँ धन मिल रहा है, सफलता मिल रही है। बिना कर्म के कुछ भी फल मिलता नहीं है। जिसके पास जो कुछ है, अच्छा या बुरा, सफलता या असफलता, धन है या गरीबी है, ये उसके कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए भाग्य हमारे हाथ में है। अब हम बहुत अच्छे कर्मों से अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करें। और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि इस समय तो ये जो कलयुग का अंत चल रहा है, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, गोल्डन एज इज अबाउट टू कम, और ये जो कलयुग दुनिया है, इट इज अबाउट टू एंड नाउ। तो दोनों के बीच के समय पर हम खड़े हैं। इस समय तो भगवान हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने की और विधियां बहुत सिखा रहा है, जिसमें हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना, अपनी पावर ऑफ प्योरिटी को बढ़ाना, अपनी विल पावर को बढ़ाना, ये सब भी उसमें काउंट होता है पुण्य कर्मों के साथ। तो अब भाग्य हमारे हाथ में आया। हर जन्म में जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा उसका भाग्य होता है। तत्काल भी उसे भाग्य मिलता है और फ्यूचर में भी उसे भाग्य मिलता है। लेकिन वर्तमान समय को ये गिफ्ट है, ये गॉडली ब्लेसिंग है कि इस समय हम अपने 2500 साल का भाग्य एक साथ निर्माण कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात ब्रदर जी आपने कही है कि अब पास्ट वाली जो बात है उनको भूलते हुए हमें फ्यूचर को देखना और प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। और जहाँ तक भाग्य की चर्चा चल रही है, पूरी दुनिया में खास करके भारतवासी तो भाग्य पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन भाग्य का निर्माण कैसे होता है, इस चर्चा को हम चाहेंगे कि हम आगे भी जारी रखें। क्योंकि अधिकांश लोगों का ये मानना है कि ऊपर से ही भगवान भाग्य लिख करके भेज देते हैं और जो नसीब में है वही प्राप्त होगा। तो मैं चाहूंगा कि इसकी थोड़ी सी चर्चा हम आपके साथ अगली कड़ी में भी करें। आज समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। वर्तमान जो है एक गिफ्ट की तरह है, हम इसे गिफ्ट की तरह यूज करें। जैसे हमारी एक दर्शक ने लिखा कि पास्ट की बुरी घटनाओं का छाया हमेशा ही हमारे ऊपर बना रहता है, जिसके कारण हम अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं या प्रेजेंट का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ये बात बहुत स्पष्ट रूप में लिखी हुई है कि पास्ट की तुम पश्चाताप मत करो, अर्थात भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत करो, प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान हीरे तुल्य है। और साथ ही भाग्य की जो चर्चा हम कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भाग्य का निर्माण कैसे होता है, इस चर्चा को समाधान में हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है? ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। पंचांग के अनुसार आज शक संवत 1948 ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी रविवार है। विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 28 जून सन 2026। सूर्य उत्तरायण उत्तर गोल वर्षा ऋतु है। राहु काल शाम को 5:38 से शाम 7:23 तक है। चतुर्दशी तिथि अगले दिन तड़के 3:06 तक, उपरांत पूर्णिमा तिथि का आरंभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र अगले दिन तड़के 1:08 तक, उपरांत मूल नक्षत्र का आरंभ है। शुभ योग दोपहर 1:30 तक, उपरांत शुक्ल योग का आरंभ है। गरजकरण दोपहर 1:54 तक, उपरांत वणिजकरण का आरंभ है। चंद्रमा अगले दिन तड़के 1:08 तक वृश्चिक राशि और उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:26 पर हुआ है। सूर्यास्त का समय 7:23 पर रहेगा। चंद्रोदय का समय 6:26 पर है। चंद्रास्त का समय अगले दिन तड़के 4:22 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:54 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त 11:56 पर सुबह और से लेकर के 12:52 तक है। अमृत काल का समय दोपहर 3:15 से शाम को 5:03 तक रहेगा। तो आज के चार घड़ियों में से सामान्य घड़ी सुबह 7:11 से 8:55 और लाभ घड़ी है 8:55 से 10:40। सुबह 10:40 से दोपहर 12:24 अमृत घड़ी है। शुभ है दोपहर 2:09 से दोपहर 3:54 तक। और आज इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार 1448 12 मुहर्रम इतवार कल्व है आज के दिन। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के पंचांग के साथ। लेते हैं यहाँ पर फटाफट सा एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए चलते हैं हम राजधानी जयपुर की ओर। बिल्कुल, मौसम विभाग के अनुसार मौसम जानकारी हेतु 40 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है। आज तापमान बारिश होने की संभावना फिलवक्त नहीं है। बात करें अगर उदयपुर के बारे में, 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर बारिश होने की संभावना लगभग 34% तक है। बात करें आबू रोड की, 40 डिग्री अधिकतम न्यूनतम 28 डिग्री तक आज आबू रोड में बहुत गर्म अनुभव होने की संभावना है। बात करें माउंट आबू की, 28 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकता है। 45% तक बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना कम है, एकदम 1% तक। पाली जिले में 29 डिग्री न्यूनतम अधिकतम 40 डिग्री तक जा सकता है। जोधपुर में 40 डिग्री अधिकतम न्यूनतम 28 डिग्री। सूरत में 34 डिग्री अधिकतम न्यूनतम 29 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर फुल एकदम 98%। बारिश होने की संभावना थोड़ा बहुत है आज 55% तक रात्रि के समय सूरत में। मेहसाणा में 42 डिग्री तक टेम्परेचर जाने की संभावना है अधिकतम। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। 42 डिग्री अधिकतम तापमान और इसमें बारिश की संभावना 12% तक है। बात करें अगर हम राजकोट के बारे में, 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। गांधीनगर में 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। अहमदाबाद के अंचल में 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली में लगभग 41 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा यहाँ पे। कोलकाता में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना 67% तक है। बेंगलुरु में 29 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर भी 55% तक बारिश होने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। 96% तक बारिश होने की संभावना है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर 55% तक संभावना है बारिश होने की। एक दो बार ज़्यादा जोरदार बारिश होने की संभावना है। जिला सिरोही के बारे में बात करें, 41 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है और सिरोही जिले में बारिश होने की थोड़ा बहुत संभावना है 50% से ज़्यादा। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। आइए लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप 8:01 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। आइए चलते हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं अब से 4 घंटे तक आने वाले गाड़ियों के बारे में जानकारियां। 8:30 पर 5 मिनट लगभग देरी से आने वाली है ग्वालियर से साबरमती तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या है 22547। अरावली एक्सप्रेस 14702 8:30 पर पहुंचने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस 14461 9:05 पर पहुंचेगी। वहीं पर बेंगलुरु से अजमेर जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:10 पर पहुंचने वाली है। अजमेर से मैसूर जाने वाली एक्सप्रेस 16209 10:10 पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19032 10:50 पर पहुंचने वाली है। और वहीं पर गाड़ी संख्या है 19224 जम्मू तवी से आने वाली साबरमती तक जाने वाली एक्सप्रेस 1:18 देरी से चलती हुई 11:03 पर पहुंचेगी। जी हां, 1:18 देरी से चलती हुई 11:03 पर जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या है 04111 और ये गाड़ी समर स्पेशल एक्सप्रेस है। प्रयागराज से ये गाड़ी चलती है और 11 सुबह आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या है 19412 दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली ये एक्सप्रेस 11:30 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वहीं पर साबरमती से जोधपुर जाने वाली एक्सप्रेस 14822 11:40 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

0: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स. जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं. लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं. आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा. वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट. पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है. नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है. कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.
2: वेलकम बैक. सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, 8:13 रेडियो मधुबन की घड़ी पर. आप सोच रहे होंगे कि इतने देर कहाँ गए थे. इतने देर हम आरजे मोना जी से बात कर रहे थे. आज संडे है तो आज हॉस्पिटल की छुट्टी है, तो मोना जी आए थे हमारे साथ खास मुलाकात करने के लिए. क्योंकि इतने दिनों के बाद जो मैं लौटी हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM के स्टूडियो में, तो आइए जानते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई है भारत में चांदी के भाव के साथ. तो भारत में चांदी का क्या हालचाल है. 2,40,000 रुपये है पर किलोग्राम के हिसाब से. और सोने का क्या कुछ हालचाल है वो भी जान लेते हैं. सोना है हमारे इंडिया में, सोना मतलब आज सोना तो है ही, आज संडे है, लेकिन सोने की कीमत क्या है वो जान लेते हैं. चौबीस कैरेट की बात करें तो 24 कैरेट सोने के दाम है लगभग 1,44,000 रुपये. 22 कैरेट की बात करें तो 1,32,100 रुपये है. 18 कैरेट है 1,08,110 रुपये. तो ये कुछ सोने और चांदी के दामों के ऊपर हमने नज़र डाला. पेट्रोल और डीजल के ऊपर नज़र डालते हैं. हमारा पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल है हमारे राजस्थान में 113 रुपये 19 पैसे, राजधानी दिल्ली में 102 रुपये 12 पैसे हैं. और वहीं पर गुजरात में 102 रुपये 1 पैसे हैं पेट्रोल प्रति लीटर. अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल है हमारे गुजरात में 98 रुपये 13 पैसे और वहीं पर राजस्थान में है 98 रुपये 25 पैसे. एक USD के मुकाबले इंडियन करेंसीज का क्या कुछ हालचाल है. 94 रुपये 38 पैसे है एक डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी. एक यूरो के मुकाबले 107 रुपये 45 पैसे हैं. एक AED के हिसाब से 25 रुपये 69 पैसे हैं. ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी अर्थव्यवस्था के बाद बाजार के बातें हमने आप सभी के समक्ष रखा. आइए यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पर. सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM.

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आइए जानते हैं कुछ बातें जो हमारे आसपास के साथ जुड़ी हुई है, कुछ सूचनाएं। डिस्कॉम की ओर से 132 केवी सिरोही पोसालिया लाइन की रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 28 जून को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पोसालिया, पालेडेम, जोगापुरा, कैलाश नगर एवं इनसे जुड़े गांवों में बिजली बंद रहेगी। राज्य विद्युत प्रसारण निगम के सहायक अभियंता मुकेश कुमार बेरवा जी ने दैनिक भास्कर को ये जानकारी दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 12वीं लेवल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उम्मीदवार 23 जुलाई तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये टेस्ट अलग अलग भर्तियों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के तौर पर माना जाएगा। वहीं पर सिरोही में शिक्षा विभाग की ओर से 8वीं और 5वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। 5वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा 24 जुलाई तक और 8वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा 25 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा एक बारी में सुबह 8 बजे से सुबह 10:30 बजे तक होगी। और वहीं पर शांति कुंज पार्क में पार्क सेवा जो आबू रोड में है, इसमें सुधार समिति के प्रयास से पार्क में अब आम जन को नई सुविधाएं मिलेगी। नगर पालिका ने बताया कि 1 जुलाई से पार्क में नियमित चौकीदार की नियुक्ति होगी और 10 दिन के भीतर पेड़ पौधों के रखरखाव के लिए केयर टेकर भी लगाया जाएगा। पार्क के उपकरणों की मरम्मत के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत महिलाओं के लिए अलग ओपन जिम स्थापित किया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी झूलों की व्यवस्था होगी। और वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और गांव-गांव तक डिजिटल भारत के सपने को पहुंचाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक बड़ी पहल की है। BSNL ने संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत आने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए मात्र 259 रुपये प्रति माह की ग्रामीण फाइबर एंट्री योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है फाइबर टू द होम तकनीक के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को उच्च गति का इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान जैसी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।

और वहीं पर एक घंटे की बारिश में रेवदर का राजकीय पैवेलियन तालाब बन गया है। तो ये कुछ बातें सामने आई हैं। और वहीं पर जावाल क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोनवा अरठ स्थित सची या माता और नीलकंठ महादेव मंदिर के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन शुक्रवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। वहीं पर सिरोही में राज्य सरकार के ओर से सिरोही सेवा शिविर अभियान 2026 के तहत शनिवार को नगर परिषद सिरोही परिसर में वार्ड 13 और 18 के लिए शिविर लगाया गया। अनादरा में गांव के सुधारों का वास और नाइयों का वास के सामने गोगुआ नदी की रपट के पास लंबे समय तक गंदगी पड़ी है और गंदा पानी जमा है। लोगों को परेशानी हो रही है। जल भराव से इलाके में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है।

0: और बात करें माउंट में कला एवं संस्कृति प्रभा के राष्ट्रीय सम्मेलन का खुला सत्र आयोजित हुआ और वहीं पर आबू रोड में शहर और ग्रामीण इलाकों में मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, अघोषित बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या से परेशान लोगों के बीच में सत्ता पक्ष की ओर से बिजली विभाग को सम्मानित किए जाने पर सवाल उठे हैं। और कुछ बातें जुड़ी हुई है हमारे आसपास के साथ। अगर बात करें हम सुमेरपुर के नगर में राजगुरु सर्कल से महाराजा उमेद सिंह कृषि उपज मंडी गेट नंबर 2 के आगे तक लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनी CCTV रोड के डिवाइडर निर्माण के कुछ ही समय बाद जवाब देने लगे हैं। इसके साथ साथ आबू रोड शिक्षक संघ का प्रदेश महा समिति अधिवेशन 5 को होने वाले है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रदेश महा समिति अधिवेशन 5 जुलाई को सुदर्शन हॉल मानसरोवर ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड में होगा। बात करें सिरोही पैलेस रोड पर अहिंसा सर्कल के पास सार्वजनिक सारणेश्वर पुस्तकालय के बाहर सड़क धंस रही है और जिससे सड़क पर गड्ढा हो रहा है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले दुपहिया वाहन चालक अक्सर असंतुलित होते और गिरते गिरते बचते हैं। तो ये बात हम आपको पहुंचा रहे हैं दैनिक भास्कर के जरिए। वहीं पर सिरोही में शहर के कलावंतवास में सड़क किनारे बनी नाली क्षतिग्रस्त होने से यहां से गुजरने वाले लोगों को हर समय हादसे का अंदेशा लगा हुआ है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। 8:30 रेडियो मधुबन की घड़ी पर आइए सुनते हैं एक और भजन। मिलते हैं इस भजन के उस पार। भजन से पहले एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: नमस्ते दीदी, कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया सुरेश भाई, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी जी जी, बहुत दिनों के बाद। और बताइए क्या चल रहा है, बारिश वारिश कुछ है वहाँ पे?
1: नहीं नहीं, कुछ बारिश नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कब आए बारिश। कुछ नहीं है दीदी, ऐसा मौसम है कि बारिश पता आएगी नहीं आएगी पता ही नहीं चलता, इतनी धूप इतनी गर्मी।
0: जी,
1: या ध्यान भी नहीं है कि भाई चलो बादल आते हैं, बादल भी नहीं आते, कुछ नहीं आते, तो बारिश कैसे आए।
0: जी जी,
1: देखेंगे अभी 5-6 दिन में बता रहे हैं हवामान समाचार वाले की 5-6 दिन में बारिश आने की संभावना है। तो परमात्मा से तो हम प्रार्थना करते ही रहते हैं कि भाई बारिश आ जाए तो गर्मी से राहत हो जाए। किसान भाइयों के लिए भी जरूरी है, बारिश के इंतजार कर रहे हैं। एक महीना तो पूरा चला गया बारिश के बिना, दूसरा महीना भी आधा हो गया, तो देखेंगे आ जाएगी। अब तो बस भरोसा ही रखना है भगवान के पत्ते पे, वो आ जाएगी बारिश।
0: जी बिल्कुल, बहुत जल्द बारिश होने वाली है ऐसे सूचनाएं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बारिश हो। एंड थैंक यू सो मच फोन करने के लिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम और आइए सुनते हैं ये गाना।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और 8:45 पर आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। ये कुछ बातें जो जुड़ी हुई हैं हमारे नौकरियों के साथ वो जान लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में सरकार के मेडिकल संस्थानों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद भरे जाएंगे और लास्ट डेट है इसके 30 जून 2026। और आपको एम्स के वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना है, aims.ac.in पर जाएं, होम पेज पर रिक्रूटमेंट बटन पर क्लिक करें, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स भरें, रजिस्ट्रेशन करके अन्य डिटेल्स दर्ज करें और फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें, फॉर्म प्रिंट आउट करके रखें। तो एम्स के CRE का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता है एजुकेशन पद के अनुसार 12वीं पास, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और डिप्लोमा या फिर नर्सिंग की डिग्री। और वहीं पर दिल्ली में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 1979 पदों पर भर्ती होगी, लास्ट डेट है 15 जुलाई 2026। और इसके साथ साथ पंजाब में असिस्टेंट लाइनमैन के भर्ती के लिए 6279 पदों पर निकली है भर्ती और UPSC के बिना प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दिए होंगी भर्ती और लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026। शैक्षणिक योग्यता है बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री, सीनियर एकेडमिक और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए PhD और पद से संबंधित कार्य अनुभव होना चाहिए और इसके लिए आयु सीमा सरकारी नियम के अनुसार है। सभी के लिए आवेदन शुल्क ₹25 है। upsc.gov.in पर जाकर के आप इसके और ले सकते हैं जानकारियां। और 8 जुलाई 2026 लास्ट डेट है SBI में PO के 1500 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं आवेदन। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दिया जाएगा। तो SBI के PO पदों पर आप recruitment.sbi.bank.in पर जाएं, न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें, नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। वहीं पर 3 जुलाई 2026 100 पदों पर भर्ती होगी BSNL में, इंजीनियरिंग करने वालों को मौका है। और इसके साथ साथ UPSSSC जहां पर 3 अगस्त 2006 लास्ट डेट है, लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी है। तो upssc.gov.in पर जाएं। जी हाँ, याद रखें UPSC नहीं, upssc.gov.in पर जाएं। लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें और PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन करें। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे नौकरियों के साथ जो निकली है वैकेंसीज। और वहीं पर गुजरात में कंडक्टर ड्राइवर के 8917 पदों पर भर्ती निकली है, 12वीं पास को मौका, लास्ट डेट है 5 जुलाई 2026। यहीं पर मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्ते।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज़्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देंगे। बहुत ईजी है ख़त्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से ख़त्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा, ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूँगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल. सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे. वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है. अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए. वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे. एक रिपोर्ट.
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं. यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है. साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे. ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी. कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा. इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा. हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है. इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है. एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है.
5: Today we have a new national health policy.
6: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है. यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है. भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं.
5: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स.
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है. इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे. मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
7: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं. ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे. वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया. उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए. कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं. आगे की जाँच हमारी चल रही है.
3: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
8: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
9: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
10: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
11: हमारे यहाँ डोर टू कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
12: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
13: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
3: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
14: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आज का तारीख है 28 जून 2026, संडे का दिन है और संडे आप सभी आराम फरमा रहे होंगे और साथ ही साथ पूरे परिवार के साथ नाश्ता पानी, चाय पानी वगैरह खा पी रहे होंगे। तो निश्चित तौर पे एक संडे जो है हमारे लिए अच्छा दिन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर संडे हम लोग जो है कुछ और फंक्शन में या घर के बाहर जाने के चक्कर में फैमिली के साथ रहने का जो अवसर है वो छूट जाता है। तो इसीलिए हमें जो है संडे का दिन सिर्फ घर के लिए हो तो चीज़ें अच्छी हो जाती है और आप परिवार के साथ एक दिन बिता सकते हैं, तो परिवार वालों को भी खुशी होगा और आपको भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आइए, आज जैसे कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में, हम लोग एक बहुत ही सुंदर अनुभव आपको सुनाने वाले हैं। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग बीमार हो जाते हैं या हमारा लाइफस्टाइल समझ में नहीं आता, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता, तो इसलिए भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है, नेचुरोपैथी जिसको कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और कमलेश जी हमारे साथ है, जीता जाता उदाहरण, जिन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट भी लिया और अभी बिल्कुल चंगा है, तो आप सभी को उनका अनुभव भी सुनने को मिलेगा। और साथ ही साथ गुड़गांव में जो विशेष गुरुदेव जी का आश्रम है, प्राकृतिक सेंटर है जो गुड़गांव के बिल्कुल थोड़े पास में है, तो वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या सिस्टम है, उन सारी चीज़ों को भी समझ लेंगे। कई बार होता है कि बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा फीस ले लेते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उतना ठीक से नहीं होता, ऐसे भी कई चीज़ें होती हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी एक अब जो है एक पैशन भी हो गया, ब्यूटी पार्लर की तरह काम हो रहा है, तो लोग समझते हैं वहाँ हम लोग मसाज थेरेपी करके या ऑयल वगैरह या पंचकर्मा या फिर शिरोधारा, इस तरह के जो फोटोज़ देखते हैं लोगों को आकर्षित करके, विदेशी लोग भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए आते हैं। लेकिन इसमें समझ में नहीं आता आदमी को कि मैं एक्चुअली में ट्रीटमेंट मेरा सही कहाँ पे होगा। तो ये जो भ्रम है, ये जो चीज़ें हैं, इसको मानस पटल पर हमारी जो है हम आकर्षण के चक्कर में या ब्यूटी के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हमें इन सभी चक्करों से निकल कर हमें ठीक लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन को जिंदा दिली से जीने के लिए हमें क्या पद्धति अपनाना है, इस चीज़ को समझना, और फिर उसके अगर कोई बीमारी है तो आप ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाइए, और ठीक होने के बाद आप एक लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो नेचुरली आप हेल्दी रहते हैं, बीमारी से कोसों दूर रहते हैं। तो आइए इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।

0: और रमेश भाई जी, ओम शांति।
1: ओम शांति, ओम शांति।
0: और सुनने वालों को भी बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, ओम शांति सबको।
1: जी जी।
0: तो
1: जी।
0: जैसा कि नया दिन चढ़ता है और नए दिन में नई बातें करते हैं, नई उम्मीदें होती है। तो आपने कहा कि आपके आज प्रोग्राम का टाइटल है आपका स्वस्थ आपके हाथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है रमेश भाई जी। अगर इसको हम समझ लेना गहराई से, अगर हम बीमार होते हैं तो 99.9% जो आपकी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण एक और है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोना उठना जागना, ये सब चीजें मैटर करती हैं बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तब हमें धीरे धीरे समझ आती है कि वाकई हमें कमी थी कि ये बीमारी हमें हुई। तो आज के खान पान की बात करें तो बहुत ज्यादा 100% पोल्यूटेड खाना हम खा रहे हैं, और नेचर ने जो हमें दिया था बिल्कुल प्योर, जहाँ पे ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों पे, हरियाली वाली जगह पे रहते थे, तो उनका जो उम्र आप देखेंगे 150-150 साल वो जी जाते थे। क्यों जी जाते थे? उनके पास सिर्फ सृष्टि के साथ जुड़े होने का, कुदरत के साथ जुड़े होने का उनका एक बहुत बड़ा पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने तरक्की करी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी शामिल हो गई, हम मटेरियलिस्टिक हो गए, मानसिक तौर पे हम मटेरियलिस्टिक हो गए। तो सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में हम अपनी सेहत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और सुनने वाले इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि हम लोग आज इतने ज़्यादा पैसे की दौड़ में हैं या मटेरियलिस्टिक हो गए हैं या अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा ली हैं कि हम अपनी सेहत, जो सबसे प्रायोरिटी है, सबसे ऊपर होना चाहिए। सेहत, पहले सेहत ठीक होगी तभी आप काम कर पाएंगे, सेहत ठीक होगी तभी आप उस पैसे को जो कमा रहे हैं उसको यूज कर पाएंगे, है ना, अच्छे तरीके से। तो जैसे आपने बताया कि गुरुग्राम, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कुदरत के साथ, कुदरत ने हमें इतने पेड़ पौधे फूल फल दिए हैं जो अनगिनत हैं, हजारों किस्में हैं। अगर हम उसके बारे में स्टडी करनी शुरू करें, सिंपल सी स्टडी के जो हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए रोज के रोज, खास करके आने वाली पीढ़ी, बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि उनका जो इस समय स्टाइल चल रहा है खान पान का, सोने का, उठने का, पूरा लाइफस्टाइल, उसमें आप कहिए कि 100% पोल्यूटेड है। तो आपने गुरुग्राम की बात करी, तो पिछले तकरीबन 22 दिन पहले मैं गुरुग्राम गई थी, जो गुरुग्राम से 17 किलोमीटर दूर गांव है बुडेरा। तो वहां पे गुरुजी हैं जो सत्संग भी करते हैं, और सत्संग मतलब आत्मिक तौर पे आपको जोड़ते हैं परमात्मा के साथ, जैसे मधुबन में जुड़े हैं, मधुबन में आके जुड़ते हैं, या मुरली के साथ जुड़ते हैं, या बाबा के साथ, ओम शांति ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। तो हम आत्मिक तौर पर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने आप अनुभव होना शुरू होता है कि हमें अपना जीवन कैसा रखना है, कैसा स्वच्छ रखना है मानसिक और शारीरिक तौर पर। तो गुरुग्राम की अगर बात करूँ तो मैं गुरु जी के पास इसलिए गई थी कि मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी पिछले 5-6 सालों से। हालांकि आजकल 100 में से 90 लोग बीपी की गोली शायद खा रहे होंगे हमारी उम्र के, तो मैं भी खा रही थी, लेकिन मैं गुरुजी को फॉलो करना शुरू किया यूट्यूब से, नेचुरोपैथी के द्वारा इलाज, सभी बीमारियों का इलाज फॉलो करते करते मेरा मन हुआ कि उनको मिलना जाए। जब उनकी मैं देखती थी वीडियोस तो मुझे लगता था कि बहुत सारी बातें जो हमारे बहुत काम की हैं, है ना। तो हम लोग उनको मिलने गए, तो मैंने, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या समस्या है। वहाँ पे हजारों लोग आए हुए थे जिनको, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है ना, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, हजारों बीमारियां, हजारों लोग, हजारों तरह के। तो गुरुजी ने मुझसे पहले पूछा कि आपको क्या समस्या है, तो मैंने बताया मुझे बीपी की समस्या है और शरीर में मेरे दर्दें रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आज बीपी की गोली छोड़ दीजिए और भोजन में सिर्फ आप सब्जी लीजिए, 2 टाइम आपको खाना यहाँ मिलेगा, और जो है सुबह आप नीम का और ग्लोए का काढ़ा पीजिए 1 गिलास, और गौमूत्र जो बिल्कुल स्वच्छ उनकी गौशाला भी है वहां से आता है, और लोग पी के उसको ठीक हो रहे हैं, कैंसर के बीमारी के इलाज के बाद लोग वहां पे सेवा में लगे हुए हैं, वो खुश हैं। जो सबसे ज्यादा पीड़ित थी कैंसर से लेडी, उसको जो है कीमोथेरेपी 1000 बार हो चुकी थी, 1000 बार मतलब सॉरी 6-7 कीमो उसकी हो चुकी थी, बाल उसके झड़ चुके थे। जब गुरु जी के पास आई तो उन्होंने उसका खाना बंद करवा के उसको सिर्फ और सिर्फ सब्जियां और काढ़े पर उनको रखा। था। और जूस बनाते हो, हर पत्ते का जूस आपको मिलेगा, जामुन के पत्ते का रस मिलेगा, किलोए का मिलेगा, धनिए का मिलेगा, पुदीने का मिलेगा, वाइट पेठे का मिलेगा, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए तिल का आपको मिलेगा घोल, और नारियल का पानी जो हम वैसे पीते हैं इतना महंगा पड़ता है, नारियल के गोले को पीसकर उसका दूध बनाया जाता है। गुरुजी कहते हैं कि आज हमारा खान पान में दवाइयों का, यूरिया का इतना इस्तेमाल हो रहा है, इसी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और कुछ लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। तो मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले एंट्री हमारी हुई थी, हमें जो कार्ड मिला वहाँ एंट्री का, उसके लिए उन्होंने बोला कि आप 1,000 रुपया पर हेड जमा करवा दीजिए, मैं और मेरे युगल थे दोनों, तो रहने का व्यवस्था है वहाँ पे और खान पान की व्यवस्था है, जो मरीज लोगों को चाहिए वो खाना मिलेगा, वो आपको बर्गर नहीं मिलेंगे, चाउमीन नहीं मिलेगा है ना। तो 1,000 रुपये हमने जमा करवाया और मैडम ने बोला, मैं मन में अभी सोच ही रही थी, सवाल हर किसी के मन में आता है कि आपने तो लिखा है फ्री इलाज होता है यहाँ पे, तो आपने आते 1,000 रुपये हमसे मांग लिया। तो मैडम ने बोला कि मैडम आपको जब ये आप वापस जाएंगे तो ये 1,000 रुपये आपको वापस मिलने वाला है। तो चलो मन थोड़ा शांत हो गया है ना, कि जो उन्होंने कहा था वो सच था। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरी गोली बोला कि आज से गोली नहीं खानी। मैंने देखा कि बहुत दिनों से मैं उनको वॉच कर रही थी कि जो लोगों को उन्होंने दवाई बंद करने के लिए बोला, एकदम से उन्होंने विश्वास करके गुरुजी पर बंद कर दी दवाई और खाना जो उनके मुताबिक खाना शुरू किया, जिसमें सब्जियां बगैर घी के उबली हुई सब्जियां मिलती थी और फ्रूट मिलता था, सैलड मिलता था, सुबह 1 घंटा योगा होता था, बड़ा जबरदस्त योगा, अगर आप जितना भी कर सकते हैं उसी हिसाब से करिए, लेकिन 1 घंटा आपको वो योग करने से आपके पूरी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ता है। और उसके बाद गुरुजी ये बोलते थे कि जिनको पेन्स है, घुटनों में पेन है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, तो धूप थी वहां पे जो बड़ा आंगन है, तो वहां सभी लोग बैठ के अपना तेल लेके मालिश की जाती थी, मसाज होती थी, और धूप आधा घंटा, उन्होंने बोला कि गर्मी हो सर्दी हो आपको आधा घंटा बॉडी के लिए जो धूप है बहुत जरूरी है। तो ये उनका लाइफस्टाइल। और जो मरीज थे वो ठीक होने के बाद खुद सेवा, साफ सफाई, जो आपके जहाँ वॉशरूम जाते हो और टॉयलेट का, जो आसपास पेड़ पौधे लगे हैं उनको सभी अपने ढंग से साफ सफाई कर रहे थे, बहुत ही अच्छा माहौल था। और गुरुजी मैंने देखा कि उन लोगों को वहाँ व्यवस्था की है, जिन लोगों को घर में लोग बीमार समझ के उनको मतलब कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो गुरुजी ने उनको संभाला हुआ है वहाँ पे और वो खुश हैं क्योंकि गुरुजी साथ उनके बीच में रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और धन्य है वो गुरुजी जो कम से कम शाम तक 100 लोगों के बीमारियों को बड़े शांत मन से सुनते हैं और उसके बाद उस पे जो कार्य करते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास कोई एक आदमी बोल दे कि मेरे को ये दर्द है वो दर्द है, तो हम उसको किनारा कर लेते हैं कि भैया ये तो बीमारी की बात करेगा, लेकिन गुरुजी में इतनी पेशेंस है, इतनी उनकी ब्लेसिंग है, मुझे लगता है कि 60% ब्लेसिंग जो है वो वहाँ बीमारी के लिए काम करती है जाते ही उस आश्रम में एंटर होने के बाद। और लोगों का वेट कम हो रहा है, ओवर वेट थे जो लोग वो कम हो रहा है। और एक बड़ी बात मैंने रमेश भाई जी वहाँ पे ये नोट की कि गुरुजी सबको बोलते हैं कि आप लोग अभी ज्यादा खा रहे हो, ओवर ईटिंग हो रही है आप सब की, है ना। तो आपको जो मिलता है आप खा लेते हो, बॉडी को आपने कूड़ादान समझा हुआ है, जो इसमें डालते जाते हो जब बीमार होते हो फिर शोर मचाते हो। तो मतलब कहने का कि खाना उतना ही खाओ जितना आपको ज़रूरत है, ज़रूरत से भी कम, और क्वालिटी वाला फूड, और पत्ते फूल फल की चाय वहाँ मिली, जूस मिला, सूप मिला, सैलड मिला, और ऑर्गेनिक सब्जियाँ गुरुजी ने लगा रखी हैं उसमें, वो सब्जियां बनती हैं सारा दिन। और आप देखिए कि मुझे 1 महीना हो गया, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने रोटी नहीं खानी, तो मैंने 1 महीने से रोटी बिल्कुल नहीं खाई, और मुझे लगता था कि लोग कहते हैं कि कमज़ोरी आ जाती है आपको, है ना, आप में वो खून की कमी हो जाएगी, लेकिन मैं इतनी एक्टिव हूँ उस दिन के बाद कि मुझे देखिए आप कितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ बड़ी तेज़ी तेज़ी से, तो इसका मतलब ये कि मैं अभी स्वस्थ हो गई हूँ। कहने का मतलब कि बीमारी जो आप दवाइयां खा रहे हैं, आज आप बीपी की गोली शुरू करेंगे गुरुजी के कहने के मुताबिक 2-4 साल 5 साल बाद वही बीपी की गोली आपके किडनी को ख़राब करेगी, और किडनी खराब होगी तो आप डायलिसिस पे जाएंगे। और गुरुजी ने कहा कि डायलिसिस पे जाने से पहले आप मेरे पास आओ, मैं आपको ठीक करके भेजूंगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग बीमार जो आ रहे थे और चिल्लाते हुए आ रहे थे, दूसरे दिन पता नहीं वहाँ पे क्या एनर्जी है, दूसरे दिन वो लोग 50% शांत थे और उन्होंने उठ के गवाही दी। और दूर दूर से लोग वहाँ पे, बड़े बड़े सिटी से, बॉम्बे से लोग आए हुए थे, कैंसर के मरीज,

0: नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा कि आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे नेचुरोपैथी के बारे में, जहां पर आपकी जो ट्रीटमेंट है वो नेचुरल तरीके से किया जाता है, प्राकृतिक तरीके से। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से अगर जब समझ लेते हैं तो जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है और आपका उत्साह डबल हो जाता है। आप जीवन जीने के लिए बिल्कुल उत्साहित रहते हैं, आप जैसे कि नीरसता ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप नेचुरोपैथी के कुछ जो विशेष सेंटर्स हैं, जैसे हमने अभी बात की गुड़गांव का, दूसरा एक है जहाँ पर आप हैदराबाद में बहुत बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर है, और तीसरा आप इंदौर में हैं, और चौथा आपके पास यहाँ गुजरात में विशेष भरूच में एक तपोवन करके नाम जगह पे है, वहाँ पर भी इस तरह का ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में वो तपोवन नेचुरोपैथी सेंटर है, जहाँ पर विधि एकदम विधि पूर्वक जो है आपको एडमिट किया जाता है और बहुत ही क्लीन एंड नीट नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट है वहाँ पर दिया जाता है। हेलो जी, नमस्कार।
1: अजय सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सुरेश भाई बोलता हूँ, जटानाथ से।
0: जी सुरेश भाई बोलिए।
1: तब तो हम डॉक्टर कमलेश गंज से भी बात करेंगे। आज बहुत अच्छे जो आप टिप दे रहे हैं। कमलेश गंज जी कैसे हो?
0: हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए।
1: बस अच्छे है कमलेश गंज जी, आप कैसे हो?
2: बहुत अच्छे सुरेश भाई, आप कैसे हैं?
1: बस अच्छे। आप तो आप डॉक्टर की पदवी दे चुके हैं, हम अच्छी बातें सुन रहे हैं आपसे।
2: बिल्कुल, मैं तो अपने सुनने वालों को सुरेश भाई ये बताना चाहती थी कि एक महीना हो गया मैंने बीपी की गोली नहीं खाई, और मैं धनिया, हरा धनिया, उसकी सिर्फ जड़ों को काट के डंडियां और पत्ते भी धो के उसमें साबुत नींबू बीज निकाल के छिलके समेत उसको आप डाल सकते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करके उसका जूस बना के एक गिलास सुबह एक गिलास शाम को पीजिए, आपको बीपी की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: मैं भी दीदी की गोली खा रहा हूँ, तो आपने जो बातें बताई दीदी, तो एक
2: आप ट्राई कीजिए,
1: उसे बता दीजिए, मैं सुन पाऊँ अच्छी तरह।
2: हाँ जी, हाँ जी। आप धनिया है ना जो साबो, ये हरा धनिया, उसकी जड़ें काट के उसको डंडियां और पत्ते इसमें धो लीजिए अच्छे से, और उसमें एक नींबू जो है उसको काट लीजिए, उसमें बीज निकाल दीजिए, ठीक है, और साबुत जो छिलके समेत उसको मिक्सर में ग्राइंड कीजिए, धनिये को और नींबू को साबुत को, और उसका जूस बना लीजिए एक गिलास, उस हिसाब से एक गिलास हिसाब से पानी डालिए, एक गिलास सुबह पीजिए, तीन टाइम पीने के लिए गुरुजी ने बोला था, मैं दो टाइम पीती रही और अभी तक मैं एक महीना हो गया पी रही हूँ, एक टाइम तो पी रही हूँ, ऐसे करके बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। बीच बीच में कभी अप डाउन होता है क्योंकि इतनी देर से दवाई की आदत पड़ी हुई थी, लेकिन जो मेरा बीपी की वजह से गोली खाने की वजह से भी सिर दर्द होता था वो मेरा बिल्कुल बंद हो गया। तो ऐसे ही गुरुजी ने बोला कि आप ये ले सकते हो, धनिये का जूस ले सकते हो, और सफ़ेद पेठा आता है उसका जूस लो आप एक टाइम, है ना, उसको भी आपने निचोड़ना नहीं है, उसको सिर्फ पीस के फाइबर होगा उसमें, एक गिलास सुबह वो पीजिए, नीम और गिलोय का काढ़ा सुबह पीजिए, और चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए, घी बंद कर दीजिए। हाँ, वो सुबह आपने नीम और गिलोय के पत्ते ना रात को भिगो के उसमें पुदीना डाल लीजिए, स्वाद हो जाएगा, थोड़ा टेस्टी हो जाएगा, उसको बॉयल कीजिए, उसको रख दीजिए रात को बॉयल करके, सुबह छान के उसको कोसा करके पीजिए, तो आपके सारे अंदर की जो मतलब वेस्ट है ना जो वो बाहर निकल जाएगा, है ना, और पेट आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसके लिए आप ज़्यादा दाल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी कम खाइए, चावल कम खाइए, चीनी और मीठा बिल्कुल बंद करना है, मिठाइयाँ बंद करनी है, बर्गर, नूडल्स, ये सब बंद करना पड़ेगा आपको। और हाँ, एक और बड़ी बात जी सुरेश जी,
1: बिल्कुल नहीं खाता मेरे, मैं चाय तो नहीं पीता हूँ, मेरे दर्द पीता हूँ, जितने मेरी चीनी भी नहीं, मैं ऐसा ही पीता हूँ।
2: अच्छी बात है, अच्छी बात है। और गुरुजी ने एक बताया, जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी हम आते हैं तो मेडिटेशन जो सिखाई जाती है ना उससे भी आपको फर्क पड़ता है। सुबह शाम आधा घंटा जरूर दीजिए अपनी बॉडी को और शरीर को मानसिक तौर पे, कि आप बैठ के शांत होके अपने आप को देखिए कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है ना।
0: जी जी जी।
2: तो ये चीजें आप करके देखिए, थोड़े दिन गोली अभी मत छोड़िए डॉक्टर से, पहले आप उसको ना पी के देखिए, 10-15 दिन पीने के बाद गोली अगर पूरी खाते हैं तो हाफ कर दीजिए। मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, मुझे डर लगता था गोली छोड़ने के लिए, लेकिन मैं दवाई छोड़ दी, वो कहते यही दवाई आपको आगे जाके एक और नई बीमारी देगी, है ना,
1: शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है क्योंकि नई गोली लिया था, कुछ हो जाएगा क्या,
2: कुछ नहीं होगा, आप ये करके देखिए, शांत रहिए, शांत, बिल्कुल कुछ सब ठीक होगा, प्रभु ठीक करेगा अच्छे तरीके से। बस वही जूस पीना शुरू कीजिए दो टाइम, और पानी ज्यादा पीजिए।
1: चलो अच्छा है, आपने एक बात अच्छी बताई है, हम भी कोशिश करेंगे करने की।
2: बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता भी है ना बीपी, तो उसको टाइम लगेगा अपने लेवल पे आने के लिए, स्थिर होने के लिए।
1: थोड़ी गोली बंद हो जाती है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम रहता है,
2: लेकिन जूस जरूर पीना है, पहले जूस शुरू करो फिर गोली बंद करना, दो तीन दिन पहले पी के ना फिर देखो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: एक बार क्या था, एक बार तुम डॉक्टर के पास गए थे तो 160 से 70 आया था, तो बोला क्या गोली खानी पड़ेगी, तब से गोली शुरू हो गई, आज तक गोली बंद होती नहीं, क्योंकि एक बार जो डॉक्टर के पास जाता है बीपी ज्यादा।
2: वो छोड़ दीजिए, आप नए सिरे से शुरू कीजिए अपनी लाइफ को, आज से शुरू कीजिए।
1: हम नपाते हैं तो 140 से 30 35 40 ऐसा ही आता है,
2: वो नॉर्मल होता है, 30 35 37 तक नॉर्मल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसको आप इतना सोचिए मत, बीपी के बारे में सोचिए मत, हाँ आप अपना कार्य कीजिए प्रैक्टिकल। देखिए आपका जो सभी हमें अभी इतनी उम्र हो गई है, सब लोग बोलते हैं कि जो आपको सांसें मिली है ना प्रभु की ओर से, उनका कोई मतलब है, उनकी कोई कीमत है, उनका कोई मकसद है, ठीक है, मिली वो उतनी है, लेकिन जितना हमने जीना हमने स्वस्थ रहकर सेहतमंद रहकर जीना है, तो कुदरत के साथ जुड़िए, सुबह योगा कीजिए, ताजी हवा में सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए, हाँ ये सब कुछ करते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: स्वच्छ हूँ आज भी, मेरे आप बोलो की इतनी दौड़ 1 किलोमीटर की, मैं दौड़ के चला जाता हूँ,
2: जी जी जी जी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। बस अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, बीपी की बीमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, ओवर ईटिंग की वजह से है, एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए, आप देखेंगे एक टाइम का खाना छोड़ेंगे शाम तक आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भूख नहीं लगेगी आपको, ऐसे करके देखिए, एक दोपहर का छोड़ दीजिए, कभी स्किप कीजिए, कभी शाम का कर दीजिए, सुबह का नाश्ता कर लीजिए अच्छे से, सारा दिन काम करना होता है, दोपहर का छोड़ दीजिए, दोपहर का हल्का कर लिया, शाम को बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना, तो बस ये देखिए 15 दिन में आपको फर्क नजर आएगा खुद में। हाँ हम खाने के ऊपर खाना खा रहे हैं तो इसीलिए बीमार है, भूख लगती नहीं है पहले ही खा लेते हैं, प्यास लगती नहीं है।
0: ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, इस कार्यक्रम में हम लोग आज विशेष आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपना ख्याल रखना है, और गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं जिनकी जानकारी आपके पास नहीं होती है, और जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग को पास वाले किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, और फिर समझते हैं हम पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन फिर बीमार होते हैं, फिर वहीं जाते हैं, फिर गोली खाते हैं, फिर परेशान होते हैं, इस तरह से जो अपना साइकिल जो है वो चालू रहता है आपका।
2: रमेश जी, धर्मशाला में एक बहुत अच्छा जो है आश्रम है, वहाँ पे भी नेचुरोपैथी से इलाज होता है, हिमाचल में तो वैसे बहुत से
0: बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट का जो आयुष मंत्रालय है इनका भी आयुष नेचुरोपैथी हॉस्पिटल मिनिस्ट्री से शुरू है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वो फ्री में अफोर्ड करते हैं, और ऊपर माउंट आबू में पंचकर्मा का जो हॉस्पिटल है वो ग्लोबल हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी अच्छी ट्रीटमेंट होती है, और केरल का जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और उनके साथ कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर भी अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है, आप माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल पूरे राजस्थान में है, तो यहाँ पर आप जो हैं सैनी गांव ऊपर माउंट आबू में, वहाँ पर गवर्नमेंट के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। आबू रोड में भी सातपुर, यानी आबू रोड के पहले एक छोटा सा गांव आता है सातपुर, जो आबू रोड उतर के ही 5-6 रुपए दे के रिक्शा से आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एक सुंदर डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जयपुर में भी बहुत बड़ा एक आयुर्वेदिक ये सेंटर है नेचुरोपैथी का, जहाँ आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो NIN है पुणे में, वो भी इन नेचुरोपैथी का एक अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पर मिल जाता है प्राकृतिक चिकित्सा का। तो ये सारे बापू नगर करके हैं, इसमें भी आपको एक नेचुरोपैथी का सेंटर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ में जिनको घर बैठे अगर कुछ ट्रीटमेंट लेना है इसी का, नेचुरोपैथी या योगा का काउंसलिंग कर लेना है तो 1-4443-1444-3 ये नंबर पे आप फ्री हेल्पलाइन नंबर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाता है। 1-4443-1444-3 ये नंबर याद रखिएगा। इस पर डायल करने से तो वो आपको कुछ कुछ नंबर्स बताएंगे, उस पर आप जैसे जैसे आपको नंबर बता जाएंगे वैसे आपको उसको प्रेस करके फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो आपका काउंसलिंग भी करेंगे और रेगुलर आप कर सकते हैं इसको। फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इससे जो है ये कर सकते हैं। सीताराम जिंदल फाउंडेशन है जो खास, ये भी नेचुरोपैथी का एक सेंटर है, फ्री नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट मिल जाता है और मॉडर्न मेडिकल केयर का यहाँ पर जो है ध्यान रखा गया है, तो आप यहाँ पर भी जाके आप इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो आत्मबोध आयुर्वेदिक सेंटर है, नेचुरल पेन मैनेजमेंट, जिसमें यहाँ पर दर्द के लिए जैसे कि बहुत सारे लोग घुटने का दर्द है, इसका दर्द है, उसका दर्द है, तो एलोपैथी मेडिसिन में कंटिन्यू मेडिसिन लेना पड़ता है और बहुत सारी तकलीफ़ें होती रहती हैं, तो यहाँ पर नेचुरल तरीके से जो है पेन मैनेजमेंट का तरीका बताया जाता है किस तरह से पंचकर्मा या अक्यूप्रेशर इन सारी चीज़ों में या फिजियोथेरेपी इनका सहारा लेके आपको पेन मैनेजमेंट आपको बताया जाता है जिससे आप दर्द से मुक्ति पाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग पेन किलर्स लेते हैं क्योंकि थोड़ा सर दर्द हो गया, कमर में दर्द है या मेरा मनके में दर्द है, इधर दर्द है, एक दिमाग में डाल दिया आपने, प्लस उसका गोलियां जब आप लेना शुरू कर देते हैं तो वो गोलियां कंटिन्यू आप लेते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो एडिक्ट होते हैं। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग एलोपैथी मेडिसिन के पूरे डब्बे जो है जैसे किराना दुकान से आप सामान लेते हो वैसे किराना दुकान की तरह जो है मंथली वो मेडिसिन लेके भी खाने वाले लोग हैं, उनका पेन मैनेजमेंट ठीक नहीं होता, फिर पेन के कारण क्या हो गया, रोज पेन किलर दवाई अगर 1-6 महीने तक खाते हैं तो आपका पेट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एसिडिटी और गैसेस बनना शुरू हो जाता है, फिर क्या करते हैं 6 महीने के बाद आपकी 4 गोलियां हो जाती है, 2 पेन किलर होंगे तो 4 गैस की गोलियां, इस तरह से 5-6 गोलियां आपकी बढ़ जाए, जब ये दोनों चलते हैं फिर तो आपको अल्सर होना ही होना है, फिर अल्सर की दवाइयाँ उसके साथ में चलती हैं, तो ऐसे करके जैसे जैसे साल भर में आप जाते हैं तो 20-25 किराने का डब्बा आपका बन जाता है और फिर वो सालों साल आप खाते रहते तो आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर ये चक्कर में ना पड़े आप, इसके लिए आपको जो है इन सारी चीज़ों का ये जो है, क्योंकि हमने देखा हुआ है, मैंने मेडिकल में काम किया है वहाँ पर लोगों को ऐसे दवाइयाँ लेते हुए देते हुए और मैंने खुद उनके पूरे चार्ट बना के रखे हैं कि ये आएगा बंदा दूर से देखता तो मैं मेडिसिन निकाल के सब पैक करता था, हाँ बोलता वो रमेश है तो मेरा काम हो जाएगा, मैंने पैसे ही देने बाकी तो सब उसको पता है। तो ऐसे भी हमारे कस्टमर थे जो रेगुलर मेडिसिन लेने वाले, तो वो चीजें जो है अभी भी
2: वो तो मिठाई बन जाती है उनके लिए ना, जैसे खुश होकर मिठाई खाते
0: और वो इतने खुश हो जाते थे मेरे रहने पर क्योंकि मुझे सारी चीजें पता होता था तो मैंने सारा पैक करके रखना है महीने भर का, तो 10-10 गोली का एक स्ट्रिप होता है तो बंदे को 1 महीने का चाहिए तो 3 पैकेट उसका निकाल के उसको पैक करके मेडिसिन बना के, तो इस तरह से मैं किया करता था, तो मुझे याद है कि वो लोग अभी भी उन चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए हम चाहते हैं कि आपको ये जो एक्सपीरियंस कमलेश जी का मैंने बताया बीपी होते हुए भी उनके अभी बीपी की गोलियाँ बंद हो गई हैं, अभी नेचुरली वो खाने पर कंट्रोल करते हुए और एक्सरसाइज करते हुए सब कुछ करते हुए अपने आप को मेंटेन
2: कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं भूल नहीं जाऊँ जी, जैसे ना हम आजकल बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते, गंदे हो जाएंगे, है ना,
0: मिट्टी
2: तो
0: में खेलने
2: देना। गुरु जी ने बहुत अच्छा मड हाउस बना रखा है, तो पहले तो मड का नाम सुन के वैसे क्योंकि मिट्टी के साथ खेलने की अब आदत नहीं रही, तो मैंने लोगों से सुना कि उनके एक्सपीरियंस सुने कि वो मड बाथ लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने लड़कियों के लिए और जेंट्स के लिए अलग से बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, तो हमें ना हमने खड्डे खोद के उसमें मिट्टी में लिटा दी, ऊपर से मिट्टी डाल दी, सिर पे भी, आंखों पे भी, फेस बस आपका खाली था, तो 1 घंटा वहां पे लिटाया, ऊपर से पानी डालते गए और मिट्टी डालते गए, है ना, तो इतना बॉडी शांत हो गई जैसे वो अपने नेचुरल उसमें सर्कल पे आ गए,
0: सर्कल पे आ गए बराबर।
2: हाँ, तो 1 घंटा ही लेटने से, एक ही ट्रीटमेंट लिया तो शाम तक इतनी गर्मी थी, जो हम लोग रोज गर्मी गर्मी बोल रहे थे
0: वो खत्म,
2: इतनी शांति थी कि महसूस हो रही थी, है ना, तो ये चीज
0: बॉडी का टेम्परेचर अंदर से बैलेंस हो गया ना, तो इसीलिए सुकून मिलता है।
2: बिल्कुल, मिट्टी के साथ देखिए हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में हमने
0: जितने भी 5 तत्व है उसके साथ अगर आप बैलेंस वे से टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, आपका बॉडी उसमें रिलैक्स हो जाता है, तो निश्चित अच्छा लगता है। तो आशा करूंगा हमारी सभी श्रोता बंधुओं को अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इंडिया में जो है नेचुरोपैथी के सेंटर हैं, योगा नेचुरोपैथी आयुष का भी बहुत बड़ा जो है मिनिस्ट्री है, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे ये पूरे सेंटर्स बने हुए हैं इनके। तो आप इनको जाके विजिट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको खंगालना पड़ता है इन चीज़ों में। और निर्वाणा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, जिंदल नेचुरो केयर जिसके बारे में हमने बताया, शाम शुद्धि है, और गांधीयन फिलोसफी के भी नेचुरोपैथी सेंटर्स काफ़ी हैं, और गुजरात में भी इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट निर्वाणा करके भी एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर है, जहाँ पर दवाइयाँ नहीं, बिल्कुल आपको प्राकृतिक तरीके से जो टेक्निक बताए जाते हैं उससे आप ठीक होते हैं। तो निसर्ग उपचार केंद्र ये है टोटल हेल्थ का, ये पूना में है, तो इसमें भी, और इसी का एक ब्रांच वडोदरा गुजरात में भी है, जहाँ पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो
2: जैसे आसपास कोई ना कोई आपको,
0: मिल ही जाता है।
2: अगर आप थोड़ा बहुत सारे खोल दिए
0: इवन ऐसे जो आश्रम होते हैं गुरुजी जैसे, उन्होंने भी इस तरह के ट्रीटमेंट, थोड़ा सा वहाँ पर एक दो जगह पे आपको थोड़ा सा जो है ट्रीटमेंट लेके आपको सेटिस्फेक्शन होना या देखना पड़ेगा। कई बार होता है कि कहाँ कहाँ जो अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है, या फिर वो ऐसे वो प्रोफेशनेबल ब्यूटीज़ क्लिनिक के लिए भी खोल के रखते हैं। तो वो चीज़ें हमें देखना है कि यहाँ पर किस तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं,
2: जिनके पास पैसा है, वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको विश्वास कम होता है। तो जैसे संगीत और सत्संग के साथ जुड़ना, गुरु जी शाम को सत्संग और मेडिटेशन के साथ जोड़ते थे, और उससे क्या होता था, इतनी शांति होती, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, एक घंटा लोग बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में रहते थे। और अपनी बीमारी को छोड़ के, देखिए ना, जिसको बीमारी है वो तो हाई तो नेचुरल तरीके से निकलता है, लेकिन मैंने देखा 8 दिन में वहां रुकी, मुझे नहीं लगा कि वहां किसी ने हाई बोला होगा, सभी खुश थे,
0: सभी खुश।
2: संगीत के साथ जुड़ना, तो संगीत के साथ जुड़ते हुए आप मुझे अगर कहेंगे तो आपको गीत भी सुना,
0: बिल्कुल बिल्कुल एक सुंदर गीत सुनाई दीजिए, नहीं तो फिर हमारे सुरेश जी बोले आज तो गीत नहीं हुआ,
2: आज मदन भाई जी का गीत रह जाएगा।
0: मदन भाई आज संडे चले गए होंगे कहीं घूमने, फोन नहीं तो आ जाता उनका।
2: वो गीत है जी, ये ममता फिल्म का गीत है
0: जी, जी,
2: और धर्मेंद्र जी और सुचित्रा सेन पर फिल्म आ गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो जैसा कि हम लोग मधुबन में आए, इतनी खुशी बाबा ने दी है, इतना आत्मिक सुख दिया है जो जीवन भर नहीं मिला था ना।
0: बिल्कुल,
2: तो मेरे युगल भी बहुत खुश है। हम लोग आज वापिस जा रहे हैं पंजाब, जाने को बिल्कुल मन नहीं है, जैसे मायके से जाने इसको मन नहीं होता, बाबा के घर आने पर भी मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर आएंगे,
0: फिर आते रहिए, आपका ही घर है।
2: तो गीत सुनाती हूँ
0: जी, जी।

0: तो सुनने वालों को बहुत ही प्यार भरी नमस्कार रमेश जी, और मेरे युगल भी आपको नमस्कार करना चाहते हैं कि जाते जाते वो नमस्कार करेंगे, और दोबारा मिलने का वादे के साथ हम मधुबन रेडियो से आपसे आपसे विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सभी बहन भाइयों को नमस्कार, ओम शांति। जाते जाते गीत तो मैं छोटा सा एक जरूर सुनाऊंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और गीत है फिल्म शहीद का,
1: जी जी जी,
2: क्रांतिकारी वीरों की जोश और कुर्बानी के ऊपर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो गीत है मेरा रंग दे बसंती चोला।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: थैंक यू।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुलाड़ी सर, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया देशभक्ति का। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने कमलेश जी और गुलाटी सर से एक एक गीत सुना और साथ में नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बातें की, इसलिए बातें की क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में कम जानते हैं और ट्रीटमेंट थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 दिन आपको अगर आप जाते हैं किसी भी सेंटर में तो 10-15 दिन का एक बैच होता है, 10-15 दिन में आप जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं और अच्छी तरह से ये चीज़ें जो हैं आप जान सकते हैं। ये 15 दिन के बाद फिर आपको खुद को भी पता चल जाता है और आपकी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते कमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

तारों भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,

0: नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आज हमारे सामने ऐसी नारी शक्ति विराजमान है जिनका नाम है अयोध्या शर्मा। आप आबू रोड सातपुर के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 62 वर्ष है और आपने पढ़ाई बीए की हुई है और आप लेखिका है, संगीत का शौक रखती है, डांस भी आप बहुत अच्छा कर लेती है। आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई सबका शौक है और किसी ज़माने में आप भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग भी लेते थे और इस कंपटीशन को आप जीत करके फर्स्ट भी आते थे। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वैसे हम इनको हाउस मेकर कह सकते हैं कि एक गृहिणी है, लेकिन साथ ही साथ इतनी प्रतिभाओं की धनी है। तो ऐसी नारी शक्ति से आज हम बातचीत करेंगे, आपसे मिलवाएंगे और इनका अनुभव भी सुनेंगे। तो अयोध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। बहुत अच्छा लगा, देखिए आप आज स्टूडियो में पधारे हैं
1: जी,
0: आपके अनुभव शेयर करने के लिए। और आपके चेहरे की स्माइल देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमेशा इसी तरह खुश मिजाज रहती है
1: जी। मुस्कुराती रहती हूँ मैं सबको देखकर, ताकि मेरे को देख के और भी लोग मुस्कुराए, क्योंकि सबके दिलों में कितनी तरह की उलझनें रहती है, लोग मुस्कुराना ही भूल गए, लेकिन अपन एक स्माइल देंगे तो उधर से भी एक स्माइल तो आएगी, ये मेरी कोशिश रहती है।
0: क्या बात है बहुत अच्छी कोशिश है कि खुश रहना और खुशियां बांटना।
1: दुखों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन कम से कम मुस्कुराने के तो पैसे नहीं लगते ना
0: जी।
1: और नहीं मुस्कुराएंगे तो भी दुख तो कटने वाला नहीं है, वो तो चलेगा, तो फिर क्यों नहीं अपन मुस्कुराएं, क्यों अपने दिल की वो चीज लोगों को क्यों बताए कि मैं दुखी हूँ के क्या हूँ। मुस्कुराओ ना, इसमें क्या जाता है, हमेशा मुस्कुराते रहो
0: बहुत ही सुंदर और अच्छी सोच है आप कि अगर दुख है तो ऐसे भागने वाले नहीं है
1: जी,
0: तो चेहरे पर लाने से कोई फायदा भी नहीं है
1: जी,
0: इसलिए मुस्कुराना जरूरी है। बहुत सुंदर आपने बात कही है और कहते ना कि जो हकीकत में ऐसा जीवन जीते वो ही बोल पाते हैं
1: जी।
0: तो चलिए, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं?
1: अभी घर पर ही हूँ, बस यही लेखन कार्य और काव्य गोष्ठी से जुड़ी हूँ। अभी मैं 4-5 महीने से काव्य गोष्ठी से जुड़ी हूँ, उसमें हमारी सभी बहनें जुड़ी हुई है। ऑनलाइन काव्य गोष्ठी चलती है, हमारी अध्यक्ष एडवोकेट अर्चना शर्मा है जो अपने आबू रोड में ही रहती है, आबू रोड की अध्यक्ष वो है। तो महीने के लास्ट तारीख को हमारी काव्य गोष्ठी होती है, उसमें सभी भी स्टेटों के जितने भी जो लोग हैं कुछ बोलना चाहते हैं, लेखन कार्य करते हैं या संगीत से जुड़े हुए हैं, कोई भी कुछ अपनी रचना बोल सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है, अपनी स्वरचित हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और स्वरचित नहीं है या किसी कवि की कोई कविता आपको बहुत पसंद है या आपके मन को मतलब मनोबल बढ़ाती है तो वो भी आप उसमें बोल सकते हो। ये पूरी छुट्टी है उसमें, किसी कवि की कोई कविता आपको बहुत पसंद है और आपका मनोबल बढ़ाती है तो आप औरों को भी सुनाकर प्रेरणा दे सकते हो।
0: अच्छा, तो ये कोई आप पर्सनल समाज मिलकर के कर रहा है या फिर सभी के लिए?
1: सभी के लिए है ये गांधीधाम, बड़ोदरा, ये आबू रोड, कितने शहर जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और भी लोगों को जोड़ो जो संगीत पसंद करते हैं और किसी भी तरह का मतलब गा सकते हैं, सुना सकते हैं, अच्छी बातें अच्छे विचार, आजकल इसी की जरूरत है लोगों के लिए
0: जी,
1: क्योंकि सब लोगों में तनाव बहुत ज्यादा है।
0: तो इसमें महिलाएं जुड़ती है या पुरुष लोग
1: भी जुड़ते हैं? पुरुष भी, बच्चे भी, जो कोई भी हो गा सकते हैं
0: जी। जी
1: जी,
0: और इससे मतलब आप किस तरह इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या सिस्टम रहता है इसका?
1: इसका सिस्टम ये है कि महीने की जो एक लास्ट तारीख होती है उसको चाहे कोई सा भी वार पड़े, संडे पड़े तो बहुत ही अच्छा होता है, सभी के लिए सुविधा रहती है। अगर संडे नहीं, आपके सैटरडे पड़ा था, शनिवार था 30 तारीख का, तो हुई मीटिंग, तो वो एक लिंक देते हैं, उस लिंक से जुड़ना पड़ता है, उस लिंक पे सभी की फ़ोटोएं आ जाती है और सभी एक दूसरों का वेलकम करते हैं। फिर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है और जैसे ही जिसका नाम बुलता है और जिसको जो कविता जो भी कुछ बोलना है अपना कार्यक्रम, उसकी 2 लाइनें पहले एक दिन पहले लिख के डालनी होती है व्हाट्सएप पे कि मैं इस विषय पर ये बोलूँगी, तो उनको पता रहता है, तो वो आगे होके बोलते हैं आप सुनाइए अपनी रचना, इस तरह से होता है।
0: टाइमिंग क्या रहता है?
1: टाइमिंग जितने ज़्यादा लोग उतना ही टाइम, अगर वो किसी काम के वजह से बाहर गए हुए हैं, नहीं जुड़ पा रहे, उस दिन कहीं गए हैं, सबको घर गृहस्थी में काम रहता है तो नहीं हो पाता है। जैसे जितने लोग हैं, अगर ज़्यादा हो गए तो डेढ़ दो घंटा भी हो जाता है, और कम लोग आए हैं आज तो कम टाइम लगता है, एक घंटे।
0: तो ये रात का समय रहता है, दिन का समय रहता है?
1: शाम का 5:30।
0: अच्छा,
1: 5:30 शाम का टाइम।
0: फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है?
1: इससे अभी देख रहे हैं समय, फिर जो सबसे अच्छा गाते हैं करते हैं उनको अलग से छांट कर और फिर उनका वहाँ नाम वगैरह देंगे, सम्मानित करेंगे। दिल्ली में इसका बड़ा वो है कार्यालय, वहाँ सभी नाम वाम जाएंगे। अभी देख रहे हैं कौन अच्छा गाते हैं करते हैं, फिर उनको सम्मान करेंगे।
0: दिल्ली में?
1: दिल्ली में।
0: तो फिर आप लोग भी जाते हो या फिर दिल्ली में आपकी टीम है वो सम्मान करती है?
1: दिल्ली बुलाया जाएगा बाद में जब कभी भी उनका प्रोग्राम होगा बड़ा, अभी तो ये ऑनलाइन चल रहा है।
0: अच्छा, तो कितना समय हुआ है ये?
1: ये अभी 5-6 महीने हुए।
0: अच्छा, तो हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी मान लीजिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं?
1: जरूर जरूर।
0: अच्छा,
1: तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी गा सकते हैं।
0: तो या हर कुछ भी सुना रहा है और आप उसको पसंद करते हैं या सेलेक्टेड गीत कविताएं होते हैं?
1: नहीं, पहले उनका वो कराते हैं, अगर अच्छा गाया है तो उनको सराहना करते हैं कि भाई अच्छा गाया है, आगे और भी अच्छा गाओगे आप, प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे शुरुआत होती है, चलता है थोड़ा बहुत, अगर कोई वो है तो उसमें सुधार कराने का बोल देते हैं कि आप थोड़ा और अच्छा गाइए, अच्छे उससे बोलिए, तो सभी को लेते हैं।
0: अच्छा,
1: ताकि सबका मनोबल बढ़े कि भाई अब की बार थोड़ा ढंग से नहीं गा पाए तो अगली बार थोड़ा इसमें ये सुधार करना, फिर जब फाइनल होगा तब उसमें फिर अच्छे लोगों को छांटेंगे।
0: हाँ, वो फिर छटनी हो जाती है।
1: धीरे-धीरे छटनी हो जाती है। अभी तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है और कोई भी भाग ले सकता है।
0: अच्छा, इसमें कोई फीस वगैरह?
1: नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री एकदम।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: ग्रुप से जुड़ना होता है, क्या करना होता है?
1: लिंक देते हैं, वो लिंक पे अपना नाम, फोटो, एड्रेस, आधार कार्ड, सब तरह के वो मतलब फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करनी पड़ती है।
0: ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, ताकि किसी को बड़ा मंच मिले ना मिले
1: जी,
0: यहाँ से शुरुआत होती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है
1: जी,
0: तो उनका सपना भी पूरा होता है
1: जी। एक बात बताऊं कि बचपन से मुझे कोई भी अच्छी चीज़ हो ना, कहीं भी पढ़ने को सुनने को मिलती है तो उसको आके मैं कॉपी में उतार लिया करती थी। ऐसे करते करते मेरी पूरी डायरी भर गई। फिर मैंने सोचा क्या होगा इसका, एक दिन क्या करेंगे, कभी इच्छा होती पढ़ लेते हैं, मन खुश हो जाता है कोई अच्छी रचना पढ़कर। इस तरह से चलता रहा चलता रहा और अब देखो बाबा की कृपा, ये कार्यक्रम शुरू हुआ काव्य गोष्ठी, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह का प्रोग्राम होगा। तो इसमें अभी पूरी डायरी मेरे काम आ रही है, और इसमें ऐसा है कि ये नहीं कि बिना देखे आप गाओ, कागज़ पर देखकर डायरी में भी गा सकते हो आप। सबसे अच्छी बात ये, अब देखो एज का भी वो है, थोड़ा भूल भी जाते हैं अपन गाते गाते, प्रैक्टिस है नहीं
0: जी।
1: अचानक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ तो आप कागज़ में देख के, किताब में देख के गा सकते हो। तो वो मैंने जो इतना सारा लेखन कार्य इकट्ठा किया लिख लिख के, और वो मेरे काम आ रहा है, एक से एक गीत गाकर और सब प्रेरणादायक ऐसे गाती हूँ। हमेशा वाहवाही होती है, सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है, सबका नंबर आता है। अभी 4-5 बार सरस्वती वंदना मैंने गई।
0: अच्छा, इसमें कोई थीम देते हैं आप या हर प्रकार के गा सकते हैं, जैसे राजस्थानी?
1: हाँ,
0: हिंदी,
1: हर प्रकार के। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एज वाले हैं, वो भजन गाते हैं तो भजन भी गा सकते हैं, किसी भी भगवान का हो, वो भोले बाबा का हो, वो गणेश जी का हो, किसी का भी हो,
0: जिसको जो आता है वो सुना सकता है।
1: संगीत से जुड़ा होना चाहिए। संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। संगीत में वो शक्ति है कि कितना ही बीमार आदमी हो, उसकी आप कितना ही दवा सब कुछ कर लो, देखभाल कर लो, जब तक अच्छे विचार और संगीत उनको नहीं सुना दोगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। अभी ये डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, एक डॉक्टर तो होता है, देखता है ऐसा हो गया नहीं है, टाइम लगेगा वो है, और एकदम पॉजिटिव बोलता कुछ नहीं, अभी होते हो आप रेडी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये विचारों का ही वो है, तो एकदम पेशेंट में स्टेमिना आ जाती है।
0: जी जी, बिल्कुल। हाँ, आपने सही कहा है। और संगीत के भी बहुत ही अच्छी आपने शायरी बोल के सुनाई है कि रोगी को वास्तव में संगीत सुना दिया जाए तो आदत तो उसी समय ठीक हो जाएगा।
1: कम से कम हर स्वस्थ व्यक्ति को भी आधा एक घंटे रोज संगीत सुनना चाहिए
0: जी।
1: मैं भी टीवी पे गाने सुनती हूँ मस्ती पर, पुराने गाने फिल्मों के।
0: चलिए तो हम आपसे दो लाइन जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, इसलिए कहीं भी जाइएगा नहीं। अयोध्या जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनके अनुभव अभी भी सुनने बहुत सारे बाकी है। आइए सुनेंगे एक गीत, उसके बाद पुणे लौट करके आ रहे हैं, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में अयोध्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं कि किस तरह इनके पिताजी यात्रा निकालते थे और ट्रेन में ये लोग यात्रा करते थे। तीन तीन चार चार महीना ट्रेन में ही इनका गुजरता था। तो अयोध्या जी, फिर आप कह रहे थे कि बच्चे का जन्म भी ट्रेन में हो गया
2: जी।
1: तो ऐसे बड़े बुजुर्ग बच्चे हर एज वर्ग होता था या फिर इसमें कुछ कंडीशन होती थी?
2: नहीं, हर एज होती थी। यहाँ तक कि गांव के लोग तो ये मानते हैं जो आत्मा इस दुनिया में नहीं है कि ये हमारे देवता हैं, पूर्वज हैं, उनको भी यात्रा करानी पड़ती है। आप मेरे कभी अनुभव सुनना, साक्षात ऐसी ऐसी बातें हैं। तो वो कहते भाई हमारे पितरों को हमको यात्रा लेके चलनी है। कहते हैं रोंगटे थोड़े खड़े हो, बोले पितरों को यात्रा करानी है तो उनका कैसे? तो मेरे पिताजी को मालूम नहीं था, उन्होंने कहा वो तो देवता समान है, उनके क्या पैसे लेने, ले चलो यात्रा में उनको। लेकिन वहीं स्टेशन पे जैसे वो आए ना तो उनके शरीर में वो आ गए और उनका मेरी जगह कहाँ है, मेरा टिकट लो तब मैं बैठूंगा गाड़ी में। सबके टिकट हैं, बिना टिकट के मैं नहीं चलूंगा। फिर 125 रुपया उस जमाने में चलता था, 1 रुपया और 54, आपने देखी होगी।
1: हाँ जी बिल्कुल,
2: अभी भी रखे हैं मेरे पास 25 पैसे
1: जी। तो हमने भी कर रखा है स्टोर
2: जी। तो 125 रुपये का टिकट लिया उनका, और उनकी इतनी सी जगह छोड़ के और फिर बैठा करते थे। एक बार कोई उनकी जगह खिसक गया, बैठ गया, ध्यान नहीं रहता है तो फटाक से उनके घर के सदस्य के शरीर में आके बोला कि मेरी जगह छोड़ के बैठा करो। और डिलीवरी हुई, डेथ हुई, कितने ही लोगों की डेथ हो जाती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी, कहाँ जाना है, किसको वो करना है, क्या करना है। फिर स्टेशन मास्टर जी से सब कुछ पूछते थे कैसे क्या करना है। फिर उनका अंतिम संस्कार भी होता था काशी में, उज्जैन में, कई जगह 8-10 डेथें भी हुई थी। बहुत बहुत बुजुर्ग लोगों को ले गए। अब आते थे टिकट और उस टाइम इतने बिजी होते थे, कहते भैया मेरे 8 टिकट काटना, मेरे 5 काटना। तो हम सब लोग होते थे, जगह जगह एजेंट बैठे हुए थे, सबको रसीद बुक दे रखी थी, पैसे ले लेते थे और रसीद काट के मेरे 5 सदस्य

0: और ये एज है, अब वो कौन सी कंडीशन में है, कौन सा है, और एज का तो आजकल कोई भी नहीं है
1: जी,
0: किसी भी एज में व्यक्ति कभी भी जा सकता है
1: जी,
0: एज का वो नहीं है कि इसी एज में व्यक्ति जाएगा करेगा।
1: तो जैसे आप 8 भाई बहनों इस तरह हर साल यात्रा पर 3-4 महीना बाहर रहते थे
0: जी,
1: तो स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी?
0: मिल जाती थी उस जमाने में।
1: अच्छा।
0: बहुत खुश होती थी टीचर, बहुत ही खुश होती थी, जाओ यात्रा में जाओ आराम से, और भगवान की दया से पास हो ही जाते थे, बस सेकंड एंड थर्ड या कभी कभी फर्स्ट बॉकम इस
1: जी,
0: तरह
1: जी।
0: से कर करके और ग्रेजुएशन किया।
1: तो हर साल वो स्थान पर जाते थे या चेंज करते रहते थे?
0: चेंज भी होता रहता था, जैसे ये गंगा सागर वगैरह जाते थे तो थोड़ा चेंज होता था कभी, और तीनों धाम की जो यात्रा है उसमें तो वही सब आते थे, रामेश्वरम, जगदीश, जगन्नाथपुरी, ये सारे सब माउंट आबू। तो कितनी बार आके गई हूँ शादी में, रेलवे स्टेशन पे खूब टोस्ट खारी खाई है, तो मैंने इनसे कहा, मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट स्टेशन मेरा आबू रोड ही होगा।
1: शादी करके आप आबू रोड ही आ जाएंगे।
0: आबू रोड आ जाएंगे।
1: जी जी जी। तो जैसे आपने कहा कि आपको कढ़ाई सिलाई बुनाई सभी का शौक है
0: जी,
1: तो ये किन से सीखा आपने?
0: ये घर में ही, आस पड़ोस की औरतें होती थी सभी, जैसे स्वेटर बुनना है, और स्कूल में भी मेरे वो होम साइंस थी तो कुकिंग करना मुझे बहुत शौक है, गुलाब जामुन वगैरह सब अपने हाथों से बनाना करना, गाजर का हलवा, तो इसका भी एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में आता था दाल के पकोड़े बनाने हैं, गाजर का हलवा बनाना है, फिर नंबर मिलते थे, सब मैडम वगैरह टेस्ट करती थी कितने नंबर आए कितने के, होम साइंस थी मेरे पास सब्जेक्ट।
1: होम साइंस में तो
0: सभी आ जाते हैं, कपड़े धोना किस तरह से, नील देना, टीना पोल देना, कपड़े के दाग कैसे छुड़ाना, सब चीज की एग्जाम होती थी।
1: तो आपके लास्ट तक आपने बीए फाइनल किया था तब तक होम साइंस थी या फिर 11-12 तक?
0: नहीं, 11-12 तक, फिर मेरे थे हिंदी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स बीए तक।
1: अच्छा।
0: हाँ, 12वीं से जो सब्जेक्ट होते हैं ना तीन
1: जी,
0: तो हिंदी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र।
1: हाँ, उसके बाद आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया।
0: चेंज कर लिए
1: जी।
0: फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई 21 साल की उम्र में, 21-22 में लगी जब शादी हो गई
1: जी। जी, जैसे आप बता रहे थे कि पूरा परिवार मिलकर के आप यात्रा पर जाते थे, तो 3-4 महीना घर बंद रहता था?
0: घर बंद रहता था, केवल एक रूम है बहुत बड़ा, जो मंदिर है, मेरे पिताजी पंडित है जैसे मैंने बताया, तो मंदिर है बहुत बड़ा, तो वो पड़ोसियों को देखे जाते थे उसकी चाबी कि आप इनकी पूजा करना भगवान के रोज, तो वो संभालते थे पूजा जब तक हम नहीं आते थे। पहले पड़ोस भी परिवार की तरह होते थे, एकदम घर की तरह पूरा, और न कोई चोरी होती थी ना कुछ, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के ताला दे के चले जाते थे। आजकल तो जाने से पहले घर की 10 बार सोचते हैं और चोरियां भी खूब होती है।
1: अभी तो घर में एक ना एक मेंबर तो रहता ही है,
0: रहता ही है बहुत, हमारी कॉलोनी में बहुत चोरियां होती है
1: सातपुर में।
0: हाँ, तो जाते हैं कहीं तो, लेकिन मेरा एक सिद्धांत क्या है कि आपने अगर घर छोड़ा कहीं भी जा रहे हो तो उस परमात्मा पे विश्वास रखो कि बस मैं गया, अब घर तेरा है, तेरे को देखना। अगर आप इस सिद्धांत पे चलते हो, क्योंकि जो अपनी किस्मत में है वो तो कहीं जा नहीं सकता, और जो किस्मत में नहीं है वो अगर घर में भी तुम रह रहे हो तो वो तो जाएगा ही जाएगा किसी भी तरह से, तो ईश्वर में पूरा भरोसा। ट्रेन में बैठने के बाद में मैं घर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, जहाँ गए हो वहाँ का और एंजॉय खराब
1: जी,
0: हो
1: जी, बिल्कुल,
0: इतना पैसा खर्च किया है, अभी जाके आए हम वहाँ शिमला, तो बिल्कुल मैं तो घर की याद ही नहीं आती, जाके वहाँ सब सारा सब देख कर आराम से घर में आते हैं, भगवान की कृपा है सब कुछ पहले जैसा ही सब कुछ मिलता है
1: जी जी।
0: तो बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ, अगर वो अपने ऊपर कृपा कर रखी है तो किसी की जरूरत नहीं है, एक की जगह 1000 को लाके खड़ा कर देगा, और उसकी वो नहीं है कृपा तो सारा खेल बिगाड़ देगा। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है प्रभु में विश्वास करना
1: जी,
0: भगवान पे।
1: तो जैसे आप बता रहे थे कि 3-4 महीना यात्रा पर जाते, आप 8 भाई बहनों, कभी किसी की शादी भी हुई होगी, तो यात्रा के दौरान अगर शादी करनी होती तो फिर कैसे क्या करते है?
0: नहीं, उस हिसाब से करते थे शादी, अब जैसे भाभियां वगैरह आ गई तो उनको भी लेके जाते थे। मेरी भाभी 1.25 महीना हुआ था, डिलीवरी थी, भतीजा हुआ 1.25 महीने की थी, और मेरे पिताजी की हमेशा जिद रहती थी कि सारे घर के चलो, मेरा भी यही नारा है हमारे घर में पता कहीं भी जा, अब मेरे बच्चों का भी यही नारा हो गया। अभी जैसे हिल स्टेशन शिमला जाना था, पहले हम मंसूरी गए, गई बार तो एकदम माउंट आबू जैसे ये सारा राउंड राउंड रास्ता, तो थोड़ी एज वेज हो गई तो थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है, तो मैंने कहा बेटा तुम जाओ दोनों तीनों जने, पापा और मैं घर पे रह जाएंगे। तो इसने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। तो मैंने कहा दोनों जने का खाना तो मैं बना लूँगी, नहीं है तो टिफिन मंगा लूँगी, सारी व्यवस्था है और सब काम वाली आती है सारा काम करने वाली। तो मैंने कहा बोले नहीं जाएंगे। तो उस टाइम तो मतलब के कम रेट में थे रूम वगैरह और ये सारा सब, मैंने मना कर दिया तो इसने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर 10-15 दिन बाद मुझे याद आया, मैंने कहा तुम नहीं जा रहे क्या? बोले नहीं आप नहीं चल रहे तो हम भी नहीं चल रहे। फिर मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, मेरे बच्चे भी ऐसे हैं मेरे जैसे। तो मैंने कहा कि लो चलो चलते हैं, होगा सो देखा जाएगा, जो भी तबीयत बिगड़ेगी करेगी कुछ भी होगा। नहीं बोले आपको लेके इस तरह से चलूंगा, तबीयत बिगड़ेगी कैसे? मसूरी पे तो सुविधा नहीं थी और शिमला में क्या ट्रेन जाती पहाड़ियों के बीच में होके, 103 तो गुफाई थी। अच्छा। कभी आप गए हो शिमला में? देख के आना बहुत गजब का नजारा है, 103 तो गुफाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी अंधेरा गुप, सब लोग ट्रेन वाले चिल्लाए। और वो ट्रेन जिसमें आराधना पिक्चर थी ना, जिसमें शर्मिला टैगोर थी, गाड़ी में बैठी बुक पढ़ती है और राजेश खन्ना नीचे रोड पे चलते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, उस वाली ट्रेन में हम बैठे जो शूटिंग हुई थी। और वो ट्रेन चली, इतना सा भी नहीं लगा कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे कब चढ़ गए, और इतना मजा, और चारों तरफ इतने फूल प्रकृति के, अपन तो लगाते हैं एक पेड़ पौधा भी तो उसका कितना संभालते हैं कितना करते हैं, तब कोई फलता है या फूल देता है, प्राकृतिक सौंदर्य इतना, हजारों फूल बेल लताएं, इतना सब कुछ नज़ारा देखने में, पूरा कब समय भी बीत गया पता ही नहीं चला, 4-5 दिन तक वहाँ शिमला जाके।
1: जी जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आप पूरा परिवार जाते थे
0: जी
1: ट्रेन से, और आपने कुछ बताया था कि आपके भाभी को भी
0: डिलीवरी हुई थी
1: वही ट्रेन में?
0: जी नहीं, घर पे हो गई थी डिलीवरी, 1.25 महीने की हो चुकी थी, हमारे 1.25 महीने तक सूतक मानते हैं कि 1.25 महीने तक चूल्हे परिंडे कहीं लग नहीं सकते, पवित्र नहीं मानते। 1.25 महीने के बाद जब जलवा हो जाता है, पूजा हो जाती, कुआ पूजन होता है हमारे, फंक्शन होता है, वो फंक्शन हो जाता है, उसके बाद वो कहीं भी जा सकती करती। तो मेरी मम्मी ने मना किया कि भाई बहू को नहीं लेके चलेंगे, बच्चा बहुत छोटा है, रोज ये गंगाओं में नहाएगी, सब जगह गंगा जी में नहाना पड़ता है, तो बच्चा छोटा है दूध पीता है माँ का, तो बीमार बीमार हुए नहीं, बोले भगवान है सब कुछ, सब बात वो भगवान पे छोड़ते थे और उनके सब काम पूरे भी होते थे, ऐसे ही मैं भी भगवान पे छोड़ती हूँ, मेरे सब काम पूरे होते हैं, मैं जो कह देती हूँ ना वो बात होती है। फिर लेके गए उसको, ले गए, अब पिताजी की जिद के आ गए, वो सभी गंगाओं में नहाई करी, तो मेरे भतीजे को निमोनिया हो गया था, निमोनिया हो गया, छोटे बच्चों का, 1.25 महीने का बच्चा लड़का, वो भी
1: कितना नाजुक,
0: हाँ कितना नाजुक,
1: चाहे तो लड़का हो चाहे लड़की हो,
0: वही बराबर है वो तो, जी
1: जी
0: बहुत छोटा था, बहुत मना किया मेरी माँ ने कि देखो मत लेके चलो, हर साल चलते हैं, अगले साल चलेंगे थोड़ा बड़ा होने दो, पर उनको तो बहुत अच्छा लगता था कि परिवार पूरा ही चले। तो लेके गए, तो भाभी हर गंगाओं में नहाती थी, तो उसको भी थोड़ा बहुत तो नहलाते ही थे गंगा का पानी वगैरह, तो नमोनिया हो गया बहुत बड़ा और इतना सीरियस हो गया कि पूछो मत। तो मेरे भाई वगैरह डॉक्टरों को दिखाए करे, वो मेरे पिताजी तो बस अपनी शक्ति को मानते थे, 51 पंडित बिठाए और पता नहीं कौन सी पूजा करवाई, वो कोई नाम है, वो पूजा उन्होंने कराई,
1: वो भी ट्रेन में ही?
0: नहीं, वो मतलब ट्रेन से नीचे उतर के ग्राउंड में,
1: हाँ सफर में ही,
0: हाँ सफर में, सफर में।
1: और कहाँ से लाए होंगे 51 पंडित?
0: ट्रेन में ही मिल गए।
1: अच्छा।
0: हाँ ट्रेन में ही, पूरा जनकपुर और ये जयपुर में कौन सी जगह, वो साधु महात्मा संत, ये अजमेर के पास है सलीमाबाद, वहाँ के सर्वेश्वर जी महाराज, जनकपुर, अयोध्या, सब जगह
1: जी, जी, जी। चलिए तो,
0: और फिर ठीक हो गया वो,
1: अच्छा
0: पूजा होते ही ठीक हो गया मेरा भतीजा।
1: चलिए बहुत सुंदर, तो आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सिंह चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: बहु रानी और सास माँ होती है, बहु रानी और सास माँ होती है। नारी के सम्मान की ऐसी कहानी होती है, नारी के सम्मान की ऐसी कहानी होती है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में अयोध्या जी हमारे साथ है। इनके काफी अनुभव सुने हैं कि किस तरह हर साल 3-4 महीना आप सफर में ट्रेन में ही रहते थे, बच्चे का जन्म भी ट्रेन में, तो बुजुर्गों की मृत्यु भी ट्रेन में, और कुछ हो गया है तो पूजा पाठ वगैरह भी सब ट्रेन में, मतलब आधी लाइफ इनके ट्रेन में ही गई। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है, और भी सुनेंगे। तो अयोध्या जी, आप कुछ बता रहे थे कि आपके पिताजी को अवार्ड भी मिला।
2: जी, हमेशा हर साल यात्राएं लेके जाते थे तो उनको बॉम्बे रेलवे से बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। ट्रेन के पास पूरे ट्रेन बनी हुई है सर्टिफिकेट के ऊपर, और उनके विचार लिखे हुए हैं कि एक आदमी ऐसे छोटे गांव से, राणोली गांव दौसा के पास, 4 क्लास पढ़े हुए उस जमाने में, लेकिन आज के PhD के सबसे बड़ी से बड़ी शिक्षा को मात दे सकते थे। इतना ज्ञान, इतना अनुभव उनको था। व्यवहारिक ज्ञान जो होता है पढ़ाई से भी ज्यादा होता है, किताबी ज्ञान कम होता है। किताबें पढ़ के डिग्रियां चाहे कोई कितना ले लो, अगर वो अच्छी भाषा नहीं बोल सकते, अच्छे से किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर उनकी पढ़ाई किस काम की है।
1: जी।
2: तो व्यवहारिक ज्ञान होना जीवन में बहुत ज्यादा है। तो आज उन्होंने देखो 4 क्लास पढ़े हुए थे, 4थी क्लास की परीक्षा भी, जैसे आज हम कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो अपने गांव से दूसरे शहर में जाते हैं, सेंटर आता है, तो ऐसे ही उस जमाने में राणोली एक छोटा सा गांव है दौसा के पास, उसमें हमारे आमों के बगीचे वगैरह हैं, दादाजी ने लगा रखे हैं और ये सब। तो मेरे पिताजी 4थी क्लास का एग्जाम देने के लिए दौसा आए थे।
1: अच्छा।
2: उस जमाने में 4थी क्लास के, और हम इतने पढ़ गए लिख गए, सारे बहन भाई सबको मात कर देते थे, हिसाब किताब सब में। इतने लोगों को यात्रा कराना है, ऐसे ही है क्या? आज अपना एक परिवार नहीं संभाल सकते।
1: बिल्कुल।
2: और वो भी एक बेटा एक बेटी आज के जमाने में, और आज की जनता तो केवल एक बच्चे पे आ रही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब हमारे देख लो, गुड़िया है एक, 5 साल की हो गई मेरी पोती, बेटे वो बिल्कुल ना बोलते हैं, बहुत है एक ही, और हम 8 बहन भाई थे। तो सोचो उन लोगों की, उन्होंने कैसे, और अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, हमको कोई शिकायत नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है, वो जहाँ कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, और हर जन्म में हमको वही परिवार मिले, वही माता पिता मिले। इतना सुख उन्होंने हमको अच्छा दिया कि कभी ऐसे, और इतना प्रेम होता था। छोटे बच्चे के कपड़े हो गए, वो बड़ा हो रहा है तो उसको पहना दिए, उसको पहना दिए। आजकल तो एक बार पहने फेंको हटाओ, और वो भी ब्रांडेड कपड़े होने से मैडम कुछ नहीं होता है।
1: जी।
2: ब्रांडेड सोच होनी चाहिए, कपड़े खराब हो तो शर्म नहीं करनी चाहिए, चोरी चकोरी से गलत कार्य से शर्म करनी चाहिए। अपना घर कैसा भी हो, कुछ भी हो, मंदिर है वो, झोंपड़ी हो चाहे कुछ, तो इस तरह के लोग आजकल शो ज्यादा देखते हैं, असलियत को वो नहीं पहचानते।
1: जी जी जी, नकली का जमाना है,
2: नकली का जमाना, दिखावे का।
1: जी। तो फिर आपको शिक्षा संस्कार भी माता पिता से ट्रेन में ही मिलते थे?
2: ट्रेन में मिले, घर पे भी मिलते थे, हर बात पे रोका टोकी करते थे, जैसे कुछ गलत कर रहे हैं कुछ में, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है, कोई आंख में कर रहा है, तो हमको ऐसे ऐसे शेर शायरियां चौपाइयां ये सब करके बताते थे। नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर। इस तरह से कह कह के समझाते थे, और इतना परिपक्व कर दिया हमको कि आज वो इस दुनिया में नहीं है तो भी वो 10 बार एक दो काम कर लेंगे, फिर हाथ धोने की आदत, एक दो काम करे फिर इतनी बार हाथ धोते हैं करते हैं। और अब मेरी वही आदत हो गई, परिवार में मैं कुछ देखती हूँ करती हूँ तो तुरंत टोकती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो बच्चों, ऐसा नहीं करना बेटा, बैठे बैठे कोई जैसे यूं कर रहा है, हाथ झूठे हो गए ना, तो बोले अब काम क्या करना है जो हाथ झूठे हो गए, नहीं मुंह में हाथ नहीं देने का। परिवार के लिए भी मैं बहुत रोका टोकी करती हूँ, ये मेरी थोड़ी गलत आदत है, सही है जो भी आप समझो। इतना
1: आपका समय अलग था, लेकिन अभी का समय अलग है, अभी थोड़ी रोका टोकी मतलब पसंद नहीं करते आज की जनरेशन।
2: लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं कहते, मेरे बच्चों की पूरे समाज में तारीफ है और मेरे पियर वाले सब मेरे बच्चों को इतना, मेरे पियर जाते हैं सुबह उठते में मामाओं को प्रणाम करना, मामी जी को प्रणाम करना, सब सब कहते हैं अयोध्या भाई आपके बच्चे देखो कितने संस्कारिक है। मतलब ता से बच्चे की पहचान नहीं होनी चाहिए कि भाई उनका पुत्र है, ये पुत्र से पिता की पहचान होनी चाहिए। अच्छा आप उनके बच्चे हो तो बच्चों से हमारी पहचान है, बच्चों को भले ही इनको ऐसा लगा हो, कभी मेरी बात का बुरा भी नहीं माना है, लेकिन इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो मुझे पसंद है, तो पूरा आबू रोड कहते हैं कि तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे होंगे जिन्होंने तुमको संस्कार दिए। तो ये संस्कार पहले मैं लेके आई हूँ अपने घर से। गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और गृहिणी चाहे तो घर को नर्क बना सकती है, ये गृहिणी के ऊपर डिपेंड है। आदमी तो हमेशा बाहर रहता है जॉब पे, लेकिन वो चाहे तो, फिर बच्चे कहना मानने वाले भी होने चाहिए थे। मैंने ऐसा जीवन जिया शादी के बाद, अपना काम किया, पहले तो इतने नौकर चाकर भी नहीं होते थे, सब झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से करते थे हमारे जमाने में, सारा सब कुछ कर करा के दोपहर में बच्चों को आते ही स्कूल से सिखाया, खाना खा के कपड़े चेंज करके और अपना बैग लेके पहले होमवर्क पूरा करो और फिर दोपहर में सो जाओ। ना मैं कहीं जाती थी इधर उधर मोहल्ले में औरतों के पास, कोई ऐसी औरत हो जिसके पास बैठे शिक्षा मिले तो, मेरा तो अलग ही जीने का तरीका है, आपको पता है मेरे को तेरी मेरी ये फालतू का समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अपन पुण्य भी नहीं कमा सकते हैं तो क्यों किसी को, अपना घर संभाल के ही बता दें तो वही सबसे बड़ी बात है। मैं तो सबसे ये कहती हूँ मेरे किसी की नहीं सुननी, मेरे तो बस मेरे घर की तारीफ हो जाए कि अच्छे से घर चल रहा है, वही सबसे बड़ी बात है।
1: बहुत सुंदर विचार है आपके, और वो शिक्षा संस्कार जो बचपन से मिलते हैं उसका तो प्रभाव पूरे लाइफ टाइम पड़ता ही है, और हर माँ की इच्छा रहती है कि अगर अच्छे शिक्षा संस्कार हमें मिले तो हम भी अपने बच्चों को उस अनुसार ढाले। लेकिन हाँ, सबके बच्चे ऐसे नहीं होते कि वो अपने माता पिता के अनुसार चलते हैं, वो सारे अपने मन से भी चलते हैं।
2: मन से चलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आज बैंक में जॉब करता है, वाइफ आ गई, बच्ची हो गई, लेकिन आज भी ये बड़ा भी कितना भी बुड्ढा हो जाएगा मेरे लिए वही रहेगा, मेरी छवि में मुझे वही दिखता है कि मेरा बच्चा है जब इतना सा था आज इतना बड़ा हो गया। अभी भी मैं इसको डांट दूं कुछ भी कह देती हूं कभी कुछ नहीं कहता।
1: माता पिता के लिए तो देखिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे।
2: हाँ, मेरा कहना मानते हैं, अभी भी मैं कह देती हूँ ऐसे नहीं वैसे नहीं यूं नहीं, मेरे हस्बैंड को भी कह देती हूँ मैं, क्योंकि इनके बचपन में ही माता पिता ऑफ हो गए थे।
1: अच्छा।
2: दादी ने इनको पाला था, बहुत ऐसी कंडीशन जिंदगी जी है इन्होंने, तो मैं ना मेरी थोड़ी आदत खराब है, इनको भी कह देती हूँ ऐसे नहीं, आप इतने बड़े प्रिंसिपल हो, ऐसे बैठने का ढंग हो, ऐसे बात करने का। अभी जैसे गेट पे आए ना तो एक पुलिस वाले भैया आए और भाग के आए और बोले सीधी गाड़ी अंदर जाने दो, तो हमने सोचा भाई ऐसे क्या, बोले इन सर से मैं पड़ा हुआ हूँ, बाहर गेट कीपर पे बैठे ना पुलिस वाले भैया, नाम भी बताए, बेटे को पता होगा, तो उन्होंने कहा सीधी गाड़ी ले जाओ, इस सर से पड़ा हुआ हूँ मैं। अब इनके क्या 3 अटैक आ गए ना, थोड़ा कम बोलते हैं, हमेशा 100% रिजल्ट दिया इन्होंने, कभी सुख की रोटी नहीं खाई, टाइम हो गया रोटी छोड़ के चल देते थे, लेकिन स्कूल में कभी शिकायत नहीं आई।
1: कहाँ जॉब थी?
2: 10 साल तो मूंगथला में रहे
1: जी,
2: और 20 साल रेवदर में रहे, और 5 साल पामेरा, वहां से रिटायरमेंट हुआ। VRS लिए 6 महीने पहले, अटैक आ गया ना
1: जी जी जी,
2: तो फिर VRS दिला दिया हमने।
1: प्रिंसिपल के पद पर थे?
2: प्रिंसिपल के पद पर।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत ही सुंदर अनुभव रहे हैं। आप कार्यक्रम के अंत में हमारी जो बहनें सुन रही उनको क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज?
2: यही मैसेज देना चाहूंगी बहनों को कि नारी शक्ति एक ऐसी है जिसको भगवान ने इस तरह से बनाया है, पियर और ससुराल दो दो घर को निभाती है, छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातें तक उसको याद रहती है, उसने मेरे को इस फंक्शन पे ऐसा दिया था वो दिया था, मुझे ये करना है मुझे वो करना है। नारी शक्ति को अपने आप पे इतना गर्व होना चाहिए, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं घर की नौकरानी हूँ, मेरा तो यही जीवन है कि मैं उठूँ और सबको सेवाएं करूँ, काम करूँ, कोई कह रहा है चाय बना दो, कोई कह खाना हो रहा है, मेरे ऑफिस जाना है, मेरे स्कूल जाना है, सबका करके भी वो अपने लिए समय निकाले और अपनी पहचान अलग से बना के बताए।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है नारी शक्ति को, और ये बहुत ही जरूरी भी है
2: जी। और आज मेरे बच्चों को मुझ पे गर्व है कि मैंने हाउस वाइफ होके भी नींव की ईंट बनके और कंगूरे झुकाए हैं, और जो मेरे अंदर गुण थे वो कैसे लोगों को मालूम पड़ते, अगर मैं लोगों से मिलती नहीं और ये बुक लिखती नहीं, लोगों के हाथ में मेरी ये किताब जाती नहीं, मेरा लेखन कार्य, तो उनको कैसे पता पड़ता कि मैं घर के अंदर क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ और क्या नहीं करती हूँ, कैसे मेरी एबिलिटी मालूम पड़ती सबको।
1: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अयोध्या जी, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही कीमती समय स्वयं का भी दिया, रेडियो मधुबन और श्रोता बंधुओं के लिए और बहुत ही सुंदर अनुभव सभी के साथ शेयर किए हैं, इसके लिए आभार आपका। आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में अयोध्या शर्मा, जो आप आबू रोड सातपुर के रहने वाले हैं, आपने बीए कर रखा है, उम्र आपकी 62 वर्ष है और आपको किस तरह देखिए कढ़ाई सिलाई बुनाई का शौक है और कैसे सफर में आपका जीवन बीता, किस तरह ट्रेन में यात्राओं पर आप जाते थे, कैसे आपको अपने माता पिता के द्वारा शिक्षा संस्कार मिले और आपने किस तरह अपने बच्चों का शिक्षा संस्कार दिए, क्या आज आप एक हाउसवाइफ होकर के भी का कहना है कि पूरे आबू रोड में आपकी पहचान अच्छी है, सभी आपको जानते हैं मानते हैं। सचमुच में एक गृहिणी से वो कहते ना कि उम्मीद बहुत ही कम रखते हैं लोग, लेकिन नारी शक्ति किसी से पीछे नहीं है, अगर वो ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि अयोध्या जी ने किया है। देखिए इनके अनुभव हमने काफी कम सुने हैं, बहुत सारे अनुभव है जो हम अगले रविवार को सुनेंगे और भी, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे अयोध्या जी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

वेल दोस्तों, अभी थोड़ी देर में आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं 135th एडिशन ऑफ मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव ब्रॉडकास्ट को हम थोड़ी ही देर में आपके बीच लेकर आ रहे हैं। 135th एडिशन ऑफ मन की बात।

देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब
साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है
और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल
5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है, इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूँ। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूँगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर
वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनकी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया।

कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है, यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदे। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है, इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे

0: देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
1: हेलो, आई एम अलेक्सेंडर, डिप्लोमेट फ्रॉम रशिया, एंड यू आर लिसनिंग FM रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। You can also tune radiomadyuban.in on internet, even Russia, even everywhere.
2: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय है बच्चों की सृजनात्मक उड़ान।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते दीदी।
2: कैसे हो आप लोग?
4: अच्छे हैं दीदी।
5: दीदी आपको एक बात बतानी थी।
2: क्या बात बतानी थी?
5: इस बार मैंने अपने गमलों को अपने दोस्तों के साथ पेंट किया।
4: दीदी मैंने मेरे बर्थडे पे कार्ड्स बनाए मेरे दोस्तों के लिए।
2: अरे वाह, आप दोनों तो बड़े अच्छे बच्चे हो। एक ने गमले पेंट किए अपने दोस्तों के साथ, एक ने अपने बर्थडे पर कार्ड्स बना कर दिए। ये भी तो हो सकता था कि गमले पेंट करने के लिए प्रियांगी किसी को बुलवा लेती और बैठ के चुपचाप देखती। और ये भी हो सकता था कि आरना बाजार जाती और कार्ड्स खरीद लाती और दे देती। लेकिन तब क्या इतना मजा आता जितना अब आया है?
4: नहीं दीदी। दीदी
2: बहुत फायदा होता है इससे। जब हम कुछ रचते हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है।
4: हाँ दीदी, मुझे तो बहुत फायदा हुआ। मेरी मम्मी ने मुझे एक नई साइकिल गिफ्ट में दी।
2: और तुम्हें क्या फायदा हुआ प्रियांगी?
5: दीदी मुझे पापा ने आकर गले लगाया और एक किताब गिफ्ट में दिया।
2: अच्छा, तुम्हें किताब गिफ्ट में मिली और तुम्हें तो साइकिल मिल गई। वाह, लेकिन ये हमारे माता पिता का एक तरीका होता है, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बोल सकते हैं इसे। हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे छोटे छोटे से कामों को बहुत खुश होकर अप्रिशिएट करते हैं ताकि हम और काम करें और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर कर पाएं। लेकिन जहाँ तक फ़ायदे की बात है, वो मैं आपके भीतर वाले फ़ायदे की बात कर रही थी।
4: भीतर का फ़ायदा?
2: हाँ, वो फ़ायदा जो आपके भीतर होता है, यानी कि आरना के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस प्रियांगी के अंदर होते हैं कुछ नया करके।
4: वो कैसे?
2: ओ, वो ऐसे कि अब जानने के लिए तो हमको एक खेल खेलना पड़ेगा। तुम दोनों कहो तो खेल लेते हैं।
4: जी दीदी।
5: जी दीदी।
2: तो जरा ये देखो, ये दिख रहा है ये झोला?
4: हाँ दीदी।
2: इस झोले का नाम है कल्पनाओं का झोला। क्या नाम है इसका?
4: कल्पनाओं का झोला।
2: और इस झोले में है एक जादुई छड़ी।
4: जादुई छड़ी?
5: जादुई छड़ी?
4: वो कैसे?
2: ये देखो, ये रही जादू की छड़ी।
5: ओ, अच्छा।
2: अब इस जादुई छड़ी का एक कमाल है, बता दूं क्या?
4: हाँ दीदी बता दीजिए।
2: इस जादुई छड़ी का कमाल ये है प्रियांगी कि तुम इस जादुई छड़ी से जो छुओगी वो तुम्हारे मन मुताबिक काम करने लगेगा।
5: मैं इस जादुई छड़ी से किताब को छूंगी।
2: अरे किताब को क्यों छूओगी?
5: जब मैं इस छड़ी से किताब को टच करूं तब किताब बोलने लगे।
2: अरे वाह, सोचो कितना अच्छा होगा। चलो चलो एक मिनट छुओ तो जरा इस किताब को, फिर देखते किताब कैसे बोलेगी। छुओ जरा जल्दी से, छुओ। छू लिया?
5: छू लिया।
2: प्रियांगी मैं हूँ तुम्हारी प्यारी सी किताब। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगी एक छोटी सी कविता। सुनोगी?
5: हाँ जरूर।
2: बस ये कमाल हो जाएगा। देखा जादुई छड़ी से कितना कमाल होगा।
4: और मैं तो है ना गार्डन के फूल को टच करूंगी ताकि मैं जैसे ही गार्डन में जाऊं वो गाना गाने लग जाए।
2: ओहो, मतलब आप जाएंगी और आप एकदम से टच करेंगी और फूल कहेंगे तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, ऐसा ही कुछ सोच रहे हो ना?
4: हाँ।
2: कमाल देखा तुमने। क्या हुआ बताओ, कुछ भीतर हुआ इन सारी बातों से?
4: जी दीदी।
5: जी दीदी।
2: क्या हुआ बताओ, कुछ सोचो सोचो, कि अभी जो हमने ये कल्पनाओं का झोला टटोला, उसका मुंह खोला, उसमें से जादुई छड़ी निकाली, उससे क्या हुआ?
4: हमारी क्रिएटिविटी बढ़ी।
2: हाँ,
5: और हमको पता भी लगा।
2: हाँ, कि हम कुछ कुछ सोच सकते हैं।
5: हाँ,
2: मतलब सिर्फ और सिर्फ बैठे रहने से हमारी इमेजिनेशन पार नहीं बढ़ती, हमारी सोचने समझने की शक्ति तब बढ़ती है जब हम कुछ क्रिएटिविटी अपने अंदर लाते हैं। अब समझ में आया भीतर का फायदा?
4: हाँ दीदी।
2: ये भीतर का जो फायदा है ना, ये बड़ा कमाल का है। जब आप कुछ भी करते हैं, जैसे आपने गमले पे पेंट किया, तो क्या हुआ, इस बार गमले को अपने सिर्फ एक गेरुए रंग से रंगा है, हो सकता है अगली बार आप उस पर एक छोटा सा कोई वर्ली आर्ट बना दो, उसके बाद हो सकता है कि किसी दिन आप कैनवास पे कुछ बना दो, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते करते करते पता चले कि प्रियांगी की एक आर्ट गैलरी बन गई है।
5: अरे वाह,
2: ऐसा भी हो सकता है।
5: हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
2: जी हाँ, आपके हर काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हमको खुद कुछ रचना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए, ताकि वो चीज़ें हमारे अंदर हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं और सीखते जाएं। और ये भी हो सकता है कि जब आरना अपने दोस्तों को आज कार्ड बनाकर दे रही है, तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, और ऐसे करते करते एक दिन आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाए, हो सकता है कि नहीं?
5: जी दीदी, मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरी राइटिंग स्किल भी सुधर सकती है।
2: है ना, इस बार कुछ अगर छोटा छोटा लिखा होगा तो अगली बार आपको और अच्छे से आपकी फीलिंग्स को लिखना आ जाएगा, आपको उसको बताना आ जाएगा लोगों को। और सोचिए कि ये छोटे छोटे से काम कितने ज़रूरी हैं। तो अब से वो जो टीवी होता है ना, जिसे हमारे दादी बाबा बुद्धू बक्सा भी कहते हैं, उसके आगे बैठ के बुद्धू तो नहीं बनोगे?
5: नहीं दीदी, हम हमारा टाइम यूटिलाइज करेंगे क्रिएटिविटी वाली चीजें करने में।
2: वेरी गुड। और आप प्रियांगी?
5: मैं तो अपना दिमाग खोल दूंगी।
2: तो चलो, आज से तुम दोनों के दिमाग के दरवाजे खटखटाते हैं और कहते हैं, हे दिमाग, खुल जा सिमसिम की तरह, इन दोनों के भीतर क्रिएटिविटी की ज्योति जला दो। ठीक है?
5: जी दीदी।
2: तो चलिए, आज आप मुझे क्या सुनाने वाले हैं?
5: कहानी।
2: कौन सी कहानी?
5: वो पहले प्रियांगी सुनाएगी।
2: प्रियांगी बताओ।
5: मैं आज कहानी सुनाने वाली हूँ मेहनती चींटी।
2: बिल्कुल, हम दोनों सुनने के लिए तैयार हैं। सुनाइए, शुरू कीजिए।
5: एक थी चींटी, चींटियों की रानी, वह बहुत ही मेहनती थी। वह एक उपवन में बिल बनाकर रहती थी। उसके साथ और भी चींटियां रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। उसी उपवन में एक टिड्डा भी रहता था। वह दिन भर उछल कूद करता और चींटियों का मजाक उड़ाता था, पर चींटियां उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। एक बार गर्मी का मौसम था, फसलें कट चुकी थी, इसलिए खेतों में काफी अनाज इधर उधर बिखरा हुआ था। चींटियां वर्षा ऋतु आने से पहले अपने बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। टिड्डा उनका मजाक बनाने लगा। तब रानी चींटी ने टिड्डे को समझाते हुए कहा,
6: टिड्डे भैया, तुम भी अपने लिए कुछ इकट्ठा करके रख लो, वरना बरसात में कैसे निभा करोगे?
5: टिड्डे ने हंसकर बोला,
7: चींटी बहन, तुम किस लिए हो?
5: यह कहकर टिड्डा उछलता कूदता वहां से चला गया। एक दिन आकाश में काले काले बादल छा गए, मूसलाधार बरसात होने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ पानी भर गया था। चींटियां तो अपने अपने घरों में घुस गई, पर टिड्डे का तो घर ही नहीं था। वह परेशान होने लगा कि वह किधर जाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसे रानी चींटी की याद आई। वह रानी चींटी के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। रानी चींटी ने दरवाजा खोला तो देखा टिड्डा पूरा भीग गया था और ठंड से कांप रहा था। टिड्डा बोला,
8: चींटी बहन, मैं बिल्कुल भीग गया हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है, क्या तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दोगे? मैं बरसात बंद होते ही चला जाऊंगा।
5: रानी चींटी ने उसे आदर के साथ अंदर बुलाया। बाहर बरसात और जोर से होने लगी। टिड्डा भूख के मारे बेहाल हो रहा था। चींटी ने जब उसकी दशा देखी तो उसे उस पर दया आई। वह समझ गई कि टिड्डे को बहुत भूख लगी है। उसने उसे बड़े प्यार से भोजन खिलाया। टिड्डे को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उसने चींटी से कहा, बहन मुझे क्षमा कर दो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूँ कि कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो मैं आज भूखा नहीं बैठा रहता। आज से मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा, अपना घर बनाऊंगा और अनाज इकट्ठा करूंगा। इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाऊंगा। टिड्डे की बात सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हुई। उसके बाद सचमुच टिड्डा बदल गया। अब वह मौज मस्ती के साथ साथ मेहनत भी करने लगा। तो इससे हमको सीख मिलती है कि हमको कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए।
2: प्रियांगी, तुम्हारी तो एक बात हमें और पता चली आज बाल सभा में।
5: क्या चीज?
2: वो ये चीज कि आप तो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हैं।
5: अरे वाह।
2: हाँ, जब आप कह रही थी ना कि जोर से मूसलाधार बारिश हो रही थी तो सच में हमें वो फील आ रहा था। तो आप तो वाकई बड़े क्रिएटिव हैं। अब आप एक काम कीजिएगा, जब आप बाल सभा के बाद घर जाएं तो एक छोटा सा काम ये कीजिएगा कि अपने दोस्तों को इकट्ठा कीजिएगा और ऐसा ही एक छोटा सा क्लब बनाइए बच्चों का, जहाँ पर आप लोग एक दूसरे को कहानी सुनाना शुरू करें। क्योंकि जब हम कहानी सुनाते हैं तो हमें एक एक शब्द का फील आता है। अब सोचो कि अगर हम इसे एक चैप्टर की तरह पढ़ें तो हम कैसे याद करते हैं, टिड्डा बारिश में भीग गया था, टिड्डा बारिश में भीग गया था, क्यों भीग गया था, क्यों भीग। लेकिन जब हम इसे कहानी की तरह बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो इसकी तो हमें एक एक बात समझ में आ गई कि टिड्डा थोड़ा आलसी था, चींटी बहुत मेहनती थी और चींटी ने जब उसे समझाया तब भी वो नहीं माना। लेकिन जब बारिश हुई और वो चींटी के घर पहुंचा तो चींटी ने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ घर में बिठाया। चाहती तो चींटी कह सकती थी ना कि तुमने तो मेरा मजाक बनाया था, अब जाओ, मैं क्या करूं, बारिश हो रही है। तो ऐसे ही करते हैं ना आजकल बच्चे एक दूसरे के साथ।
5: हाँ दीदी।
2: हाँ, पर नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमें किसी दूसरे जैसा नहीं बनना, हमें अपने जैसा रहना है। चींटी अच्छी थी तो उसने अपना अच्छापन यानी अच्छाई नहीं छोड़ी। चलिए मैडम, अब आपकी बारी है।
9: मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक छोटी सी बूंद समुद्र को एक सबक सिखाती है। इसका नाम है एक थी बूंद। आकाश पर गहरे काले बादल छाए थे, रह रह कर उनके गरजने की आवाज आ रही थी। कभी कभी तो यह आवाज इतनी भयंकर होती कि बादलों में रहने वाली बिंदु नाम की एक छोटी सी बूंद कांप उठती। बिजली चमकी और बिंदु घबराकर गरजते बादलों की गोद से लुढ़ककर बारिश बनकर नीचे जा गिरी। गिरते गिरते वह
4: सीधी एक नदी में जा पहुंची। पर्वतों की गोद से निकलकर नदी समुद्र से मिलने जा रही थी। बिंदु नदी की धारा में बह रही थी। रास्ते में घाटियां, वन और नगर आए। बिंदु इन्हें देखकर चकित थी। वह सोचने लगी, मैं कितनी लघु और अनावश्यक हूँ और यह धरती कितनी विशाल और अद्भुत है। वास्तव में जब बिंदु नदी में गिरी, किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तीव्र गति से बहने वाली नदी की धारा में वह एक छोटी सी बूंद ही थी। लंबी और थका देने वाली यात्रा में कई मुसीबतें और मुश्किलें का सामना करते हुए मुड़मुड़ाती नदी अंत में समुद्र तक पहुंच गई। बिंदु ने शांति के सांस लेते हुए कहा, आखिर मेरी यात्रा समाप्त हो ही गई। अब मैं ज्ञानी और पुरातन समुद्र से अवश्य मिल पाऊंगी, जिसके बारे में मैंने ना जाने कितनी बातें सुनी है। पर बाबा समुद्र ना तो ज्ञानी थे ना ही दयालु। उसने अपनी ऊंची ऊंची लहरें को भेज दिया और भयंकर कोलाहल करती नदी को निगलने आ पड़ा। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ओ नदिया, तुम्हारी लहरें कितनी छोटी है और देखो मेरी तिरंगे कितनी शक्तिशाली है। ओ शुद्र नदी, बेचारी नदी भय से कांप रही थी। वह मुड़कर यहाँ से भागना चाहती थी, फिर से जा सके अपने पिता पर्वत के पास, पर ऐसा असंभव था। समुद्र ने नदी की घबराहट को समझ अपनी सबसे बड़ी वेल और भयंकर शार्क को आगे बढ़ा दिया। उनका शरीर चिकना था और पूंछ शक्तिशाली। तुम्हारे कछुए, केकड़े और मछलियाँ हमारे सामने कितनी छोटी सी है और तुम भी इतनी डरपोक हो। हम तो शक्तिशाली समुद्र के प्राणी हैं, वे चिल्ला रहे थे। नदी घबराई भी तो थी ही। इन प्राणियों की घमंड भरी बातें सुनकर रोने रोने को हो आई। समुद्र घमंड से भरा अपनी प्रशंसा के गीत गा रहा था। नदी इतनी भयभीत हो गई थी कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अचानक लहरे से जागती हुई बिंदु ऊपर आई और साहस से बोली, इन उछलती लहरों, शार्क मछलियों और अपने मूंगों के बल पे ही तुम इतने बड़े बन रहे हो। ओ समुद्र, अपनी फैलाई, अपनी गहराई और रंगों के बल पे ही तुम इतने बड़े बन रहे हो ना। सोचो तो, क्या तुम्हारे पास वह है जो मेरी छोटी नदी के पास नहीं है? ओ छोटी बूंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे प्रश्न करने की? क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली विशाल समुद्र हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। समुद्र क्रोधित होकर चिल्लाया, हाँ है, कमी है, भारी कमी है। बूंद ने पलटकर उत्तर दिया, नदी के पास मैं हूँ, ताजे जल की एक बूंद और मेरे जैसे अनेक बूंदे जीवन के लिए आवश्यक है। तुम्हारे पास तो नमक भरा पानी है जो कोई नहीं पी सकता। क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी है, पानी पानी सब जगह पर एक बूंद पीने को नहीं। समुद्र बिल्कुल चुप था, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर सूझ ही नहीं रहा था। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी और वह तुरंत शांत हो गया। उसकी आवाज में अंतर आ गया था और यह अंतर था प्रेम और दया से भरा। अब समुद्र बोल उठा, आओ प्यारी नदी, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैंने जो घमंड दिखाया उसके लिए मुझे क्षमा दो। मैं कभी अपना वैभव और बखान नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अब समझ में आ चुका है कि सबके पास कुछ ना कुछ सुंदर देने को होता है। नदी समुद्र में जा मिली, बिंदु लहर पर नाच उठी। चमकता हुआ सुनहरा सूरज आकाश से देख रहा था। धरती, आकाश और हाँ समुद्र, सब जगह सब ठीक चल रहा था।
10: वाह प्रियांगी, कहानी कुछ समझ आई?
5: हाँ समझ आ गई मुझे कहानी।
10: क्या था इस कहानी में?
5: कि हमको ज्यादा घमंडी नहीं दिखाना चाहिए।
10: बिल्कुल, हमको ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए और घमंड नहीं दिखाना चाहिए। घमंडी नहीं दिखाना चाहिए नहीं होगा हमको ज्यादा घमंड नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरी एक चीज और, दोनों की कहानी में एक बात कॉमन थी, समझ आ रहा है या मुझसे पूछो जल्दी से?
5: आप बताइए ना दीदी।
10: आपकी कहानी में टिड्डा बहुत उछल रहा था और इसकी कहानी में समुद्र बहुत उछल रहा था। जो ज्यादा तेज घमंड से बोलता है, अंत में मुश्किल उसी के सामने आती है। एक छोटी सी बूंद के सामने समुद्र को चुप होना पड़ा और एक छोटी सी चींटी के सामने टिड्डे को चुप होना पड़ा। ठीक है, तो कभी किसी के कद से, किसी के ज्ञान से, किसी के पहचान, जो भी वो दिख रहा है, उससे हमें किसी को नहीं तोलना चाहिए। जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते ना, तोल मोल के बोल।
5: जी दीदी, ये मैंने सुना तो है।
10: हाँ, उसे अब थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना भी है। जैसे टिड्डे ने कहा, चींटी रानी मैं देख लूंगा। क्या देखा? अंत में उसको चींटी के ही घर जाना पड़ा। और इधर समुद्र क्या कर रहा था? मूंगे उछाल रहा था। शार्क और वेल अपनी लहरों पर ऊंची ऊंची उछाल रहा था और नदी को डराने की कोशिश कर रहा था। और छोटी सी एक बूंद ने क्या कहा? कितना भी कर लो, हर जगह पानी ही पानी, लेकिन पीने को एक बूंद भी नहीं। तो फिर छोटी सी बूंद ने उसको क्या किया? आईना दिखा दिया, है ना? इसलिए कभी भी अपनी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। जी, आज आप दोनों स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बाल सभा में आपने बातें की और इतनी अच्छी बातें अपनी बताई भी कि आप लोग बहुत सृजनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हो। ऐसे ही अपनी उड़ान को बढ़ाओ और लंबा चलते जाओ। लेकिन हाँ, ज्यादा टीवी और मोबाइल नहीं
5: देखना है।
10: बिल्कुल, और खूब पढ़ना है, खूब अच्छे अच्छे काम करने हैं और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो चले
5: जी दीदी।
10: बच्चों नमस्ते।
5: नमस्ते दीदी।
10: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। मेरे साथ थे आज बाल कलाकार प्रियांगी दास और आरना। अब चलते हैं, इसी के साथ बाल सभा कार्यक्रम संपन्न होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में बताया कि नियमित साधना से एक शिल्पी को सफलता सहजता से मिल सकती है। नियमित संगीत साधना या उसको रियाज कहे तो उसके द्वारा ही संगीत के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अपनी संतुष्टि भी तो होती है। नित्य गुरु के पास जाकर शिक्षा लेने से विजयी बन सकते हैं। इसलिए एकांत साधना की आवश्यकता है और साथ में चाहिए गणमान्यों का सानिध्य और अनुप्रेरणाएं। तो ऐसे ही संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए फिर से हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं दिल से सबको नमस्कार करती हूँ
0: जी। जैसे हमने आज बताया कि संगीत सीखने की जो कला है,
1: हाँ जी,
0: इस कला में गणमान्यों का या कहो गुरुजनों का सानिध्य भी बहुत आवश्यक है। अपनी साधना तो है, अभ्यास है, मेहनत है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद भी उतना ही काम करता है।
1: जब तक गुरुजन का हो या गणमान्य का हो
0: जी,
1: उसका प्रेरणा बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसको कैसे लगता है, हम संगीत प्रेजेंट करते हैं, उपस्थापित करते हैं, उस टाइम उसको महसूस कैसे होते हैं, वो देख के इतना खुश हो जाते हैं।
0: इनकी दिल की दुआएं भी हाँ इतनी ही मायना रखती
1: है। किसी को जो बीमारी से भरा हुआ है, अगर संगीत सुनने के बाद वो पुनर्जीवित हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर हम औषधि, संगीत औषधि जैसे भी है, हम वो भी सुनाएंगे, औषधि का काम भी करते हैं बीमारी ऊपर।
0: जी जी, आज केदारनाक में आगे क्या सिखाएंगे हमें?
1: आज क्या करेंगे, हमने पिछले एपिसोड में स्वरलिपि दे दिया, स्थाई अंतरा, आज उसके ऊपर बोल बैठाएंगे।
0: ओके,
1: अगर लिसनर बोल लिख लेते हैं तो अच्छा है, किताब पेन से रेडी हो जाते हैं तो अच्छा है।
0: जरूर,
1: तो मैं थोड़ा स्थाई अंतरा की बोल बोलती हूँ, उसके बाद मैं बैठा दूंगी, ठीक है
0: जी।
1: सोच समझ मन मीत प्यारे वा, सोच समझ मन मीत प्यारे वा, सदगुरु नाम करे सुमरन वा। हर जगह में देखो, गुरु बना कैसे गुण गाऊं, गुरु बिना कुछ शिक्षा भी संपूर्ण नहीं होते हैं, गुरु चाहिए चाहिए। जैसे बचपन में माता पिता गुरु होता है
0: जी, संस्कार तो हमारी माँ और पिता ही
1: दुनिया में देखते हैं ना, बचपन में माता पिता गुरु होता है। जब संसारी बन जाते हैं तब अपना जो हस्बैंड जो गुरु बन जाते हैं, हम सुने हैं कि जो पति जो है परमेश्वर,
0: भारतीय संस्कृति कहती है
1: जी। उसके बाद जब वानप्रस्थी जीवन में होता है तो ईश्वर गुरु बन जाते हैं। तो गुरु बिना कैसे गुण गाऊं,
0: मतलब पूरे जीवन में हमको गुरु की आवश्यकता है ही है, हर पड़ाव में,
1: हर पड़ाव में। तो यही बोल रही हूँ, सोच समझ मन मीत प्यारे वा, सद गुरु नाम करे सुमरन वा, घड़ी घड़ी पल पल उम्र घटते सब। अब देखिए वही बात आ गया ना, जितना बढ़ते जाएंगे उम्र बढ़ते जाएंगे और पल पल कम होते जाएंगे
0: जी,
1: ठीक है ना। आज हो चेत मति मंद चतुरवा, इसलिए तुरंत ईश्वर से या गुरु से नाम भजन करके दिन बिताते हैं, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं
0: जी, जी।
1: तो हमको क्या करना है, ऐसे बिताना है। तो आप ही ये करते हैं कि ये पहले जो हमने स्वरलिपि दिया है उसमें सजा देते हैं, ठीक है। ओके
0: जी।

0: श्यामली जी, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में बहुत ही सुंदर एक गीत सुनाना चाहते हैं। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने बहुत सुंदर गीत का आनंद लिया। ब्रेक के पहले केदार राग की बंदिश हमने सुनी। श्यामली जी, आगे आप हमें केदार राग से संबंधित क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हमने क्या किया, बंदिश के साथ छोटा विस्तार भी सिखाया है। थोड़ा कैसे होता है विस्तार, आज तो स्वर्गम नहीं दिया है, विस्तार को भी प्रैक्टिकली क्रिएटिविटी चाहिए ना, थोड़ा सीखना चाहिए ना, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रेरणा से करना है
0: जी।
1: तो हमने किया है थोड़ा छोटा छोटा बिस्तर, उसके साथ आते हैं तो बहुत अच्छा सरगम साथ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, तान दे देंगे
0: जी।
1: 16 मात्रा, 8 मात्रा, साई अंतरा, अभी जैसी सिखाने की नहीं है, क्योंकि जो केदार राग जब से दिया है समझो थर्ड ईयर चल रहा है, अगर थर्ड ईयर तृतीय वर्ष चलते हैं, तीसरा वर्ष चलते हैं,
0: अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस ही,
1: प्रैक्टिकल करना है ना, उसको क्रिएटिविटी चाहिए, तो तान थोड़ा दे देते हैं। ठीक है
0: जी, जी
1: सुनाते हैं।

0: शामली जी, इसी तान के साथ बहुत ही, क्या कहे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है।
1: हाँ, क्योंकि अगर एक बार अपना लेते हैं, अपनापन कर लेते हैं, तो उसका मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, शायद लिसनर ध्यान दिया है कि मैंने जिस लय से शुरू किया है
0: जी,
1: अचानक थोड़ा फास्ट कर दिया। जब तक ये फास्ट,
0: इसलिए मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा ऐसा
1: फिर थोड़ा फास्ट कर दिया, द्रुत कर दिया। इसलिए मध्य लय से हमको जो ये जो मध्य लय की जो बंदिश वो करना है, उसके बाद तान जब शुरू करेंगे उस टाइम में थोड़ा द्रुत के साथ करना है।
0: अच्छा,
1: पहले तो वो मैंने मध्य लय से तान वगैरह किया है, जितने सारे तान किया है मध्य लय से किया है, लेकिन उसके बाद जब हम आकार सहयोग से थोड़ा सरगम कर लेते वो उस टाइम में थोड़ा फास्ट कर दिया, मजा नहीं आते हैं
0: जी।
1: वो फास्ट करने में ही मजा आते हैं, थोड़ा द्रुत करने में ही मजा आते हैं। शास्त्रीय संगीत का जो बंदी जो है, एक शास्त्रीय कोई राग के ऊपर वो संपूर्ण उसको
0: पकड़ सकते
1: है
0: जी। शामली जी, जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, आज भी एक बहुत सुंदर एक गीत लाए हैं। इसमें थोड़ा सरारत भरा हुआ नटखटी है।
0: अच्छा,
1: लास्ट में ये तो आज किधर की लास्ट एपिसोड है, तो हम क्या करते हैं, घर फिल्म किशोर कुमार जी और लता जी एक गीत दोनों में एक साथ किया है, बहुत सुंदर गीत है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है।
0: वाह,
1: बहुत सुंदर गीत है, आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा कि किधर के ऊपर ये गीत है। ठीक
0: जी,
1: है
0: जी जी।

0: आपकी भी गजब के अंदाज है। सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: कोशिश कर सकती हूँ।
0: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये बहुत सुंदर गीत है, वैसे
1: नटखटी भी है।
0: जी जी, रमणीय गीत भी तो चाहिए ना। जी जी जी, श्यामली जी आपने सच में फिर से दिल को बाग बाग कर दिया। जाते जाते आपने हमें भी खुशहाल कर दिया।
1: थैंक यू।
0: इसी के साथ दिल तो करता है सुनते रहे, लेकिन समय देता है हमको इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए राग नए रंग के साथ संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, 9414151415। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
2: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: धुली होती है फूलों की महक, धीमी धीमी बारिश, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और किशोर कुमार के गाने, ऐसे पल जिंदगी में सुकून देते हैं। वैसे सुकून के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन राठौड़ परिवार और सुकून चलिए देखते हैं कि राठौड़ परिवार में आज कौन सी हवा चल रही है।
1: ओ प्राण गटक्कम महोदय, कृपया प्रकट हो जाइए।
2: ये क्या बोले जा रही है शांति, किसे बुला रही है?
1: किशन जी महाराज को मम्मी, केवल नाम बुलाने से ये प्रकट कहाँ होते हैं?
2: ओहो, तुम दोनों भाई बहन पता नहीं कब बड़े होगे।
3: अरे आ गया दीदी, क्या हुआ, इतना क्यों गर्म हो रही हो?
4: आज जीजा जी आने वाले हैं, आजादी छीनने वाली है।
5: अरे रेस्पेक्ट से बात करो, शांति तुम्हारी छोटी बहन है रागनी।
1: थैंक यू भैया, आप मेरे अच्छे भाई हो।
5: वैसे आजादी और शांति तो जमाई सा की शादी के दिन ही छिन गई थी।
1: क्या भैया, आप भी जा रही हूँ मैं।
2: ये खीखी खीखी बाद में करते रहना तुम लोग, अभी जमाई सा शांति को लेने आ रहे हैं। चलो ये सब साफ करो। और ये राजकुमारी कहाँ गई? राजकुमारी कुछ खाने का अच्छा बना ले आज, मीठा भी देख दो तरह का होना चाहिए।
6: हाँ हाँ मासा, मैं ना गेहूँ के तेल में तिल डाल के भुने हुए संतरे के घी वाले लड्डू बना लेती हूँ।
1: गेहूँ का तेल, भुने हुए संतरे?
5: तेल से घी वाले लड्डू कैसे बनेंगे राजकुमारी?
2: अरे माता जी, दुनिया में कितनी महान राजकुमारियाँ हुई हैं, हमको यही वाली राजकुमारी देनी थी तुमको।
6: कुछ कहा मासा आपने?
5: माँ कह रही है कि राजकुमारी कोई पुरानी डिश बनाओ ना। देखो जमाई सा पुराने है ना, तो पुरानी रेसिपी बना लो आज। ये नई रेसिपी, नए जमाई सा आएंगे ना, उनके लिए बचा के रखो।
1: रागिनी दीदी, तुम्हारे होने वाले पति की तो खैर नहीं।
0: अरे अरे अरे, ये कैसी भूल हो गई मुझसे, माफ करिएगा। राठौड़ परिवार के घोसले के सबसे अनोखे पक्षी यानी जमाई जी से तो मिलवाए नहीं आपको। वैसे शादी के बाद बेटी हो जाती है पराई और दामाद होता है VIP, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप यही समझते हैं ना? लेकिन ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बल्कि वोल्केनो इन प्रोग्रेस, जो कभी भी फट सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ बात कुछ, अब भाई राठौड़ परिवार है तो कुछ तो अलग होगा ना। तो कैसे हैं राठौड़ परिवार के जमाई सा, आइए खुद जान जाइए।
7: घड़ी का माँ मासा, घड़ी का माँ पापा, घड़ी का माँ,
8: खड़ी गम्मा जमाई सा, आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: पधारो सा, बैठिए बैठिए, थक गए होंगे आप।
1: थक क्यों गए होंगे, 15 मिनट का तो रास्ता है माँ।
2: चुप बैठ, जा पानी लेकर आ जमाई सा के लिए।
1: बैठूं कि जाऊं? अच्छा अच्छा, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। दीदी तुम्हें नहीं लगता ये दामाद लोगों को कुछ ज्यादा ही इज्जत मिलती है?
9: मुझे लगता है कि ये बहु लोगों को इज्जत कम मिलती है।
1: हाँ बात तो सही है, चलो अब पानी लेकर नहीं गई ना तो बेटी लोगों की भी इज्जत का फालूदा बना दिया जाएगा मम्मी द्वारा।
9: हाँ वैसे माँ ना कभी कभी बड़ी इक्वालिटी दिखाती है, बेटा हो या बेटी दोनों की शामत आती है।
0: आ भाई, आजकल इक्वालिटी के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं। लेकिन जब तक हर शहर हर गांव के घर के किचन तक इक्वालिटी नहीं पहुंचेगी, तब तक बात नहीं बनने वाली। अब आप कहेंगे कि अरे भाई पुरुष भी तो खाना बनाते हैं आजकल, लेकिन पुरुष एक बार खाना बनाकर शाबाशी इस तरह पाते हैं मानो उनसे अच्छा कुक और कोई नहीं, पर महिलाएं उन्हें क्या मिलता है ये तो आप भी जानते हैं। चलिए खैर, सूरजमल यानी कि जमाई सा बैठे हैं आज राठौड़ परिवार के आंगन में। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो धमाका होने वाला है, आइए आइए जान लेते हैं।
8: और बताइए जमाई सा, कैसे हैं आप?
7: भाभी जी वो मैं,
10: अरे पहले कुछ खिलाओ पिलाओ फिर बातें करना।
11: हाँ हाँ जमाई सा, खाइए कुछ, ये लीजिए समोसे, लड्डू भी लीजिए।
7: भैया वो मैं,
6: हाँ हाँ खाइए जमाई सा, ये मैंने नहीं बनाया है।
7: मैं कह रहा था कि
10: जमाई सा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
7: नहीं तो
11: भैया सही कह रहे हैं, आज आप कुछ खा भी नहीं रहे।
8: अरे रे जमाई सा, क्या बात है, और कुछ बना दें आपको खाना, ये पसंद नहीं आया कि माँ की याद आ गई आपको।
11: अरे आप क्यों इतना रो रहे हैं, क्या बात क्या हुई है?
12: आपने मुझे भी बताया नहीं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
11: बस
6: अरे जमाई सा,
11: बात भी है तो बताइए हमें।
6: अरे क्या इतनी बड़ी परेशानी हो गई, रोने लगे, अरे क्या हो रहा है
8: ये सब? तो
13: अरे बस
8: इस घर में,
6: हाँ इस घर में क्या,
13: चुप हो जाओ सर।
12: आपने मुझे भी नहीं बताया, क्या हुआ बोलो।
13: बस चुप हो जाओ सर। जमाई सर बताइए क्या बात।
7: बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, आपको तो पता ही है कि मैं और भैया मिलकर 10 साल से पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं। आज तक मैंने कोशिश की है कि बिजनेस में चाहे जो हो, लेकिन उसका असर घर पर कभी नहीं पड़ना चाहिए, और बड़े भैया का सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन
14: क्या जीजाजी?
7: लेकिन इस बार बहुत बड़ा लॉस हो गया। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं है। काम का इतना प्रेशर था कि मैं कितने दिन से सोया भी नहीं हूं, और कुछ मामले में मेरी और भैया की सोच नहीं मिलती।
10: जमाई सा देखिए, बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, आप परेशान ना हो।
11: हाँ, और हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आपने पहले भी लॉस को मुनाफे में बदला है।
7: हाँ भैया, लेकिन इस बार बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है।
8: क्या बात है जमाई सा, खुल के कहिए।
14: जीजाजी, हम सब आपका अपना परिवार हैं, आप बेझिझक कहिए।
7: मैं जानता हूँ आप सभी मेरे स्वागत में बैठे हैं, ये सोचकर कि मैं शांति को घर लेने आया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी शांति को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है।
6: क्या
14: क्या?
2: हे माता रानी, ये क्या सुन रही हूँ मैं?
7: माफ कीजिए मासा, मैंने आपको वचन दिया था कि शांति का ध्यान रखूंगा, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अपने भैया भाभी ने आज मुझे घर से निकाल दिया है।
8: मैं तो पहले से जानती थी जमाई सा की भाभी एकदम चालाक लोमड़ी है, पूरे बिजनेस पे ताक लगाए बैठी हैं।
10: चंद्रावती, कैसे समय पर कैसी बात करनी है, कब सीखोगी तुम?
8: मैं तो बस सच बोलती हूँ, सच बोलना गुनाह है क्या?
10: चंद्रावती बस।
11: भाई साहब कोई बात नहीं, जाने दीजिए, भाभी आप भी अभी जाने दीजिए प्लीज।
6: सूरज, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं यहाँ पार्टी कर रही थी और तुम वहाँ।
11: शांति, जमाई सा, देखिए आप दोनों परेशान मत होइए, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
9: जीजा जी, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं देखती हूँ कैसे घर से निकालते हैं आपको।
6: दीदी, उसके लिए तो आपको टाइम मशीन चाहिए होगी ना?
9: टाइम मशीन?
6: हाँ, मतलब वो लोग जमाई सा को ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना?
8: हाँ, हमको तो पहले से सब
6: घर से ही निकाल दिया। ऐसा कोई करता है क्या, अपने घर से निकालते हैं भाई को? कोई क्या जमाना आ गया, ऐसे ऐसी बातें करते हैं?
11: ऐसा जमाना आ गया,
8: बहुत गलत बात हुई।
13: बस चुप हो जाओ सारे।
14: पापा, जीजा जी को अपने साथ रख लें।
13: किशन, तुम नहीं जानते अभी कि सही क्या है और गलत क्या है?
14: लेकिन पापा, मैं अभी 20 साल का।
8: किशन, तुम इतने बड़े नहीं हुए अभी, अब कविता मत सुनाने लगना कि उम्र से नहीं दिल से बड़ा होना है बंदगी।
6: भाभी जी, बंदगी नहीं, जिंदगी। जिंदगी
8: क्या?
6: उम्र से नहीं दिल से बड़ा होना है जिंदगी, ये कविता की लाइन है। मैंने ना बहुत बार सुनी है किशन भैया से।
14: भाभी अब मेरी कविता कहाँ से बीच में आ गई?
13: अब फैसला मैं करूँ। एक दामाद का घर जमाई कहलाना गलत नहीं बल्कि बहुत गलत है समाज की नजर में। इसीलिए
0: तो हमारे यहाँ बादल से ज्यादा समाज बरसता है और बिजली से ज्यादा कड़कता भी है। अब भगवत सिंह राठौर जमाई साह का क्या फैसला करेंगे ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक जरा सोचिए कि आपके घर के फैसले कौन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बोल आप रहे हैं और सोच उन चार लोगों की है जो कभी नजर नहीं आते। जी बेटी को नहीं पढ़ा सकते, चार लोग क्या कहेंगे? अब जी लड़का खाना नहीं बना सकता, चार लोग क्या कहेंगे? सोचिए आपके घर में घर वालों की खुशी पर चार लोगों नामक काला बादल तो नहीं मंडरा रहा। आप सोचिए, तब तक मैं लेता हूं आपसे इजाजत। मुलाकात होगी घर ऑन एयर की अगली कड़ी में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते, रहिए गाते हंसते।
15: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। रेडियो मधुबन पर समय हो रहा है कार्यक्रम सलामे जिंदगी का। दोस्तों, आप जानते हैं कि रेडियो मधुबन आप सबके लिए तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आता है, और उसमें से एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम जो कि हमारे बड़े और बुजुर्गों के साथ हम करते हैं, जहाँ पर हम बातें करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन गाथा, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनके गर्व के विषय। आइए आज ऐसे ही इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ कार्यक्रम सलामी जिंदगी में मौजूद हैं दीनदयाल वर्मा जी। आप झांसी उत्तर प्रदेश से रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ।
0: माउंट आबू की धरती पर पहली बार आपका आगमन हुआ है और आप आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर हैं। यह एक मंच है जहाँ से हम अपने समुदाय तक ऐसी प्रेरणास्पद कहानियाँ जो वास्तविक जीवन में हो रही होती हैं उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज इस यात्रा में जहां पर हम आपकी कहानी जानेंगे, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका जन्म कहां पर हुआ, कौन से सन में हुआ, और आपके माता पिता के बारे में भी हम सुनना चाहेंगे।
1: मेरा जन्म ग्राम अटरिया, तहसील मोठ, जिला झांसी में हुआ। मेरी जन्मतिथि 12/7/1956 है और मैंने बीए एलएलबी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से किया है। और यहाँ मधुबन की धरती पे जो आज आगमन मेरा 8 तारीख को हुआ था, यहाँ आके मुझे वाकई ये महसूस हुआ कि जो है अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो मधुबन में, मधुबन राजस्थान में। माउंट आबू ऐसा जो है एक हिल स्टेशन है जहाँ पर जो भी आदमी आएगा यहाँ की स्मृतियों को अपने जीवन में आत्मसात अवश्य करेगा।
0: तो जैसा कि हमने बातचीत की शुरुआत में जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है
1: जी,
0: बचपन के बारे में कुछ बताइए, क्या यादें जुड़ी हैं, कैसे स्कूल में जाते थे, और माता पिता के बारे में भी कुछ जरूर बताइए।
1: बचपन मेरा एक ग्रामीण जीवन से स्टार्ट हुआ है। मेरे पिताजी कपड़े और सिलाई का व्यापार करते थे
0: जी,
1: और माता गृहिणी थी। हमारे प्राइमरी स्कूल गाँव ग्राम अटरिया में प्राइमरी लेवल तक स्कूल था। इसके बाद मुझे 6 से लेके 8 तक महंत रामेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरगढ़ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। इसके बाद वहाँ साइंस साइड ना होने की वजह से मुझे DVIC मोठ में एडमिशन लेना पड़ा। इसके बाद हम 3 भाई थे, तीनों भाइयों की शिक्षा का दायित्व हमारे अकेले पिता और माता पर ही था।
0: तो जैसे एक मकान बनता है तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है, और बचपन हमारे जीवन का नींव होता है
1: जी जी।
0: ऐसे कुछ ना कुछ गुण होते हैं, विशेषताएं होती है माता पिता के पास, जो हम जाने अनजाने में अपने अंदर भी स्वीकार करते हैं, और ये बातें हमको जीवन पर्यंत गाइड करती हैं
1: जी जी।
0: तो माता जी की क्या ऐसी विशेषता थी जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
1: माता जी की एक विशेषता ये थी कि वो जो है हम लोगों को अनुशासित रहने की प्रेरणा देती थी, और समय पर उठना, समय पर स्नान करना, समय पर स्कूल जाना, ये उनने जो है हम लोगों सभी भाइयों के लिए समय से उनने खाना बनाना ये सब किया।
0: और जैसे पिताजी की अगर याद करते हैं तो वो उनके अंदर क्या?
1: पिताजी का ये था कि बहुत बहुत सख्त अनुशासन था।
0: ओके।
1: जैसे पढ़ने का टाइम है तो पढ़ेंगे, कहीं अनावश्यक खेलने नहीं जा सकते
0: जी।
1: कहीं स्विमिंग पे नहीं जा सकती, तालाब में घूमने नहीं जा सकती, किसी के अनावश्यक पार्टी नहीं कर सकती।
0: तो ये बातें आपके भी जीवन में आई?
1: हाँ।
0: तो माता और पिता दोनों से आपने अनुशासन को सीखा
1: जी,
0: चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या फिर कार्यमय जीवन
1: जी जी।
0: जैसे अनुशासन की बात हुई, साथ साथ आपने बताया कि गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं एक्टिविटी करने के लिए। आज के समय हम देखते हैं कि एक जीवन घर हो, मतलब गांव हो, ग्रामीण परिवेश हो या पर शहर में भी, हर जगह करीब करीब लोगों का जीवन अपने छोटे से मकान के अंदर एक सिमट के रह गया है
1: जी जी।
0: पर उस समय पे किस प्रकार की एक्टिविटी गाँव में करने का ऑप्शन होता था? जैसे आपने तालाब की बात करी, तो कहाँ कहाँ आप जाते थे, कैसे आनंद लेते थे?
1: गाँव में था कि जामुन का पेड़ हुआ, जामुन पक गई तो वहाँ तोड़ने के लिए गाँव के बच्चे चले जाते थे। मुझे जाने से मना ही थी, मैं कभी नहीं गया, और अगर किसी दिन गया तो उस दिन मुझे बहुत पनिशमेंट मिला जब मैं लौट के आया।
0: तो बचपन आपका पूरा अनुशासन से गुजरा या फिर शैतानी भी थोड़ी बहुत होती?
1: नहीं, शैतानी तो पिताजी ने करनी ही नहीं थी, शैतानी उन्होंने करनी नहीं थी मुझे
0: जी।
1: सही।
0: और उस समय के जो टीचर्स हैं वो कैसे थे, स्कूल का परिवेश कैसा होता था?
1: स्कूल में 2 टीचर थे प्राइमरी में, एक रामनारायण, एक चिंतामणि, हमारे पास के गाँव कुमारिया के रहने वाले थे
0: जी।
1: उन्होंने प्राइमरी की शिक्षा जो है बहुत अच्छी तरह से दी।
0: ओके।
1: बहुत अच्छी तरह थी।
0: क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे?
1: हिंदी, अंग्रेजी तो कक्षा 6 से थी, लेकिन हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है और पीटी है, व्यायाम है।
0: आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या था?
1: मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था क्रिकेट।
0: क्रिकेट, अरे वाह, तो आपको स्पोर्ट्स में रुचि थी?
1: हाँ, स्पोर्ट्स में रुचि थी, लेकिन पिताजी जो है ज़्यादा खेलने के लिए परमिट नहीं करते थे।
0: ओके,
1: ये नहीं जा पाए।
0: जैसे प्राइमरी की शिक्षा पूरी होती है तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर मिडिल स्कूल में जाते हैं, तो आगे की शिक्षा कहाँ पर हुई है?
1: आगे की शिक्षा की हमारे गांव में प्राइमरी तक ही शिक्षा थी, इसलिए 6 से कक्षा 8 तक के लिए महंत रामेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरगढ़ में हमें जाना पड़ता था।
0: ओके।
1: गांव से 2 किलोमीटर था, वो हमारे पैदल जाते थे, पैदल आना पैदल जाना।
0: तो आजकल जैसे आपके भी घर में छोटे बच्चों ने, मतलब आपके बच्चों के बच्चों ने भी जन्म लिया होगा, तो आजकल चॉकलेट भी लेना हो तो लोग स्कूटी निकाल के घर से निकलते हैं।
1: ठीक
0: तो
1: है,
0: कैसे आप तुलना करते हैं वो समय को और इस समय को?
1: उस समय को हमारा पोता 12 साल का है, मैं सोचता हूँ कि अब ये मशीनरी युग है, इसलिए बच्चे कहते हैं मुझे स्कूटी दिला दो, मुझे बुलेट दिला दो, मुझे कार दिला दो, तो ये सब हमने कहा तुम अभी बड़े हो जाओगे तब दिलाएंगे तुम्हें, 18 साल कंप्लीट कर लो, तुम्हारा लाइसेंस बन जाएगा तब फिर हम दिला देंगे
0: जी।
1: तो ये है कि गांव का जीवन था, बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, पैदल जाना है 2 किलोमीटर सर्दी में, और फिर जो है धूप में बरसात में, मतलब आप ब्रेकअप नहीं कर सकते, कंटिन्यू करना है आप। और मैंने ये अपने जीवन में किया कि मैं जो है छुट्टी ही में कर रहा, बकाया मैं जो है स्कूल से बंक नहीं किया कोई।
0: तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके बचपन के बारे में जानने के लिए, और जो हम जैसे उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी है
1: जी, जी।
0: तो कहीं ना कहीं उनको सुन के भी अच्छा लग रहा होगा कि ग्रामीण जीवन जहाँ पर आपको शारीरिक श्रम भी करना है, अनुशासन में रहना है, फॉलो करना है
1: जी।
0: अभी कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को कुछ बताया जाता है तो वो नाराज हो जाते हैं, जवाब दे दे देते हैं, या कह देते हैं कि आपने हमको, हमारे साथ ये ठीक नहीं किया,
1: जवाब दे देते हैं।
0: लेकिन एक वंचित परिस्थितियों में भी जहाँ पर बहुत लिमिटेड साधन होते थे
1: जी,
0: तो अनुशासन के साथ साथ संयम भी रखना, इच्छाओं को बस में रखना, ये भी सीखते थे। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, जो कहीं ना कहीं हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और उनको भी खुशी भी हो रही होगी
1: जी, जी।
0: और उनके अंदर भी एक विजुअलाइजेशन आ रहा होगा कि किस प्रकार के समाज होता था उस समय। चलिए सोता हूँ, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आएंगे, और हमारे साथ बने हुए हैं दीनदयाल वर्मा जी, आप झांसी उत्तर प्रदेश से आज कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में पधारे हुए हैं। आपने अपने एजुकेशन में BA LLB किया है और वर्तमान समय तो सोशल एक्टिविटी में आप एक्टिव हैं। आपने जो अवसर प्राप्त किया सरकारी नौकरी से, उत्तर प्रदेश सरकार से, आपने एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के पद से आप रिटायर हुए हैं, जहाँ पर आपने चकबंदी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेवाएं दी हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर लौट कर आते हैं इस गीत के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: उपरा है उदयपुर बोल रहा हूँ। आशा भुंडिया और रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहो हंसता रहो।
1: दोस्तों हम फिर लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं दीनदयाल वर्मा जी। और जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे उनके बचपन के बारे में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्कूल के जीवन से अभी कॉलेज की ओर चलते हैं। जब आप कॉलेज पहुंचे तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की और कॉलेज कहाँ पर था, किस प्रकार की व्यवस्था थी?
2: मैंने सरदार पटेल इंटर कॉलेज चिरगांव से किया इंटरमीडिएट और बीए एलएलबी किया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से।
1: तो हॉस्टल में रहना हुआ या फिर?
2: नहीं, हॉस्टल में नहीं, अपने कमरे पे किराए से कमरा लेके पढ़ते थे।
1: ओके।
2: हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिल पाई।
1: क्यों, क्या सिचुएशन बना जो आपने लॉ का विद्यार्थी बनना है?
2: लॉ का विद्यार्थी इसलिए भी, उस समय नौकरियों का कुछ ऐसा नहीं था कि नौकरी मिल ही जाएगी, तो दोनों पहलू लेके चला के अगर नौकरी नहीं मिली तो LLB करके वकालत करके अपना जो है परिवार का पालन करूँ।
1: और कौन से सन में आपने कम्प्लीट किया LLB?
2: LLB हमने कंप्लीट किया 1980 में।
1: तो एक कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में ये पड़ाव आता है जब पढ़ाई पूरी हो रही होती है और फिर कहीं ना कहीं एक अपने परिवार को चलाने की बात करें या पेट पालने के लिए शब्द कह सकते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति करने का एक इच्छा रखता है और समाज भी उसको प्रेरणा देता है कि अभी आपको कुछ नौकरी करनी चाहिए या खुद का काम करना चाहिए। तो उसके लिए कभी कभी कई लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। आपका कैसा रहा जीवन, आपको फटाफट जॉब मिल गई या फिर आप
2: नहीं
1: संघर्ष किया?
2: मैंने संघर्ष नहीं कर पाया, मतलब पढ़ने के बाद मुझे तुरंत जॉब मिल गई।
1: ओके।
2: विद इन वन मंथ
1: आपको जॉब मिल गई। तो आपने कोई एंट्रेंस दिया, एग्जाम दिया, क्या हुआ?
2: एक्चुअली मैंने जो है हिंदी सब्जेक्ट से एक साल की ट्रेनिंग की थी AI से, हिंदी स्टेनोग्राफी।
1: ओके।
2: तो उस समय वो रेडियो पे देवकी नंदन पांडे की वो स्पीच समाचार पढ़ते थे, तो मैं उसको रेडियो को खोल के उसको लिखने की प्रैक्टिस करता था
1: फास्ट।
2: और मैं उसको जो है पूरा जो है एक भी शब्द छोटे बिना लिख लेता था।
1: अच्छा, कितनी टाइपिंग स्पीड थी?
2: मेरी टाइपिंग स्पीड तो थी 35 और टॉट हैंड की स्पीड तो 100 के नियर अबाउट 100 थी।
1: अरे वाह। तो फिर इससे जॉब मिल गया?
2: जॉब ऐसा हुआ कि एक पद था चकबंदी विभाग में, एक रिक्त पद था, इसके अगेंस्ट 64 जो है स्टूडेंट जो है DM झांसी ने बुलाए थे।
1: ओके।
2: तो सभी लड़कों का जो है मुन्ने कहा कि पहले रिटर्न लेंगे, रिटर्न लिया तो कुछ उसमें सॉर्ट आउट हो गए।

0: इसके बाद जो लोग बचे उनका जो डिक्टेशन और वो टाइपिंग के लिए चौधरी थे एक इंस्ट्रक्टर आईटीआई झांसी के, चौधरी जी को बुलाया, उनने डिक्टेशन दी सबको, डिक्टेशन दी। डिक्टेशन के बाद ये हुआ कि अब उतनी टाइपिंग मशीनें थी नहीं जितने लड़के रह गए थे उस डिपार्टमेंट में भी नहीं थी। डीएम साहब को फ़ोन करके चौधरी साहब ने ये पूछा कि सर टाइपिंग मशीन है तो इतनी है नहीं, तो फिर क्या करूं, कैसे इनकी शुद्धता जांचूं कि इनने डिक्टेशन सही लिखा है या नहीं। तो उनने कहा आप हिंदी में हाथ से उनको जो है लिखने का एक फार्म दे दो, एक किताब दे दो, उस पर कॉपी दे दो, उस पर जो शॉर्ट हैंड लिखी है उसका हिंदी अनुवाद करके दे, हर कैंडिडेट दे। तो उसका हिंदी अनुवाद सब लोगों ने किया और फिर डीएम साहब का फ़ोन आया कि मैं आज ही रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा, कल नहीं, शाम के 5 बजे के बाद जो है हर स्टूडेंट अपना रिजल्ट वहाँ देखे जो है ऑफिस के उस पर
1: जी,
0: और वो डाक से भी उनके पते पर भेजे जाएंगे रजिस्टर लेटर। मैंने उस दिन देखा कि 64 लड़कों में मेरा अकेला सिलेक्शन हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो रजिस्टर डाक से मेरे घर के पते पे भी जब जो है कॉल लेटर पहुंच गया, अपॉइंटमेंट लेटर, और जब मैंने उसको देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलो मेरी मेहनत कामयाब हो गई।
1: बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सिर्फ ना हमारे खुशी की बात है बल्कि पूरा परिवार भी बहुत खुश हुआ होगा आपका।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि एक जॉब लगना तो इसका परिचायक है कि आपने पढ़ाई भी अच्छे से की है और आपने एक हार्ड वर्किंग है
0: जी।
1: तो इस प्रकार से आपने कौन से पद पे आपका चयन हुआ?
0: मेरा पद स्टेनोग्राफर पे हुआ था, हिंदी स्टेनोग्राफर
1: जी। आगे की यात्रा कैसी रही है?
0: आगे की यात्रा ऐसी रही कि मैंने हमेशा जो है जो क्योंकि स्टेनोग्राफर का पद ऐसा है कि अपने बॉस की ही एक बात माननी है, बकाया किसी के अंडर में नहीं है, वो ओनली एक बॉस है उसका, उसी के अंडर में। तो उस चीज को मैंने अपने जो है रिटायरमेंट तक फॉलो किया। अगर उनने कहा सुबह 6 बजे आना है तो 6 बजे 5 मिनट पहले, और अनुशासन में तो रहना ही था, टाइम के पंक्चुअल, रेगुलर एंड पंक्चुअल, अनुशासित तो रहना ही है, सरकारी नौकरी है।
1: इसमें जैसे कोई भी कार्य में जीवन में अभी बहुत सारे होता है, ऐसे हमारे सुन रहे होंगे जो युवा होंगे जिनकी जॉब लगी होगी या वो काम कर रहे होंगे
0: जी,
1: तो कौन कौन से वो गुण आप बताना चाहेंगे उन्हें कि जिनको धारण करने से
0: जी
1: कार्य में जीवन अच्छा रहे?
0: सरकारी कार्य में सबसे जो अच्छा गुण है वो है कि आपको अगर जो है छुट्टी पे जाना है तो आप 2 दिन पहले अप्लाई करिए, छुट्टी लीजिए, परमिशन मिले तभी जाइए। अगर जो है सरकारी नौकर 24 घंटे का नौकर होता है, उसे किसी भी समय बुलाया जा सकता है
1: जी,
0: आप डिसओबे नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। आपको अपनी जो नौकरी है सरकारी उसको जो है बनाए रखना है, उससे जो है दूसरों को प्रेरणा मिलनी है, तो आपको जो है अनुशासन में और आज्ञाकारी रहना,
1: आज्ञाकारी बनना बहुत इम्पोर्टेंट,
0: बहुत इम्पोर्टेंट।
1: और कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो?
0: और कोई ऐसी बात है कि किसी को जो है सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी को धोखा मत देना।
1: ओके।
0: क्योंकि चकबंदी विभाग ऐसा विभाग रहा कि इससे जो है गरीब से गरीब किसान जुड़ा है, और गरीब किसान जो है किस तरह से मेहनत से जो है खेती करता है, फसल उगाता है, अगर किसान नहीं है तो देश नहीं
1: आधारित है।
0: हाँ, तो ये भारत कृषि प्रधान देश है, और जो है चकबंदी विभाग ऐसा है कि जो चकबंदी विभाग करता है वो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी नहीं कर सकता, वो चीज है। जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण ये है किसी विलेज में आपके 4 खेत, चकबंदी विभाग एक ऐसा विभाग है कि जो चारों खेतों को आपको एक जगह बना देगा
1: जी,
0: वहाँ आप ट्यूबवेल लगाएं, ट्रैक्टर लगाएं, यानी सारी जो है कृषि पंप लगाएं, कुछ भी लगाएं, इससे आप कृषि की उन्नति कर सकते
1: जी,
0: और प्रभु भी चाहे तो आपके 4 खेत एक जगह नहीं कर सकते।
1: किसानों के जीवन की उन्नति के लिए बहुत काफी प्रभावशाली होता है।
0: चकबंदी विभाग ने जो उन्नति आई है, जो कृषि की उन्नति, ये कंसोलिडेशन एक्ट 1953 में बना था, और जो है पूर्व मेरठ से पश्चिम से चकबंदी शुरू हुई, और इस समय चकबंदी जो है मतलब लास्ट स्टेज पे है, पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी हो चुकी है।
1: ओके।
0: कुछ जो है तहसीलें रह गई जहाँ जो है सेकंड लॉट के जो है गांव में लोग बाग जो है उससे प्रेरित होके चकबंदी अपना रहे कि भाई हमारा गांव क्यों छूट गया, हमारे गांव में भी चकबंदी होना चाहिए। कुछ स्वार्थी किस्म के लोग हर गांव में हैं, जो गांव सभा की जमीन पर कब्जा किए हैं, वो नहीं चाहते कि चकबंदी हो। वो जानते हैं कि चकबंदी होगी तो जो हमने 10 एकड़ जमीन जो है गांव सभा की जोत रखी है वो निकल जाएगी। तो ऐसे लोग जो है चकबंदी का विरोध करते हैं, लेकिन मोस्टली 95-98% लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो, उससे खलिहान के लिए, खेल के मैदान के लिए, स्कूल के लिए, चारागाह के लिए, युवक मंगल दल के लिए, चक रोड के लिए, नालियों के लिए, रोड, ये सारी चीजें, चकबंदी जिस गांव में हो गई वहां रोड बन गए हैं, नालियां बन गई हैं और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, हरित क्रांति आ गई है।
1: बहुत अच्छा हुआ कि आपने बताया, हमारे श्रोता में बहुत सारे किसान भी हैं
0: जी
1: जिनके जमीन पे अगर चकबंदी नहीं होगी तो इसका वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं
0: जी।
1: ये भी एक अच्छा पड़ाव आपने अपने जीवन का जिया, जहाँ पर आपने पहले तो पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद ये कार्यमय जीवन, जहाँ पर जनता की सेवा
0: जी
1: तो है ही आपका पैसा, जहाँ पर आपने किसानों को बहुत फायदा पहुँचाया, उनके कार्य को आसान किया, सारी जमीन को एक जगह पर पहुंचाई ताकि वो बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सके। तो दोस्तों हमारे साथ बने हुए हैं दीनदयाल वर्मा जी, और आपने एक ओएसडी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में सेवाएं दी चकबंदी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में, और आज रेडियो मधुबन पर हमारे से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन अभी समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और एक गीत सुनाएंगे आपको, और फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन पर, जहाँ हम उनसे बातचीत करेंगे उनके परिवार के बारे में, कि परिवार के अंदर कौन सी वो मूल्य हैं जिनको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम परिवार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने में कैसे मददगार बन सकते हैं पेरेंट के रूप में, इन सब चीज़ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए प्यारा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए कार्यक्रम सलामी जिंदगी।

0: प्रणव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: इतना तो हम कर सकते हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.8 FM रेडियो मधुबन, और रेडियो मधुबन पर अभी कार्यक्रम चल रहा है सलामे जिंदगी, जहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व से बातचीत कर रहे थे जिन्होंने अपने कार्यमय जीवन में बहुत सारे किसानों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला। और अब आइए आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दीनदयाल जी, जैसे आप बता रहे थे कि एक कार्यमय जीवन के बारे में बताया, बचपन और युवा काल के बारे में आपने बताया, ये आगे चलेंगे और जानना चाहेंगे कि आपका विवाह कब हुआ, किससे विवाह हुआ?
4: मेरा विवाह पुष्पा देवी से हुआ था, ग्राम सोमई, जिला जालौन से।
3: जी, वो कौन से सन में आपका विवाह हुआ?
4: हमारा विवाह अंडर एज, मतलब जो आजकल की उसके हिसाब से, मैं क्लास 9th में पढ़ता था उस समय मेरी शादी हो गई।
3: कितनी उम्र थी आपकी
4: उस समय? मेरी उम्र 14 वर्ष। मेरा विवाह हुआ था 1970 में।
3: धर्म पत्नी थी वो, कितने वर्ष की थी?
4: धर्म पत्नी की उम्र 11 वर्ष।
3: तो उस समय पे काफी कम उम्र में माता पिता शादी के रस्मों को निभा देते थे।
4: जी जी।
3: तो आपने उसके बाद पढ़ाई जारी रखी?
4: जी, पढ़ाई जारी रखी
3: जी, और LLB तक पढ़ाई किया।
4: जी जी।
3: और आपकी धर्मपत्नी ने कितने पढ़ाई की?
4: हमारी धर्मपत्नी साक्षर है, हस्ताक्षर कर लेती है, थोड़ी हिंदी पढ़ लेती है।
3: हिंदी पढ़ लेती है।
4: लेकिन मतलब स्कूल में उनने शिक्षा ग्रहण नहीं की, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट स्कूल का मिला, माता पिता गरीब थे, नहीं पढ़ा पा।
3: तो उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ बताइए कि क्या आपके जीवन में एक सकारात्मक योगदान उनका रहा?
4: हमारे सकारात्मक जीवन में उनका योगदान ये रहा, उन्होंने कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं,

0: बच्चों को बड़े प्यार से दुलार से पाला बड़ा किया। उस समय थोड़ा सा ही वेतन मिलता था, उसी वेतन में उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाया और अच्छे स्कूल में मैंने शिक्षा दिलाई, इंग्लिश स्कूल में
1: बच्चों को।
0: हाँ, मेरा बेटा इस समय गुड़गांव हरियाणा में पोस्टेड है और वो जीएसटी डिपार्टमेंट का हेड है, एसजीएसटी और सीजीएसटी का हेड है गुड़गांव में।
1: कितने बच्चे हैं आपके?
0: हमारा एक बेटा, तीन बेटियां हैं।
1: जैसे परिवार, पारिवारिक जीवन की हम बात करें,
0: जी जी,
1: कौन से ऐसे गुण हैं
0: जी
1: जो, चाहे हम युगल की बात करें, पति पत्नी के बीच में बेहतर समन्वय बना सकते हैं, कौन से ऐसे गुण होने?
0: एक पहली, बच्चों को सबसे अच्छा गुण तो ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को बुराइयों से दूर रखें, गलत जो है व्यसन ना होने दें, उन्हें जो है गुटखा पान तंबाकू ये सब चीज़ों से दूर रखें और शराब का तो सेवन बिल्कुल ना करने दें उन्हें।
1: ओके।
0: और पढ़ने की प्रवृत्ति उनमें डालें।
1: कैसे डालें?
0: पढ़ने की प्रवृत्ति ऐसे डालें, उन्हें ये शिक्षा दें कि बेटा ऐसा है, श्रम करके कोई व्यक्ति धनवान नहीं बन पाया, मतलब हावड़ा चला के सोचे कि हम टाटा बिरला बन जाए, पढ़ोगे दिमाग से आप आगे बढ़ोगे। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कही थी। हथियार है ऐसा जो है, यंत्र है जिससे जो है आप अपने जीवन में जो है आप आगे बढ़ सकती हो, समाज को आगे बढ़ा सकती हो। आप शिक्षित होगे, अगर माँ शिक्षित है पूरा परिवार पढ़ता है, पिता को इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरी पत्नी ने अशिक्षित होते हुए भी अपने बच्चों को जो है पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा दिलाई और इंजीनियरिंग करवाई। मेरे बेटे ने जो है NIT मैंगलोर से इंजीनियरिंग, उस समय मैंने GPF से सारा लोन लेके बेटे की शिक्षा करवाई। ये है कि बच्चों को व्यसनों से दूर रखें और इतना अनुशासित रखें कि वो जो है वो इतना भी उन पे दबाव मत डालें कि वो डिप्रेस हो जाएं, कि वो बगावत पे उतर आएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
1: जी, मैंने संयम रखना है,
0: संयम रखना
1: नियम
0: है,
1: और संयम दोनों साथ में चल रहे हैं,
0: नियम और संयम दोनों साथ में चल रहे हैं, तभी जो है बच्चे आगे बढ़ पाएंगे।
1: इसी जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों को जब बड़ा करते हैं या बालिकाओं को बड़ा करते हैं, जैसे आपने बताया कि, तो जैसे बच्चियों को बड़ा करना अपने आप में एक, क्योंकि बच्चियां जो है समाज का निर्माण करती हैं, बच्चे जन्म होते हैं उनको बड़ा करना माँ का बहुत प्रभाव रहता है।
0: जी हाँ।
1: पर बच्चियों को बड़ा करने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है?
0: बच्चियों को बड़ा करने के लिए मुख्य रूप से माँ का योगदान ज्यादा रहता है कि हमारी बेटी किस किस कहाँ जा रही है, उस पर नजर समय से आ रही है, किस से बात करती है, पढ़ने स्कूल जा रही है या नहीं जा रही है, या क्लास बंक कर रही है, ये सब सहेलियों से भी पता चल जाता है। तो माँ का रोल ज्यादा होता है, पिता तो अपना ड्यूटी पे निकल गया 10 बजे, शाम के 5 बजे 6 बजे आया।
1: तो बच्चियों की शिक्षा का क्या महत्व?
0: बच्चियों की शिक्षा का महत्व ये है कि अगर बच्ची पढ़ती है तो पूरा जो है परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार। अगर आपकी बच्ची जो है अशिक्षित है तो वो अपने जीवन में ना तो अपनी संतान को पढ़ा सकती है और ना अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो इसलिए बच्चियों का साक्षर और उनका पढ़ाई योगदान बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ी होंगी तो पूरा देश पढ़ेगा, पूरा राष्ट्र पढ़ेगा।
1: और जैसे आजकल समानता की बात होती है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए।
0: जी जी।
1: और आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं बालिकाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं।
0: जी।
1: चाहे वो पायलट बन रही हो या जहाज चला रही हो।
0: जी।
1: युद्ध में भी
0: उनको
1: स्थान दिया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: इस बारे में सरकार ने जो कदम उठाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मतलब इसमें ये है कि सरकार का योगदान बिल्कुल सराहनीय है और ऐसे कार्य के लिए सरकार की भी तारीफ की जानी चाहिए कि जो बेटियों को आगे बढ़ा रही है, उन्हें समान अवसर मिल रहे हैं, समान जो है खेल के क्षेत्र में देखो, चाहे तोसल में, चाहे केमिकल में, चाहे एयरो स्पेस में, तो ये तो बराबरी लड़कियों को मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं
0: जी,
1: उन पर आप हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं।
0: जी जी।
1: एक बात और जानना चाहेंगे
0: जी,
1: कि पारिवारिक जीवन में जैसे जो हम बड़े होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में आपस में भी मनमुटाव हो जाता है या फिर अनबन हो जाती है, मतों का पार्थक्य हो जाता है, चाहे वो माता पिता और बच्चों के बीच में हो या आपस में हो जाता है कभी के पति पत्नी के बीच में, इन सब चीज़ों को कैसे हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं?
0: इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे सरल तरीका है, यदि आपको कोई भला बुरा कह रहा है तो उस समय आप शांत हो जाइए, क्योंकि आप एक कहेंगे वो दो कहेगा, अनावश्यक वार्तालाप पड़ेगा और मुकदमा कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। और मैं चकबंदी जैसे विभाग में जहां मुकदमों की भरमार रहती है, किसी यानी मर्डर भी होते हैं तो उनका भी सॉल्यूशन समझौता होता है आखिर में। क्रिमिनल केसेस में भी यही देखा है और रेवेन्यू में भी यही रहा है। किसानों की खेतों की लड़ाई, उनने कहा दो बिस्वा मेरी आपने दबा ली, मैंने मुकदमा कर दिया, आप सामने आया, अच्छा मैं देखता हूँ आप आपने लाठी चला दी, एक आदमी मर्डर हो गया, पता चला दोनों की जमीन बिक गई, दोनों बर्बाद हो गए। तो शांति प्रे जीवन बहुत जरूरी है आगे बढ़ने।
1: शांति की आपने बात की और आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं ऐसा मैंने महसूस किया है, तो आध्यात्मिकता का क्या स्थान है परिवार संचालन में?
0: आध्यात्मिकता का ये स्थान है कि अगर आत्मी आध्यात्मिक जीवन अपना रहा तो वो दुर्व्यसनों की तरफ नहीं, बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा, कुरीतियों को नहीं अपनाएगा और कोशिश ये करेगा कि हम प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु हमें जो है बुरे कर्मों को करने की इजाज़त नहीं देगा, हम जो है उसके मन में ये भय रहेगा, जब भय रहेगा तो गलत कामों की ओर पर अग्रसर नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दीनदयाल वर्मा जी से जो झांसी उत्तर प्रदेश से आज हमारे साथ मौजूद है और उनके व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन पर बातचीत की, गुणों के बारे में बातचीत की, धारणाओं के बारे में बातचीत की, शांति के ऊपर काफ़ी महत्व दिया उन्होंने कि कैसे शांति जो है हमारे जीवन में अनावश्यक एंगेजमेंट से बचा सकती है, कि अगर हम कोई ऐसे परिस्थिति हो जहाँ पर थोड़ा सा हमारे अंदर गुस्सा आ रहा हो, तनाव आ रहा हो और वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा संयम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें छोटी हो जाएंगी और बड़े ऐसा कुछ हो जाए जिससे हमको फिर और भी धन और समय देकर के उसको समाधान करना पड़े, उससे हम बच सकते हैं। तो ऐसी ही बातचीत जारी रहेगी और फिर लौट कर आएंगे जब हम बातचीत करेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन में अपना जो वर्तमान समय है, जो वार्धक्य जीवन है, उसको कैसे हम बेटर मैनेज करें, कैसे उसको सेवाओं में लगाएं, कैसे समाज से और दुआएं कमाने का माध्यम बना सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। फिर लौट कर आएंगे 107.8 FM रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ये सुंदर सगी पेश है आपके लिए।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो आवाज

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह लीजिए
1: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है सलामी जिंदगी, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। और आज हमारे साथ इस रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर मौजूद हैं दीनदयाल वर्मा जी, जिनके एक प्रेरणादायक जीवन पर हम बातचीत कर रहे हैं। उनके जीवन के अलग अलग पहलू, उम्र के अलग अलग समयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। और अभी हम पहुंचे हैं उनके वर्तमान जीवन पर, जहां पर करीब 67 ईयर आयु है उनकी। और उनके हाव भाव से महसूस ही नहीं होता ये उम्र का कोई प्रभाव। तो सर, जैसे हम आपको देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा अपने स्वस्थ जीवन मेंटेन करा हुआ है। आदमी को जब वो बुजुर्ग होता है, व्यक्ति को उस समय कौन सी ऐसी बातें वो जीवन में ध्यान रखे, जब वो बुजुर्ग होते हैं तो उनका जीवन बेहतर रहे, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में हो या आर्थिक रूप से हो। आप क्या करते हैं, कैसा रूटीन रहता है आपका दिन भर का?
2: मेरा रूटीन ये है कि सुबह 5 बजे उठना, सुबह उठ के जो है फ्रेश होके टहलने जाना है, एक घंटे टहलने के बाद घर आके थोड़ा व्यायाम करना, इसके बाद जो है स्नान करना।
1: ओके।
2: स्नान के बाद पत्नी चाय दे देती हैं और मेरे हाथ में अखबार होता है। अखबार से छोटी एक एक लाइन पढ़ता हूँ करीब 2 घंटे। अखबार पढ़ने के बाद नाश्ते का टाइम आ जाता है। नाश्ते में अंकुरित जो है दाल, अंकुरित चना, मौसमी फल, पपीता है, अमरूद है, केला है
1: जी,
2: और रात में बादाम डाल दिए, काजू डाल दिए और अखरोट डाल दिए, भिगो दिया, किशमिश डाल दी, इनका जो है नाश्ता कर लेना
1: जी।
2: इसके बाद जो है दिन में कहीं किसी का फोन आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई या कोई हमारे गुरु हैं उनके पास एक आध घंटे के लिए मिलने चला जाता हूँ। 2 घंटे करीब 1.5 घंटे आराम कर लिया, दोपहर 1:30-2 बजे खाना खाया, इसके बाद बस टीवी में थोड़ा समाचार सुन लिए
1: जी,
2: या कोई देश विदेश की गतिविधियां हैं टीवी ऑन कर ली, उनको समाचार देख लिए,
1: जानकारी कर,
2: इसके बाद 1.5 घंटे आराम किया और शाम के 5 बजे हमारे यहाँ एक पंचतंत्र वो गजानन पार्क है केकेपुरी कॉलोनी झांसी में, तो वहाँ शाम के जो है 1 घंटे फिर सैर की।
1: ओके।
2: 1 घंटे सैर करने के बाद शाम हो गई, प्रभु का स्मरण किया और 7:30-8 बजे के बीच में खाना खाया और टीवी देखी, 10 बजे जो है सो जाना।
1: तो एक संयमित जीवन आपने अपनी रूटीन सेट कर रखी है
2: जी जी,
1: जहाँ पर हर चीज का स्थान है, चाहे ऐसे जो स्वास्थ्य को मेंटेन रखे ऐसा अच्छा भोजन अंकुरित हो या अन्य चीजें, और व्यायाम सुबह और शाम दोनों समय पे, साथ साथ में बुद्धि को तेज रखने के लिए थोड़ा बहुत रीडिंग, ये सारी चीजें आप करते हैं
2: जी।
1: व्यसन कई लोग अपनाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि उनका जीवन इससे काफी प्रभावित हो जाता है, कई लोग युवा काल में प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोगों को ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स होती है
2: जी।
1: आपका जीवन कैसा रहा और व्यसन के बारे में क्या राय है?
2: व्यसन के बारे में ये रहा, मैंने किसी जो है तंबाकू तो मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, और जैसे सिगरेट, शराब या कोई ऐसी चीज है, किसी पार्टी में चला गया ऑफिसर्स के यहाँ, जहाँ ये न लगे कि मैं जो है अनपढ़ हूँ या उनकी पार्टी को अटेंड करने में अक्षम हूँ, मैंने उसका सेवन किया लेकिन मैंने आदत में नहीं अपनाया कभी
1: जी,
2: कि नहीं कि जो है एक जगह गए वहाँ पार्टी में हमने ये एंजॉय किया तो फिर आगे हम वो घर पे भी व्यवस्था कर ले, हालांकि चाहते तो हम घर पे भी वो व्यवस्थाएं कर देते, लेकिन फिर मैंने उनको किया नहीं कि हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा, एंजॉय किया लाइफ को लेकिन जो है उसको
1: व्यसन में नहीं कन्वर्ट,
2: व्यसन में परिवर्तन नहीं होने दिया
1: जी
2: लाइफ में
1: जी जी। आपको लगता है कि जो जो लोग व्यसन करते हैं और आपकी उम्र के हैं और आप में आपके अंदर फर्क?
2: हाँ, बहुत सारे मेरे साथी हैं जो मुझसे अंडर एज में ही व्यसनों हो गए या जिन्होंने विस्की या वाइन को अपना लिया, तंबाकू गुटखा अपना लिया, तो कुछ कैंसर के जो है पीड़ित हो गए, कुछ अल्पायु में भी पूरी आयु किए बिना ही
1: चले गए
2: अपने मतलब दुर्व्यसनों की वजह से ही उनका जो है जीवन सुखमय नहीं बीता।
1: क्या कहना चाहेंगे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको व्यसन के बारे में?
2: व्यसन के बारे में मेरा यही कहना है सभी श्रोताओं से कि इन सब बुराइयों से दूर रहें। गुटखा पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब, इनको अगर जीवन में आदत के रूप में ना रहने दें, हाँ कभी मजबूरी में किसी के दबाव में कोई चीज़ का जो है सेवन करना पड़े तो कर लीजिए, उसमें कोई नहीं है, लेकिन उसको अपने जीवन में जो है अपने आदत में शामिल ना करिए।
1: जितना हो सके हम बचे रहें और इन चीज़ों से दूर रहें
2: जी।
1: और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी के दबाव में भी आवश्यकता नहीं है सेवन करने की, कहीं ना कहीं हमारी धारणाएं लोगों को प्रभावित करती हैं। हमारा उच्च जीवन देख करके लोगों को कई बार हिम्मत भी नहीं होती कि हम वो हमको कहें कि आप ये करो, और कई बार हम अपनी धारणाओं के बारे में थोड़ा सा सम्मानपूर्वक उनके आग्रह को ठुकरा सकते हैं ये बात कह के कि ये चीज़ें मुझे नुकसान पहुँचाती हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने कुछ बहाना बना सकते कि मैंने ट्राई किया था पर मेरा शरीर दिक्कत आ जाती है,
2: सही है
1: ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो रही व्यसन की बात, और आपने रूटीन के बारे में भी बताया।
2: हाँ।
1: मन का स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करते हैं?
2: मन का स्वास्थ्य सुरक्षित या उसको मेंटेन करने के लिए दो ही चीजें हैं, या तो आप अच्छा साहित्य पढ़िए। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे दिमाग में जो है गलत चीजें अपने आप प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और दूसरा ये है कि आप मतलब अच्छे लोगों से ही संपर्क रखना है।
1: ओके।
2: अच्छे लोगों से संपर्क रखना है तो हमारे यहाँ जो है हमारे पूर्वज कहा करते थे, हम अपनी दुकान में बैठा करते थे तो हमारे पिताजी को कहते हैं संगत ही गुड़ उपजे, संगत ही गुड़ जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाएं। तो यह संगत का असर है,
1: बेहतर से जो लोग हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऐसे लोगों से ही हम अपना व्यवहार रखें।
2: तो आपका समय भी पास होगा, आपकी जो है अवगुण नहीं आ पाएंगे, आपकी जो है संगति खराब नहीं हो पाएगी।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए रेडियो मधुबन पर, आज अपने अपने जीवन के बारे में जो भी बातें शेयर की
2: जी।
1: एक साधारण ग्रामीण परिवेश में आपने जन्म लिया, लेकिन अपने पुरुषार्थ से आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करके आपने सरकारी नौकरी प्राप्त की, और पारिवारिक जीवन में भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोई भी व्यसन आप ना लें ताकि बच्चों को भी अंदर ये सब चीज़ें ना आए। और स्वास्थ्य के बारे में भी आपने बहुत ही अच्छी धारणाएं बना रखी हैं कि कैसे आप एक्सरसाइज करते हैं और मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ते हैं जिससे आप अपना जीवन बेहतर बना पाते हैं
2: जी।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और आज हमारे साथ बने हुए दीनदयाल वर्मा जी। दीनदयाल जी, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को?
2: दोस्तों को हमारा मैसेज यही है कि वो अपने जीवन में आध्यात्म को लेके चलेंगे तो बुराइयों से दूर रहेंगे, और किसी ना किसी प्रभु की आराधना अवश्य करें। किसी अच्छे बड़े लोग रहे हैं जैसे B.R. अम्बेडकर रहे, तो उन्हें ही कहा कि शिक्षा ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने का, हम अपने बच्चों को बढ़ा सकते, खुद बढ़ा सकते, कोई मेहनत मजदूरी करके अच्छा इंसान नहीं बन पाया है। तो मेहनत का अपनी जगह अलग रोल है, क्योंकि मेहनत नहीं करेगा किसान तो हम लोग खाएंगे क्या
1: जी? बिल्कुल।
2: लेकिन कहने का मतलब है कि अगर वो किसान आज ऐसे फार्मर हैं जो अपनी खेती भी कर रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और उनके बच्चे जो है वैज्ञानिक और यानी बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई जो है लेबर क्लास का आदमी जो है, बहुत सारे रिक्शे वालों के बच्चे जो है IAS PCS और वैज्ञानिक हैं। मेरे खुद जो है रिश्ते में एक दो ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे जो है बहुत आगे
1: अपने तो, पुरुषार्थ के बल पे और बहुत क्षमता के बल पे पहुंच गया है। तो मतलब कि ये है कि कोई परिस्थिति में हमको हार नहीं मानना है,
2: और
1: आगे बढ़ने के लिए अपना एक प्रयास जारी रखना।
2: वो कहते हैं ना मतलब सफलता ही जो है कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम प्राप्त ना कर सकें अगर हम उसका प्रयास करें। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ।
1: तो दोस्तों आपने बहुत ही अच्छी प्रेरणा ली होगी आज कार्यक्रम सलामी जिंदगी से। हमारे साथ दीनदयाल वर्मा जी थे उत्तर प्रदेश झांसी से, और सलामी जिंदगी के इस एपिसोड में उन्होंने अपने जीवन के चार अलग अलग पहलुओं पर बात की, चाहे वो उनका बचपन, युवा काल, वैवाहिक जीवन और वर्तमान जीवन। सर, कुछ ऐसे श्रोता सुन रहे होंगे जो आपकी उम्र के होंगे,
2: हाँ,
1: तो उनको उन्होंने कई लोग रिटायरमेंट लिए होंगे, कुछ लोग बिजनेस से होंगे, किसी को शारीरिक चुनौतियाँ होंगी, मानसिक चुनौतियाँ होंगी, उन्हें क्या कहना?
2: वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको हर एक को इसको जो है इससे गुजरना
1: जी,
2: और इसको जो है चाहे हंस के गुजार लो चाहे रो के गुजार लो। हंस के गुजारोगे तो आपका जो है जीवन सुखमय कटेगा, और बीमारियां ऐसी चीज है कि व्याधियां तो हर व्यक्ति को घेर लेती हैं बुढ़ापे में
1: जी।
2: कोशिश ये करिए कि आप उन व्यसनों से दूर रहने वाली बीमारियों से ना घिरें। दूसरा पहलू ये है, आप बुराइयों से दूर तभी रह सकते हैं जब आप बुरे लोगों के बीच में ना पहुंचे, उनसे दूरी बना के रखें कि किसी भी परिस्थिति में जीवन को कठिन परिस्थितियों में रत रहते हुए भी शांति का परिचय दें, कभी क्रोध ना करें, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, हंसमुख जीवन जिए, उल्लासपूर्वक किसी कोशिश करें कि किसी को आपकी वाणी से कष्ट ना हो।
1: ये तो एकदम दुआओं कमाने का रास्ता आपने बताया है सबको, बहुत ही अच्छी प्रेरणाएं आपने समाज के हर वर्ग को दी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारे और हमारे सभी श्रोताओं को आपने अपने जीवन के उन छोटे छोटे उसूलों से
2: जी
1: प्रेरित किया, जिसको धारण करके वो भी अपना जीवन आपके जैसा श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो दोस्तों, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कार्यक्रम सलामी जिंदगी में।

0: हूँ। आप सुन रहे हैं आपकी जानी पहचानी आवाज और आपका होस्ट और आज के शो का आपका हमेशा का दोस्त और आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून। जुनून कुछ कर गुजरने का, कुछ कर जाने का और ऐसा कुछ जिससे कि समाज में आता है चेंज। चेंज जिसके लिए हम हमेशा ही तरसते हैं, हमेशा तड़पते हैं। और एक इंसान की खूबी होती है कि वो हमेशा चाहता है चेंज। चेंज बट होना चाहिए पॉजिटिव। तो ऐसे चेंज के पॉजिटिव बनाने वाले और ऐसे पॉजिटिव माहौल को तैयार करने वाले कुछ लोग हमारे बीच में हैं जिन्हें हम हमारे शो में कहते हैं जुनूनी। तो ऐसे ही कुछ जुनून की एक शख्सियत हैं जिनको हमने ढूंढा करौली में। करौली के हिंडौन शहर से आप आती हैं। आप हैं श्रीमती अनिता मीना जी। अनिता जी जो हैं वो जुनूनी हैं और काम कर रही हैं विमेन राइट्स के लिए और आप एम्बेसडर हैं राजस्थान सरकार की महिला अधिकारिता विभाग से और आप इसके साथ साथ सेवारत हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में। आपको मैंने देखा काम करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव हमारी बेटियों और हमारी लड़कियों और हमारी महिलाओं के लिए और आधी आबादी को उसका आधा हक दिलवाने के लिए आज भी प्रयासरत हैं। मैं दुआ करूंगा कि उनका आधी जमीन ही नहीं, उनका आधा आसमान भी वो लें और भारतीय वायुसेना में भी मैं कहता हूँ आधी पायलट जो है महिलाएं होनी चाहिए। आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या जुनून है और हमारे शो में हम उन करते हैं उनका इस्तकबाल, उनका स्वागत। वेलकम अनिता जी।
1: जी नमस्ते नमस्ते।
0: तो अनिता जी, आपका जुनून जो है वो क्या है? क्यों आपको मैंने जुनूनी मानते हैं लोग आपको?
1: जी सर, इसको जुनूनी मानते हैं तो ये एक तरीके से मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगी कि मेरे को मेरे जो काम है उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो
0: जी
1: इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो महिला है, हमारी जो बहनें हैं, तो वो
0: जी
1: आज भी ग्रामीण जो क्षेत्र है, रूरल एरिया है, उसके अंदर अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रही हैं। तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आगे लाना इसका उद्देश्य है। इसमें भावनात्मक तौर पे, मेंटली तौर पे और जैसे फाइनेंशियल तौर पे, कहीं ना कहीं उनको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये ही इस मेरा जो ये संगठन है, अस्तित्व की उड़ान, तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जो आधी आबादी है वो क्यों खुद को मतलब पीछे समझती चली आ रही है। कहीं ना कहीं उसको जागरूक करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य को लेके भी जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर महिला अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेगी तो वो कैसे अपने परिवार को संभालेगी, अपने बच्चों को संभालेगी और खुद अपना ध्यान रख पाएगी। अगर वो स्वस्थ नहीं होगी तो कैसे अपने बच्चे हैं उनके प्रति वो अवेयर रह पाएगी। तो एक महिला को सबसे प्रथम मैं ये मानती हूँ कि स्वस्थ होना जरूरी है। तो इसके लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, तो उसके लिए कई बार मुझे CLV लेनी पड़ती है या फिर कई बार जैसे टिपिकल कंडीशन होती है, लेकिन कुछ नहीं है, एक तरीके से सोच रखा है कि अपनी बहनों के लिए हम कुछ करें तो एक थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि होगी कि हम सोसाइटी के लिए अपनी जो साथ वाली जो वो बहनें जिनको की पूरी तरह से अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, वो केवल एक किचन तक ही
0: जी
1: खुद को सीमित रखे हुए हैं, उनको थोड़ा सा आगे लाने के लिए कोशिश है। तो
0: जी
1: मेन उद्देश्य ये है, महिला सशक्तिकरण। जी
0: ये आपका जो जुनून है इसकी शुरुआत कैसे हुई है आपकी जिंदगी में?
1: हाँ, मेरी जिंदगी में 2019 से मैंने इसको स्टार्ट किया था। काफी उस टाइम पे सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहती थी मैं, तो वहां पे काफी सारे कार्यक्रम होते थे। वहां मैं देखती थी कि महिला प्रतिनिधि के तौर पे कोई भी महिला वहां पर नहीं आती है। दूसरी बात, मैं आदिवासी समाज से हूँ, आदिवासी मीणा समाज से, तो
0: जी
1: हमारी जो एक जाजम प्रथा होती है वहां पर पंच पटेल फैसले लेते हैं, तो वहां
0: जी
1: पर अब तक महिलाओं को उस जाजम पे चढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। चाहे वो फैसले महिला हित में ही ले, बच्ची के साथ में किसी प्रकार का कोई प्रकरण चल रहा है तो उस मैटर में भी केवल हमारे जो पंच भाई हैं वो ही फैसले लेते आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि जैसे अब समाज बदलाव की ओर है, कहीं हमारी बच्ची के साथ में किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म जैसी कोई बात हो जाती है या किसी भी तरह का कोई टिपिकल वो मैटर हो जाता है, तो ऐसे में महिलाओं को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्ची एक माँ से, एक बहन से और एक जो महिला कैंडिडेट है उससे थोड़ा सा खुल के कह पाएगी। तो वहां पर मतलब मैंने जाना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि जैसे ये मुद्दा है, इसी तरीके से और भी कई मुद्दे हैं, वहां महिलाओं को थोड़ा सा आगे आना चाहिए। एक जो छवि है कि तीए की बैठक में झुंड का झुंड बना के महिलाएं चली जाती हैं, गीत संगीत और केवल सौंदर्य प्रतियोगिता में हमारी बहनें हैं वो आगे आती है, तो क्यों नहीं कुछ जो जरूरी जो मुद्दे हैं उनमें भी महिलाएं आगे आए। तो ये सोच के लगा कि अपनी बहनों को थोड़ा सा जागरूक करें। सब कुछ उसके अंदर ही है, सारी शक्तियां उसके अंदर ही निहित है, बस उनको थोड़ा सा आगे लाने की आवश्यकता है। किसी न किसी को तो आगे आना होगा, तो क्यों ना मैं इसके लिए प्रयास करूं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, एक महिला हूँ, एक समाज की एक कैंडिडेट हूँ जिसमें महिलाएं अब तक पीछे रही। तो सर थोड़ा सा, कई बार जाजम पे भी मैं गई हूँ, हमारे समाज में होती है 5 जिलों की महापंचायतें होती हैं, 8 जिलों की महापंचायतें होती हैं, और इसकी शुरुआत मैंने अपनी ससुराल से ही की।
0: जी
1: ससुराल मेरा कटकड़ कटकड़ है, हिंडौन के जस्ट पास में। तो वहां पर
0: जी
1: 2020 में एक 2020 में हुई थी, एक पंचायत हुई थी, तो उसमें मैं गई और मैंने काफी सारे मुद्दे रखे हैं कि हमारे जो युवा वर्ग और हमारी जो महिलाएं, महिला कैंडिडेट है, उनको भी थोड़ा सा आप साथ में लेके चलोगे तो शायद हमारे समाज में एक अच्छा सुधारात्मक प्रयास हमको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी एक कोशिश की गई और लगा कि आत्मसंतुष्टि बहुत जरूरी है जब हम समाज के लिए, जब हम अपने इस वंचित वर्ग के लिए कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर
0: जी
1: एक एक सकारात्मकता आती है, एक संतोष पैदा होता है। जी सर।
0: जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपका जो अनुभव है, पिछले दिनों जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स आपने मुझे बताए।
1: जी।
0: मैं चूंकि मेरी परवरिश मेट्रोपॉलिटन में शहरों में हुई है और मैंने जीवन के
1: जी।
0: अपनी पोस्टिंग्स के अपने काम के दौरान भी बड़े शहरों में ही काम किया है, तो मुझे करौली
1: जी जी
0: जैसे
1: जी
0: एक पिछड़े हुए जिले में पहली बार आने का मौका मिला। और करौली में जब आपसे मुलाकात हुई तो मैंने कई सारे इंडिकेटर्स नोटिस किए। जैसे आपने मुझे एक इंडिकेटर बताया कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे कितनी महिलाएं स्कूटी से दिन में अपना पेट्रोल डलवाने आ रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है ना, जो
1: जी
0: सामान्यतः
1: जी
0: हम शहरों में देखते हैं। तो आपका
1: जी
0: मानना है,
1: जी
0: आपने देखा कि करौली में वो है ही नहीं, वो इंडिकेटर पे काम ही नहीं हुआ।
1: हाँ हाँ बिल्कुल ही नहीं
0: तो
1: हुआ।
0: वो एक इंडिकेटर है कि कितना वुमेन एम्पावर हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सौंदर्य नहीं, शौर्य के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आना चाहिए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: जाजम पे जब आप गए तो पंच पटेलों और पंचायत ने कैसे आपको देखा और कैसे उनके रुझान थे आपके प्रति और आपने कैसे उनको डील किया? कोई
1: हाँ जी
0: घटना
1: सर,
0: कोई कोई कोई
1: बिल्कुल।
0: घटना
1: हाँ
0: बताइए ना अपने अनुभव से।
1: हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, घटनाएं तो काफी हैं, बिल्कुल मैं बताना भी चाहूंगी आपको। जो फर्स्ट बार मैं गई 2020 में,
0: जी
1: तो मेरे सामने एक धर्म संकट पैदा हो गया, क्योंकि हमारे समाज में भी वही जो घूंघट प्रथा है वो चल रही है, बिल्कुल है ना।
0: जी जी
1: तो ये लगा कि मैं कैसे अपने विचार रखूंगी, तबीयत भी खराब हो गई थी 2 दिन
0: जी
1: पहले, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मेरे को जाना चाहिए। मैं गई तो
0: जी
1: स्कूटी से, वही हमारा जो परंपरागत जो जो पहनावा है सर, वो थोड़ा सा अलग है, उसमें 7 फुट का वो घाघरा होता है, लुगड़ी होती है, तो उन्हीं को पहन के मैं स्कूटी से गई, तो लोग इस तरीके से देखने लग गए कि जैसे किसी अजूबे को देखते हैं, क्योंकि वो फिट नहीं हो रही थी वो चीजें। वहां पे गई तो वहां पे भी रखा उन्होंने, लास्ट में मेरे को मौका दिया गया, उससे मैंने खुद ने ये कहा कि मैं भी अपने विचार रखना चाहती हूँ, तो उनको लगा कि भाई ये महिला जब आगे से कह रही है तो इसको देना चाहिए मौका। हर तरह के लोग
0: जी
1: होते हैं, जैसे बुजुर्ग वर्ग है वो तो आज भी थोड़ा सा यही समझता है कि ये कहाँ इसको, मतलब वही थोड़ा नेगेटिविटी आई उनके अंदर, कुछ वर्ड भी ऐसे बोले, लेकिन जो युवा वर्ग था साथ में, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, वो मौका मौका मिलना चाहिए, वो मेरे ससुराल के जस्ट पास ही था, तो वहां पर
0: जी
1: रखे, काफी सारे विचार रखे, हालांकि उनको सुना गया, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में तो अभी थोड़ा सा लगेगा टाइम। दोबारा फिर और 2-4 महापंचायतों में गई तो विरोध होना शुरू हो गया कि भाई अरे ये तो सरपंची का चुनाव लड़ेंगी। कहीं ना कहीं लोग जो कि राजनीति क्षेत्र में थोड़ा सा आगे आना चाहते हैं, तो उनको एक तरीके से ये लगा कि कहीं ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर तो तैयार ना हो रहा है, नहीं हो रही है, तो इस तरीके
0: जी
1: की चीजें आई। तो जब अगली 2-3-4 महापंचायतों में चली गई थी मैं, अगली
0: जी
1: महापंचायत मेरे ससुराल के पास ही हो रही थी, तो लोगों ने पहले ये सोच लिया कि नहीं, अनीता मैडम को नहीं आने देंगे। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ था, तो वहां से भी मेरे को उन्होंने, उन लोगों ने डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने फिर जो कुछ वहां के जो मैं वो थे एडमिन थे, उनसे मैंने ये कहा कि आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और केवल एक महिला आपके इस ग्रुप के अंदर जुड़ रही है, वो थोड़ी जागरूक है। पहली बात तो हमारी बहनें इतनी जागरूक नहीं है कि वो महापंचायतों में जाके अपने विचार रखें। सर ये बहुत शोचनीय विषय है कि इन इन सब्जेक्टों को है ना एकदम नॉनसेंस के समझा जाता है। तो मैंने कहा उनसे कि भाई एक महिला जब आगे आना चाहती है तो आप लोग उसको, मतलब उसे ग्रुप से निकाल देते हो। तो कुछ लोगों को लगा कि सच में ये चीज सही है, तो उन्होंने दोबारा फिर मेरे को जोड़ा। तो मैड़ी में, तो जो मेरे ससुराल के पास मैड़ी गांव है सर, वहां पे थी वो महापंचायत, तो उसमें तो मेरे को नहीं आने दिया। लेकिन एक जयपुर के पास है, आपको पता हो तो आंधी एक गांव है, आंधी है, तो उसमें एक महापंचायती थी, महापंचायत हुई थी, तो मेरे साथ ही और भी 6-7 और महिलाएं आई, और वो एक तरीके से उस वर्ग के ऊपर, मैं ये कहती हूँ कि एक तरीके से कड़ा तमाचा था, जो ये मानते थे कि अरे ये महिलाओं का तो थोड़ा ना ये सब्जेक्ट है, महिलाएं क्यों आगे आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो संकीर्ण सोच थी उसके ऊपर एक तमाचा था कि मेरे साथ की और भी काफी सारी महिलाएं आगे आई। हालांकि आज भी उतनी जागरूकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज का थोड़ा सा समझ लिया गया है कि अब जरूरत है कि हमारी महिलाओं को राजनीति में हम आगे लेके आते हैं, हम यूपीएससी के एग्जाम के लिए आगे लेके आते हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हम बनाते हैं, तो क्यों ना गांव के जो गंभीर मुद्दे हैं वहां पर भी महिलाओं की राय को रखा जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से उन लोगों ने लिया और भी बहनें जागरूक हुई हैं, अब थोड़ा जानने लगी हैं।
0: ये तो महापंचायत है अनिता
1: जी
0: जी,
1: जी जी
0: ये इनकी क्या भूमिका होती है, क्या करती है महापंचायत?
1: इनकी सर ये भूमिका होती है कि ग्रामीण परिवेश में कई जैसे अपराध होते हैं, तो उनका वो स्थानीय स्तर पे निपटारा करते हैं ताकि गरीब वर्ग का पैसा और समय बचा लिया जाए। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच को लेकर ये होती है, लेकिन उनका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। हमारे समाज में काफी सारी सब्जेक्टों को लेके हुई है कि जैसे कुछ महिलाएं हैं जिनको उनके हस्बैंड उन्होंने छोड़ दिया, शादी कर ली और उनको छोड़ के फिर कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी विधान के अंदर सर थोड़ा सा ये है कि तलाक वाली चीजें हैं, हिंदू जो मैरिज एक्ट है ना वो लागू नहीं होता है सर, तो
0: जी
1: वो कर लेते हैं इस आड़ में दूसरी महिला के साथ में शादी कर लेते हैं। और वो जो बेचारी वो ग्रामीण वो जो पहली जो औरत होती है जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती है और बच्चे भी उसके साथ ही रहते हैं, उसको एक संघर्ष में जीवन जीना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं
0: जी
1: ऐसे ही इस प्रकार के जो प्रकरण है ना इनका निपटारा होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि वास्तव में है तो एक सकारात्मक चीज, लेकिन उसमें अब जो मेरा जो विषय था वो ये था कि बालिका दुष्कर्म, बाल अपराध और कुछ जैसे ऐसे छेड़छाड़ जैसे कई प्रकरण होते हैं, तो ऐसे मैटरों में तो महिलाओं को थोड़ा सा लेना चाहिए, युवा वर्ग और महिलाओं को, तो इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा अब एक क्रांति आ रही है और लोग इस चीज को थोड़ा सा समझ रहे हैं। जी सर
0: श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें कि आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और माउंट आबू की वादियों से आप सुन सकते हैं इन हमारे रेडियो स्टेशन को। ट्यून इन करें 107.8 FM रेडियो मधुबन, और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन से भी आप दुनिया के किसी भी कोने में हमें सुन सकते हैं। हमारे साथ हैं एक जुनूनी श्रीमती अनिता मीना जी, जो हिंडौन से आती हैं, और वो अपने समाज और अपने आदिवासी समाज, जो खास तौर पे अपने परिवेश में चल रहे जो तो महिलाओं का स्ट्रगल है, उस पे हम उनके साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने कैसे अपनी जगह उस जाजम पे बनाने का प्रयास किया है जहां पर लोकल लेवल पे न्याय और छोटे मोटे विवाद जो है तय करने की का प्रयास समाज अपने लेवल पे करता है और न्यायिक प्रक्रिया में नहीं जा पाता है। लेकिन हम मानते हैं कि श्रोताओं आप जान लें कि ज्यूरिसप्रूडेंस देश का जो है वो यहाँ पर काम करता है, और ये जो विचार हैं अनीता जी के अपने विचार हैं, हम किसी भी तरह की महापंचायत या इस तरह के पंच पटेलों के न्याय को स्वीकारोक्ति इस मंच से नहीं दे रहे हैं। और दुष्कर्म के मैटर्स में निश्चित रूप से यदि किसी के साथ इस प्रकार या किसी बालिका के साथ इस प्रकार से हुआ है तो निश्चित रूप से हमें न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, गांव के जो स्थानीय विवाद हैं निश्चित रूप से उनको राजामंदी और बातचीत के माध्यम से ये सॉल्व करने का एक पॉजिटिव मंच है, जो कि अतीत से या कई वर्षों से हमारे समाज में जिसकी जगह बनी हुई है। आइए हम अनिता जी से वापस से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। अनिता जी, ये डिस्क्लेमर जरूरी था और श्रोताओं को इस बारे में मालूम होना चाहिए। तो अनिता
1: जी
0: जी, मैं
1: जी
0: आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कह रहा था कि आपके कम्युनिटी ने बहुत तरक्की की है और खास तौर पर महिलाओं ने अपने पेशे में और सरकारी सेवाओं में अपनी जगह बनाई है, बड़ी से बड़ी नौकरी आप लोगों के समाज ने, आदिवासी समाज में पाई है, और खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज को जब मैं देखता हूँ कि उनकी साक्षरता दर
1: जी
0: बहुत अच्छी है, अंग्रेजी में उन्होंने बहुत तरक्की की है, सरकारी सेवाओं में बड़ी संख्या में आए हैं, वैसे ही कुछ कुछ कमाल यहाँ के मीना और आदिवासी समाज ने राजस्थान ने किया है। फिर भी
1: जी
0: इतना
1: जी
0: सब कुछ होने के बाद भी कहाँ कमी रह जाती है कि आदिवासी महिलाओं की जो जगह है राजस्थान में अभी भी उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो तरक्की है, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं, क्या आपको लगती हैं वो बाधाएं क्या हैं?
1: सर मेरे को जो मुख्य बाधा लगती है वो ये लगती है कि खुद की सोच को थोड़ा सा ऊपर उठाने की जरूरत है। एक महिला की जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो फैमिली और बच्चों तक ही सीमित रह जाती है।
0: जी
1: तो आज के समय में महिला को खुद को अपने अधिकारों को लेके जब थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जागरूक और सशक्त महिला एक परिवार को पूरी तरीके से नहीं चला सकती है, या फिर बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, हस्बैंड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, सब चीजों को लेके महिला आगे बढ़ सकती है, मेरा ये मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी राय बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खुद को रखनी जरूरी है। और ऐसे में थोड़ा सा ये हो जाता है कि महिला जब राजनीति में जाती है तो कहीं ना कहीं उसके बैकबोन जो बने हुए होते हैं, वो उसके हस्बैंड और जैसे ससुर हैं वो थोड़ा सा चलाते हैं, तो उस जगह महिला को अपनी राय रखनी चाहिए, अंतिम फैसला महिला का होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा है ही है कि पुरुष वर्ग तो कहीं भी उसको पीछे लाने में पुरुष वर्ग का कोई योगदान नहीं है, खुद महिला को
0: जी
1: ही अपने को आगे लाने के लिए, मतलब फर्स्ट पायदान पे लाने के लिए मानसिक तौर पे खुद को तैयार करना चाहिए। एजुकेशन जरूरी है, जॉब जरूरी है, कहीं भी आप अच्छी जगह पहुंचो, लेकिन अपने फैसले या फिर कोई कई जो बड़े और गंभीर फैसले उनमें अपनी राय वो रखे, खुल के राय रखे, ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज ही महिला जॉब करती है लेकिन पेट्रोल पंप पे वो कि मतलब मैं नहीं देखती कि कोई स्कूटी लेके खड़ी होगी। दूसरी
0: जी
1: बात सर, हॉस्पिटल है, बैंक है, रेलवे की जो लाइन होती है उनमें महिला के लिए एक अलग लाइन होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है, वहां पर भी जेंट्स लोग हैं वही भरे रहते हैं। तो मेरे को कई बार कहना पड़ता है कि भैया प्लीज आप थोड़ा सा साइड में हो साइड लीजिए और मैं थोड़ा सा आऊँ आगे। और महिला वैसे ही है, कहीं भी अपनी जगह पे ये छोटी छोटी चीजें हैं तो यहाँ पर ही अपने विचार नहीं रखती है। तो मेरे को ये कहना है कि महिला जहां पर उसके लिए जो चीजें नियुक्त की गई है वहां पर अपने विचार रखे, खुल के विचार रखिए।
0: जी और विचार रखेंगी तभी तभी वो अपनी जगह बना पाएंगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि
1: जी
0: मैं देश के अलग अलग हिस्सों में काम करता रहा हूं। मैंने जब केरल जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां की जो सरकारी बसें हैं या वहां की जो बस सेवाएं हैं, जो चाहे वो निजी हाथों में ही क्यों ना हो, वहां पर उन बस सेवाओं में मैंने देखा कि जो बस सेवा में आधी जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जबकि हम राजस्थान में देख रहे हैं कि चाहे सरकारी बसेस हो चाहे प्राइवेट बसेस हो, गरिमापूर्ण रूप से यात्रा करने में महिलाओं को आज भी तक तकलीफ है, और सिर्फ 6-7 सीट्स रिजर्व करके छोड़ दी गई है ना। तो एक खाना पूर्ति जैसी
1: जी
0: स्थिति बनती है। मैं कहता हूं कि अगर बस में 36 सीटें हैं तो भाई 18 तो हमारी बनती है ना, तो भाई 18 तो हमारी
1: जी
0: हमें
1: जी
0: दो।
1: बिल्कुल
0: तो अगर वो खाली है तो ठीक है, आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर वो अगर हम आ गए हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता
1: जी
0: है कि हमारा आधी सीटों का सपना जो है, चाहे हम यात्रा कर रहे हैं चाहे हम सरकारी सेवा की बात करते हैं, वो अभी भी दूर है। तो और चाहे रक्षा सेवाओं में भी, अभी आपको पता है पिछले दिनों जो बदलाव आए हैं, हालांकि सेना ने, भारतीय सेना ने हमें अपनी जगह दी, बनाने का मौका दिया है, और अब तो हमारी लड़कियां और महिलाएं शौर्य के क्षेत्र में भी आ रही है। तो सौंदर्य का क्षेत्र तो अब उन्होंने छोड़ छोड़ दिया है जल्दी। मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि सौंदर्य एक महिला की पहचान नहीं होनी चाहिए, उनकी पहचान उनके काम, उनके साहस और उनके तौर से होनी चाहिए। तो
1: जी जी जी बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: बहुत आवश्यक है, और वो एक अपने बुद्धि बल के साथ समाज के साथ कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो खैर, आपने तो बताया कि आप 2019 के आसपास आपने जुनून की शुरुआत की, लेकिन आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया ये जुनून की शुरुआत दिमाग में कैसे आई। मतलब ये कैसे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। भाई आपके आदिवासी समाज में और भी महिलाएं हैं और जो खास तौर पे पूर्वी राजस्थान
1: हाँ
0: में काम कर रही है, लेकिन आप ही के साथ ये शुरुआत कैसे हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ।
1: सर, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे बचपन से ही जो मेरा नेचर था वो थोड़ा मुखर था कि कहीं पर भी कोई चीज गलत होती है ना तो वो मैं उस जगह मैं चुप नहीं रहती थी, चाहे वो मतलब मेरी घर का परिवार का मैटर हो या फिर बाद में जॉब भी लगी मेरी, वहां पर भी मैं मुखर होके अपनी बातों को रखती थी। इसके लिए सर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि मेरी 2001 में जैसे जो दिल्ली दिल्ली में एक टीचर के लिए एक वो एग्जाम हुई थी, तो हुआ ये था कि मेरा जो फॉर्म था ना सर, मेरे को पासपोर्ट आते थे उस टाइम पे, सॉरी पोस्ट कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड तो मेरे को आ गया था लेकिन जब मैं एग्जाम देने गई तो मेरा फॉर्म ही मेरे को नहीं मिला वहां पे। तो मैं गई तो हमें अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे वो लोग, लेकिन उनमें से किसी एक को ये लगा कि जब ये मैडम इतनी दूर से आई है, राजस्थान करौली जिले से आई है, कड़कड़ डूमा में सर दिल्ली में वो ऑफिस था, तो वहां पर काफी मशक्कत करने के बाद में उन्होंने हमें एंट्री दी। तो मैंने उनसे ये कहा कि जॉब आप मेरे को दिलाएं, मतलब जॉब मिलना मेरे भाग्य की बात है, लेकिन आप मेरे को एग्जाम से वंचित नहीं रख सकते। तो काफी उन्होंने देखा फॉर्म नहीं मिला, लास्ट में सर मेरे से उन्होंने कहा तो देखा तो मैंने डस्टबिन में पड़ा हुआ था फॉर्म मेरा। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरे को ये पोस्ट कार्ड आया है लेकिन आपने इस फॉर्म को इस तरीके से पटक रखा है, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने सर रोल नंबर में मेरे को किया था दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या बाय मिस्टेक मैंने एग्जाम तो ली, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरे को उससे ये लगा कि जब एक मेरे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, तो पता नहीं कितनी महिलाएं इस तरीके से, मतलब इस बिगड़ी हुई व्यवस्था का हिस्सा होंगी। तो ये लगा कि मतलब रखनी चाहिए अपनी बात, और उस वर्ग के लिए रखनी चाहिए कि जो वर्ग इस तरीके से जैसे काफी पिछड़ा हुआ है। सर मैं भी यही हिंडौन के पास में गांव है वहां से हूँ, मैंने काफी सारी चीजों को मतलब बहुत ही करीबी से देखा है, घर परिवार में आसपास में महिलाओं के साथ में देखा है कि काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो मतलब रिपोर्ट दर्ज करवाने तक तो सर मुश्किल से 2% या 3% ही महिलाएं पहुंचती होंगी, बाकी घर परिवार में भी उनको इस तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। तो उस चीज को लेके लगा कि एक संगठन खड़ा करना चाहिए, और इसमें सर्व समाज की महिलाओं को हमने साथ लिया सर, क्योंकि केवल एक समाज से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो मतलब किसी भी धर्म और जाति से रिलेटेड महिलाएं हो, उनको कहीं ना कहीं मतलब बैक फुट पे रखा ही जाता है। घर में आज भी सब्जी बनती है तो वो अपने हस्बैंड की पसंद की बनती है या बच्चे की पसंद की बनती है। दूसरी बात, घर में कुछ भी बनता है तो वो लास्ट में पीछे पीछे कि जो भी कुछ बचता है तो वो खा लेती है, सब्जी खत्म हो जाती है तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती कि अरे कि कुछ अपने लिए बनाया जाए। तो लगा कि एक सम्मानजनक अपन को स्थान देना चाहिए और हम इसके लिए कोशिश करें, क्योंकि एक महिला वर्ग को आगे लाने के लिए हमारे जो भाई लोग हैं पुरुष वर्ग है वो तो काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक महिला भी आगे आए तो वो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारी बहनों के लिए। तो ये चीज थी सर। एक बार जॉब भी करते हुए हुआ था सर, मेरी फर्स्ट जॉब हुई थी एक बार, तो वहां पे जो एक एचएम थे तो वो थोड़ा सा काफी चीजों में सर मेरे को वर्क भी ज्यादा देते थे, और फिर कुछ चीजें थी थोड़ी गलत थी उनकी, तो मैंने काफी तरीके से उनको समझाया लेकिन उनको समझ नहीं आया। फिर मैंने और भी लोगों को, उच्च अधिकारियों से भी कहा मैंने कि सर थोड़ा सा आप इनको समझाइए कि मैं तो इनकी बहन बेटी के समान हूँ, तो वो इस तरीके से क्यों मेरे को परेशान करते हैं। लास्ट में सर फिर मेरे को उसकी शिकायत ही दर्ज करनी पड़ी, महिला आयोग में भी की और दो चार जगह मैंने की, तो इमिजिएटली एक्शन हुआ। तो ये लगा कि क्यों नहीं सभी महिलाएं जागरूक हों, तो उनको हम इस तरीके से अपने स्तर पे हम जागरूक करें सर, कार्यशालाओं के माध्यम से हम इन महिलाओं को करते हैं जागरूक। और वो चीज देखो खुद से ही शुरुआत होती है, मेरे को लगा मैंने इस चीज को फेस किया तो लगा कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं हैं जो कि शिक्षित भी हैं, जॉब भी कर रही हैं, एक अच्छे परिवार से रिलेटेड भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ गलत होता है, तो उसके लिए वो तैयार हों और कहें तो बिल्कुल समझा जाएगा सर इस चीज
0: जी,
1: को।
0: तो आपका संगठन जो है अस्तित्व की उड़ान अभी क्या काम कर रहा है और कैसे आप अपने काम को मंजिल तक पहुंचा रहे हैं?
1: सर ये जो हमारा संगठन एक तो बाल अपराध को लेके काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग की महिलाएं होती हैं उनको हम इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना सर, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, तो मोस्टली उनकी जिम्मेदारी माँ के ऊपर ज्यादा होती है, और माँ के ज्यादा वो करीब रहते हैं क्योंकि उनका जो पिता है वो कहीं मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, मजबूरन माँ को भी जाना पड़ता है, लेकिन माँ के ज्यादा करीब होते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम उन माताओं को थोड़ा सा जागरूक करें, जिससे कि कहीं ना कहीं बाल अपराध है वो उनमें थोड़ी सी कमी आए, कहीं ना कहीं वो बच्चे सेफ हो पाए, मतलब जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, उनको इस चीज का पता है कि गलत हो रहा है लेकिन उसका किस तरीके से विरोध किया जाए इस चीज की जानकारी नहीं है। तो सर हम मजदूर वर्ग की महिलाओं को करते हैं जागरूक बाल अपराध को लेके, उसमें हम थोड़ा सा उनको बताते हैं कि कोई कोड वर्ड ऐसा आप रखो जिसका पता केवल आपको और आपके बच्चों को हो, जैसे कल को कोई अनजान व्यक्ति किसी भी तरह से कुछ कोई बात करता है तो वो उनसे पूछे कि भाई आप अपना कोड वर्ड बताइए। बहुत सारी चीजें होती हैं सर, जैसे बच्चियों को अगवा कर दिया जाता है स्कूल से, छोटे बच्चों को ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ा कुछ सुधार आएगा और माँ इस चीज को बेहतर तरीके से कर सकती है। तो बाल अपराध भी है सर, गुड टच बैड टच भी है, और आत्मरक्षा को लेके भी हम करते हैं, और जो मजदूर वर्ग की महिलाएं होती हैं उनको हम स्वरोजगार के प्रति भी जागरूक करते हैं सर। गांव में हम कार्यशालाएं करते हैं, उनको काफी सारी जैसे स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो वहीं पर रह के कुछ अपने परिवार के खर्चे लाए, कुछ कमा सके, घर की सब्जी वगैरह वो खरीद सके, तो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और समय का सदुपयोग भी होता है सर। खाली समय में जो महिलाएं वैसे ही बैठी रहती हैं उसका भी सदुपयोग होता है, घर की आय भी बढ़ती है। तीसरा सर हमें एक है ना उनके एनीमिया मुक्त भारत मिशन को भी हमने चलाया हुआ है, क्योंकि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है ना ग्रामीण क्षेत्र में, अभी मैंने करवाया था सर, एक इरनिया गांव है, मैं जहां मैं पोस्टेड हूँ बरगमा, उसके जस्ट पास में इरनिया गांव है और एक भांडारीज गांव है दौसा के पास में, वहां पे भी करवाया हमने। तो हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनका हीमोग्लोबिन स्तर बहुत कम है, लेकिन वो महिलाओं को ये पता नहीं है कि इसको हम सहज तरीके से घर की किचन, मतलब घर में ही एक किचन गार्डन हम विकसित करके दो चार गमलों में कोई सब्जी हम बो के अपने हीमोग्लोबिन स्तर को सही कर सकते हैं। और मतलब ये है एनीमिया, एनीमिया की वजह से सर बहुत सारी महिलाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, उसमें गर्भावस्था के दौरान हो जाती है, डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए सर, एक परिवार है वो पूरा सड़क पे आ जाता है। तो इस चीज को लेके भी हमने किया कि स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा सा महिलाओं को हम जागरूक करें। तो इस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं, बाल अपराध को लेके काम कर रहे हैं, स्वरोजगार को लेके काम कर रहे हैं, और दूसरा सर सोशल मीडिया को लेके भी हमारी संस्था काम कर रही है। वो स्कूल और कॉलेजों में हमारे जो बच्चे हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो बच्चा है ना वो डिप्रेशन में चला गया है,

0: संस्था जो है सिर्फ करौली क्षेत्र ही नहीं, देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम करे। और आपकी जो शुरुआत है वो हमने जानने को मिली, तो आपने बताया कि आपने कैसे कटकड़ से कटकड़ पहुंच के कुछ बदलाव की बात की और आपके अंदर एक शुरुआत हुई, इग्निशन हुआ कि मुझे भी कुछ
1: जी
0: समझना है और लोगों को समझाना है। बेहतरीन। तो
1: जी
0: इस पूरे कार्य को लेकर आपको राजस्थान सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, तो वो क्या यात्रा रही और आपकी क्या उपलब्धियां आप तक रही हैं अपने काम को लेकर?
1: जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। 2000 हमने 19 से हमारा हमारा संगठन काम कर रहा है, और
0: जी
1: 2019 में जब संस्था काम कर रही थी उस टाइम पे हमने काफी गुटज बैठज के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में कार्यशाला आयोजित की। इसी
0: जी
1: दौरान जो 2020 में कोरोना जब एक महामारी फैल गई थी, तो हमारी जो संस्था की बहनें हैं कई जिलों में संस्था काम कर रही है सर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा, बूंदी, अजमेर तो और अलवर, काफी इन जिलों में तो संस्था काम कर रही है। तो यहाँ पर महिलाओं ने घर पे मास्क बनाए और हमने राहगीरों को और जो भी मतलब जरूरतमंद थे वहां पे हमने बांटे। दूसरी बात, हमने भोजन के पैकेट भी बना के बांटे थे उस टाइम पे, क्योंकि कंडीशन ये हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा सकता था, तो जहां पे हम थे वहीं पे हमने काम किया। तो सर इसको लेके मेरे को नेपाल से गांधी पीठ पीस फाउंडेशन है, उसने मेरे को सम्मानित किया था, इंटरनेशनल स्तर पे सम्मानित किया गया था, और मेरे को उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था करौली जिले का 1 साल के लिए। जस्ट इसके बाद में सर फिर मेरे को जैसे जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसके द्वारा भी सम्मानित किया गया था 2022 में, तो स्टेट टीचर्स अवार्ड राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है सर। और करौली
0: जी
1: कलेक्टर हैं सर, उन्होंने भी दो मतलब 2021 में सम्मानित किया था। तो और इसके बाद में सर हमारा ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है सर, इसने भी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मेरे को 2023 में सम्मानित किया था सर, वो महिला दिवस पे। तो और इसके बाद में सर 2024 में माननीय राज्यपाल महोदय हैं कलराज मिश्र जी,
0: जी
1: उन्होंने भी सोशल वर्क को देखते हुए सर सम्मानित किया था। तो मैं ये मानती हूँ सर कि ये मेरा ना हो गया, हमारी और बहनों का सम्मान है जो कि
0: जी
1: एकजुट होके घर परिवार की जिम्मेदारी को निभा रही हैं सर, जॉब भी कर रही हैं, क्योंकि संस्था के अंदर जॉब करने वाली महिलाएं भी हैं, कुछ नॉन वर्किंग भी हैं। तो हर स्तर की महिला अपना जो समय है उसमें से, जो घर का जो समय है उसमें से 10 से 20% वो निकालती है, बिल्कुल निकालती
0: जी
1: है, ये हमने कह रखा है। और हमने जिम्मेदारी भी दी हुई है उनको कि जब सोशल वर्क आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका दायित्व बन जाता है कि किसी भी तरीके से आप संस्था को आगे लेके जाएं, अपने स्तर पे अपने घर में रहते हुए कहीं पर भी आप अवेयर प्रोग्राम आप लग कर सकती हैं। तो उन महिलाओं का सम्मान मैं ये मानती हूँ सर, और कोशिश ये रहेगी कि संस्था आगे भी इसी तरीके से काम करती रहे और उसमें आपका और सबका, समाज का, हर
0: जी
1: वर्ग का सहयोग अपेक्षित है।
0: जी यानी आप हमारे कार्यक्रम जुनून जो है वो आप जैसे हर जुनूनी के साथ है और आपके जुनून में हम जो भी सहयोग कर पाएंगे वो हम निश्चित रूप से आपके साथ करते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में जुनून में श्रोताओं हमारे साथ रही श्रीमती अनिता मीना जी, और जिन्होंने अपनी पूरी यात्रा, अपने जुनून की यात्रा के बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया, अपने जज्बे के बारे में बताया। और आपसे बात करते हुए निश्चित रूप से लगा कि आप जैसी अगर महिलाएं अगर इसी प्रकार से अपने जुनून के साथ काम करेंगी तो अपनी समाज में अपनी जगह बना पाएंगी। तो श्रोताओं आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM, और मैं हूं आपका दोस्त शरद। पर शरद साइनिंग ऑफ टुडे, फिर मिलेंगे ऐसे किसी जुनूनी के साथ अगले शो में।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माने आवे पिया जी री हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहाँ हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, एक नाम जिसने राष्ट्र के लिए जीवन विचार दर्शन का एक साकार स्वरूप खड़ा किया। उनका जन्म 1889 की वर्ष प्रतिपदा के दिन नागपुर में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूली दिनों में ही वंदे मातरम को लेकर आंदोलन किया। ये वो समय था जब वंदे मातरम का उच्चारण करना भी अपराध था, इसीलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। नील सिटी हाई स्कूल को छोड़कर उन्होंने यवतमान की राष्ट्रीय शाला में प्रवेश लिया। सन 1910 में वे कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गए और वहीं उनका मिलाप क्रांतिकारियों से हुआ। कोलकाता में उनका वास उन दिनों हुआ जब बंगाल में क्रांति धधक रही थी और वंदे मातरम क्रांति का मंत्र बन गया था। हिंदुस्तान का क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्राकृतिक संपदा, तत्वज्ञान, संस्कृति, इतिहास, पराक्रम, विद्वता और कला कौशल के बावजूद वो क्या वजह थी कि राष्ट्र गुलाम हुआ? इस प्रश्न ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि इस दुर्गुण को संस्थागत रूप से दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जिसके लिए उन्हें सजा भी सुनाई गई। न्यायालय में अपने कार्य का समर्थन करके वे अंग्रेजों के खिलाफ छिड़े आंदोलन के प्रखर वक्ता बन गए। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 21 जून 1940 को नागपुर में उनका निधन हो गया।
3: एक सौ तीस, 140, 150।
4: ओए सल्लो, ओए कहाँ मर गया? अबे सूरज चढ़ाया और सारा काम पसरा पड़ा है।
3: काका पूरे 200 दंड पेलने हैं, है? इस बार डिस्टर्ब ना करियो। 160,
4: 170, है? अबे कामचोर, है? 10 कुदा कुदा के 200 रन पेलेगा क्या? अबे कोई काम तो ईमानदारी से किया कर।
3: और ये पूरे 200। ओए घिस्सू, एक ग्लास लस्सी और दो पराठे लगा, आज बहुत पसीना बहाया है।
4: अबे ढाबा का तेरे ताऊ का है, है? दिन धाड़े सारा बर्जिस का ढंग, कहाँ से सनक चढ़ाए बैठा है बे?
3: ढोंग वोंग मत कहियो काका, अरे इतना पसीना धूप में ऐसे ही नहीं बहाया।
4: अरे वो सब तो ठीक है, पर ये तो बता कि तुझे ये बर्जिस की पट्टी पढ़ाई किसने? सबसे पहले मैं उसकी खबर लूं।
3: हाँ, अट्टी पट्टी का क्या है काका, हम भी पढ़े सुने हैं क्रांतिकारियों के बारे में। डॉक्टर हेडगेवार बचपन में 200 दंड पेल जाते थे।
4: अच्छा, तो आप समझा ये भूत कहाँ से चढ़ा है? हाँ, तो तू इस बार डॉक्टर हेडगेवार की किताब घोंट के बैठा है।
3: ओ काका, अब हम भी कहानी सुनाए हैं सबको।
5: काका राम राम।
4: राम राम, राम राम। आओ आओ, आओ बेटा, आओ राहुल, आओ। ए घीसू, ए लस्सी लगा। बड़े दिनों बाद दिखाई दिए भैया।
5: हाँ काका, बहुत दिनों बाद आना हुआ। नदी तक आया था तो सोचा आपसे कोई किस्सा कहानी सुनता चलूं।
4: अरे बिल्कुल सही सोचा बेटा, बिल्कुल सही सोचा। पर अब कहानी सुनाने का डिपार्टमेंट जो है सल्लू ने ले लिया है। अच्छा। अब यही सुनाएगा कहानी हम सबको, है? चल बेटा सल्लू, हो जा शुरू। चल।
3: अब काका, हम कौन सी कहानी सुनाए काका, हमको कहानी नहीं आती।
4: कौन सी कहानी सुनाए?
3: हाँ
4: अबे अबे, अभी तो बड़ी बड़ी ढींगियां हाँक रहा था। अरे वही सुना जो पढ़ सुन के बैठा है। हाँ सुना सुना। अरे वो क्रांतिकारी डॉक्टर हेडगेवार जी की कहानी सुना ना।
3: अब काका, हम क्या जाने उनकी कहानी, हम तो बस इतना पढ़े कि वे महान क्रांतिकारी रहे। हाँ। वे कहत रहे कि देश के संभालने के लिए हम जैसे समझदार और मजबूत लोगों की जरूरत है।
4: हैं? तुझ जैसे? अबे क्या बिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा है। अबे डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे कि देश की बागडोर अनुशासित और देश प्रेमी वर्ग के हाथों में हो, समझा? और इसी सोच को लेकर उन्होंने युवा क्रांतिकारियों के संगठन की नींव रखी।
3: अब इतना बताई दिए हो काका, तो कहानी पूरी कर दो।
5: हाँ हाँ काका, आज तो हो जाए कहानी।
4: अरे ये क्या बात हुई भाई, है? हर बार हमको फंसा देते हो।
3: अरे काका सुनाई दो बस।
5: आज तो सुना दो काका।
4: चलो ठीक है, आज हो ही जाए। महान क्रांतिकारी डॉक्टर केशव राव हेडगवार जी की कहानी।
3: ये हुई ना बात,
5: हो जाए आज तो।
4: क्यों रे सल्लू?
3: हाँ काका।
4: नागपुर गया है कभी?
3: अरे कहा नहीं, जब भी संतरा खाना होता नागपुर ही जाकर खाते हैं।
5: क्या बात है,
4: संतरे के नाम से तेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो नागपुर में जन्म हुआ था उनका सन 1881 में।
3: अच्छा अच्छा काका, तो नागपुर के थे?
4: हाँ सल्लू, लेकिन भगवान की लीला देखो, जब वे कोई 10-12 साल के थे तभी उनके माता पिता उन्हें छोड़ के चले गए।
0: आई आई आई तू चिंता मत कर, सीता सीता और केशव की जिम्मेदारी मेरी, मैं उनकी देखभाल करूंगा। आई ले ले पानी पी ले।
6: अरे बेटा, अरे महादेव, सबका ध्यान रखना। हे भगवान।

0: काका ये महादेव कौन थे?
1: अरे महादेव शास्त्री जी के बारे में नहीं जानता? अरे मूरख, वे उनके बड़े भाई थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, खैर तो केशव प्रतिदिन व्यायाम करते, देशभक्ति का अंकुर उनके हृदय में बचपन से ही फूट पड़ा था।
2: एक सौ दो, 103, 104।
3: केशव।
2: हाँ भाऊ।
3: अरे केशव, पाठशाला का समय हो गया है, चलना नहीं है क्या?
2: हाँ भाऊ चलते हैं। साथियों, अंग्रेज हमारे देश में नासूर बन रहे हैं, भारत माता को इन डाकुओं से बचाना होगा। अब समय आ गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करें।
4: लेकिन हम कर क्या सकते हैं?
5: हाँ, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे अंग्रेजों का सामना करेंगे?
2: हम अपने स्तर पर अंग्रेजों का विरोध करेंगे।
5: मगर कैसे?
2: ध्यान से सुनो, मेरे पास एक योजना है। हमारी पाठशाला का दौरा करने एक गोरा अफसर आ रहा है।
4: गोरा अफसर?
2: हाँ, गोरा अफसर। उसका स्वागत हम कुछ खास ढंग से करेंगे।
6: I say to you, go out there and annoy a liberal. Work hard and be happy.

0: ये रही हमारी पाठशाला। ऐसा अनुशासन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मजाल है कोई बच्चा चूभी कर जाए।
1: गुड, वेरी गुड, हम खुश हुआ। आई एम इम्प्रेस्ड।
0: थैंक यू सर। ये रही हमारी कक्षा। बड़े अनुशासित बच्चे हैं। सबको तान के रखता हूँ सर।
1: आई सी। गुड।
2: भारत छोड़ो,
3: वंदे
2: मातरम,
3: वंदे
2: मातरम,
3: गोरे अफसर,
2: भारत छोड़ो,
3: गोरे अफसर,
2: भारत छोड़ो,
3: वंदे
2: मातरम,
3: वंदे
2: मातरम,
3: वंदे
2: मातरम,
3: वंदे
2: मातरम।
1: Who said that? कौन बोला? कौन बोला?
3: गोरे अफसर, भारत छोड़ो, गोरे अफसर,
2: भारत छोड़ो,
3: वंदे
2: मातरम,
3: वंदे
2: मातरम,
3: गोरे अफसर,
2: भारत छोड़ो,
3: गोरे अफसर,
2: भारत छोड़ो,
3: वंदे
2: मातरम,
3: वंदे
2: मातरम,
3: वंदे
2: मातरम,
3: वंदे
2: मातरम।
0: अब अजीब मुसीबत है। चुप रहो नामकुलो, चुप हो जाओ।
1: मास्टर, तुम हमारा इंसल्ट के वास्ते हमको इधर बुलाया? हम तुमको देख लेगा।
0: सुनिए तो।
1: I'll see you.
0: सर, प्लीज प्लीज रुकिए सर।

0: क्यों काका? खूब मजे लिए गोरे अफसर के?
1: लाल पीला होते हुए उल्टे पैर लौट गया।
2: अरे भैया, वंदे मातरम आंदोलन की लंबी जांच हुई, किसी का नाम सामने नहीं आया, मगर पर अंग्रेज भी कहां चुप बैठने वाले थे।
3: कबड्डी

0: क्या ये घबराहट कैसी, क्या हुआ?
1: भाग चलो भाग चलो, तुम्हारे घर अंग्रेज पुलिस का पहरा है और तुम्हारे पीछे जासूस लगे हैं। भाग जाओ केशव, भाग जाओ।
0: क्या? मैं शपथ लेता हूँ मातृभूमि की कि समय आने पर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। चलो साथियों, चलो
2: चलो, चलो, चलो, चलो।

0: तो काका वो कहाँ चले गए? क्या नागपुर छोड़ दिया?
1: और फिर आगे की पढ़ाई कहाँ की उन्होंने?
2: हाँ, आखिर उन्हें नागपुर छोड़ना ही पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पूना से पास की और डॉक्टरी पढ़ने के लिए उन्होंने कलकत्ते के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। कलकत्ते में उनका परिचय गुप्त रूप से काम कर रहे क्रांतिकारियों से भी हो गया।
3: अनुशीलन समिति में तुम्हारा स्वागत है केशवराव हेडगेवार। तुम हमारे साथ काम करने के लिए उपयुक्त हो। देखना, मिलकर एक दिन हम अंग्रेजी राज्य को उलट कर रख देंगे।
4: ऐसा ही होगा गुहाजी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि समिति की मर्यादा और गोपनीयता पर आंच नहीं आने दूंगा। अंग्रेजों के दिन अब लद चुके।
3: शाबाश शाबाश केशव, इनसे मिलो। ये है हमारे साथी क्रांतिकारी अरविंद घोष।
4: मानक तल्ला बमकंड वाले अरविंद घोष,
3: ठीक पहचाना। हाल ही में मुकदमे से छूटकर आए हैं।
4: आपसे मिलकर खुशी हुई अरविंद जी।
5: मुझे भी केशव, काफी सुना था तुम्हारे विषय में। चलो विस्तार से चर्चा होगी।
3: और हाँ, इस बैठक में हमें अग्रिम गतिविधियों का प्रारूप तैयार करना है। गणेश उत्सव करीब है।
5: हाँ, यही मौका होगा जब बड़े पैमाने पर लोग एकजुट होंगे। हमें लोगों में विद्रोह की मानसिकता तैयार करनी है। केशव, तुम्हारी छात्रों के बीच अच्छी पकड़ है। तुम गुप्त रूप से क्रांति की जमीन तैयार करो। छात्रों से मिलो और उन्हें संगठन के पक्ष में लो।
4: ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें।
3: बहुत अच्छे, आज की बैठक यहीं स्थगित करते हैं। अगली बैठक इतवार को होगी। वंदे मातरम।
6: वंदे।

0: मित्रों, इन गोरों के कारण हम अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यदि हम अब भी सहते रहे तो हमेशा सहते रहेंगे। हमें अंग्रेजों को अपनी शक्ति दिखा देनी होगी।
1: लेकिन विप्लववाद ही क्यों, प्रतिक्रिया के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं।
0: बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन भूतों को भगाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है और हम धमाकों की तैयारी कर चुके हैं।
2: मैं केशव के विचारों से सहमत हूँ। इन अंग्रेजों के अत्याचार अब नहीं झेले जाते, अब तो इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा।
0: सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। और कब तक हमारा शोषण होगा? देश को आजाद कराते हुए चाहे हम बलिदान हो जाएं, लेकिन अगला सूरज अवश्य ही आजाद भारत में उदित होगा।
1: यदि ऐसी बात है तो मुझे भी अपने साथ समझो।
3: हम भी तुम्हारे साथ हैं केशव।

0: तो फिर ध्यान से सुनो, हम मुंह अंधेरे कलकत्ते की गलियों में क्रांति के प्रचार के लिए पर्चे बांटेंगे और दीवारों पर चिपकाएंगे। ये अभियान पूर्णतः गुप्त होगा, किसी को कानो कान खबर न लगने पाए। ये तैयारी होगी हमारे अगले चरण की।
1: अगला चरण?
0: हाँ, अगला चरण। अगले चरण में हम बम धमाकों का इस्तेमाल करेंगे, जिनका मकसद अंग्रेजों को हमारी शक्ति का एहसास दिलाना होगा।
2: केशव! केशव! केशव! केशव, पुलिस को हमारे अड्डों के बारे में पता चल गया। केशव, तुरंत निकल चलो।
0: क्या? चलो निकलो, भागो यहाँ से, चलो चलो साथियों।

0: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कलकत्ते में बम विस्फोट, कलकत्ते में बम विस्फोट, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अंग्रेजी शासन सख्ते में, आज की ताजा खबर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब केशव, तुमने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, हमें तुम पर गर्व है। अब तुम्हारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाएगा, तुम्हें अब और काम सौंपा जाना है केशव।
2: मैं प्रस्तुत हूँ कुआची, हम अंग्रेजों को इन धमाकों से हिलाकर रख देंगे। मेरे साथ छात्रों का एक बड़ा समूह संगठन में जुड़ने को तत्पर है, हम क्रांति की मानसिकता बनाने में सफल रहे हैं।
1: वाह, संगठन को तुमसे यही उम्मीद थी केशव। हमारी अगली बैठक में भारत भर से क्रांतिकारी इकट्ठा होंगे, नए विचार सामने आएंगे, तुम्हें अपने साथियों के साथ तैयार रहना होगा।
2: जी बिल्कुल।
3: फिर क्या हुआ काका?
4: अरे केशव राव जब तक कलकत्ते मेडिकल कॉलेज में रहे, क्रांतिकारी गतिविधियों में बराबर सक्रिय रहे, उनका नाम बार बार विद्रोहियों की सूची में लिखा गया था।
3: तो काका, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने डॉक्टरी नहीं की?
4: अरे पढ़ाई खत्म करते ही कॉलेज के प्रिंसिपल की खास सिफारिश पर उन्हें एक बहुत बढ़िया नौकरी मिली, पर देश सेवा के आगे उन्होंने नौकरी ठुकरा दी।
3: क्यों काका?
4: अरे उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन की भारत भर में खूब लहर थी।
3: अच्छा,
4: बस फिर क्या था, डॉक्टर हेडगवार भी कूद पड़े असहयोग आंदोलन में। उन्होंने अकोला और यवतमाल जिलों में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
2: साथियों, वनोपज पर केवल वनवासियों का अधिकार है, सरकार उचित मूल्य चुकाए बिना न तो भूमि पर अधिकार कर सकती है और न ही वनोपज में हिस्सा ले सकती है। अंग्रेजों को किसी भी हालत में इमारती लकड़ी न मिलने पाए, उनके सारे उद्योग धंधे ठप कर दो, संगठित हो जाओ और जंगलों से अंग्रेजों के तंबू उखाड़ फेंको।
5: हेडगेवार, ये केशव राव हेडगेवार कौन है?
6: सर जी, पिछले कई सालों से इसने हमारी नाक में दम करके रखा है, जंगलों में इसी ने आदिवासियों को भड़का रखा है, ये विद्रोह इसी का नतीजा है।
5: अरेस्ट हिम इमीडिएटली, पूरा फौज ले जाओ, पर उसको पकड़ के लाओ।
6: यस सर।
3: तो हेडगवार जी पकड़े गए काका?
4: हाँ सल्लू, हेडगवार जी पकड़े गए, मुकदमा चला और उन्हें जेल भी हुई, लेकिन जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों को चैन से नहीं बैठने दिया। वहां उन्होंने गढ़वाल दिवस मनाया और भूख हड़ताल भी की। जैसे ही वे जेल से रिहा हुए, उन्होंने युवा संगठन की स्थापना की।
7: आपके जाते ही अंग्रेजों ने जंगलों पर पुनः कब्जा कर लिया, हमारी ताकत धरी की धरी रह गई, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई।
2: हम स्वतंत्रता की मानसिकता तैयार करने में असफल रहे हैं। हमें सबसे पहले एक ऐसा समाज तैयार करना होगा जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम हो। एक ऐसा अभियान चलाना होगा जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत वर्ग का जन्म हो सके।
1: लेकिन ये सब होगा कैसे हेडगेवार जी?
2: हम एक युवा संगठन के रूप में एक आंदोलन का आरंभ करेंगे। हमारी शुरुआत वनवासियों के संगठन से होगी। हमारा संगठन एक ऐसा संगठन होगा जो भारत की आजादी और उसके बाद की परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

0: तो इस तरह डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की नींव रखी और आजादी की ओर एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे एक विशाल जनसमूह था जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वतंत्रता के लिए तैयार हो रहा था। उन दोनों हेडगेवार जी पर काम का बोझ अधिक बढ़ने लगा था।
1: साथियों, अंग्रेजों के हर मोर्चे पर दांत खट्टे कर दो। जाओ, संगठन के सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर प्रदर्शन करो। मैं संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, तो मेरा संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुँचा देना।
2: जो आज्ञा, प्रणाम।
3: अरे केशव जी, आपको तो तेज बुखार है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको विश्राम करना चाहिए।
1: नहीं नहीं भाई, ये समय विश्राम का नहीं है, अभी ढेर सारा काम है, संघ को और मजबूत करना है।
3: मेरी चिंता न करो,
1: मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ।

0: आजादी को पाने में उनके प्रयासों का बड़ा योगदान रहा था। बुखार के उन दिनों में भी डॉक्टर हेडगवार जी पीछे नहीं हटे, वे लगातार काम कर रहे थे। धीरे धीरे शरीर उनका साथ छोड़ने लगा और सन 1940 में एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर हेडगवार जी का स्वर्गवास हो गया।
1: तुम मोर्चे की तैयारी करो, जाओ। वंदे मातरम।
2: केशव जी
1: वंदे।
2: कोई है?
3: कोई पानी लाओ।
4: जी
2: क्या हुआ?
4: आप
2: आराम से भाई, हवा आने दीजिए।
1: वंदे
2: केशव जी।
1: वंदे
2: केशव जी।
1: मातरम।
2: केशव जी।
5: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: तो बच्चों सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। दोस्तों जागृति में हम महिलाओं के कानून की जानकारियां लगातार ले रहे हैं और आज हम जिस विषय पे जानकारियां लेने वाले हैं वो विषय है गार्डियनशिप, यानी कि जब माँ बाप अपनी मैरिज को तोड़ देते हैं या फिर शादी विच्छेद कर देते हैं या डाइवोर्स देते हैं या तलाक देते हैं, उसके बाद उनके जो बच्चे हैं उसका क्या होगा, एक बड़ा सवाल रहता है। कई बार माँ चाहती है कि बच्चे उनके पास रहें, कई बार पिता सोचते हैं कि बच्चे मेरे पास रहें, ये एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है। लेकिन कानून किस तरीके से उनको न्याय दिलाती है और बच्चों की क्या डिमांड रहती है या बच्चों का भी अपना एक चॉइस रहता है कि वो किसके पास रहना चाहते हैं, वो चूज कर सकते हैं, या डाइवोर्स होने के बावजूद बच्चों की जो देखभाल है या फिर बच्चे अपनी माँ या पिता दोनों में से किसी एक के साथ रह सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सवालों को जवाब देने के लिए और हमें कानून की बेहतर जानकारी देने के लिए गार्डियनशिप के ऊपर आज हमारे साथ हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो में शोएब जी। आप पेशे से एक वकील हैं आबरोड से। शोएब जी आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: शोएब जी आपने हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट और इंटर रिलीजियस या स्पेशल मैरिज एक्ट और डाइवर्स, ये सभी चीज़ों के बारे में तो स्पष्ट रीति से हमें जानकारियाँ दी हैं, लेकिन इन सभी के बीच में एक और विषय जो हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि जो बच्चे हैं जब माँ बाप डाइवर्स ले लेते हैं तो उसके बाद जो बच्चों की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, इन द सेंस बच्चे क्या अपने माँ बाप में से किसी एक के साथ रहना चूज कर सकते हैं या फिर बच्चे बीच में आकर के उस डाइवोर्स को रोकने में भी सक्षम हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जैसे कि पिता चाहते हैं कि सिर्फ लड़की को साथ में रखें या फिर माँ चाहती है कि नहीं लड़का लड़की दोनों मेरे साथ रहें, तो ऐसे जो वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को लेकर के या फिर बच्चों को माँ बाप को लेकर के, तो कानून में क्या ऐसा प्रावधान बनाया हुआ है कि कौन किसके साथ रहेगा और वो कैसे लीगली क्लेम कर सकते हैं?
5: देखिए गार्जियनशिप एक्ट जो है वो क्लियरली मेंशन करता है कि 6 साल तक की उम्र तक का जो बच्चा होता है उसको अपनी माँ की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा होती है। तो इसीलिए उस जो दौर होता है वो 5 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उस दौर में उस बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी माँ है। तो इस दौर के अंदर तो माँ ही गार्जियन रहेगी। अगर पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं तो जो बच्चा है वो केवल और केवल माँ के पास ही रहेगा, ये चीज गार्जियनशिप एक्ट ने क्लियर कर रखी है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कोई महिला उसको अगर वो जेल में है, जेल में होने के पर उसको डेथ रो भी मिला हुआ है, यानी कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, और अगर पता पड़ता है वो पेट से है या फिर उसके पास एक बच्चा है तो उसकी फांसी की सजा भी टाल दी जाती है अगले 5 वर्ष तक। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि माँ का रिक्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है ये इस चीज को दर्शाता है। तो जो शुरुआती दौर है उसमें तो हमारे जो लिसनर्स है उसमें बहनें इस चीज से खुश हो सकती है कि उनका बच्चा कोई उनसे छीन नहीं सकता कानूनी रूप से, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि 6 वर्ष से ऊपर का आयु का बच्चा हो गया है तो अब उसमें क्या होगा। तो उसमें कोर्ट आकलन करता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कौन ज्यादा सक्षम है। इसका आधार क्या होगा कि मान लीजिए अगर पति कोर्ट में आया है और पति ने इस तरह के एलिगेशन अपनी पत्नी पे लगाए हैं कि मेरी पत्नी मानसिक रूप से विकृत है या फिर वो क्रुएल्टी करती है मेरे ऊपर, वो तोड़फोड़ करती है, यू नो ऐसा एलिगेशन लगा के वो कोर्ट में आया है, तो कोर्ट ये देखेगी कि वास्तविकता में पत्नी का जो रूप है वो इस तरीके का है, तो क्या बच्चे पत्नी के साथ रखने, अपनी माँ के साथ रखने के लिए सही फैसला होगा। अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वास्तविकता में महिला जो थी, जो माँ थी, वो क्रूरता ज्यादा करती है या फिर क्रूर स्वभाव की है, तो ऐसे में जो महिला है उसको अपने बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी। अगर इसी के परे पत्नी ये साबित कर देती है कि पति बड़े ही क्रूर स्वभाव का है और जिस तरीके का उसका व्यवहार है वो बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में कस्टडी जो है वो माँ को मिल जाएगी। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। इन दोनों कंडीशन के आकलन के बाद ही बच्चे की कस्टडी 6 वर्ष की आयु के बाद या तो माँ को दी जाती है या बाप को दी जाती है। अभी मैं अपना एक रिसेंट केस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक महिला है आबू रोड की, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था। तो उनके जो बच्चे हैं वो पति के साथ रह रहे, पति उदयपुर का है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गया है और बच्चे पति के पास ही रह रहे हैं। उनमें जो लड़का था वो 16 वर्ष का था और लड़की 19 वर्ष की थी। तो उनका मेरे से सवाल ये था कि मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी चाहिए, जिसमें से खासकर अगर बेटी मेरे पास आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनको जो उनके लिए जो मेरा जवाब था वो यही था कि बेटी की उम्र पहले से ही 19 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति ऊपर हो जाता है तो उसको गार्जियनशिप की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में मेजर कहलाता है, यानी कि वह अपने फैसले खुद ले सकता है, खुद अपने स्तर पर जीवन जी सकता है। पर हाँ, क्योंकि माँ बाप के नज़रों में बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, चाहे वो 50 वर्ष के हो या 5 वर्ष के, तो उनकी नज़र में उनकी बच्ची बच्ची ही थी, पर कानून की नज़र में वह बच्ची 19 वर्ष की अब बच्ची नहीं रही। तो मैंने उनको यही सलाह दी कि आप अपनी बच्ची से डायरेक्ट बात करें और अगर आपकी बेटी सहमत है तो आप वो डायरेक्टली आपके पास आ सकती है। उस बेटी को अपने पास रखने के लिए आपको किसी भी तरीके के कानूनी दावपेच में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी अपने आप में व्यस्क है। रही बात बेटे की, तो बेटे के लिए आपको जरूर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी भी कानून की नज़रों में छोटा है, माइनर है, 16 वर्ष का है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है गार्जियनशिप के अंदर।
4: शोएब जी, एक और सवाल है, क्या जेंडर के आधार से भी डिमांड कर सकते हैं?
5: नहीं, जेंडर ऐसे पर्टिकुलरली नहीं, पर हाँ, अगर किसी का एक लड़का और एक लड़की है उनमें से कोई एक का डिमांड आप कर सकते हैं, बट ऐसा जेंडर का इसमें इम्पोर्टेंट रोल नहीं है।
4: मतलब अगर लड़की है तो फिर माँ के साथ ही रहना है?
5: नहीं, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, हम देखते हैं माँ हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्जा है, मतलब माँ से ऊपर हम किसी को नहीं मानते, पर आजकल कुछ ऐसी वीडियोस आ रही है सामने जिसमें माएँ भी क्रूर हो सकती है, और इस चीज़ को देखा है। मैं अभी पिछले हफ्ते ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बिल्कुल ही छोटा बच्चा, मतलब मुश्किल से 8-9 महीने का वो होगा, और उसकी माँ उसे पीट रही थी। तो सोचिए, उतने बच्चे को तो कितनी कोमलता से रखा जाता है और वो औरत उसको पीट रही थी। तो इससे साफ जाहिर होता है उस वीडियो से कि माँ भी अपने आप में, अपने मानसिक रूप में
4: फिट नहीं है।
5: ऐसी माओं से भी बच्चा छीना जा सकता है कोर्ट के आदेश द्वारा।
4: जी, जैसे आपने कहा कि अभी 6 साल की उम्र तक माँ को अधिकार रहता है बच्चों की कस्टडी लेने की, और 6 साल की उम्र के बाद जब तक वो वयस्क होते हैं या फिर लीगली वो मेजर नहीं होते हैं, तब तक कोर्ट किसी को भी जो सक्षम मानती है उसको वो कस्टडी देती है बच्चों की। यहाँ पर एक और बात है, मान लीजिए माँ बाप दोनों नहीं चाहते हैं बच्चों को रखना, या फिर बच्चे नहीं चाहते हैं कि वो दोनों माँ बाप से किसी के पास भी रखना, तो बच्चों के पास भी कोई ऑप्शन है कि उनको चूज करने का कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं?
5: अगर कोई माँ बाप है जो अपने बच्चों को लेना ही नहीं चाहते या उनका लालन पालन नहीं करना चाहते, तो देखिए, इस तरह का प्रावधान तो कहीं पे भी कानून में नहीं है। अगर आप माँ बाप है तो आपका कर्तव्य है अपने बच्चों का लालन पालन करना। अगर वो नहीं करते और कोई थर्ड पर्सन लालन पालन करता है उन बच्चों का, तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो उस बच्चों के माँ बाप से बच्चों के हिस्से का भरण पोषण मांग सकता है कोर्ट के माध्यम से, और माँ बाप को वो देना जरूरी है। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, क्या बच्चे फैसला कर सकते हैं कि मुझे अपने माँ बाप के पास नहीं रहना, तो इसका जवाब है नहीं। बच्चे ऐसा फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बच्चे 18 से नीचे के हैं वो अवयस्क है, उनमें इतनी समझ नहीं होती कानून की नज़रों में, तो वो किसी भी रूप का फैसला उनसे नहीं ले सकते। तो बच्चे ऐसे फैसले नहीं ले सकते, इसीलिए उनका अगर कोई मत भी है किसी के अंदर के नहीं मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहता, तो उनका वो जो मत अधिकार है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही उनके मत का कोई वैल्यू रहेगा।
4: तो शोएब जी, जैसे आपने कहा कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि वो किसके पास रहना है चूज करने का, कोर्ट जो फैसला करती है उन्हीं के पास उनको रहना है। लेकिन जैसे कई स्पेशल केसेस में आपने ये कहा कि विधि मित्र को लेके जाकर के वो अपना बयान रख सकती है कोर्ट के सामने, तो क्या यहाँ पर भी एक अपनी पसंद की गार्डियन को चूज करने में बच्चे जाकर के कोई विधि मित्र को ले सकते हैं या और उनको कोर्ट के सामने मत रख सकते हैं कि नहीं मैं ये दोनों के साथ रहना नहीं चाहता हूँ?
5: डिपेंड करता है कि वो विधि मित्र कौन है और वो विधि मित्र का और बच्चों का जो तर्क है वो कितना स्ट्रांग है। जैसे कि अगर हम बात करें कि माँ बाप है, जो अभी आप इससे पहले का जो सवाल था कि माँ बाप ने अपने बच्चों को डिसओन कर दिया, यानी कि बच्चों का लालन पालन वो नहीं कर रहे और ऐसे में किसी थर्ड पर्सन ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है और अब माँ बाप आए हैं और अपने बच्चे की कस्टडी वापस मांग रहे हैं, ऐसे केस में विधि मित्र के माध्यम से एक वैलिड पॉइंट अगर रखा जाए तो कोर्ट इस पर कंसिडर करता है। पर ये डिपेंड करता है फैक्ट ऑफ द केस, क्योंकि इसके लिए एज सच डायरेक्ट लॉ नहीं है, तो ये फैक्ट पे ज़्यादा ऐसे केसेस रिवॉल्व करते हैं रेदर देन लॉ पे।
4: तो जब गार्डियन की बात आती है, किसको गार्डियन माना जाता है? माँ बाप की फैमिली में से किसी एक को वो गार्डियन मान सकते हैं या फिर कानून की रीति से कोई ऑर्फनेज या फिर कोई भी ऐसे गार्डियन बन सकते हैं? तो गार्डियन की डेफिनेशन क्या है कानून में?
5: देखिए, गार्जियन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल गार्जियन, एक होते हैं टेस्टामेंटरी गार्जियन और एक होते हैं कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन। जो नेचुरल गार्जियन है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर। शुरुआत करना चाहूंगा मैं हिंदू से कि हिंदू में नेचुरल गार्जियन किसे कहा जाता है। तो हिंदूज के अंदर नेचुरल गार्जियन होते हैं किसी भी बच्चे के माँ बाप, और अगर लड़की है तो माँ बाप और पति, ये तीन व्यक्ति जो है ये नेचुरल गार्जियन कहलाते हैं हिंदू विधि के अनुसार। मुस्लिम्स के अनुसार नेचुरल गार्जियन कौन कहलाता है? तो केवल और केवल पिता, पिता ही नेचुरल गार्जियन कहलाता है। मुस्लिम्स के अंदर बात थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर दो बड़े सेक्ट है, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर पिता की मौत हो जाती है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश पिता की मौत हो गई, क्योंकि एकमात्र ही गार्जियन है पिता, और उनकी भी मौत हो जाती है तो उनके बाद कौन गार्जियन कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एक एग्जीक्यूटर, यानी कि पिता ने अपनी संपत्ति और इस सब के लिए जिसको भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट करा हुआ है वही उन बच्चों का गार्जियन कहलाएगा, नेचुरल गार्जियन। और शिया के अंदर अगर फादर की डेथ हो गई है तो जो ग्रैंड फादर होता है यानी दादा होता है वो नेचुरल गार्जियन कहलाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है हिंदूज के अंदर और मुस्लिम्स के अंदर कि नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है। हिंदूज के अंदर माँ बाप और पति और मुस्लिम्स के अंदर केवल मात्र पिता। तो ये नेचुरल गार्जियंस होते हैं। अब इसके बाद जो नेचुरल गार्जियंस के बाद जो टेस्टामेंट्री गार्जियंस है वो कौन होते हैं? यानी माँ बाप की सहमति से, यानी जो नेचुरल गार्जियन है उनकी सहमति से अगर वो किसी और को गार्जियन अपॉइंट करते हैं उन गार्जियंस को टेस्टामेंट्री गार्जियन कहा जाता है। आम बोली चाली में आपने सुना होगा कि इन्होंने अपना बच्चा उसको गोद दे दिया है, उन्होंने फला को गोद दे दिया है। तो वो गोद में जो गार्जियन बनते हैं वो कैसे गार्जियन बनते हैं? वो यही इसी प्रकार के टेस्टामेंट्री गार्जियन कहलाते हैं। और लास्ट में आता है कोर्ट के मार्फत से, जैसे अभी हमने बात करी कि अगर महिला गार्जियनशिप लेना चाहती है या फिर पिता गार्जियनशिप लेना चाहते हैं या किसी अन्य थर्ड व्यक्ति को गार्जियनशिप दी जाए, तो इस टाइप की गार्जियनशिप जो कोर्ट के मार्फत दी जा रही है उसको कोर्ट के द्वारा दी गई गार्जियनशिप कहा जाता है। इसके बाद जो पारसीज और क्रिश्चियंस है उनके लिए, केवल पारसीज और क्रिश्चियन ही नहीं, इवन हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए भी एक सेक्युलर एक्ट भी बना हुआ है जो सभी धर्मों के लिए लागू होता है गार्जियनशिप के मामले में। उसका नाम है गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 का ये कानून है जो सभी धर्मों के लिए लागू होता है। उसमें मोटा मोटी धारा 16-17 जो है ये गार्जियनशिप से रिलेटेड है और इसमें ज्यादातर कोर्ट के पास एम्फेसिस ज्यादा दिया गया है। इस कानून के अंदर कोर्ट फैसला करे कि अगर कभी गार्जियनशिप से रिलेटेड विवाद उत्पन्न होता है तो गार्जियनशिप किसको दी जाए ये कोर्ट तय करेगा।
4: जी, सो ये तीन प्रकार की गार्डियनशिप है जो, तो ये तीन प्रकार की गार्डियनशिप है। अगर किसी को गार्डियनशिप के रूप में खुद को डिक्लेयर करना है या क्लेम करना है तो फिर ये तीनों क्लॉज के अंदर उनको फुलफिल करना पड़ेगा कि वो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ही और शी इज एलिजिबल टू बी ए गार्डियन ऑफ सो एंड सो चिल्ड्रन। सो अब बात आती है इनकी भरण पोषण की। जैसे आपने कहा कि माँ या बाप जो भी सक्षम होते हैं इनके भरण पोषण करेंगे, और अगर कोई गार्डियन भी अगर पालना करने की कोशिश करता है या इच्छा रखता है लेकिन उनकी जो मॉनिटरी बेनिफिट्स जो होते हैं वो माँ बाप में से किसी एक को उसको देना पड़ता है।
5: सिर्फ माँ बाप को ही नहीं देना पड़ता, मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप दोनों ही स्वर्गवास हो चुका है और माँ बाप की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा थी, तो अब उस बच्चे का लालन पालन कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो जो भी लालन पालन का खर्चा हुआ है जो भी एक समय में, वो उस प्रॉपर्टी में से भी अपना पैसा वसूल सकता है, यानी कि उसका लालन पालन का पैसा जो है वो वसूला जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू भी।
4: मतलब ये गार्डियन जो है वो वसूलेगा?
5: जी,
4: कि वो इतने समय उनको लालन पालन करने में जो भी खर्चा हुआ है उस बच्चे के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो उसमें से एक हिस्सा ले सकता है। क्या इसमें भी एक लिमिट होता है?
5: जी, इसमें अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी करोड़ों की संपत्ति है, अब लालच के माध्यम से बच्चा कह रहा है कि मुझे PS5 चाहिए, मुझे गोवा ट्रिप चाहिए, और जो गार्जियन है वो लगातार हर डिमांड्स पूरी करे जा रहा है इस लालच से कि मुझे बाद में वो पैसा सारा मिलेगा, तो वो चीज वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि कोर्ट कहता है कि जो फेयर एंड जस्ट हो, यानी कि जो कोर्ट की नज़रों में, कोर्ट में जब आप केस लेने जाएंगे तब कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो इसके लालन पालन में जो खर्चा किया गया है वो फेयर एंड जस्ट है। उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूँ तो आबू रोड में कोई व्यक्ति है और वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है, कोई गार्जियन है एक ऐसे बच्चे को जिसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो उसको स्कूल भेजना चाह रहा है। अब आप जानते हैं आसपास जितनी भी स्कूल है सभी स्कूलों में बस सर्विसेज प्रोवाइडेड है, पर अब क्योंकि उसके मन में लालच है वो कहता है कि मेरे को 2025 में या 26 में जब ये बच्चा व्यस्क हो जाएगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, तो एक काम करता हूँ मैं मर्सिडीज ला के रखता हूँ ताकि ये बच्चा डेली मर्सिडीज से स्कूल जाए और मर्सिडीज से स्कूल आए, और जब ये बड़ा होगा तो मैं मर्सिडीज का पैसा वसूल लूंगा। तो देखिए हमको ये सुनने में ही अटपटा लग रहा है, तो इसलिए कोर्ट भी इस चीज को देखती है क्या जो आपका एक्ट है उसको लालन पालन करने के लिए गार्जियन का वो फेयर एंड जस्ट है या फिर अत्यधिक है, केवल मात्र पैसे ऐंठने का तरीका है, तो इस चीज को कोर्ट कंसीडर करती है।
4: मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्चा करें, आप लालच में जाकर के खर्चा करेंगे तो उसके लिए कोर्ट जिम्मेवार नहीं रही। तो दोस्तों हम यहीं पर विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले कड़ी में। आज की जानकारी भी आप सभी को बहुत ही यूजफुल रहा होगा हम ऐसा समझते हैं।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: मेरी हॉबीज तो बहुत सारी है, जैसे कि डांसिंग, खेलना, कूदना, आर्ट करना। तुम्हारी हॉबीज क्या है?
3: मेरी हॉबीज ये है, मेरे को खाना बनाना पसंद है और बहुत सारी चीजें, जैसे पढ़ना पसंद हो गया मेरे को। शिवांशी, आपकी क्या चीजें पसंद है? आप
4: डांस करना, सिंगिंग करना, ड्राइंग करना, अलग अलग चीजें बनाना और सबसे मेन खाना खाना, वो मेरी सबसे फेवरेट है।
3: आपको खाना खाना, मेरी खाना बनाना है।
5: क्या हो रही है बातें आपकी, इतनी सारी क्रिएटिव, कभी सुनाई दे रहा है खेलना, कभी आर्ट, कभी खाना बनाना, ये तो बड़ी सारी क्रिएटिव चीजें आप लोगों की हॉबीज हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं किसके बारे में?
6: हॉबीज के बारे में।
5: हॉबीज के बारे में, तो हॉबीज तो सब बच्चों की होती हैं, है ना? जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ जरूर पसंद होगा। आज हम हॉबीज के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में, अपने अपने नाम तो बता दीजिए।
4: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
2: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
7: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
8: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
9: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
10: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
5: ओके, तो सबसे पहले आप लोग सब लोग मुझे दो सबसे पसंदीदा हॉबीज बताओ, जो करने का आपको बहुत शौक है, जो खाली टाइम होता है तो आपको लगता है मैं यही करूँ।
2: खाना बनाना।
5: खाना बनाना, और
2: दूसरी ये है ड्राइंग करना।
5: खाना बनाना और ड्राइंग करना, ओके। हाँ मीक्षा,
11: मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है और पेंटिंग करना।
12: मेरे को पेंटिंग करना पसंद है और खेलना पसंद है।
10: दीदी, मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है।
5: दो बताओ उनमें से।
10: लोगों को हंसाना और खाना बनाना।
5: हंसाने के लिए क्या करते हो, वो एक हॉबी हो सकती है ना?
10: जोक सुनाना।
5: हाँ, जोक सुनाना, पढ़ना, वो आपकी हॉबी हो सकती है ना? और राघव को क्या पसंद है?
2: आर्ट और डांसिंग।
5: और शिवांशी को?
4: डांस करना और खाना खाना।
5: और राघव क्या बोल रहे थे?

0: दीदी मतलब है ना, जब पापा फ्री होते हैं तो पापा ज्यादा से ज्यादा सिंगिंग करते हैं.
1: सिंगिंग पसंद है आपको? ओके, वेरी नाइस. मजा आना और हॉबी, दोनों में क्या अंतर है?
0: दीदी हॉबी टैलेंट होता है.
1: वेरी गुड.
0: मजा करना मतलब एक किस्म से मस्ती करना होता है.
1: हाँ, हॉबी आपका टैलेंट होता है. रेडियो मधुबन में सीख सकते हो आप लोग, किसी के पास जाके भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो.
0: दीदी मेरी एक और हॉबी है.
1: क्या?
0: पियानो बजाना.
1: हाँ, पियानो बजाना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज है. अच्छा, हॉबी होने के फायदे क्या होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? कुछ फायदा होता है टैलेंट के बारे में पता चलता है?
0: दीदी उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है. पहले जब पापा छोटे होते हैं तो पापा धीरे धीरे कम आर्ट करते, फिर पापा को अच्छे अच्छे आर्ट बनाना आता है, फिर पापा आर्टिस्ट बन जाते हैं.
1: क्रिएटिविटी बढ़ती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट.
2: और हमारी हॉबी पे अगर कोई कॉम्पिटिशन आता है स्कूल में तो उसमें हम अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर सकते.
3: और अगर हम अपनी हॉबीज दूसरों को बताए तो इससे हमें स्टेज पर जाने का मौका भी मिलता है.
1: राइट,
4: बिल्कुल. हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट भी कर सकते
1: हैं. सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का. बहुत सारे फायदे हैं, है ना, हॉबीज के बहुत ढेर सारे फायदे हैं. तो जो भी हॉबी है उसको हमें थोड़े समय करना चाहिए कि उसको लॉन्ग टर्म करना चाहिए?
5: लॉन्ग टाइम,
2: जिंदगी भर करना.
1: जिंदगी भर करना चाहिए, बिल्कुल. तो हॉबीज आप लोग दिन भर में टाइम निकालते हो, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, तो हॉबी के लिए कहाँ टाइम बचता है आपके पास?
0: दीदी हमारे तो स्कूल ही नहीं चल रहे.
1: जब स्कूल चल रहे होते हैं तब,
0: जब हम फ्री होते हैं तब हम थोड़ी आर्ट बनाते हैं.
4: और रात को नींद नहीं आती, मैं तो यही लेके बैठ जाती हूँ.
1: अमीक्षा क्या बोल रही थी?
6: और जो शाम को हम रेडियो आते हैं उसमें भी हम लोग अभी सीख सकते हैं.
1: okay.
6: हमें कुछ सीखना होता
2: है. स्कूल में कई बार फ्री पीरियड मिलता था उसमें भी कर लेते हैं हम.
1: और अनुष्का कब करती है हॉबीज अपनी प्रैक्टिस?
7: जब टाइम मिलता है हम तो कर लेते हैं.
1: टाइम कब मिलता है आपको दिन में?
7: रात को.
1: रात को मिलता है, दिन में नहीं मिलता है. ओके.
3: मैं तो स्कूल से घर आने के बाद पहले थोड़ी देर सिंगिंग करती हूँ, फिर डांसिंग करती हूँ, फिर बाद में होमवर्क.
1: अच्छा, होमवर्क बाद में.
3: हाँ.
1: ओके.
3: क्योंकि तब होमवर्क कम होता है इसलिए.
1: अच्छा, होमवर्क कम होता है तब. ओके.
2: दीदी पहले हॉबीज जरूरी है, होमवर्क बाद में.
1: फिर होमवर्क रह गया तो अगले दिन क्या होगा? फिर
3: हम मैम को रिक्वेस्ट कर लेते हैं. मैम
2: प्लीज.
1: हाँ, होमवर्क भी करना है और हॉबीज भी, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है ना?
5: हाँ,
1: लेकिन करना दोनों है, ऐसा नहीं है कि होमवर्क छोड़ दिया जाए. अच्छा, ये बताओ हॉबीज को बेटर कैसे किया जाए, मतलब जो हमें पसंद है, जिसका हमें शौक है, उसको हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप लोग अपने बारे में बताना कि उसके लिए, जैसे आप हॉबीज बहुत समय से है ना आपकी,
3: प्रैक्टिस करनी, जैसे सिंगिंग है तो रियाज करना चाहिए, डांसिंग है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए डांस.
1: इस साल अपनी हॉबी को, डांसिंग को बेटर कैसे करोगे, कुछ ऐसा बताओ.
6: हम कहीं से सीख भी सकते हैं.
1: कहीं से सीख सकते हैं? ओके.
3: साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं फन के साथ.
1: हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना.
3: हाँ.
1: फन के साथ. ओके.
4: दीदी अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं.
1: अनुष्का का क्या लगता है?
6: उसमें कुछ नए स्टेप जोड़ दे तो वो और अच्छे बन जाते हैं.
1: हाँ, कितना अच्छा आइडिया है ना, उसमें नयापन लेके आना, है ना. मान लो अब हम बना रहे हैं ड्राइंग बहुत समय से, सीनरी बना रहे हैं, तो कुछ उसमें कुछ और ऐसा क्रिएटिव करना जो हमारी स्किल को और बढ़ाए. आजकल यूट्यूब पे भी तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है ना, सिखाते हैं लोग कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो. जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं कि और कैसे आप शेडिंग कर सकते हो, तो अपनी ड्राइंग को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें मैं और बेटर हुई या नहीं. और बेटर होने के लिए कुछ स्किल सीख सकते हो. और क्या लगता है मीक्षा को, कैसे बेटर हुआ जाए अपनी हॉबी में, क्या कर सकते हैं आप लोगों को? किसी और को कुछ लगता है?
2: ट्रेडिशनली जो पहले करा जाता था उनको वापस करने की कोशिश, जैसे अब जो मॉडर्न है वो तो बाय स्टैंड है ना, जो ट्रेडिशनल है वो बेसिक है. अगर बेसिक ही आ जाएगा तो फिर आगे का तो अपने आप ही आ जाएगा.
6: फिर माइंड में एक ही चीज रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं. कोई कोई क्या करता है, अगर नहीं होता तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना, गुस्सा हो जाता है.
1: ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उसको छोड़ नहीं देना. अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो करते रहना है. और आपने भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग. तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ सकते हो, ट्रेडिशनल डांस हो, ट्रेडिशनल आर्ट हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं. आप लोग ट्राई करके देखो, या किसी ने ट्राई करके देखा है कुछ ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल डांसिंग, जो हमारे देश के ट्रेडिशन से, आर्ट या फोक कल्चर जो है हमारा, किसी ने करके देखा है आप में से?
3: हाँ, जी, दी, दी.
1: क्या करके देखा है बताओ?
3: क्लासिकल डांस.
1: क्लासिकल डांस, ओके, ग्रेट. और किसी ने कुछ करके, नहीं भी करके देखा है तो बता सकते हो.
2: ट्रेडिशनल आर्ट कर रखे, मंडला आर्ट.
1: मंडला आर्ट, ओके.
3: शास्त्रीय संगीत.
1: किसने सीखा, आपने?
3: हाँ.
1: सीख रहे हो अभी?
3: हाँ.
1: ओके क्या सीख रहे हो उसमें?
3: उसमें मेरे पापा रियाज करवाते हैं पियानो पर.
1: क्या कोई राग होता है उसमें?
3: हाँ.
1: अरे वाह वेरी गुड. और नहीं भी कर रहे हो तो बता सकते हो, आगे प्लान कर सकते हो, इसमें क्या बात है, अब तो बच्चे हो, अभी बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो आप लोग. नहीं सीखा है तो भी बोल सकते हो.
4: नहीं मैंने तो सीखा है, अभी उसकी चल रही है प्रैक्टिस क्लासिकल डांस की.
1: ओके हाँ अमीक्षा क्या बोल रहे थे?
6: मेरी नानी मुझे खाना बनाना सिखा रही है.
1: खाना बनाना भी बहुत अच्छी चीज़ है ना. खाना बनाने को कुछ लोग कहते हैं वो आर्ट है, कुछ लोग भाई हॉबी तो है ही है लेकिन ज़रूरत भी है ना, सबको आना चाहिए खाना बनाना. एकदम छोटे हम तब नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे, पर धीरे धीरे बड़े होते हो.
4: ज़्यादा खाना बनाने में को कम आता है, मतलब ऐसे ही मुझे चावल छोंकने होगा, चावल बनाने होगा, ऐसी कुछ चीज़ें.
2: नहीं थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है, बस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में है.
6: बनाना तो मुझे भी आता है लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ.
1: क्या बनाना आता है आपको?
6: मैगी
1: बनानी आती है.
3: दीदी मैं तो नई नई डिशेज ट्राई करती हूँ, फिर अपने घर में सबको खिलाती हूँ और बाहर भी रेडियो में भी सबको खिलाती हूँ.
1: नई नई डिशेज ट्राई करते तो हो आप.
6: और दीदी मेरी नानी ने खाना बनाना सिखा रही है ना, तो उसमें मुझे अभी तक सब्जी बनाना आ गई.
1: अच्छा कौन सी सब्जी बना लेते हो आप?
6: मैंने कल बैंगन की सब्जी बनाई थी, परसों मैंने वो फूल गोभी की सब्जी बनाई.
1: अरे वाह क्या बात है.
3: दीदी मैं केक बना लेती हूँ, पोटैटो नगेट्स बनाती हूँ, फ्राइज बनाती हूँ, जैसे समर के लिए ड्रिंक्स होती है आम पन्ना वगैरह भी बना लेती हूँ, सब्जी रोटी चटनी.
1: सीख रहे हो आप और बना भी लेते हो. वेरी गुड. अनुष्का तो अभी छोटी है ना, तो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे.
6: दीदी लाइम जूस और सिकंजी तो मैं भी बना लेता हूँ.
1: बना के पिलाते हो सबको घर में? नहीं तो पिलाया करो ना मम्मी को.
6: मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ तो मम्मी मना करते है, पूछता ये बोलती है कि तेरे हाथ कड़वा हुआ इसीलिए पीती नहीं है, तो मेरी क्या गलती है इसमें?
1: हाँ ये तो कोई गलती नहीं है आपकी, अगर कोई मना कर रहे हैं तो क्या करेंगे है ना, अपने लिए बनाना पड़ेगा फिर तो.
6: शिवांशु तो सबसे अलग जवाब देती है, तेरा हाथ का कड़वा होएगा मैं खुद बनाऊंगी.
1: क्या क्या डालते हो आप उसमें?
6: मैं पहले पानी डालता हूँ, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और फिर नींबू.
1: अरे वाह बनाना तो अच्छे से आता है आपको, अच्छी बात है.
3: दीदी मैंने अभी अभी पिज्जा ट्राई किया.
1: ओके
4: दीदी मैं तो रोज रात को घर पे नींबू पानी पर बनाकर पूरे घर वालों को पिलाती
1: हूँ. सबको पिलाते हो? वेरी गुड बहुत अच्छी बात है.
4: सोचोगे नहीं जैसे पापा घर में मुझे तुरंत बोलते सबके लिए नींबू पानी बना.
1: गर्मियों में तो नींबू पानी बहुत फायदा करता है ना.
2: पिज्जा से याद आया कल मम्मी ने ब्रेड पिज्जा बनाया था.
1: अरे वाह तो अब देखो मम्मी लोग कितना अच्छा अच्छा मेहनत करते हैं ना, मम्मी हो नानी हो दादी हो घर में कोई भी हो, पापा लोग भी बनाते हैं मेहनत करते हैं, है ना. आपकी हॉबीज एक और फायदा है हॉबीज का, हमारी दूसरों को भी बेनिफिट देती हैं. हमारी हॉबीज कैसे बेनिफिट देती हैं दूसरों को बताओ?
3: कुकिंग से.
1: कुकिंग करते हैं तो दूसरों को खाने को मिलता है अच्छा अच्छा.
2: किसी का कुछ ऐसे कोई आर्ट बनाना हो तो हम बना के दे सकते हैं, सिखा सकते हैं.
1: हाँ हम उसको सिखा सकते हैं. और हमारी हॉबीज दूसरों के लिए फायदेमंद कैसे है क्या लगता है आप लोगों को?
6: हम उनको खाना बना के खिला सकते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि कैसा बनाया है.
4: और अगर दीदी कोई स्टेप नहीं आता तो हम उनको बता सकते हैं कि इसको ऐसे करना है.
1: राइट.
4: और अगर डांस के लिए कोई इनको गाना चाहिए होता तो हम
6: लोग उनको सिखा भी सकते हैं.
1: सिखा सकते हैं है ना, कुछ बनाना आता है तो खिला सकते हैं. मान लो जैसे आर्ट आप लोगों की बहुत अच्छी है या आप सीख भी रहे हो तो भी, जैसे मंडला आर्ट है कुछ यूनिक आर्ट है तो उसको आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट भी तो कर सकते हो, बजाय कि आप कुछ खरीद के दो किसी को.
4: तो मदर्स डे था ना मैंने उनको कार्ड बना के दिया था
1: मम्मी को. अरे वाह
6: वो तो मैंने और रूहानी ने भी बनाया था.
4: दीदी आपको पता है कार्ड कैसे बनाया था? उसके ऊपर मैंने कॉटन चिपकाई थी और उसके ऊपर पता है मैंने बहुत सारी चॉकलेट चिपकाई थी.
1: वेरी गुड क्रिएटिव. तो ये चीजें भी देखो बहुत अच्छी है, आपके मम्मी कितने खुश हो गए होंगे है ना.
6: पिंक पेपर लिया उसको बादल के शेप में काट के उसके अंदर एक गुड़िया डाली और जब वो खोलता है ना तब वो गुड़िया बाहर निकल के बोल रही थी हैप्पी मदर्स डे.
1: देखो कितने क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं. तो ये सब चीजें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो. और डांस से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जो सुनता है उसको भी खुशी होती है, तो आप किसी को अपनी हॉबी से खुशी भी दे सकते हो, है ना. कितने सारे बेनिफिट्स. तो इसलिए हॉबीज को तो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए.
4: ये तो उसे हमारे मतलब जो भी हॉबीज होते हैं ना उससे पता चलता है कि हाँ इनको ये ज्यादा पसंद है वो ज्यादा पसंद है, तो इनसे सीख सकते हैं हम.
1: हॉबीज से अच्छा दूसरों को तो बेनिफिट हो गया, हमें क्या फायदा होता है हॉबीज होने से?
4: दीदी हमें ये फायदा होता है उससे जो हमारी हॉबी होती है उसे हम खुद सीखते हैं. जैसे मेरे को डांस सीखना है तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आ जाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1: कुछ नया नया सीखते रहेंगे,
4: नया नया सीखते रहेंगे. जैसे खाना बनाना होता है, खाने में जैसे मेरे को ये चीज नहीं आ रही तो मेरे को पहले सिखाया तो उसको थोड़ा याद करके बना लेते हैं.
1: अनुष्का क्या लगता है आपको क्या फायदा होता है? हॉबीज का हमको कोई फायदा होता है? क्या फायदा होता है जो आपको लगे बताओ, कोई बेनिफिट होता है हमें कि मैं डांस करती हूँ या मैं आर्ट करती हूँ, उसका मुझे क्या फायदा है?
0: हम किसी और को जैसे आर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर कोई मतलब ऐसे सैड है तो हम उसको गाना सुना के खुश कर सकते हैं।
1: अपने को क्या फायदा है, मुझे मेरी हॉबीज का क्या फायदा है?
0: दीदी जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, हॉबीज और ज्यादा इंक्रीज होगी,
1: क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ।
6: और दीदी हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है, तो हम उनको भी सिखा सकते हैं।
1: मुझे क्या फायदा है मेरी हॉबी का? लेकिन आपको आपकी हॉबी का क्या फायदा है? आपको डांस करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, इससे आपको क्या बेनिफिट है? सोचो सोचो।
4: डांस करने से पता है बॉडी को फायदा है,
1: बॉडी को फायदा है, हेल्दी होती है बॉडी।
4: कुकिंग करने से पता है हम खुद से मतलब खाना बनाना सीखते हैं।
1: राइट।
0: दीदी अगर अपा को किसी मतलब ऐसे कोई भी अपना कंपटीशन में नाम लिखवा देता है दोस्त, मान लो मैंने अपने किसी दोस्त को मैंने बताया है कि मेरे पास ये हो और उसके उधर कुछ हो रहा है, तो वो बताएगा उनको कि ना मेरा दोस्त है, तो हमारा पार्टिसिपेट हो सकता है और हमारी हॉबीज और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
1: हाँ, कॉम्पिटिशन से अपनी हॉबीज को और हम आगे ले जा सकते हैं।
6: और दीदी अगर हमें कुकिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना होता है तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग उसमें जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। अगर हमें अच्छे से खाना बनाना आता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइज भी ले आ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और दीदी हम जब खाना बनाते हैं ना और दूसरों को चखाते हैं, तब अगर हमारी कोई गलती हो तो हमें सुधार भी सकते
1: हैं। सुधार भी सकते हैं, बिल्कुल।
0: दीदी मतलब हम किसी और को खाना खिलाते हैं, कुछ और देते हैं, तो हमको खुशी भी मिलती है,
1: हमको खुद को खुशी मिलती है।
2: दीदी इतना खाना खाना सुन के भूख लग जाएगी।
1: हाँ, भूख लगने लगी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे दोस्तों को कहते हैं कि भाई चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड अगली बार आपको सुनने को मिलेगा इसी टाइम पे, और हम जाते हैं कुछ खा लेते हैं। चलो, तो फिर सबकी हॉबीज तो हमें पता चली गई हैं, और जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनकी भी बहुत सारी हॉबीज होंगी, और उनको ये जरूर पता होगा या पता चल गया होगा कि हॉबीज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, उसके बड़े सारे फायदे हैं, है ना। मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बॉडी के लिए फायदेमंद है, खुशी आप खुद भी ले सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो, कंपटीशन में आगे जा सकते हो, है ना, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, कितनी सारी चीजें। तो इसलिए हॉबीज को कभी छोड़ना चाहिए
3: नहीं,
1: कभी नहीं। और एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है ना, उसको भी कम कर सकते हो आप हॉबीज के साथ। कभी थोड़ा सा डांस कर लिया, गाना गा लिया, तो वो हो जाता है छू मंतर, ठीक है। तो हॉबीज के हो गए बहुत सारे बेनिफिट्स। तो फिलहाल रेडियो मधुबन से लेते हैं इजाजत, और हमारे दोस्तों को कहते हैं बाय बाय
3: बाय बाय,
1: और थोड़ा खुशी से
3: बाय बाय।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों, मान लीजिए 2026 में जो प्रॉमिसेस हमने अपने आप के साथ किया था कि हम ये करेंगे 2026 में, क्या दृढ़ निश्चय के साथ हम वो कर पा रहे, या फिर जो हमारे लक्ष्य है उसके लिए हम पहला कदम उठा चुके हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। क्योंकि दृढ़ निश्चय अगर हमारे अंदर होगा तभी ही हम उसे पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं प्रिया दीदी जी, जिनको आप जानते हैं, आप उन्हें कई बार सुन चुके हैं, तो इनसे बेहतर एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं जो हमें दृढ़ संकल्प के इस मूल्य के बारे में सरल शब्दों में, सरल तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे। दीदी ने MBA कंप्लीट किया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उनके नस नस में बचपन से ही था, और उसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा है और औरों को भी समझा रहे हैं। यूथ हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो घर में रहने वाले पेरेंट्स हो, सबको वो सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जो निजी लाइफ है उसे कैसे जीना है बेहतर तरीके से, पॉलिश्ड तरीके से। तो प्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं आज जो मूल्यों के बारे में, क्योंकि सपनों को अगर हकीकत में लाना है तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो अगर हम दृढ़ निश्चय ये बात कहते हैं, ये तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, आप इसे सरल तरीके से कैसे समझाना चाहेंगे?
1: जी, बहुत अच्छा जो मैंने सुन रही हूँ शुरू से ही आपने लिया है कि जनवरी में हम लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, खुद से किए हैं, लोगों से किए हैं, शायद खुदा से भी किए हैं।
0: फरवरी महीने में भी हमने किया है, जैसे प्रॉमिस डे और भी डेज थे।
1: हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि दृढ़ निश्चय कितना है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि दृढ़ निश्चय माना कोई भी चीज पक्का करना, और पक्का करना इतना कि उसके ऊपर हमें पूरा निश्चय भी हो कि हाँ ये मैं करूँगा या करना ही है
0: जी।
1: तो इसको हम कहें कि कोई भी चीज़ जो मैं ठान लेता हूँ या अपने अंदर पक्का कर लेता हूँ तो उसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय के लिए जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो कमिंग जनरेशन है जिसको हम जेंजी कहते हैं
0: जी,
1: तो इनमें हमने देखा है खास, हालांकि ये पहले से ही हो रहा है, सिर्फ इन जनरेशन में नहीं आया है, उनके फादर मदर उनसे भी पहले से ये चीज शुरू हो गई है कि हमारे अंदर ये दृढ़ता की कमी बहुत ज्यादा आने लग गई है
0: जी।
1: हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगे हैं अपने संकल्पों में। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं है
0: जी।
1: तो ये चेंजेस अगर आते हैं तो एक मानवीय जो कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत श्रेष्ठ अगर हम किसी का देखते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का है या किसी भी व्यक्तित्व जो आज हम देखते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बहुत जो लोगों के दिलों पे है, तो उनका हमने देखा है कि दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा होता है
0: जी।
1: वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं
0: जी।
1: तो एक ये बहुत बड़ा कारण है उनके जीवन का, दृढ़ निश्चय, जिसकी वजह से वो आज जहां है उनको आज पूरी दुनिया जो है सम्मान करती है
0: जी। दृढ़ निश्चय मतलब एक मानसिक स्तर पे हम सोच लेते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे आजकल कहते हैं कि आप अफर्मेशंस लो, आप ही मैनिफेस्ट करो, ये तो हम करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, और उसके लिए बोलते हैं कि आप फेक उन चीजों को अपने दिमाग में लूप मोड में रिपीट करो जब तक आप इसको कर सकते हो, मेक कर सकते हो, तो ये तो करते हैं। लेकिन वो जो स्तर है वो सूक्ष्म में है, तो ये स्थूल में क्यों नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल में क्यों अचीव नहीं कर पाते?
1: क्योंकि जितने स्टेटमेंट आपने बोले हैं उसमें कुछ चीजें अगर आप नोट डाउन करें कि पहले ही आपने कहा फेक है, तो आपका माइंड जानता है ये फेक हो रहा है, जबकि माइंड को ये सूचना नहीं देनी है। इट्स अ माइंड गेम, इट इज वेरी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल टू, कि माइंड को ये सूचना नहीं देना है कि फेक करना है जी, मैं नकली बोल रहा हूँ जी। हालांकि हम ये चीज उसे बोलकर नहीं बता रहे, लेकिन ये अंदर है,
0: सबकॉन्सियस माइंड में है।
1: हाँ, और तभी मुंह से निकला है कि ये फेक हम अभी कर रहे हैं जब तक कि ये अचीव हो जाए। और दूसरा सेंटेंस जो आपने कहा कि ये करेंगे हो जाएगा, लेकिन इसको प्रेजेंटली फील करना होता है कि ये मेरे साथ हो रहा है।
0: ओके, उसको फील करना। हाँ, लेकिन माइंड जानता है ना कि फेक कर रहे हैं, लेकिन
1: माइंड जानता है, लेकिन तभी जानता है जब आप इसको कह दो कि फेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम देखते हैं, जो बोला गया है कि लॉ है एक दुनिया का जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, जो धरती के लिए भी बोला जाता है। तो आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो सोच रहे हैं या चाहते हैं भविष्य में अचीव करने को, उसको इतना महसूस करें कि वो आपको प्रेजेंट में फील होने लगे कि वो आप कर रहे हैं।
0: जी,
1: फॉर एग्जाम्पल, जो एक रियल एग्जाम्पल भी था इसमें, कि एक व्यक्ति थे और उनका जो बेटा है वो बेसमेंट में जाता है, विदेश में बेसमेंट में स्टोर होता है
0: जी।
1: तो बच्चा नीचे जाता है और नीचे कुछ गंद सा, बहुत पुराने टाइम का एक बास्केट है, डब्बा है, कार्टन टाइप है, उसको वो खोलता है कि क्या है इसमें। बच्चा छोटा ही है, अभी 5-7 साल का होगा, तो उसमें से वो एक पिक्चर उठाकर ले आता है जो पिक्चर उसके घर की है जिसमें वो रह रहा है
0: जी।
1: तो वो मिट्टी मिट्टी हो रखा तो उसको बहुत वो क्लीन करता है कि मेरे घर का पिक्चर इतना सुंदर है, यहाँ क्यों पड़ा है। तो वो बहुत कॉन्शियस है पापा से पूछने के लिए कि ये गंद में क्यों पड़ा है। तो वो ऊपर जाता है और पापा से पूछता है कि पापा ये नीचे क्यों है
0: जी।
1: तो पापा थोड़ी देर के लिए सुन हो जाते हैं और सुन होने के बाद बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं कि बच्चे आज से 20 साल पहले
0: जी,
1: या कुछ साल पहले, एग्जैक्टली नॉट द 20 लेकिन कुछ साल पहले, काफी साल पहले, जहां मैं शून्य पे खड़ा था, तो तब मैंने ये घर देखा था, ये पिक्चर मुझे मिली थी
0: जी,
1: और ये पिक्चर मैंने अपने बेड के आगे लगा दी थी
0: जी,
1: ठीक है। और उसके बाद डेली जब उठता था इस घर का देखता था और विजुलाइज करता था मैं इस घर में घूम रहा हूँ, और वो जो सी शोर फेसिंग था ऐसा कुछ, तो मैं वहां खड़ा हूँ और समुद्र की लहरों को देख रहा हूँ, और वो घर फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचा, देखा, विजुलाइज किया, मैंने डाई हार्ड मेहनत की है और आज मैं उसी घर में खड़ा हूँ।
0: ओके,
1: तो यू हैव टू फील इट कि इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, वो मेरे साथ अब भी हो रहा है, ये माइंड को सूचना देना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: उसके लिए आपको विजुअलाइज, सिर्फ बोलना इज नॉट कंप्लीट टास्क, यू हैव टू फील इट
0: जी।
1: ठीक है, कोई भी चीज अगर जिसको एफर्मेशन आप वर्ड दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू अटर दैट कि आपने रिपीट कर लिया बार बार, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आंसू आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फेक है और आपको खुद भी फील हो रहा है और माइंड को पता नहीं फेक हो रहा है, क्योंकि इमोशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है
0: जी।
1: यू हैव टू क्रिएट द इमोशंस अकॉर्डिंग टू दैट कि वाकई में मैं बहुत खुश हूँ।
0: तो उसके लिए कुछ करना होगा
1: ना, उसके लिए विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप किस चीज से खुशी होती है, कि गुलाबों के बीच में मैं बैठा हूँ, गार्डन में हूँ, अगर आपको गार्डन पसंद है। लेकिन अगर आपको खेलना पसंद है तो बहुत सारे बच्चों के बीच में हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग,
0: ओके,
1: आई एम लिविंग द बेस्ट,
0: उसको विजुलाइज करना।
1: विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इमोशंस उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें कि जो आपने बोला वही आप देखें और वैसा ही फील करें। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ पर मेरे चेहरे पे एक भी स्माइल ही नहीं है, तो मेरा जो इमोशन है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को फील करना है कि यस मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट इट। मैं खुश हूँ बिकॉज आई एम अलाइव, मैं खुश हूँ बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, रेडियो में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो यू हैव टू क्रिएट दैट इमोशन।
0: ओके,
1: तो ये जो टास्क होगा जो 10 साल में होने वाला है वो बहुत फास्ट होगा।
0: ओके जी, तो कुछ और चीजों के बारे में पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम खुश रहने की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये
1: जी।
0: बाकी चीजें तो अचीवमेंट्स है, स्थूल रूप में जॉब, ये सब हम कोशिश करते हैं और मिल भी जाता है, लेकिन खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं हर दिन खुश रहें जो भी परिस्थिति हो, लेकिन नहीं रह पाते। तो जब परिस्थिति ऐसे हो प्रैक्टिकल लाइफ में
1: जी,
0: किसी की डेथ हो गई, परिवार में झगड़ा चल रहा है, कोई जमीन वगैरह की विवाद चल रहे हैं, तो उस बीच में कैसे खुश रह सकता है कोई?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं किसी की डेथ का ही दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लौट के नहीं आती है
0: जी।
1: क्योंकि जो जमीन का विवाद है उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकल जाता है या कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है, चाहे जमीन नहीं मिलती है लेकिन कुछ तो मिलता है, नहीं मिलता है तो कम से कम एक तसल्ली मिलती है, लेकिन स्टिल यू आर अलाइव। लेकिन जब व्यक्ति ही जीवन से चला जाता है तो एक बहुत बड़ा धक्का है किसी के लिए। लेकिन उस समय भी हम ये जरूर सोच सकते हैं कि जो जैसे स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो होता है, जो हम ब्रह्मा कुमारीज में भी समझाते हैं, और सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में है, आप शास्त्रों में देखें, आप बाइबल में देखें, कुरान में देखें, तो सदा ही ये लिखा गया है कि जो मेरा था वो शारीरिक रूप में जीवित नहीं है, ओके फाइन आई लॉस्ट हिम, ठीक है, या हर, लेकिन वो जिंदा है
0: जी,
1: ये मानना एक खुशी दे देता है। जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं, सीरियसली जब हम किसी से मिलते हैं जिसका नियर एंड डियर वन जिन्होंने शरीर छोड़ा होता है, तो हम उनको यही कहते हैं कि वो जिंदा है। बस उन्होंने घर चेंज किया है। और अगर जैसे एक माता पिता होते हैं और उनका बच्चा जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, विदेश में जॉब लग जाती है, तो माता पिता को खमी तो खलती है
0: जी।
1: लेकिन दे फील हैप्पी कि हाँ मेरा बच्चा विदेश में डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है।
0: तो ये एक थॉट अपने मन में लाना बहुत जरूरी है।
1: यस, लेकिन उसके लिए थर्ड पर्सन ही जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक एंड डाउन है। तो उस समय हम उनको यही बोलते हैं कि वो जिंदा है, बस घर छोड़ा है, किसी और के घर में प्रवेश किया है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं लेकिन आप रो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अपशगुन है। तो जब ये बात वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, दे अंडरस्टैंड्स कि आपका बेटा वहां जन्म ले रहा है और वहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं, बड़े ढोल नताशे शुरू हो चुके हैं, और आप यहाँ रो रहे हो, तो वहां उसके लिए अपशगुन क्रिएट होगा।
0: ओके,
1: और वहां क्या हो सकता है उसके साथ प्रॉब्लम, वो आप यहाँ नहीं जान सकते क्योंकि हमें नहीं पता वो किस घर गया, लेकिन गया है। तो जब ये चीज वो समझते हैं तो दे ट्राई टू स्टॉप देमसेल्फ, एटलीस्ट कम होता है उनका,
0: क्योंकि जो जाता है उसको हमें हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी जो हम कहते हैं,
1: यस,
0: तो दिल से निकल।
1: हाँ, तो हम यही उनको बोलते हैं कि जैसे अभी महाली में अगर डेथ हुई है एक दो दिन में, तो हम उनको यही समझाते हैं कि 13 दिन तक 15 दिन तक सोल जो है वो आसपास है। आप रोकर दूसरे व्यक्ति के साथ दुख साझा कर रहे हैं, ठीक है, आप रो रहे हैं, आपको दुनिया समझा रही है, आपके पास कोई है जो आपके साथ बैठा है, ठीक है, आपका रोना देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। वो आपको देख रहा है और वो बहुत रो रहा है, क्योंकि वो अपना रोना आपको शेयर भी नहीं करा सकता, आपको चुप भी नहीं करा सकता। तो इसीलिए आपको उसको फील करके ये याद रखिए कि आपको रोता हुआ देखकर वो कैसा कर रहा होगा फील। तो जब ये बात भी वो समझते हैं कि हाँ मेरे रोने से नेचुरली मेरे से प्यारा था, चाहे वो जवान बेटा है, चाहे वो पति है या पत्नी है, तो जब वो ये चीज़ समझते हैं तो भी उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ कि मुझे थोड़ा मतलब जो है कंट्रोल अपना करना चाहिए। तो उसके बजाय, क्योंकि वो जा रहा है, उसको जाना ही पड़ेगा बिकॉज अभी वो उस मोड पे है
0: जी,
1: तो जब कोई घर से जाता है तो आप उसको गंदा बक्सा, गंदे कपड़े, गंदे खाना, ये बासी खाना ऐसा पैक करके देंगे?
0: बिल्कुल नहीं।
1: जब भी जाएगा तो आप उसको बढ़िया बेस्टेस्ट आप देंगे। तो अभी भी वो जा रहा है तो यू हैव टू गिव योर बेस्टेस्ट कि बेस्ट फीलिंग्स, बेस्ट थॉट्स जो भी है, उसको एनर्जी की जरूरत है बिकॉज ही इज इन अ चेंज मोड। और जब हम चेंज मोड में होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रमोशन भी हुआ है, यू आर बिकमिंग द बॉस ऑफ दिस एफएम, ओके, तो भी आपको एनर्जी चाहिए
0: जी।
1: यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर, आपको और पेशेंस चाहिए, तो एनर्जी चाहिए होता है। तो ही इज ऑल्सो चेंजिंग द प्लेस, हर चीज चेंज होने वाला है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका रिलेशंस, उसका घर, उसका प्लेस, उसकी ओनरशिप, हर चीज चेंज हो रही है। तो ही नीड्स द एनर्जी मोस्ट, उसको उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब ये चीज भी समझते हैं जब वो, तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहती कि वेरी फर्स्ट डे ही वो रोना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो संभलते हैं
0: जी। बिल्कुल, तो ये संकल्प जो है ये बहुत ज़रूरी है। इस 2026 शुरुआत में ही हमें ये सारी चीज़ें दीदी से जानने को मिला कि कैसे कोई पर्सनल लॉस है, कोई चला गया है आपके लाइफ से, तो किस तरीके से आप उसके साथ सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में पेश आएंगे, कैसे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आइए जानते हैं दृढ़ निश्चय के बारे में। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। तो दीदी से जानना चाहूँगी कि बहुत से श्रोता हैं और जो भी हमारे दोस्त जॉब करते हैं, तो ये कहते हैं कि 2-3 बार असफल होने के बाद वो हार मान लेते हैं
1: जी।
0: तो असफलता के बाद भी दृढ़ निश्चय को कायम रखना कितना ज़रूरी है और कैसे रखें?
1: अब इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बस 4 घर मिलाइए,
0: 4 लोगों
1: से,
0: ओके,
1: और किसी का भी पता कर लीजिए जो कई बार असफल ना हुआ हो, एक ही बार में टॉप लेवल पे, हर चीज़ में टॉप लेवल पे रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है
0: जी।
1: सबके साथ फेलियर्स अटैच्ड हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जिन्होंने बल्ब इजाद किया है तो वो 10,000 बार फेल हुए हैं
0: जी,
1: ठीक है, तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो हम समझ सकते हैं। हम तो 10 ही बार हुए हैं, लेकिन क्या 10 बार फेल हुए तो फिर क्या लगे रहें? यस, लगे रहें इफ़ यू थिंक द थिंग इज़ राइट, ये जो मेरा लक्ष्य है वो सही है, मैं सही दिशा पे हूँ, तो लगे रहने में कोई बुराई तो है ही नहीं। इसीलिए फेलियर हो रहा है तो ये भी एक चैप्टर है जो मुझे समझना है। तो जो एडिसन वॉटसन थे उन्होंने भी यही कहा था कि 10,000 बार फेल होने से मुझे ये पता चला कि 10,000 तरीके जो मैंने यूज किए थे उससे बल्ब नहीं बनता, उससे बल्ब नहीं जलता
0: जी।
1: तो उन्होंने उस फेलियर को भी चैप्टर काउंट किया कि इट वाज अ लेसन फॉर मी कि इससे बल्ब नहीं जलेगा।
0: राइट,
1: ओके। तो अगर हम हर फेलियर को फेलियर वर्ड ना लें, दिस इज अगेन द फर्स्ट जो हमने बात किया कि मैं वर्ड्स को कैसे ले रहा हूँ। आई हैव गिवन माय माइंड कि मैं फेल हो गया हूँ, तो माइंड उसको और इमोशनली मुझे डाउन कर देगा।
0: ओके, डिप्लीट होता है तो उसमें की कोई मतलब हार्मोन्स और ये सब सब
1: सब कुछ पता नहीं, मल्टी मिलियन सेल्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं कितना, वो सारे सेल्स आपके एक वर्ड से चेंज होने लग जाते हैं, वो सारे सेल्स नेगेटिवली चार्ज होने लगते हैं, हार्मोन्स भी नेगेटिव होने लगता है, सारा जो केमिकल सिक्रेशन है, आपका स्टमक है, सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। और अगर आप बहुत दिन तक हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ जाता है। तो इट्स अ वेरी बिग आपका साइन है ये
0: जी,
1: कि आप फेलियर फेलियर फेलियर में ही सोच रहे हैं, तो डॉक्टर फिर मेडिसिन देने लगता है कि बच्चा ये खाओ। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है, तो दैट मींस यू आर चार्जिंग योर बॉडी फुल्ली नेगेटिव, आपने कर दिया है। तो इसीलिए फेलियर को फेल कहकर माइंड को नहीं खिलाएं, उसको यही कहें कि इट वाज अ चैप्टर एंड आई लर्नड इट।
0: ओके,
1: तो फिर मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कहा कि लक्ष्य मेरा सही है तो मुझे आगे बढ़ना है
0: जी।
1: हाँ, लक्ष्य में मुझे अगर लगता है कि नहीं, तो फिर सलाह लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, या जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं मैं उनसे सीख सकता हूँ, सीख करके फिर मुझे आगे बढ़ना है
0: जी।
1: तो इसलिए अभी जो मुझे करना है कि विशेष जो मेरा फेलियर आ रहा है, आगे भी होगा। लाइफ इज लाइक अ फेलियर एंड सक्सेस मिक्सचर है। कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई भी टॉप पे नहीं बैठा है, कोई भी नहीं, चाहे वो विवेकानंद स्वामी जी हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक बार में ऊपर नहीं पहुंचा है
0: जी।
1: इनफैक्ट भगवान भी अगर हम देखते हैं तो वो भी पूरी दुनिया से गालियां जो हम देखते हैं वो इंसानों से खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान भी फिर उनको अपना बच्चा समझ करके माफ करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए ही इज वेरी पॉजिटिव
0: जी।
1: और हम भगवान तक को गाली दे रहे हैं इसलिए आई एम टोटली नेगेटिव। इसलिए अपना चेंज करना, इट्स टाइम टू चेंज आवर सेल्फ
0: जी,
1: कि मैं अपना वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच कैसा रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ, मैंने फेलियर सोचा है और अपने कमरे में फिर वही ऑरा एंड वही जो है मैं वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा हूँ, तो वो मुझे वापस टकराएगा क्योंकि मैं बंद कमरे में हूँ। हाँ, ओपन में बैठा हूँ तो ओपन जैसे गार्डन या टॉप ऑफ द हिल बैठा हूँ और वहाँ कुछ सोच रहा हूँ, तो जो नेचर है वो मुझे गुड वाइब्स भेजती है आज भी।
0: ओके,
1: ठीक है, हालांकि नेचर बहुत डिस्टर्ब है लेकिन अब भी उसमें बहुत पावर है। तो जब ऐसा डाउन फील करते हैं तो जो चीज आपको पसंद है, पेट्स हैं, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुछ भी है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको टीवी पसंद है, आपको खाना पसंद है, हैव इट, उसके साथ बैठे और फेलियर को यही चैप्टर है और अब मुझे आगे बढ़ना है।
0: ओके, जैसे आज हम एक कॉलेज में गए थे तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये शेयर किया कि फेल हो गए 10वीं में 12वीं में, सुइसाइडल जो थॉट्स थे वो भी आए कि सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि ताना माने लगते हैं लोग पड़ोसी, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया और आज वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि जस्ट कुछ परसेंटेज के कुछ मतलब 0.01 भी कम है तो भी वो लोग ये कदम उठा लेते हैं। तो उनको कैसे, क्या कहेंगे, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ फिर से चैप्टर शुरू करें नए?
1: इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे 99.9 आए हैं लेकिन मेरा उम्मीद था कि 100 आ जाए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं कि मेरा जो मैंने मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए सोचा था, ठीक है, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हमेशा पेरेंट्स को बोलना चाहिए, जो मैंने अभी एक देखा था, मैं कहीं गई थी, आई फॉरगॉट द प्लेस, लेकिन वहाँ साइंटिस्ट हैं, मम्मा भी साइंटिस्ट हैं, फादर भी साइंटिस्ट हैं
0: जी।
1: और उन्होंने अपने बेटे को बोला हुआ है, इट वॉज इन 10th आई गेस, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला था डोंट टेक द टेंशन, बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में था बिकॉज ऑफ द मैथ्स
0: जी।
1: तो मम्मी पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हेल्प भी होती ही होगी, स्टिल ही वॉज नॉट सो गुड इन मैथ्स, तो वो इतना स्ट्रेस में था और नहीं पता, वो अपने मम्मी पापा को पूरा शेयर नहीं किया एंड ही डाइड, ही जम्प्ड ऑफ द बिल्डिंग। तो पेरेंट्स शॉक में हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि स्ट्रेस नहीं लेना
0: जी।
1: तो ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन चीजें फिर भी जुड़ी हुई हैं, एक अकेले का थॉट उसके साथ काम नहीं कर रहा है। पेरेंट्स हैं लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, बच्चा देख रहा है कि भाई मैं तो जीरो हो रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा क्या है। तो वो गैप को फील करना एक बहुत बड़ी जरूरी है
0: जी।
1: मेरे पापा बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, आई एम डूइंग नथिंग, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस की बात हो जाती है
0: जी।
1: फिर मेरा फ्रेंड सर्कल क्या बोल रहा है, तेरे मम्मी पापा तो साइंटिस्ट है
0: जी।
1: और तू ऐसा तो ये क्या चल रहा है। तो वो अकेले नहीं होता है जब वो ऐसे थॉट्स में पहुंचता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे डिस्कस कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं
0: जी।
1: कुछ स्ट्रांग होते हैं कि खुद ही कोप अप कर लेते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करें
0: जी।
1: अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं, जीरो आए हैं, तो भी मुझे शेयर करना है, क्योंकि लाइफ मुझे पढ़ाई में जीरो चाहती है, शायद स्पोर्ट्स में हीरो चाहती है। लेकिन हो सकता है मैथ्स में जीरो चाहती है, लेकिन कॉमर्स सेक्शन में टॉपर बनाना चाहती है। लाइफ कभी भी किसी को जीरो नहीं देती, कभी भी नहीं। हमने बेगर्स भी देखे हैं जो करोड़पति निकले हैं। तो लाइफ कभी किसी को जीरो नहीं देती है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि मेरा हर बच्चा नालायक से नालायक भी, मैंने उसको एक गुण जरूर दिया है, यानी उसके लिए उसको दिया है ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसीलिए अगर मैं ऐसे मोड पे हूँ तो आई मस्ट शेयर, ठीक है, किसी से भी जिससे आप अच्छा फील करते हैं। और मेरा कोई शेयरिंग सर्कल नहीं है, हेल्दी सर्कल नहीं है, तो फिर आप गॉड से बात करें। लेकिन लोगों को गॉड से बात करने में सबसे ज्यादा टफेस्ट लगता है,
0: तो गॉड को कुछ और रिलेशनशिप,
1: फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन वही है, ये लिंक लाने में ना टाइम लगता है, एक दिन से तो नहीं बनता है। तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, या कुछ भी, आज ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर। कोई टेंपल में जाकर आपको मेंबरशिप नहीं लेने की जरूरत है, या कहीं भी नहीं, आप गूगल करें एंड यू कैन गेट द वर्जन्स, यू कैन गेट द टाइप ऑफ मेडिटेशन,
0: एआई से भी बात कर सकते हैं,
1: बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं उसको उतना अच्छा नहीं लेती हूँ, बिकॉज इतनी दुनिया में इंसान है एंड स्टिल आई एम टॉकिंग टू अ कंप्यूटर। तो मेरा लेवल जो आगे,
0: इंसान ढूंढना बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है हमारी लाइफ में, यू हैव टू चेक। पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं नहीं कर रहा हूँ,
0: क्योंकि हम शायद इंसानों को फेस करना नहीं चाहते।
1: हाँ, कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी बात बताने से डरते हैं कि कहीं लीक आउट ना हो जाए।
0: लीक आउट के साथ साथ वो जज करते हैं हमें, उस तरीके से देखते हैं। हाँ, हर बार,
1: बिल्कुल, तो इसलिए एआई से बेटर है भगवान, कहीं ज्यादा बेटर।
0: राइट राइट, कोई तुलना ही नहीं है,
1: कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मेड ही है। और इसका जो आज भी साइंस ये कहता है कि वो एआई जो है वो बहुत एक बुरा जो है जगह बनाने वाला है, एक डिजास्टर क्रिएट कर देगा, एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है
0: जी, क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन से,
1: यस, सबकी इंफॉर्मेशन है। तो इट्स बेटर टू क्रिएट अ, मतलब एक हेल्दी सराउंडिंग, हम फ्रेंड सर्कल बना लें, ठीक है। लोग तो अपने डॉगी से भी बात करके खुश हो लेते हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस कि कहां आप अपना शेयर कर सकते।
0: भगवान जवाब देते हैं क्या?
1: बिल्कुल देते हैं,
0: तुरंत, जैसे एआई देता है
1: तुरंत चाहिए तो, तुरंत चाहिए तो, जैसे एआई आपके लिए एक्सेस इजी कर लिया है आपने,
0: अब प्रैक्टिस करके किया है,
1: किया है, हाँ, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल में नेट ही रिचार्ज नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं एआई से कुछ मांग सकता हूं?
0: नहीं
1: नहीं। तो आई हैव डन समथिंग टू गेट द एआई, तो भगवान के आंसर्स लेने के लिए मैंने कुछ किया है, वो तो मैं चाहता हूँ तुरंत दे दे, पर मैं कुछ ना करूँ, तो ऐसा नहीं,
0: मेरे लाइन भी क्लियर होना चाहिए,
1: मेरे जवाब आने चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता है, दुनिया में नहीं होता। आपको कुछ करना ही पड़ता है, एक डॉगी भी, उसको आप रोटी देते हैं तब वो पूछ लाता है।
0: राइट,
1: इसलिए कुछ तो करना होगा, तो आपको आंसर जरूर मिलते हैं।
0: जी जी, उसके बारे में तो हम आगे जानते रहेंगे। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी युवा का सपना अलग है, उसके घर वाले अलग चाहते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, तो फिर क्या करें, कैसे समझाएं, कैसे दृढ़ निश्चय रखें उस परिस्थिति में?
1: मैक्सिमम हम देखते हैं कि युवा जो है वो थोड़ा हटके ही पेरेंट्स से सोचती है, कई युवा इसका बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, जैसे अब मैं क्या नाम लूं, बहुत सारी हस्तियां हैं समाज में हम देखते हैं कि जिन्होंने पेरेंट्स ने कुछ और सोचा था, लेकिन भाई ने या बहन ने, जो भी बच्चे ने है, वो डिफरेंट सोचा है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन कई हम जिनके हमारे पास न्यूज नहीं है, कई ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के अगेंस्ट गए हैं और गड़बड़ हो गई है
0: जी, जी।
1: उनका लाइफ ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसीलिए मेरा ये जो मानना है कि ठीक है, अगर आप पूरे दृढ़ संकल्प धारी हैं, आपको पक्का है कि आई विल डू इट 100%, तो कि फिर आप वो संकल्प को पूरा करने का अपने पेरेंट्स को भी, मैं तो कहूँ कि उनको समझाएं,
0: कन्विंस करें,
1: कन्विंस करने की ताकत रखें। लेकिन जो इंडियन टेंडेंसी है कि पेरेंट्स जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, दैट्स टू, आई अग्री। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि मम्मी को कन्विंस कर लें, क्योंकि मम्मियाँ हो जाती हैं, तो पेरेंट्स को ज़रूर आपकी पता हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समाज आज की डेट में सेफ नहीं है। तो इसलिए एक पेरेंट को जरूर अपने उसमें कॉन्फिडेंस में रखें, पापा भी मान जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर पूरा पक्का 100% है कि मैं ये करूंगा, तो फिर पेरेंट्स को बोलकर आप उस चीज को जरूर पक्का पूरा कीजिए। लेकिन अगर आपको ही 100% नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को साथ में लेकर चलना चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, लेकिन दे आर फोर्सिंग मी टू फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तो आप पढ़ें भी
0: जी,
1: लेकिन क्रिकेट भी खेलें। ठीक है, क्रिकेट खेलने के भी वो भी टाइम देंगे, अगर वो देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो क्रिकेट खेलने के लिए भी भेजेंगे। वो इतने भी नहीं है कि भाई नहीं जी पढ़ो ही क्रिकेट को फेंकी दो, ऐसा नहीं है, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है आज की डेट में। इसलिए पैरेलल में अगर लेके चलते हैं वो सबसे बेस्टेस्ट है
0: जी।
1: तो आप जहाँ अपना बढ़िया बेस्ट करेंगे तो वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने क्रिकेट में अगर दिखाया कि आई कैन बी द टॉपर, ठीक है, अर्जुन अवार्ड या जो भी अवार्ड, आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो जो भी आप चीज़ हासिल करेंगे तो फिर वो आपके साथ आ ही जाएंगे, रह ही जाएंगे
0: जी। बात क्रिकेट की हो रही है तो मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार समाज तुलना करते हैं, आजकल तो बोलते हैं देखो वो लड़की कितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है और तुम नहीं खेल पा रहे हो, तुम क्रिकेट में नाम नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि अभी आईपीएल भी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए, तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडियन पेरेंट मैं यही कहूंगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, मैं सलाम करती हूँ इंडियन पेरेंट को, क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग जैसी पेरेंटिंग मैंने पूरे विश्व में नहीं देखी है।
0: बिल्कुल,
1: उनके ताने ही हमारे आगे जाने का रास्ता है, जो मेरे साथ है। ताने किसको नहीं मिले हैं, सबको मिलते हैं। वो माँ बाप शायद इसी जो कहें तलवार है उनका, यही उनका चाकू है, यही उनका तीर है, जिससे फिर वो बोल बोल के अपने बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं आगे के तानों के लिए। अगर हम अपने पेरेंट्स के ताने सह जाते हैं तो समाज ताना नहीं देगा, और अगर पेरेंट्स के ताने हमसे सहे नहीं जा रहे हैं तो बी रेडी फॉर द समाज, वो ताना जरूर देगा। तो इसलिए पेरेंट्स को ऐसा नहीं समझिए कि वो शत्रु हैं, उनके ताने भी अगर वो आपके लाइफ के लिए, मैं देखती हूँ कि आपका मोटिव अचीव करने के लिए कह रहे हैं, तो उनके ताने भी फूल हैं। आप उनके तानों को समझिए कि वो क्यों दे रहे हैं, वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, वो आपका बिगाड़ने के लिए ताना नहीं दे रहे हैं। माएँ कहेंगी घुसा रहे मोबाइल में, यू नो ना मोबाइल में घुसने से तो लाइफ में कुछ बनेंगे नहीं, लेकिन हाँ आज टिकटॉक

0: कहीं नहीं जाते, वो आपके साथ ही आएंगे।
1: जी जी बिल्कुल। तो अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर और आप दृढ़ संकल्प रखते हैं तो आगे बढ़ते जाइए, सब एक्सेप्ट करेंगे आपको। तो दृढ़ संकल्प और जिद, तो इस दोनों में क्या अंतर है? जिद करके हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जैसे आप कहते हैं कह रहे थे कि असफल भी हो जाते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे पहचाने?
0: कैसे पहचाने? जिद आप देखिए नेगेटिव है और दृढ़ संकल्प उसका ऑपोजिट है, टोटली पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मेरी दृढ़ निश्चय कब जिद बन जाती है, तो ये कई बार मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मेरा सराउंडिंग मुझे बताता है। क्योंकि जो जिद है वो इगोइस्टिक है
1: जी,
0: और जो दृढ़ संकल्प है वो नॉन इगोइस्टिक है। तो लोग मुझे बता देंगे कि आप, वो बोलेंगे पीठ पीछे भी बोलेंगे, मुंह पे भी बोलेंगे कि क्या है आपकी तो जिद है। तो ठीक है, एक ने का इट्स ओके, दो ने का इट्स ओके, लेकिन इफ एवरीवन इज सेइंग
1: ओके,
0: तो फिर समझ जाइए कि मैं ये बहुत ज्यादा रिजिडनेस क्रिएट कर रहा हूँ अपने में,
1: अगर हर कोई वही सेम फीडबैक दे रहा है।
0: हाँ, सेम फीडबैक दे रहा है। दूसरा, आपको वो रिस्पांस गलत दे रहे हैं, यानी उतना वो आपके साथ मधुर बिहेवियर नहीं है उनका, और आपको भी लग रहा है कि मैं अपने चीजों को जो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे निगेटिव ज्यादा फील होता है, आपको भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम बस यही होती है कि मुझे नहीं पता चलता है कई बार
1: जी।
0: तो आपका सराउंडिंग आपको बताता है, कुछ चीजें जो आपके साथ हो रही हैं वो आपको इशारा करती हैं कि जो ट्रैक है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है
1: जी,
0: यानी पॉजिटिव से हल्का सा नेगेटिव की ओर अग्रसर हो रहा है। तो चीजें आपको बताती हैं, लेकिन चाहिए महसूस करने की शक्ति। इतना ओपन माइंडेड बनिए कि अगर किसी ने व्यू दिया है तो उसके व्यू को आपने समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जहां दृढ़ संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपका ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है।
1: ओपन माइंडेड का एक्चुअली क्या डेफिनेशन है?
0: माना आपको हर चीज सुनकर समझने की क्षमता।
1: ओके,
0: एक है कि मैंने बस अपनी जो कहते हैं ना कि बस लठ गाड़ दी कि खूंटा यहीं गड़ेगा, मींस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे नहीं पता, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो इट इज रिजिडनेस, ये जिद्दीपना है।
1: ओके
0: ओके, तो ये चीज नहीं चाहिए। आपने लाठी यहीं गाड़नी है, ओके फाइन, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया है कि बच्चे नीचे पत्थर है, आपकी लाठी ज्यादा गहरे में नहीं जाने वाली है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति आया बोला कि यहाँ लाठी गाड़ोगे तो फलाना आ जाएगा, उल्टा लड़ाइयां होंगी
1: जी,
0: तो उनकी इंफॉर्मेशन को मुझे समझना है। सिर्फ अपनी रिजिडनेस की मैं यहीं गाड़ू तो ये रिजिडनेस है
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बातें बोली है वो इन्फो को आप समझिए, उनको टेक्निकली आप चेक कीजिए, लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे परवाह ही नहीं है, अब बोलते जाओ, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं गाड़ूंगा, तो इट इज रॉन्ग।
1: ओके,
0: ठीक है ना। तो ओपन माइंडेड मीन सबको मुझे देखना है, सुनना है, समझना है, टेली करना है। ऐसा नहीं जो कह रहे हो कि भाई तुम गधे हो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, नहीं, स्वीकार मत करें
1: जी,
0: लेकिन चेक जरूर करें कि उन्होंने मुझे गधा बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने कहा ऐसा नेगेटिव किया, चेक करना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: तभी जो है एक टॉप पोजीशन पे बैठ पाएंगे, नहीं तो अगर अपने को चेक नहीं करेंगे, आप देखिए जो भी बहुत हायर लेवल पे है वो सुनते ज्यादा है और बोलते बहुत कम है।
1: अच्छा, लिसनिंग करना,
0: लिसनिंग पावर उनकी बहुत है, और लिसनिंग के लिए बोला गया है गोल्ड, और बोलने वाली पावर, टॉकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड बोला गया है, तो मुझे सुनना है, सुन, हाँ मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन सुन जरूर रहा हूँ, समझ जरूर रहा हूँ। उन्होंने गधा बोला, मैंने स्वीकार नहीं किया कि मैं गधा हूँ, उनके कहने से मैं गधा नहीं बन जाता, लेकिन चेक जरूर करना है मेरे से क्या रॉन्ग हुआ।
1: ओके, कई बार हम कहते हैं कि ओपननेस या ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप हर किसी को एक्सेप्ट करो, या जैसे आपने कहा स्वीकार कर लो, जो जैसा कहा अच्छा ठीक है।
0: okay. मैंने कहा स्वीकार नहीं करना,
1: हाँ, नहीं करना
0: है, सुनना है,
1: हाँ, सुनना है,
0: हाँ,
1: पर हम ये समझ लेते कई बार, लेकिन ये नहीं है।
0: ओपन माइंडेडनेस अपना सबका अपना अपना मीनिंग है डेफिनेशन से, लेकिन जो मेरा डेफिनेशन है कि मैंने सुनना सबका है,
1: ओके,
0: समझना सबका है,
1: करना,
0: हाँ, करना जो सही है,
1: सही है,
0: हाँ, उसके लिए भी मैं टेली कर लूं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे फादर मदर है, या जो भी मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंट है, उनसे मैं टेली कर लूं। मैं शायद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि ठीक है मैं सुन ली, समझ ली, बट मैं तो वही करूंगी, तो इट इज नॉट इंटेलिजेंट बना, इट इज लाइक रिजिडनेस, ठीक है। तो आप एक
1: सलाह भी लेना,
0: सलाह भी लेनी है
1: जी। ओके, अभी हम बात करते हैं कि कई लोग लक्ष्य तय करते हैं लेकिन बीच में उमंग गुस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए मुझे चाय छोड़ना है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि दूध जो है वो मेरे बॉडी को सूट नहीं होता, तो उसमें क्या करें? दृढ़ निश्चय भावना रखना है, अनुशासन रखना है।
0: दोनों ही चाहिए,
1: दोनों ही चाहिए,
0: दोनों ही चाहिए।

0: ये अनुशासन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बच्चों को स्कूल में शुरू से, नर्सरी क्लास से इनफैक्ट घर से
1: जी
0: अनुशासन, बड़ों का पैर भी छूना है ठीक है, लेकिन अनुशासन की बस ऐसे भाग लिए दौड़ घर से ही शुरू हो जाता है
1: जी।
0: दृढ़ संकल्प अपनी जगह है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ कि मुझे, जैसे अपने एग्जांपल लिया कि मुझे चाय छोड़ना है बिकॉज दूध मेरे लिए ठीक नहीं है बॉडी के लिए, तो वाकई में अगर मैं इस कंसेप्ट को माइंड को डाइजेस्ट करा देती हूँ कि दूध पीते ही नेगेटिव होता है, बाउलिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक नहीं होता है, वॉट एवर, इसको बहुत अच्छे से अगर मैं खिला देती हूँ तो ये हेल्प करता है।
1: okay.
0: तो मैं नहीं कहती कि एक दिन में छूट जाएगी, लेकिन अपने अंदर ये पक्का करिए कि मैं नहीं छोड़ रहा, ठीक है, नहीं छोड़ा जा रहा तो ओके, लेकिन कम तो कर सकता हूँ
1: जी।
0: तो एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। हम क्या एक बहुत बड़ा स्टेप फर्स्ट डे ले लेते हैं, वो किला हम सोच लेते हैं अरे वाह इतना बड़ा किला बनाना है, मुझे छोड़ना है, ठीक है, तो एक दिन में किला नहीं बनता, ठीक है। छोटा छोटा स्टेप रखिए कि मैं, अच्छा मैं एक कप पीता था, अब मैं हाफ कप पीऊंगा या और पौना कप पीऊंगा, मैं एक चम्मच शुगर और एक चम्मच टी डालता था, लीव्स डालता था, अब मैं आधा आधा डालूंगा या पौना पौना डालूंगा, मतलब उसकी ना पावर को, इंटेंसिटी को कम कर दूंगा।
1: ओके
0: ओके, फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे आप बढ़े तो वो किला जो है वो फिर जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज एक पूरा किला एक ही दिन में लेने की कोशिश में शायद दिक्कत आ सकती है।
1: कई बार दीदी ऐसा होता है कि हम ना बहुत सारे ट्रिगर्स के बीच में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं और फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या करेंगे, चाय पियेंगे, बातें करेंगे, तभी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ऐसे कहते हैं।
0: हाँ, आज का तो यही है।
1: और बाकी थोड़ा एक्सट्रीमिटी में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि साथ में बैठ के दारू पी लीजिए, अल्कोहल की सेवन करते हैं लोग, तो उन ट्रिगर्स को कैसे समाप्त करें अपने मन से भी, मतलब ट्रिगर्स होते हुए भी हम ट्रिगर ना हो, वो कैसे करें?
0: तो आज का तो यही बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी कहीं थी और उन्होंने कहा, शी इज क्वाइट, शी केम फ्रॉम जर्मनी एंड बहुत अच्छा है वो प्रोफेशन में, तो शी सेड कि आज की डेट में अगर हम पीते नहीं है मीन्स अल्कोहल तो आई एम नोवेयर, शी सेड सो, ठीक है। बट मेरा ये मानना है एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये बोलेगा ना कि मैं नहीं पीता तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है, ये दिन आएगा और बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि आज समाज में ये अल्कोहल ऐसे घुल गया है जैसे खून बॉडी में होता है ना, ऐसा अल्कोहल हो गया है। और अल्कोहल एक फैशन हर जगह बन चुका है, चाहे वो बर्थडे पार्टीज है, मैंने सुना एक 2 साल का बच्चा, 2-4 साल में भी होगा उसका बर्थडे है, लेकिन अल्कोहल इज देयर। अब वो बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है, वो तो ये देख रहा है कि मेरे होटल में मेरा बहुत बढ़िया सा बर्थडे मनाए बट अल्कोहल इज देयर, ठीक है, तो ठीक है आज आपने उसे नहीं दिया बिकॉज ही इज इन योर कंट्रोल, 4 साल का बच्चा तो मम्मी पापा के कंट्रोल में है, लेकिन जब वो 14 का होगा तो वेयर वुड ही स्टैंड
1: जी,
0: ठीक है ना। और मैं तो एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है, सिस्टर है एक नोन है, वो मतलब तो पहाड़ों की है, तो कहती दादी हमें दिया करती थी कि बीड़ी सुलगा के ले आओ, तो हम एक दो सुट्टा मार के उनको दिया करते थे
1: जी।
0: तो कहाँ से मारा, क्यों मारा, बिकॉज दादी मार रही है, तो दादी ने दिया कि जला के लेके आओ, पी के लेके आओ नहीं बोला है। लेकिन बड़ों में अगर ये सेंस हो कि अगर बच्चों को दे रहा हूँ तो बच्चा क्या ही करके रास्ते तक आएगा, इनफैक्ट वो जान भी रही है कि ये छोटी कैसे हो गई, तो बच्चा कहता है जलाते लाते लाते जल गई,
1: झूठ भी बोलने लगा।
0: हाँ, तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, बच्चे को नहीं बड़ों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पिए तो फिर ठीक है, कैरी ऑन द बिजनेस, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, एक टाइम आएगा, या मैं तो कहूंगी कभी भी नहीं पिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है, ठीक है, इट केम फ्रॉम आउटसाइड और इसीलिए हम सभी चीजें जो कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो जो बाहर की है वो
1: एनवायरमेंट को भी सूट नहीं होता
0: क्योंकि बाहर ये नेसेसरी शायद बन गई है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर,
1: यस,
0: ठीक है, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है, इतना टेम्परेचर आईसी वो नहीं है जो हमें इसकी एक नेसेसिटी हो, ठीक है। तो हम चीजों को समझें क्या चीज जरूरी है, और मेरा बच्चा, खास मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, वो क्या हो रहा है, लोग बड़े खुश होते हैं, मैं तो अपने बेटे के साथ बैठ के पीता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, आप बेटे के साथ बैठे पीते हैं तो पोता क्या दिख रहा है, वो क्या देखेगा, या जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या देखेंगे, बड़ी हैप्पी फैमिली है, दोनों बैठ के पी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, वो भी पियेंगे, ठीक है। तो हमें अपने को रोकना होगा, इफ आई वॉन्ट चेंजेस इन द कमिंग जनरेशन देन आई हैव टू चेंज माई सेल्फ।
1: जी, लेकिन कई बार मन साथ नहीं देता है, क्योंकि मन हो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते. सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमने दृढ़ संकल्प रखा है शायद उसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं, मन में उमंग उत्साह कम हो जाती है या कंट्रोल नहीं कर पाते. तो कैसे करें
0: भाई, सारी चीजें जुड़ी हुई है, एक दिन में किला नहीं बनेगा.
1: स्टेप बाय स्टेप,
0: स्टेप बाय स्टेप, एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए. ठीक है, जैसे जिनको छुड़ाया जाता है, जो वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग सेक्टर सेक्शंस में भी जाते हैं, जिनको अल्कोहल ड्रग्स वगैरह छुड़ाई जाती हैं, एक दिन में उन्हें ड्रग्स बंद नहीं करते, वो ड्रग्स देते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में देते हैं और धीरे धीरे उस लिमिट को भी कम करते चले जाते हैं. इस तरीके से उनकी ड्रग्स छुड़ाई जाती है. तो हम भी अगर छोड़ना चाहते, इट्स ऑल अबाउट द दृढ़ संकल्प. अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ, जैसे कितने ही आते हैं आश्रम में, आते हैं हमारे सेंटर्स पे आते हैं, एंड दे वांट टू लीव इट बट दे आर नॉट एबल टू.
1: जी
0: ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले अपने आप को चैप्टर्स देने होंगे कि मैं छोड़ना क्यों चाहता हूँ.
1: okay, क्योंकि क्वेश्चंस पूछना.
0: हाँ, क्यों मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, चलो ठीक है. दूसरा मेरा बच्चा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा वो पैसा जो मैं इनमें स्पेंड कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, अगर वो मैं घर में देता हूँ तो घर की चीजों में और बरकत होती है. चाहे वो किसी सेंस में आपने खाने पीने की चीजों में खर्च कर लिया, बच्चों के लिए आप रसगुल्ले ले आए उसी पैसों से, तो बच्चे कितने खुश हैं. ठीक है, नहीं तो आपने उनके लिए सेविंग कर दी, चलिए मत खिलाइए रसगुल्ला डेली, मत लाइए कुछ भी, लेकिन आप उसे अमाउंट को सेव कर दीजिए
1: उनके फ्यूचर के लिए,
0: फ्यूचर पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए. कभी भी मंथ में उनका कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज होता है, वहां खर्चा पड़ जाता है, और जब पैसे बचे होंगे तो डोंट हैव टू थिंक मच. ठीक है, तो पहले मुझे अपने आप को कुछ चैप्टर्स देने होंगे, कुछ अपने लाइन्स बनाने होंगे, व्हाई आई वांट टू लीव इट. और उसको जब मैं इतना अच्छे से समझ जाऊंगा, ये मेरी ही तैयारी होगी. बाहर की दुनिया पूरी लगी रहे, लेकिन जब तक मैं नहीं छोड़ना चाहती, वो मुझसे नहीं छुड़ा सकती. दिस और दैट वे आई विल गेट माय अल्कोहल. ठीक है, लेकिन मैंने अगर पक्का कर लिया कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ चार पॉइंट्स हैं जो मेरे को नहीं पीना चाहिए, फर्स्ट डे नहीं छोड़ूंगा, इट्स वेरी मच ओके एंड अंडरस्टूड कि नहीं छूटता है. पीयर प्रेशर पड़ जाता है कि दोस्तों के बीच बैठ गए, मैंने कहा नहीं पीता हूँ, अरे थोड़ी तो पी लो, कल तक तो पूरी बॉटल पी रहा था, आज क्या हो गया. तो दे विल टॉक लाइक इट बिकॉज आप पीते थे एंड दे आर नॉट रॉन्ग, तो पिलाएंगे ही. लेकिन आप कुछ दिन के लिए या तो सर्कल को अवॉइड करें जब तक कि आप इतने एम्पावर हो जाएं कि उनको फेस कर सके. ठीक है, और अगर आप इतने एम्पावर नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको थोड़ा दिन अवॉइड ही करें, यही सबसे बेस्टेस्ट जो तरीका हो सकता है. उस पार्टीज में नहीं जाएं जहां अल्कोहल है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ. जब मेरे को आ गया कि मैं अब चार पेग नहीं, सिर्फ एक पेग पे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, देन यू कैन ज्वाइन इट. लेकिन फिर भी बहुत गैप में, क्योंकि फिर वो हैबिट बनवा देंगे. ठीक है ना, तो ये अवॉइड करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा. फ्रेंड्स हैं, पार्टीज हैं,
1: थोड़े टाइम के लिए किनारा
0: करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं छूटती हैं.
1: तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने आप को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं आप. जी दीदी, अभी हम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो ऑफिसेस हैं, कार्यस्थल जहाँ पे हम कार्य करते हैं, वहाँ पर कई बार हमारे मेहनत का श्रेय किसी और को चला जाता है. कई बार हमें सब कुछ करने के बाद प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, फिर स्ट्रेस है, उसके उस बीच में लक्ष्य पर टिके रहने का क्या तरीका है, सकारात्मक खुद को कैसे रखें और फिर दृढ़ता के साथ
0: कैसे आगे बढ़े. हाँ, तो पक्का है कि आपको उसी जॉब में रहना है, पहले तो यही पक्का कर लीजिए. क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना प्रमोशन मिल रही है, ना फिर कोई इस तरह से मेरे को इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट, कोई भी चीज ऐसा नहीं हो रहा है.
1: तो स्विच करने की जरूरत है कि नहीं, हाँ, वो भी सोचना. हाँ,
0: क्योंकि दृढ़ता का मतलब ही है कि मुझे वहीं टिकना है, कोई भी जो आपने सोचा है. तो अगर पक्का है कि मुझे यहाँ टिकना है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट कि बेस्टेस्ट कंपनी है, टाइम लगाती है लेकिन इससे बेस्ट कंपनी मुझे नहीं मिलने वाली है,
1: टाइम टू टाइम घर जाते हैं,
0: हाँ मुझे अपना हॉलीडे, अपना मैं घर मैनेज कर लेता हूँ इस जॉब के साथ, फॉर एग्जांपल टीचिंग जॉब. तो व्हाई गर्ल्स डू दैट, क्योंकि उनको लगता है मैं हाफ ऑफ द डे आई कैन स्पेंड विद माय फैमिली, मैं घर भी मैनेज कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई दे जॉइन इट. हालांकि टीचिंग जॉब इज नॉट सो ईजी जो हमें दिखती है, इट इज अ टफेस्ट,
1: प्रिपरेशन चाहिए बहुत,
0: हाँ, बहुत. लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए गुड इसलिए है क्योंकि मेरा और भी चीजें जो है वो पार्लल में गुड हो रहा है. तो पहले तो अपने आप को ये पक्का कर लीजिए कि हाँ यही मुझे रहना है, ये बहुत जरूरी है. अगर आपको ये पक्का नहीं है देन यू कैन गो ऑन, आप चेंज करें. लेकिन अगर मुझे पक्का है कि हाँ मुझे करना ही है, तो इंक्रीज योर एफिशिएंसी, फिर अपने पे काम करें. फिर अब बाहर नहीं कुछ करना है, कुछ ढूंढने या करने की जरूरत नहीं, अपने पे काम करना है कि मुझे मेरा क्रेडिट नहीं मिला, मुझे मेरा प्रमोशन नहीं मिला, मुझे लोगों का जो भी मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन मैं अब इससे कुछ ऐसा आगे करूं जो मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूं, वो पहले आप सोचें कि क्या करना है, और पॉजिटिव सेंस में ही सोचें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगी
1: जी।
0: अगर नेगेटिव सेंस में कुछ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है।
1: ओके,
0: तो इसलिए मैं पॉजिटिव सोचूं और अपने लिए ही कुछ एफिशिएंसी को या किसी भी तरीके से अपना लेवल जो बढ़ाने का है, मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ जिससे मेरा लेवल, या मैं एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं तो उसमें एक आता है कि आप और फर्दर एग्ज़ाम्स देते हैं तो यू कैन आगे आप प्रमोट हो सकते हैं। तो मैं, अगर मुझे अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, ये कहाँ लिखा है?
1: ओके, मतलब अप्रिसिएशन में भी ऐसा ही है, आप काम कर रहे हो, आपको अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है, तो वो दृढ़ संकल्प और हैप्पीनेस वो कम हो जाती है,
0: बिल्कुल कम हो जाती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन यही बात याद रखिएगा कि क्या किसी और की अप्रिसिएशन की वजह से मैं जिंदा हूँ?
1: नहीं,
0: नहीं। जंगल में जब फूल खिलता है उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं, बट स्टिल वो खिल रहा है, अपनी पूरी ब्यूटी के साथ खिल रहा है, उसने उतने ही रंग बिखेरे हैं, उतनी खुशबू बिखेरी है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, मैं भी फूल हूँ, एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आज मुझे कोई नहीं देख रहा है, ओके फाइन, हैव अफर्मेशंस कि आई विल प्रूव इट कि आई एम द बेस्ट।
1: ओके, हमारे जंगल में भले फूल खिल रहे हैं लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गार्डन में फूल खिलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है कि एक फूल का खिलना भी इस नेचर में कहीं ना कहीं जरूरी है
1: जी,
0: उसको बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहाँ हूँ तो मैं हूँ क्योंकि फिर कोई ना कोई चीज मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वो उनको मेरी जरूरत है,
1: मेरी हैप्पी रहना भी बहुत,
0: ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, तो खुश रहकर करने में प्रॉब्लम क्या है?
1: अपने आप को समझाना है, समझाना या
0: समझाना नहीं है, ये करना ही है,
1: करना ही है,
0: कि जब करना ही है तो रो के क्यों करूं, हंस के भी तो कर सकता हूँ। उन्होंने आज मुझे प्रमोट नहीं किया है लेकिन अगर मैं अपना EQ बैलेंस रखता हूँ, आज बड़ी कंपनीज में EQ बहुत काउंट होता है, इमोशनल क्वेश्चन, यानी इमोशनली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर
1: जी,
0: अगर आप उस चीज को बैलेंस कर पाते हैं तो क्या पता, क्योंकि आपने अपने अंदर अफर्मेशंस दिए हैं फॉर द सक्सेस, गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क, कौन सा मिरेकल, इस दुनिया में तो मरे भी जिंदा हो जाते हैं
1: जी,
0: ठीक है ना, तो आप तो बहुत जिंदा हैं, बहुत अच्छी कंपनी में हैं, बहुत कमा रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, आपके आगे स्कोप ही स्कोप है, ये आप पक्का अंदर कीजिए, आज नहीं मिला है कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है।
1: नहीं, कई बार हम दृढ़ संकल्प रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अचीव भी कर लेते हैं, इन जनरल मैं पूछना चाहूँगी, जब PI की बात आती है तो कई बार लुक्स में मात खा जाते हैं, कई बार इंग्लिश में मात खा लेते हैं, फिर हम अपने कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे अफर्मेशंस रखना चाहिए?
0: PI
1: पर्सनल इंटरव्यू।
0: ओके ओके ओके, तो लुक्स में मात खाया और किस में मात खाया?
1: लुक्स में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में,
0: ये दो बेसिस आपने लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, खास जैसे जब हम खास इंटरव्यूज देते हैं और लुक्स में हम नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को देखा है, कंपनी के मालिकों को देखा है
1: जी,
0: लुक्स में जीरो है लेकिन स्टैंडिंग स्ट्रांग, बहुत बहुत शानदार खड़े हैं, तो लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। हम देखते हैं लुक्स बहुत आगे अप्रिशिएट किए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिख रहा है उसको प्रेफरेंस बहुत जल्दी मिलती है, अप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिलता है, लोग उसकी तरफ देखना पहले स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो सुंदर नहीं है, इस लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, सुंदर तो हर कोई है, भगवान ने अगर बनाया है तो कुरूप कोई नहीं है, सुंदर हर कोई है, और आज की डेट में तो ब्लैक ब्यूटी भी है जो बहुत टॉप लेवल पे है,
1: बहुत सारे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स
0: भी, तो ब्लैक कलर को भी बहुत आज की डेट में अप्रिशिएट किया जाता है। हैव प्राउड ऑन योरसेल्फ, मुझे मेरी ही चीजों पे शक है तो फिर मैं आगे क्या करूंगा, जो भगवान ने मुझे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ वेरी शॉर्ट हाइट, ठीक है, तो ऑफकोर्स यू कैन अज्यूम कि लोगों का, मैं दिखती ही नहीं हूँ जब भीड़ में होती हूँ, तो एवरीबॉडी सेज आप कहाँ हो, तो आई से प्राउडली कि मुझे देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ती है
1: जी।
0: तो हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, कि मैं काली हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली हूँ, हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, डोंट फील डाउन, आपको बनाया है, आप गुणों को तो बढ़ा सकते, कलर को नहीं कर सकते. ओके फाइन, ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मेलानिन को हम कम कर सकते हैं, गो फॉर इट इफ यू कैन. लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो गुण है, तो आप बहुत आगे अपने कलर को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं. और इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं है तो ठीक है, मैं समझती हूँ आज के MNCs में ना प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो इंग्लिश के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स भी हैं, सीखो आप बहुत सारी चीज़ें. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, लेकिन सीखो सीखो, लाइफ इज टू सीखो, ठीक है, इसलिए सीखो, ठीक है. छोटा छोटा इंग्लिश सीखो, बड़ा एक दिन बन जाता है. और मैं जो मानती हूँ, पूरी इंग्लिश तो कहीं कोई नहीं बोल रहा भारत में, जो बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करके अपना बोलना शुरू करें, लेकिन जो बोले कॉन्फिडेंस से बोले. आज आप देखिए कई हैं जो फॉरनर्स मेनली मैं देखती हूँ, दे वॉक इन बरमुडास विद चप्पल्स
1: जी,
0: लेकिन कॉन्फिडेंटली
1: जी,
0: उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है, बनियान में है, बनियान पहनी हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट योर आउटफिट, नॉट योर कलर, नॉट योर लैंग्वेज. आप कॉन्फिडेंट हैं वो कंपनी देख रही है, ठीक है. आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है वो कंपनी आपको मेजर करने वाली है. और हायर लेवल में तो ये सारी चीजें जो हायर कंपनीज हैं जो मैं देखती हूँ, वो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं कि आपका EQ कहाँ है, कितना है, आप कितना बैलेंस्ड रहते हैं, आपका कितना अच्छा बोलने का कैपेसिटी है. इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश देन मेरा हिंदी कितना स्ट्रांग है. मैं बोलते सामने आपको देखते ही मेरा शटर हो गया, हिंदी भी शटर हो गया, तो इट्स ना, तो फिर यानी फिर इंग्लिश तो आप भूल ही जाइए. आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो पहले अपना बोल सुधारें. जैसे बचपन में कहते हैं शीशे के आगे बोलें, जोर जोर से पढ़ करके बोलें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है. तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं. आपका स्पीकिंग एबिलिटी शुड बी गुड,
1: मतलब दृढ़ संकल्प के साथ स्किल्स को भी बढ़ाएं.
0: हाँ, स्किल्स को भी बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है.
1: ओके जी, इस कार्यक्रम से विदा लेने से पहले एक आखिरी सवाल कि अगर हम दृढ़ निश्चय को मजबूत करना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं, सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए?
0: टॉक टू योरसेल्फ, अपने से बात करें.
1: ओके.
0: क्योंकि मुझे ही करना है जो करना है. बाहर वाले मुझे आइडियाज देने वाले हैं, बाहर वाले मुझे गिराने वाले भी हैं, बाहर वाले मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन मेरे ही कदमों पे तो करेंगे जो करेंगे, जो मैंने कदम लिया है. तो टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना है. तो मेरी मेरे से बात होना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट.
1: मी टाइम,
0: मी टाइम, यस, वेरी नाइस वर्ड, मी टाइम. आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, आई हैव फेथ, आई शुड हैव फेथ ऑन माई सेल्फ. मुझे मेरे पे विश्वास होना चाहिए. जब मेरे को मेरे पे ही विश्वास नहीं है तो लोगों पे क्या होगा, या लोग मेरे पे क्या विश्वास करेंगे, मेरे को खुद पे ही नहीं है. तो ये मी टाइम बहुत जरूरी है, मुझे मेरे लिए जीना है पहले.
1: अगर मैं बार बार हार खाती हूँ तो मेरे पे विश्वास तो उठ ही जाता है, फिर खुद को कैसे समझे, क्या मतलब कैसे देखे कि मेरे अंदर कुछ है अच्छा ही कि नहीं.
0: वही मैंने जो कहा कि अगर हार हो रही है तो ये मुझे सिखाने के लिए हो रही है, लेकिन सदा ही हार नहीं होने वाली.
1: तो अलग अलग तरीका देखें.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हार आपके पास आती है आपको हराने के लिए, मारने के लिए नहीं आई है,
1: कुछ सिखाने के लिए,
0: सिखाने के लिए आई है. लेकिन आप उसको सीखने के अंदाज से देख रहे हो या आप उसको हार ही देख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट. आपका नजरिया इज इम्पोर्टेंट. आप चार बार फेल हुए हैं लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक निश्चय है, ठीक है. जैसे अभी मुझे कोई हमारे एक ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वहाँ मुझे एक यूथ मिले और वो कहते हैं कि मेरे पास इतना फेलियर्स है, इतना फेलियर्स है, आई वॉज इन डिप्रेशन. तो उन्होंने कहा कि माई मम्मा गोज इन ब्रह्म कुमारीज, तो मैंने भी सोचा चलो मैं चल कर देखता हूँ. तो आई एम फीलिंग क्वाइट ओके राइट नाउ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ, अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ. He said so, कि मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर फिर से वो विश्वास आ गया है कि हाँ मुझे करना है और सक्सेस को हासिल करना है.
1: करना है
0: तो बी लिटिल स्पिरिचुअल. आपको स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग ट्रिमेंडस एनर्जी, वो पत्थर को पारस करने की शक्ति रखती है. तो मैं तो बहुत एक अजीज या भगवान का बहुत नियरेस्ट बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ. उसने मुझे धरती पे नहीं फेंका है, उसने मुझे धरती पे भेजा है
1: जी.
0: अब हमेशा यही कहते हैं ना, भगवान ने भेजा है, तो भगवान ने मुझे भेजा है, फेंका नहीं है. तो मैं कुछ करने के लिए ही मुझे भेजा है, भेजा माना कुछ करने के लिए. तो मेरे डेस्टिनी में है, हाँ वो पेजेस बहुत पीछे हैं और अभी मुझे उन्हें टर्न करना है।
1: कई बार क्या हमारे लक्ष्य को हमें फिर से रिवाइज करके देखना है और चेंज भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल करना चाहिए। आपको देखना है कि क्या चीजें मेरे से नेगेटिव हो रही हैं और चीजें कहाँ से कैसे जोड़ी जा रही हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे जो इंजीनियर होते हैं वो किसी लाइन को ज्वाइन करते हैं लेकिन जॉब किसी और लाइन में लगती है। मेरा लौकिक भाई है जो मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर है, तो ही वॉज इन डिफरेंट लाइन एंड नाउ ही इज डूइंग डिफरेंट जॉब।
1: लाइक हम इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद अब रेडियो
0: में है, है ना। तो ऐसा नहीं है कि चेंजेस लाइफ में आएंगी ही
1: जी।
0: आपकी डेस्टिनी में है जो ना वो आपको उस तरफ खींच रही है, तो वहाँ आपके कम नंबर हैं या वहाँ आप फेलियर हैं या यहाँ गड़बड़ हो गई है, लाइफ की डेस्टिनी में जो है वो आपको खींच रही है, वहाँ जीरो कर रही है ताकि आप इधर आ सकें।
1: ओके, तो इसलिए आपको रिवाइज करना भी
0: जरूरी है।
1: तो यहीं पर रुकते हैं हम। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15। थैंक यू सो मच प्रिया दीदी आपका।
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच आपका भी और हमारे लिसनर्स का भी। थैंक यू,
1: धन्यवाद।
0: ईश्वर सत्य है।

देखें इनको हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरण।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी यानी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आज एक बार फिर हाजिर हूं आप सबका जाना पहचाना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके कॉल्स मिलते हैं हमको कि ये कार्यक्रम हमेशा चालू रहना चाहिए, ये कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप सब भी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? एक तो ये कि आप स्वयं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो उसके लिए आपका स्वागत है, और इसके अलावा अगर आप आपके किसी परिचित को सुनना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। बस शर्त केवल और केवल एक है कि जो भी हमारे मेहमान हों वो विवाहित हों और उनकी अपनी एक अच्छी सी प्रेरणादायक कहानी हो। तो चलिए आज भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के, और आज के कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि हमारे जो मेहमान है आज के, देखिए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं इसमें अपना योगदान दिया। उन्होंने स्वयं हमें ये कहा कि वे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। मूल रूप से इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम कोशिश करते हैं कि दिव्यांग साथियों का जो संघर्ष है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, और खासकर विवाह के मामले में कि उनको जीवन साथी उनका मिला, कैसे मिला, कितनी आसानी से मिला, समाज परिवार और लोगों का उसमें किस तरह का योगदान रहा अथवा नहीं रहा, और हमारे मेहमानों ने किस तरह से अपने हमराही को पाया। बस आज भी यही कोशिश करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं श्रीमान कमल किशोर जी और ममता जी का, जो कि आज देश की राजधानी दिल वालों की दिल्ली से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। तो कमल भाई और ममता जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: जी नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को, मेरा यानी कमल किशोर और मेरी मैडम ममता जी का की ओर से आप सबको नमस्कार।
0: जी ममता जी।
2: जी सर नमस्ते।
0: जी तो श्रोताओं, ममता जी की आवाज कुछ धीरे आ रही है, लेकिन कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मुझे उम्मीद है कि उनकी आवाज आप तक बहुत ही जोश और उत्साह के साथ पहुंचेगी। तो कमल भाई, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए उससे पहले आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में कुछ बताएं।
1: जी सर, जैसा कि आपने अभी बताया श्रोताओं को कि मेरा नाम है कमल किशोर कुमार, मुझे लोग केके के नाम से जानते हैं। केके के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं यानी कि केके जब छोटा था, जब वो छोटे स्कूल में पढ़ता था, तो उसने केके के नाम पे एक छोटी सी कविता बनाई थी, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के स्टूडेंट थे जी। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि कविता ये बनाई थी कि स्कूल इज माई टेम्पल, विच मीन्स गुरुर ब्रह्म, स्कूल इज माई टेम्पल एंड टीचर इज माई गॉड, यानी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर, सो वी डू लाइक टू डू अप्रिशिएट द टीचर्स। तो स्कूल इज माई टेम्पल एंड टीचर इज माई गॉड, स्टडिंग इज माई एम एंड केके इज माई नेम, दैट्स ऑल। तो मुझे केके के नाम से भी जाने जाते थे सर, और मैं बेसिकली हूँ झारखंड गिरिडीह जिला का, और बहुत ही बैकवर्ड एरिया गिरिडीह जिला से झारखंड खटको गांव का हूँ मैं। और मैं जी, और मैं फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। हमारे मेरी श्रीमती ममता जी और मेरी दो बच्चियां हैं जी।
0: कमल भाई, थोड़ा सा अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, कहां कहां शिक्षा अर्जित की, और आपको जो दिव्यांगता है हमारे सुनने वालों को उसके बारे में भी बताएं।
1: जी दिव्यांगता जो है, जो मैं ब्लाइंड 100% हूँ और मैं बाय बर्थ हूँ जी। और रही बात मेरी शिक्षा दीक्षा की, तो चूंकि जैसा कि साथियों मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं झारखंड जिला का एक उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ आज भी लोग शिक्षित नहीं है, आज भी लोग जॉब में नहीं है। तो उस एरिया से, चूंकि मेरे पापा को मुझे ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता नहीं था, और सच तो यह कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ। तो गांव में लोग बोलते थे कि तुम अंधरा हो, अंधरा अंधरा मोटो बटी जो अंधरा क्या है, मैं तो अंग्रेजी पहले जानता नहीं था भाई। तो चूंकि हमारे पापा थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, हम लोग मोदी बनिए हैं तो पढ़े लिखे थे, तो हम लोगों ने जो है फिर किसी की मदद से पटना ब्लाइंड स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ 1 जुलाई 1992 को। पटना ब्लाइंड स्कूल के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा सुनने वाले श्रोताओं को भी और संदीप सर आपको भी
0: जी।
1: और जो अगर जी अगर और भी कोई पटना ब्लाइंड स्कूल यानी पटना कदम कुआं ब्लाइंड स्कूल के श्रोता हमें सुन रहे हो तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पटना ब्लाइंड स्कूल 1922 को खुला था और 2022 को जो है पूरे 100 साल होने जा रहे हैं और इस क्रम में हम लोग जी और पटना ब्लाइंड स्कूल 2022 सेंचुरी सेलिब्रेशन जो है बड़े भव्य तरीके से मनाए जा रहे हैं और कई लाख रुपए से भी ज्यादा लागत से मनाए जाने वाले ये प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम का आप लोग भी हिस्सा बने।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सूचना दी आपने कमल भाई। हम भी जरूर प्रयास करेंगे कि अगर हमें भी इस कार्यक्रम में अवसर मिलता है या मौका मिलता है
1: तो एब्सोल्युटली
0: जी जी जी।
1: तो उसके बाद पटना में मेरी एडमिशन हुई और मैं पहली क्लास में पटना ब्लाइंड स्कूल में आया और जो टीचरों ने जो मुझे देखा तो उनको लगा कि मुझे प्रमोट करना चाहिए। फिर मैं कक्षा 1 से 3 में चला गया और इस तरह से जो है मेरे प्रमोटेड होते चले गए और पटना का कुछ माहौल मुझे सूट नहीं किया और मुझे लगा कि आई शुड लीव पटना एंड आई वांटेड टू बी अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश। और सो पटना के चूंकि बनारस के कुछ टीचर्स थे जो हमारे पटना में जो टीचर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ट्रेनिंग करने के लिए आए थे तो उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया था कि कमल किशोर आपको बनारस में होना चाहिए। तो मैं 1992 को दुर्गा कुंड बनारस जो हनुमान प्रसाद पोद्दारानंद विद्यालय।
0: और देखिए कमल भाई, एक विद्यालय जहाँ से आपकी शुरुआत हुई उसका आप शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं और उसके बाद जिस विद्यालय में आप गए हैं संभवतः आप और हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो विद्यालय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और करीब करीब वो बंद हो ही चुका है।
1: निश्चित रूप से सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली यू नो वाराणसी इन सेंट पीरियड वाराणसी इज वाज कॉल्ड रेड सी एंड नाउडेज आल्सो इन इंग्लिश वी से रेड सी एंड वाराणसी इज द सेंटर ऑफ म्यूजिक कल्चर एंड एजुकेशन। बनारस एक बड़ा ही शिक्षा संस्कृति म्यूजिक इनके जो है सेंटर संगीत शिक्षा और संस्कृति के केंद्र है और बनारस में BHU और बनारस में काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद जैसे 3-3 यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। तो उस एरिया में जब मैं बनारस गया 1998 में तो 1999 में मैं 9th क्लास में एडमिशन लिया था सर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे मुझे इतनी अच्छी इतनी प्रेरणा मिली कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे BHU से सब जितने लेडीज जेंट्स गर्ल्स बॉयज सभी लोग हम लोग फ्री सेवा देने आते थे रीडर के रूप में राइटर के रूप में तो उनसे मुझे काफी प्रेरणा मिली। और उसके बाद फिर मैं बनारस में 12th पास करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया MA किया। अनफॉर्चुनेटली MA कम्प्लीट नहीं हो पाया, लास्ट सेमेस्टर का पेपर मैं दे नहीं पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद फिर मैं मुझे लगा कि मेरे घर में पढ़े लिखे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, what to do and what not, I was in a fix। तो फिर हुआ कि नहीं, मैं दिल्ली आ गया भक्ते और दिल्ली में मैं बीमार पड़ गया संस्थाओं में रखे। फिर मेरी बहन रहती है डेरा सच्चा सौदा हरियाणा में, आप लोग जानते होंगे डेरा सच्चा सौदा हरियाणा, संदीप सर आप जानते होंगे
0: बिल्कुल सिरसा
1: उम्मीद राम में
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सिरसा में
0: जी।
1: तो बचपन से मैं वही रहा हूँ, गर्मी छुट्टियों में मैं वही रहा हूँ इसलिए मुझे हरियाणा भी बोलना पसंद भी है जी। तो उसके बाद मैं 12वीं पास करने के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आया और वहां से मैंने BBA में जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद BRA से मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग की और फिर मुझे वहीं से रास्ता मिल गया, रास्ते मिलते चले गए, मैं NIBH देहरादून चला गया और वहां से मैंने शॉर्ट हैंड के लिए एडमिशन ली थी पर मैंने उसको अधूरे छोड़कर मैंने BEd में आ गया, स्पेशल BEd करा, MEd करा और आज 2013 से तकरीबन आज तक जो है मैं दिल्ली मतलब गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए TGT इंग्लिश के रूप में वर्क कर रहा हूँ।
0: काफी घटनाओं से भरा आपका जो है वो समय रहा है कहीं पे कुछ पूरा किया और कहीं पे कुछ अधूरा छोड़ दिया। खैर
1: बड़ी कहानियां है सर, आप पूछेंगे तो जरूर इनके जवाब भी मिल जाएंगे।
0: नहीं नहीं वो ठीक है, जिंदगी भी इसी का नाम है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ममता जी भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से अपने
1: ममता जी
0: जी।
2: सर मेरी नाम ममता कुमारी है और मेरा घर छपरा जिला बड़ा तेलपा ग्राम में है मेरा घर
0: जी।
2: और इनसे और शादी हो गया, मैं बीए क्लास तक पढ़ी हूँ।
0: अच्छा, आपको कुछ दिखाई देता है ममता जी?
2: लाइट प्रोजेक्शन है।
0: अच्छा, लाइट ओके ओके,
2: हाँ, एक आँख से दिखता है थोड़ा थोड़ा लाइट।
0: आपकी सारी शिक्षा बिहार में ही हुई है?
2: हाँ सर।
0: अच्छा ओके, तो बहुत अच्छी बात है ममता जी। और ये आपको जो आँखों की समस्या है वो कब से है?
2: मैं 5 साल के जब हो गई थी तब हो गया। मेरी मम्मी बताती है कि जब 5 साल के हो गई तब तुम्हारा आँख खराब हो गया।
0: अच्छा ममता जी, कुछ बताएं घर परिवार में कौन कौन है आपके?
2: मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, और मेरे 4 भाई हैं, और भाभी है, और सिस्टर है।
0: अच्छा,
2: हम लोग दो बहन हैं।
0: तो ममता जी, हम जानना चाहेंगे कि कमल भाई से मिलना कैसे हुआ आपका?
2: इनसे मिलना हुआ जैसे मैरिज, जैसे हम लोग पढ़ाई खत्म हो गया, मतलब बीए पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद जैसे घर का लोग सब लोग शादी का बात चलाते हैं, वैसे मेरी मम्मी पापा स्कूल, मतलब हम 8वीं क्लास तक पढ़े हैं ब्लाइंड स्कूल में
0: जी,
2: वो छपरा जिला में ही है, मेरे घर के पास में
0: जी,
2: तो वहीं पर 8वीं क्लास तक पढ़े, उसके बाद मतलब छपरे में ही है वहीं पर कॉलेज, उसके बाद हाई स्कूल में पढ़े, उसके बाद कॉलेज में पढ़े, उसके बाद मतलब मेरे मम्मी पापा मैरिज के बाद चलाने लगे, उसके वो स्कूल का ही सर हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्हीं से बात चलाने लगे लोग, तो इन्हीं मतलब बोले लोग कि एक कोई लड़का हो तो बताएं, तो यही मतलब अखिलेश सर हैं तो वही बताए, तो मतलब हम लोग का फोन नंबर से बात हुआ।
0: अच्छा अच्छा,
2: तो फोन पर ही सारे बात हुआ।
0: तो पहली बार में ही पसंद आ गए थे आपको कमल भाई?
2: हाँ सर, मतलब बात किए, वो जो अंग्रेजी बोलते हैं
0: जी,
2: तो वो अंग्रेजी बोले, तो उसके बाद हम भी बोले, हमसे भी मतलब जो सारे पूछे कि तुम कितने पढ़ाई की है, क्या कैसे करती है, तुम कैसे काम कर लेती है, तो हम भी बताए, वो भी अपना बताए, तो हम बोले ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है तो शादी कर लेंगे, आप ये भी बोले कि ठीक है हम कर लेंगे
0: जी। चलिए अच्छा है, बाद में और आपसे हम कोशिश करेंगे जानने का, लेकिन इस बीच में कमल भाई
1: जी सर,
0: आप जरा बताएं कि कब से आपने विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया था?
1: Absolutely.
0: और किस प्रकार जो है वो ममता जी तक पहुंचे आप?
1: Absolutely. सर, आपको मैं जैसा कि बताया हूँ कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के 11 भाई बहन है, यानी कि क्रिकेट की पूरी टीम मौजूद है, और ये 11 भाई बहन में हमारी 8 बहनें और हम 3 भाई हैं, तो चूंकि ब्लाइंडनेस जो है वो गाँव में आज भी कर्ष समझा जाता है और कर्ष समझा भी जाता है, और देखा जाए तो परिस्थितियों के हिसाब से ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी अब्स्ट्रैक्ट भी मुझे भी लगता है, क्योंकि तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, आजकल जो जिस तरह से एग्जाम सरकार ले रही है, जिस तरह से पेपर बनाओ तो इसकी कॉपी करो, तो उसको कॉपी वोपी करना तो ईजी है, फिर भी डायरी बनाओ, फिर बच्चों को टेस्ट दो, फिर उसको चेक करो, फिर चेक करके उसके अकॉर्डिंगली नंबर दो, तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कितने भी सारे ऐप्स डेवलप हो गए हैं, पर आप ऐसी कोई ऐप नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं बनाई गई है आज तक जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड उसको लिख सके ब्लैक बोर्ड पे या फिर कागज पे, इस बात को मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सहमत होंगे इस बात से जी। तो ये बात, फिर पढ़ाई जहां तक रही बात मुझे ममता सब मैम से मिलने की बात, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 2013 से जॉब कर रहा था डिफेंस कॉलोनी में, उसमें गेस्ट टीचरों की जो सैलरी थी वो पर डे के हिसाब से 700 रुपए थी
0: जी,
1: उसमें मेरा सीटेट क्वालिफाइड में नहीं था
0: जी,
1: तो मैंने बीच में अप्लाई करना छोड़ दिया, फिर 2015 में मेरा सीटेट हुआ, उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई किया, उसके बाद हो गया, और 2015 में ही जॉब लगने से पहले ही ये अखिलेश सर, जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि अखिलेश जी ये दिल्ली सरोजनी नगर में जो एज ए म्यूजिक टीचर है,
0: वो भी ब्लाइंड
1: है, एब्सोल्युटली ही इज आल्सो ब्लाइंड, तो सर ऐसा हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हुआ करती थी मदनगिरी में, छुट्टियों में हम लोग आते थे
0: जी,
1: तो वो मुझसे बोलते थे कमल किशोर शादी करोगे? ओके, तो मैंने कहा कि शादी करोगे? तो मैंने कहा जरूर जी शादी कराओ सर, जो कहोगे वो कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, शादी तो शादी है। फिर किसी तरह से उनसे मतलब पटपट आ गए, उनसे नंबर मैंने ले लिया।
0: अच्छा,
1: हाँ, और नंबर लेने के बाद मैंने पहले उनको सुना वो क्या क्या बोलते हैं।
0: नंबर आपने क्या कह करके लिया, मतलब कि सीधा मतलब बात बात करूंगा या?
1: हाँ नहीं, मैंने बोला मैंने, नहीं सर देखो मैंने उनके सामने बात की, पहले मैंने उन्हीं के फोन पे बात की, उन्हीं के फोन पे बात की, मैंने बोला कि जी मेरा नाम है कमल किशोर कुमार और आपके यहाँ एक लड़की है ममता करके, और मैं उसके लिए बात करना चाहता हूँ और मैं खुद बात कर रहा हूँ। तो फिर ममता बोली कि मेरा ही नाम ममता है। हम बोले ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर लेते हैं।
0: तो आपने क्या समझा था उस समय इनको?
1: नहीं उस समय मैं सोचा कि उनकी सिस्टर होगी या कोई और।
0: जी जी जी, चलिए फिर आगे।
1: तो फिर हुआ कि नहीं, फिर उनका नंबर लिया और फिर हम लोगों ने जो है आपस में बातें, उन्होंने अपनी बातें रखी जो ब्लाइंडनेस की जो कॉन्सेप्ट है आजकल या पहले भी थे, और जो गांव में जो ब्लाइंड के प्रति जो परिस्थितियां हैं उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो मेरे से मैच खाता दिखाई दिया। मुझे लगा कि हाँ, एक चीज मैच नहीं खाता है जो सही बात है कि मेरे फादर जो है वो गांव में मतलब एज ए डॉक्टर, सिंपल डॉक्टर है, वो MBBS नहीं है, वो गाँव में डॉक्टर रहे हैं, पर इनके जो फादर है वो गाँव में हेडमास्टर रिटायर्ड है जी। तो हमने इनसे बातचीत की और हमें लगा कि चलो कोई नहीं, हम लोग जीवन जी लेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि कंप्रोमाइजिंग में क्या क्या कर लेती है, खाना बना लेती है, कपड़ा प्रेस कर लेती है, कपड़े धो लेती है, सारे काम कर लेती है। तो मुझे भी लगा कि यार ये सारे काम ये कर ही रही है, मैं स्कूल में पढ़ाई रहा हूँ, पर जब लगी एक शादी कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने शादी कर ली और शादी भी करी तो बिल्कुल मतलब ऐसे कि उनके पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं था, उनकी उनकी समर्थन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी शादी कहीं और हो। और वो मैं भी शादी से पहले एक बार मिला भी था
0: कहीं और, मैडम मतलब, से मैंने कहीं और मतलब कहाँ हो?
1: कहीं और नहीं, हम मतलब उनके घर गए थे शादी से पहले एक बार गए,
0: मतलब वो साइटेड से करवाना चाहते थे क्या?
1: जी उनके पेरेंट्स चाहते थे हमें देखना कि ये तो वही बताएंगे कि वो किसे करवाना चाहते थे, चूंकि पर उनको लगता था कि मैं बेरोजगार हूँ और चुकी उनका जो है भरण पोषण कैसे करूंगा। तो मैंने उनको बताया कि मैं एज ए गेस्ट टीचर जॉब करता हूँ, तो उनको यकीन नहीं हुआ। फिर भी ममता कुमारी से शादी हो गई और शादी एक मंदिर में हुई। शादी के बाद हम लोग दिल्ली आ गए और ममता पहली बार दिल्ली आई और इससे पहले वो दिल वालों की दुनिया में नहीं थी। तो फिर हमने दिल्ली लाया और दिल्ली में जब आने के बाद तो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो आज भी कहते थे कि ये चंदा काटता होगा खाता होगा, पर मुझे चंदा काटना आया नहीं आज तक मैंने। तो फिर हुआ कि जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था 2017 में, तो पहली गुड़िया जब हुई तो वो मैके में हुई। तो मैके में जब ये हुई तो मैं पैसे भेजना शुरू कर दिया एक बार, वैसे 10,000 रुपया महीना जब बच्चा होने लगा तो 40,000 रुपया ऐसे भेजने लग गया। तो गांव उनको लगा कि इसके पास पैसा है नहीं, ये भेज कैसे रहा है इतने इतने पैसे ना। उसके बाद है ना, उसके बाद फिर वो मेरी मिसेज को और बच्चे को छोड़ने आए, वो मेरे छोटे वाले साले हैं वो आते हैं, वो बात करते हैं हमसे, और एक उनसे बड़े जो साले हैं उनकी मिसेज आई थी छोड़ने, वो लोग भी रहे।
0: कमल जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ।
1: जी जी,
0: मतलब आपने क्या ये तय कर रखा था कि भाई आपको बिना जॉब करती हुई और ब्लाइंड लड़की से ही शादी करनी है?
1: जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में गई, जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहा था
0: जी,
1: उस समय डॉक्टर आर के सर थे, डॉक्टर आर के चौहान थे डॉक्टर साहब, तो वो हमें पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कमल किशोर मुझे तो नहीं लगता कि तुम एक देहाती।
0: आर के चौहान या आर एस चौहान?
1: या एब्सोल्युटली आर एस चौहान,
0: आर एस चौहान जी,
1: और हमारे फेवरेट गुरु रहे हैं अभी भी हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कमल किशोर तुम ब्लाइंड से शादी करोगे या सर्टिफिकेट से? मैंने कहा मैं ब्लाइंड से नहीं करूंगा शादी। तो फिर ये हुआ कि भाई बीएड करा, एमएड करा, उनमें भी लड़कियां थी, काफी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, सब लोगों से हमारी दोस्ती प्यार सब कुछ होता रहा। पर मुझे लगा कि जब सब अलग थलग पड़ गए, जब हम बेरोजगार हो गए, तो मुझे लगा कि यार फिर कोई नौकरी करनी है, शादी करनी है, शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार, फिर घर कैसे बसेगा, परिवार को क्या होगा। फिर यही बात मेरी मिसेज के मन में भी गूंज रहे थे, तो हमने कहा कि चलो यार फिर पहले शादी करते हैं, लेकिन नौकरी हमारी लग जाएगी क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, सब कुछ जमा हो चुका है, बस जॉब ज्वाइनिंग की बात हो रही है। तो शादी करा मैंने 28 नवंबर को और 9 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो गई।
0: क्या बात है, एक तरह से मतलब सब कुछ कार्रवाई हो ही गई थी जॉब की, फिर भी ममता जी के आने के बाद जो है आपकी नौकरी भी लग गई,
1: ज्वाइनिंग हो गई जी।
0: बहुत बड़ी
1: सर ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद आज तक वो ज्वाइनिंग चल रही है।
0: लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए कि आपने वास्तव में चाहा क्या था, कि कोई भी मिल जाए करनी है या फिर आप कहीं ना कहीं ये चाहते थे?
1: नहीं सर, कोई भी मिल जाए कर ले वाली बात तो ये नहीं थी, पर हमारे भी कुछ अभिलाषाएं थी कि हम शादी करें, अगर या तो ब्लाइंड, चूंकि मैं ब्लाइंड हूं तो ब्लाइंड से शादी कर लेनी चाहिए भाई दवे। उस समय मुझे इतने अनुभव नहीं थे, लेकिन आज के अनुभव से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को सुने हैं और बहुत सारे लोगों से बातें भी हुई है मेरी, जिसमें कि उन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जो ऑर्थोपेडिक हैं, और इनके भी मैंने देखे हैं, इनकी जिंदगी की भी कहानियां मैंने सुनी है, जो विजुअली इम्पेयर्ड साइटेड हैं उनकी भी कहानियां सुनी है, जाना है। पर मैं जो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि जो हमारी फीलिंग है वो लगभग सेम होती है। जो इस चीज को आप माने या ना माने, पर आप करीब से कभी आप देखिएगा सर, आपके काफी लोगों को आप हैंडल करते हैं जिनको करीब से फील करिएगा कि जैसे एक अनुभव के तौर पर ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सामान्य यूनिवर्सिटी में या सामान्य कॉलेज में या सामान्य स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं और उसमें सामान्य टीचर है, मेल एंड फीमेल सारे हैं, तो आप देखेंगे कि आपसे कितनी लड़कियां बात करती हैं मजाक मजाक में, है ना। और जो तमाम सेटेड लोग हैं उनसे वो लोग एक दूसरे से किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं और कितने करीब पाते हैं वो लोग एक दूसरे को।
0: जी जी।
1: और जी तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आपको सेग्रीगेशन दिखाई देगा। और यही आप किसी ब्लाइंड प्रोग्राम में जाइए जो स्पेशली ब्लाइंडों के लिए होता है, चाहे उसमें सेटेड लोग ही क्यों ना हो, पर उसमें जो है ब्लाइंड का पार्टिसिपेशन मस्ट होता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हम लोगों की फीलिंग सेम है और शादी कर लेनी चाहिए, और ये बात सही भी है कि जो ब्लाइंड है वो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, किसी एक दूसरे को कुछ भी दुख पीड़ा दर्द सुख दुख में साथ हो सकते हैं। पर सेटेड में चाहे कहीं भी हो, मैं चाहे वो प्रोग्राम को ले लूं या कुछ भी ले लूं, मैंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फीलिंग जरूर डिफरेंट देखी है। प्लस जो अदर डिसेबिलिटीज है, जो ऑर्थोपेडिक है, वो कहीं कहीं तो मैंने उनमें भी इस तरह की चीजें देखी है, और कहीं कहीं सेटेड हो में मैंने बहुत अच्छी देखी है।
0: बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को समझाया कमल भाई, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि आपकी फैमिली ने क्या सोचा आपके विवाह के बारे में, या उन्होंने बस बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने?
1: तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, बिल्कुल। बात यह है कि जो एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो, उनको लगता था कि जो सूरदास होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, तो सूरदास कहा जाता है गाँव में, तो हमारे पापा कहते थे कि सूरदास है, इसको क्या करेंगे, कुछ गाना भजन वगैरह सिखा देंगे, एक तो है गाएगा बजाएगा। तो हमको लगा कि हमें, उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मैं सूरदास क्यों कहता है, मुझे मेरा नाम कमल किशोर है और मुझे जो लोग सूरदास कहते थे तो मैं उसको भी कहता था, हाँ सूरदास जी, तो हाँ सूरदास जी, जी सूरदास जी बताइए आप मुझे सूरदास क्यों कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप मुझे क्यों कह रहे हैं तो आपके पास आंख नहीं है, मेरे का मगाइए आपके पास आंख है तो हाँ कहाँ है आप दिखाइए, तो ये वाली बात होती थी। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि सूरदास जो है वो एक कवि थे और उनके नाम पे जो है ब्लाइंड को जॉन मिल्टन ना करके सूरदास कहते हैं क्योंकि इंडिया है ये। तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि ये पढ़ाई लिखाई अपने आप करेंगे और हो सकता है अगर इसकी किस्मत में होगी तो शादी वादी करेगा, और मेरे भाई भाई नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो क्योंकि उनको लगता था कि ये शादी पढ़ लिख जाएगा, नौकरी वोकरी करेगा, तो इसकी जो है हम लोग शादी वादी करेंगे, इनको रखेंगे और इन्हीं के पैसे से हम लोग भी राज करेंगे। तो उनका मन में ये था, तो हमने जी
0: आमतौर से गांव में जो एक सोच होती है वही सब आपके साथ भी हुआ।
1: जी बिल्कुल सेम सेम सेम थॉट, सेम फिलोसॉफी, सेम साइकोलॉजी लागू होता है। और सर ये जो ब्लाइंड के बारे में, मैं उन लोगों को भी एक हिदायत दूं जो ब्लाइंड से मैरिज करना चाहते हैं, जो कपल ब्लाइंड में अभी भी है, उनके लिए भी मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोग चाहे कितना भी आप एक किसी ऐसे घर को देखिए, किसी आप ऐसे मित्र को तलाशिए जो जो ब्लाइंड हो, जिनकी बीवी सेटेड हो, और उनके यहाँ कभी कभार मौका मिले तो घूमने जाइए, नहीं भी जा पाए तो उनसे बातें करते रहिए, कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन मिलेगी सर। लेकिन अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो अगर जो आपके साथ होना है, जैसे मान लो आज स्कूल में हरासमेंट हो रहा है अबे यार पेपर चेक करना है तो पेपर चेक कैसे करें, हमारे स्कूल में टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, फिर कैसे होगा, बच्चों को पकड़ेंगे, बच्चे तो छुट्टी पे हैं, अब क्या होगा। और सर्टिड भी रहेगी तो उसको लगेगा कि अब ये तो आपकी सरदर्दी है, चाहे वो मदद भी कर देगी, लेकिन एक ब्लाइंड है तो उनको लगता है कि यार जो प्रॉब्लम है जो इनके साथ है वो मेरे साथ भी है, जो कुछ भी हो रहा है वो इनके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कवर कर जाती है बात। और ये जो सर्टिड होती है उनके मन में और भी भावनाएं आ जाएगी, यार मैं मुझको जब यही करना था तो ये ब्लाइंड सही क्यों करा, तो फिर ये भी हो सकता है कि मैं कुछ और कर लेती, मैं भी जॉब में होती, तो बहुत तरह की बातें होती। जी सर,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमल भाई। तो कुल मिलाकर के मतलब बहुत ज्यादा इसमें आपने परेशान होने की बजाय और इधर उधर मतलब भटकने की बजाय आपको लगा कि जो दिल को पसंद आ जाए बस वहीं पर अपना घर बसा लिया जाए, क्यों?
1: नहीं सर, नहीं, मैं NIBH में जब था तो NIBH में बहुत सारी लड़कियां थी, तो मैंने NIBH में देखा कि हॉस्टल में जो लड़कियां हैं तो उनमें से मैंने बहुतों के बारे में कुछ सोचा भी, और चूंकि सेटेड भी थी, सेटेड में थी, मेरे साथ अनिता नेगी थी और लोग भी थे, तो लेकिन फिर जब हम अपने घर में आ गए, जब इंस्टीट्यूट से अलग हो गए, जब हम इधर उधर रहने लगे, फिर जॉब की तलाश में दिल्ली में आ गए, तो फिर हमें लगा कि हमें एक पार्टनर चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक पार्टनर जो है वो समझ सकता है कि एक व्यक्ति को कैसे अस्थायित्व कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने ममता से ऐसे शादी नहीं की है, इनसे मैंने 6 महीने तक पहले बात की है, बहुत कुछ इनके बारे में जाना है, सुना है और बहुत कुछ समझा भी है। और हमको और आज भी ये बात सही है कि किसी सेटेड लड़की से कम काम करने में नहीं है, वो हर काम करती है, खाना बना देगी कि आप भी खाओगे, सोचते रह जाओगे कि कैसे खाना बनाई है, तो सारा काम बहुत अच्छा कर लेती है। और हमारे इनके घर वाले भी आते हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, हमारा भी अभी भी मेरे साले साहब का लड़का आया हुआ है, मेरी शालिम साहिबा आ रही है होली में और मेरे साले साहब आ रहे हैं, तो इन लोग आते जाते रहते हैं और मुझे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है फिलहाल। और आप पहला और दूसरा सवाल आप करोगे कि आप साला साले की बड़ाई तो खूब कर रहे हो, अपने घर के बारे में नहीं बता रहे हो। निश्चित रूप से मेरे जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरे फादर का एक्सपायर हो जाने के बाद फिर मेरे घर में इस तरह कोई इंटरेस्टेड लोग नहीं दिखे कि हमारे साथ कोई रहे। मैंने मम्मी को भी कुछ दिन के लिए बुलाया था, तो मेरी मम्मी वैसे भी ब्लाइंडनेस को निगलेक्ट करती रही है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो जब दोनों दो दो ब्लाइंड उनके सामने आ गए तो उनको थोड़ा ज्यादा ही मुसीबत झेलनी पड़ी, उनको लगा कि हम दोनों ब्लाइंड के बीच में नहीं रहना चाहिए, फिर वो वापस चली गई मम्मी, फिर हम लोग रह रहे हैं ससुराल वालों की सपोर्ट से रह रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ समझदारी है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो ये समझते हैं, ये लोग आते जाते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कमल भाई,

0: मतलब हम चाहते थे कि वो लोग नौकरी वाला था, जॉब वाले थे, तो
1: जी
0: मतलब हम तो पसंद पहले ही, मतलब ये लोग से बात नहीं हुआ था तब
1: जी
0: मुझे, मतलब मैं पसंद कर लिए थे लड़का, तो
1: जी
0: माँ बाप मम्मी पापा को भी, मतलब मम्मी को पसंद थे वो लड़का,
1: हाँ
0: इसलिए कि मतलब सामने सामने लोग दिखता था नौकरी करते हुए,
1: जी
0: तो वो लोग को पसंद था।
1: जी
0: फिर अखिलेश सर बताए लड़का को, तो ये नंबर से बात किए फोन से, तो मतलब ये कुछ अजीब अजीब से बात की है, बहुत मतलब लगे लगे कि मतलब मेरे मेरे प्यार को, मेरे लव को समझ समझ पाएंगे, मेरे दुख को समझ पाएंगे, तो
1: जी
0: हम भी ऊपर हो गए
1: जी
0: और फिर ये भी हो गए।
1: जी नहीं, अभी ममता जी, अभी इन्होंने कहा, कमल जी ने, कि
0: जी सर,
1: आपके घर परिवार में थोड़ा विरोध था,
0: हाँ
1: तो
0: सर,
1: वो
0: मतलब
1: बताए
0: ये
1: किस तरह का विरोध था।
0: विरोध था, मतलब जैसे पहले पहले फोन से बात हुआ, उसके बाद मतलब ये बोले कि हाँ शादी के बाद चलने लगा, फिर हम बोले, हमारे घर वाले बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले लड़का को देखेंगे, बुलाओ, तो मतलब तो फोटो, मतलब ये फोटो भेजे, नहीं फोटो नहीं भेजे, हम पटना एग्जाम देने गए थे केबीएस का, तो
1: जी
0: वहीं पर इनको बुलाए,
1: ठीक है,
0: दिल्ली से बुलाए, बोले कि मतलब मेरा एग्जाम है,
1: हाँ
0: आप
1: जी
0: आइए,
1: हाँ जी
0: यहीं पर हम लोग मिल भी लेंगे
1: जी
0: और अपने मम्मी पापा से मिला भी देंगे,
1: जी
0: तो वहीं पर मेरी भाभी का भाई रहता है पटना में, तो
1: जी
0: हम उनको वहीं पर रखवा दिए, एक दिन पहले आ गए, रात भर वहीं पर रुक गए भाई के पास,
1: जी
0: और हम सुबह सुबह गए एग्जाम दिए, उसके बाद फिर आ गए इनके पास,
1: जी
0: और हम और हमारी सिस्टर और मेरे भाई, छोटे वाला भाई गए थे लोग, तो लेकर इनको आ गए घर, तो घर आ गए तो फिर मतलब ये रात भर वहीं पर रह गए घर पे, तो मतलब मान लीजिए कोई घर पे रह जाएगा लड़का बिना शादी किए हुए, चाहे इसीलिए मेरे घर वाले विरोध किए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे शादी ऐसा लड़का से नहीं होगा, ये सब मतलब अपना जो जितना सामान था, रजिस्टर मतलब वो क्या बोलते हैं, अपना सर्टिफिकेट भी सब लिए लिए गए थे, कपड़ा वपड़ा सब लेकर गए थे, तो मेरी माँ बोली, भाभी बोली लोग कि जब अपना सामान लिए आया है तो फिर इसका घर द्वार है नहीं, कहाँ रह रहा है, जब सामान लेकर आया है तो फिर इसके साथ शादी कैसे होगा, जहाँ रह रहा है वहीं सामान लेकर जा रहा है आ रहा है, तो फिर इसके साथ शादी कैसे होगा, नहीं होगा शादी, सब लोग विरोध करने लगे, तो फिर ऐसे करते करते करते करते 5 दिन फिर घर पर रह गए हमारे, मतलब हम इनको सब करते थे, खाना पीना सब खिलाते थे, लेकिन मेरी मम्मी गुस्सा हो गई थी
1: जी
0: कि नहीं ये इसको घर पर क्यों रख रखी है, बोलो जाओ, तो
1: अच्छा,
0: हमको भी हमको भी शर्म लगता था कि हम कैसे बोले इनको,
1: सही बात है,
0: आप
1: बिल्कुल
0: जाएंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी।
0: तो हम बोले कि कैसे, मतलब अपने मन में करते थे कि अरे हम कैसे बोले जब ये अपने से नहीं जा रहा है लड़का,
1: जी
0: तो फिर मतलब मेरे स्कूल का एक सर हैं,
1: हाँ
0: तो वो आए इनको समझाए कि आप अपने घर को चले जाइए, तो फिर ये जाने लगे तो हम रोने लगे, अब 5 दिन रह जाएगा कोई,
1: सही बात है,
0: तो रह गए, तो मतलब ये अपने घर चले गए, तो फिर हम रोने लगे, तो फिर मतलब मोबाइल से कॉन्टेक्ट होते रहा, हम बोले मोबाइल नंबर मत बदलिएगा, फिर इधर उधर भड़काने लगा लोग, सब स्कूल का टीचर लोग, मेरी मम्मी पापा को सबको बोलने लगा कि नहीं ऐसा लड़का है वैसा लड़का है शादी मत करो, तो
1: हाँ
0: मेरी मम्मी कुछ भी नहीं, एकदम ना के हाँ नहीं कहती थी, कभी नहीं,
1: कभी हाँ नहीं
0: फिर
1: करती, अच्छा
0: नहीं कभी हाँ नहीं करती थी, बोलती थी नहीं शादी होगा ही नहीं,
1: अच्छा
0: तो वो हम मतलब रोते रहते थे, खाना पीने नहीं खाते थे, छोड़ दिए थे, तो
1: हाँ
0: फिर बोले मतलब वही सर से, अर्जुन सर है, तो वही बोले, अखिलेश सर का दोस्त है, तो बोले कि सर मेरी मम्मी से बात होती है उनको, तो
1: हाँ
0: ब्लाइंड का ब्लाइंड दुख समझ सकता है, तो
1: सही बात है,
0: इसलिए तो उन्हीं से हम बोले कि सर आप कहिएगा तभी होगा, उनको कैसे कैसे करके पटाए, रोए बहुत बार, अकेले में बोले सर अपने भतीजी को लेकर गए और
1: हाँ।

0: बोले सर प्लीज शादी करा दीजिए, हमको यही पसंद है। और वो भी बोले कि हमको यही लड़की पसंद है। तब जाके बोले तो फिर नहीं नहीं नहीं नहीं हुआ। फिर हम बोले कि कुछ नहीं होगा तो भाई हम दुनिया में रहेंगे ही नहीं, बस हम दूसरे से शादी।
1: यहाँ तक बात हो गई थी मतलब?
0: हाँ सर।
1: ओहो, आज कैसा लग रहा है आपको ममता जी? आप सब ठीक है ना?
0: सब सही है सर।
1: खुश हैं आप?
0: जी सर।
1: और बेटियां बेटियां कैसी हैं आपकी?
0: सब सही है, दोनों
1: दोनों अच्छे हैं।
0: ठीक जी सर।
1: क्या बात है। तो बच्चों को मतलब पालने में कोई दिक्कत होती है आपको कि नहीं?
0: नहीं, बड़ी वाली तो मेरी मायके में ही हुई थी, तो 4 महीना के हो गई तो लेकर आ गए यहाँ पर।
1: हाँ जी।
0: तो फिर उसके बाद मतलब दवा हुआ पिलाने में, मतलब हमको तो पता नहीं था कि पहले अपने भतीजा और भतीजी को हम पाले हुए थे, छोटे अच्छा, थे अच्छा, हम अपने घर में लड़की में बड़े में। हाँ, तो ये सब करने में सब हमको मतलब सब कर लेते
1: सब,
0: थे
1: सब अनुभव था, अनुभव था।
0: हाँ, हाँ सब छोटे। मेरी मम्मी का हरदम तबीयत खराब रहता है
1: जी।
0: तो मेरी भाभी लोग को शादी नहीं हुआ था, भैया को, तो पहले मतलब घर में हम ही काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे
1: जी।
0: तो सारे खाना पीना सब चीज काम कर लेते थे। तो फिर वो भतीजा भतीजी को सब संभाले हुए थे, तो हम अपने बच्चे को भी संभाली, बस सिर्फ दवा पिलाने में दिक्कत होता था। फिर वो भी आ गया, दवा पिला धीरे धीरे आ गया वो भी।
1: तो ममता जी एक बात बताइए, जैसे कमल जी ने आपसे बहुत सारी बातें पूछी, 6 महीने तक उन्होंने बातचीत रखी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने भी कभी पूछा था कमल जी को कि भाई आप क्या कर सकते हैं, या अपना एक तरह से आपने इरादा पक्का करने के लिए कोई बात पूछी हो कमल जी से?
0: नहीं सर, मैं तो बस यही पूछे कि आप नौकरी करते हैं कि नहीं, फिर ये बात तो बोले कि हमारा नौकरी हो जाएगा, हो गया है, फिर लास्ट में ये बोलने लगे कि तुम किसी और से शादी कर लो, हमारा नौकरी नहीं हुआ है।
1: अच्छा।
0: फिर बोले कि नहीं, हम बोले कोई बात नहीं, जब सब कुछ हो गया, मतलब मेरे घर पर गए थे तो पहले जो शादी के बाद मतलब होता है वो भी सब कुछ कर लिए थे, तो फिर हम क्या करते, कहाँ जाते उससे? बोले कोई बात नहीं, नौकरी होगा बाद में होगा, शादी कर लिया जाए। तो फिर शादी हो गया, फिर नौकरी हो गया
1: जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कमल भाई, आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे 6 महीने के दौरान ममता जी को?
2: ये सारे प्रश्न तो याद नहीं है सर।
1: हाँ नहीं, फिर भी जो एक आपने अपने अपना मन बनाने के लिए कोई ऐसी बात
2: जी। लेट मी कंक्लूड माय वर्ड शॉर्टली। ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं ये बताऊंगा, चूंकि हम हॉस्टल में रखे पढ़े हैं, हमने सारी पढ़ाई यहाँ तक कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई की है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब हॉस्टल में, जिसको बोलते हैं एनडी हॉस्टल इंटरनेट, वहाँ पे रहके पढ़े हैं। तो हमने जो भी पढ़ाई की है लगभग हॉस्टल में रहके की है। छुट्टियों में मैं हरियाणा जाया करता था, जैसा मैं आपको बताया
1: जी, जी, जी।
2: हरियाणा वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में भी मैंने कुछ दिनों तक जॉब भी की है गुरमीत राम रहीम के यहाँ। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि मुझे परिवार में रहने का ज्यादा अनुभव था नहीं, और चूंकि मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे तो मैं अपने घर पे छोड़ा नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं इमरजेंसी जरूरत पड़े, और उसमें हमारे पास ईमेल आईडी भी उतने वो नहीं थे, तो हमें लगा कि यार किसी भी डॉक्यूमेंट की कभी भी जरूरत पड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे घर लाने, झारखंड। तो इस प्रकार हम अपने साथ लिए फिर, और वो डॉक्यूमेंट्स मैं उनको अपने ससुराल गया, तो चूंकि उनको लगता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ भी या नहीं, तो उस तरह से मैं उस क्रम में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले गया था मैं। और चूंकि जब मैं कपड़े वपड़े सब कुछ ले गया था, तो मैं 1-2 दिन 4 दिन ऐसे कुछ करके रहा, मुझे किसी तरह की फील, चूंकि एक आंख वाला होता है तो उसको आंखों में दिखाई देता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, अगर कुछ, वरना ब्लाइंड को तभी पता चलेगा, या तो ये जुबान से कुछ कहे या हाव भाव कहीं शो हो, तो इस तरह की चीजें मुझे फील नहीं हुई।
1: जैसे ये बात जब मैं सुन रहा था कमल भाई, आपके 5 दिन तक रुकने वाली और फिर आप जा भी नहीं रहे थे, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था जो मैं आप पूछ लेता हूँ आपसे, कि आपको कभी डर नहीं लगा यार कि अनजान जगह है, अनजान लोग हैं, और पता नहीं कल को कुछ हो जाए मेरे साथ, तो मतलब कभी डर नहीं लगा?
2: मैं आपको बताऊं सर, देखो सच्चाई तो ये था कि हमने शादी पहले निश्चित कर लिया था
1: जी।
2: हमें लगा उनको जो उन्होंने जो बात जिस तरह से बातें की थी उनके हिसाब से मुझे लगा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम यहीं से शादी करके चल चलेंगे
1: जी।
2: तो इस वजह से मैं जो है डर हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर लड़की मेरे साथ है, ये लड़की राजी है शादी करने को, और सब हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जीवन जीने को रेडी है, एक दूसरे को समर्थ है, तो फिर तो कोर्ट भी हमारे साथ, कोर्ट भी जाएंगे तो हमारी जीत होगी। जब हम शादी कर रहे थे कोर्ट में भी कर सकते हैं, तो फिर इस वजह से, हाँ तो इस वजह से फिर मुझे लगा ये एक ब्लाइंड, जितना ब्लाइंड के बारे में, चूंकि जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि ये ब्लाइंड स्कूल करके बिहार छपरा में कोई इंस्टीट्यूट है ब्लाइंड वाली, गवर्नमेंट एडेड या कुछ भी है, तो बॉयज स्कूल है वहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पढ़ी और जो कुछ भी बताया इन्होंने, तो हमें लगा कि वहाँ पे और भी ब्लाइंड है, वो जानते हैं, इनके मम्मी पापा भी ब्लाइंड को जानते हैं, अभी भी ब्लाइंड की एक्टिविटी से अवेयर है वो लोग, तो उस बात से मुझे, मैं तुल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं डरने वरने की जो बात थी, मैं यही सोच रहा था कि मुझे शादी करनी है, चूंकि मेरी साली से जब मेरी बात हुई थी शादी से पहले ही, तो मेरी साली ने मुझे बोला जीजाजी नमस्ते, तो मैंने कहा शादी हुई नहीं तो जीजाजी बन गए, तो हाँ तो जब जीजाजी बन ही गए तो फिर इनसे भी शादी की बात करी थी मैंने, तो हमें लगा कि हम शादी कर रहे हैं, शादी करेंगे ही, ये निश्चित है कि शादी होना हम दोनों का तय है, तो जी तो सर देखो मैं, मेरे मन में किसी तरह की कोई वो नहीं थी, और जो कुछ भी होता है वो सबके कहीं ना कहीं सब की मर्जी होती है, तो हमें लगा कि चलो हम शादी करना है, जिंदगी जीना है साथ में, तो इस वजह से जो है हमने, अब मैं भी एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, मुझे कहीं रख दोगे तो मैं रह जाऊंगा, मुझे क्या पता कि आप कहाँ हो, आप कितना, आपके इसमें कितने कमरे हैं, कौन कौन कमरे कहाँ है कहाँ नहीं है, तो कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं मतलब ब्लाइंड को कुछ बताया जाएगा जब ही तो आएगा, तो हमने इनसे शादी, तो हमने इनसे शादी करनी थी, और इस वजह से मैं, मुझे डर नहीं लगा।
1: बहुत बढ़िया जी। तो कमल भाई, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप लोग रहते हैं
2: जी,
1: काफी भागदौड़ भरा शहर है,
2: बहुत ज्यादा,
1: तो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, सामान लाना ये वो, छोटी छोटी चीजें, घर की आवश्यकताएं, और हर बार कोई पास में हो ये जरूरी नहीं है, और आप दोनों दृष्टिबाधित हैं, तो इन चुनौतियों का सामना आप लोग कैसे करते हैं, क्या उसके लिए क्या व्यवस्था स्पेशल आपने कर रखी है?
2: पहले कभी इस बारे में सोचा करता था, मुझे लगता था कि कभी जब ये कमरे में आए तो यार कहाँ पे राशन दुकान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, चूंकि अब रहते हुए 5 साल 5.5 साल हो गए, तो मुझे सब जगह का अनुभव भी हो गया, और वैसे भी मैं जैसे सब्जी वब्जी खरीदना हो गया, तो मैं सब्जी बाजार से, मैं खुद भी स्कूल से आता हूँ तो बाजार से चला जाता हूँ, या अब कभी मेरी मिसेज जो है किसी लेडीज के साथ सब्जी मंडी से जाकर सब्जी ले आई, राशन के दुकान पास में ही है, उनके वो दुकान वाले से मेरी हमारी बनती रहती है, जिससे मान लो सामान आता गया महीने दो महीने में जब भी सैलरी आई उनको पैसा दिया गया, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है, कोई भी सामान आपको, कोई भी सामान चाहिए किसी भी तरह का सामान अगर इमरजेंसी है तो रात में भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और भाग दौड़ वाली समस्या तो समस्या ही है, जब कोरोना का दौर चल रहा था दिल्ली में, उस समय भी हम दिल्ली में ही थे और उस समय भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
1: गुड, वेरी नाइस, मतलब
2: हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारा स्कूल भी पास में, घर भी पास में, और दूसरी चीज ये कि सारे मार्केट वर्केट भी लगभग पास में ही है, और मार्केट जब कभी जाने के लिए निकलते हैं तो हमारे जानने वाले तमाम सारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, सर जी नमस्ते, सर जी कहाँ चले हो, सर जी कहाँ चलोगे, ये तो बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप चले जाते हैं, चलो सर जी मैं चलता हूँ आपके साथ, ये तो वो, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी, सब कोई दिक्कत नहीं है जी।
1: बहुत बढ़िया कमल भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय निकल करके आया आपकी बातचीत में
2: जी।
1: आपने डेरा सच्चा सौदा का जिक्र किया
2: जी।
1: और आपने ये भी बताया कि वहाँ आपने जॉब की, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका?
2: सर मैं आपको बताऊँ, जो 92 से जब मैं पटना में पढ़ना शुरू किया था, तो 95 में मैं पहली बार जो है मुझे सिरसा जाना हुआ, जहाँ मेरी दीदी रहती है, दो दो बहने
1: थी
2: सिरसा में मेरी बहन, चूंकि मेरी बहन का मानना था कि मैं गाँव ना जाऊँ, गांव ना जा करके सिरसा में ही मन लगाऊं, ताकि वो अच्छा शहर है, वहाँ पे थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरी बहन का ये भी मानना था कि वो, मैं उनके साथ रहूं और उनसे कुछ सीखूं, घूमना फिरना, और जब जब छुट्टियां हो तो मैं उनके पास जाऊं और उनके बच्चों से खेलूं कूदूं, वो लोग हमें घुमाएंगे पार्क वार्क में और सब जगह, डॉक्टर को दिखाएंगे या और जो कुछ भी करना होगा वो लोग करेंगे, वो ऐसा मान के मुझे अपने पास रखती थी। तो वो लोग जो थोड़ा गांव के वो हैं, हम लोग जैसा कि हम लोग हिंदू हैं तो बनिया हैं तो धर्म को ज्यादा मानते हैं, तो वो डेरा सच्चा सौदा वाले जो है गुरमित राम रहीम, किस सेवेदार हमारी दीदी हुआ करती, वो जो है जाती थी जो सेवा करने, कभी कभी जब भी टाइम मिलता, तो उनका मानना था कि मेरी आंखें बन जाएगी, और मैं भी 9th क्लास तक ऐसा सोचता रहा कि मैं बहुत पूजा पाठ करूंगा। तो कभी ना कभी मेरी आंख बन जाएगी। और इस क्रम में मैं डेरा सच्चा सौदा में उसके जो साप्ताहिक सत्संग हुआ करता था उनमें मैं भाग लिया करता था, उनमें उनको सुनता था और मुझे अच्छा लगता था, और उन्होंने कुछ मंत्र भी दिए थे उनको भी हम फॉलो करने का प्रयास करते रहे थे। तो ये सब मुझे ढकोसला लगा कि जब मैं पढ़ लिख करके वो काफी वो हो गया तो डेरा सच्चा सौदा वाले ने मुझे अपने जॉब पे रख लिया। और वो लोग डेरा सच्चा सौदा की, क्योंकि अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, तो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे उनमें
1: वहाँ पे। लेकिन एक अलग तरह का माहौल होता था जब भी वो चलता था तब। तो आपने जब जॉब किया तो मतलब एक आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि आप दृष्टि बाधित हैं और आपके साथ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है?
2: बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता था सर, क्योंकि वहाँ पे उस समय हमारी सैलरी इतनी कम हुआ करती थी कि 7,000 रुपए मिलते थे। आप सोचो कि 7,000 रुपए मिलते थे, वो भी छुट्टियों में पैसे कट जाते थे। तो मैं अकेला था, शादीशुदा भी नहीं था, और मैं अपनी बहन के यहाँ से जाता था वहाँ पढ़ाने। तो वहाँ पे लोग कहते थे कि जो है वहाँ पे जो उनके गुरु जो बाबा थे गुरमीत राम रहीम, उनसे बात करना और बड़े मिनिस्टर से मिलना एक बराबर हुआ करता था। तो वो इतने पहुंच वाले थे, और आपको भी पता होना चाहिए कि वो राजस्थान को मैं विजिट किया हूँ, आई हैव बीन राजस्थान फॉर सेवरल टाइम्स। तो राजस्थान में भी बहुत सारे प्रेमी हैं वहाँ पे, और उनके भी आश्रम भी वहाँ भी खुले हुए हैं। तो हम वहाँ पे जाते थे उनके यहाँ जॉब करने के लिए, क्योंकि जब हम जॉब पर्पज से जाते थे तो हमारा प्रोफेशनलिज्म हुआ करता था, हमारा कोई मतलब नहीं था डेरा सत्संग से, प्रेमी प्रेमी इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हम लोग अपना जॉब करने जाते थे, जॉब पर क्या
1: और बढ़िया, वेरी नाइस, जी जी जी।
2: लेकिन इस जॉब के दौरान क्या होता था कि जो हमारे पार्टनर जो काम करने वाले होते थे, तो वो गुरमीत राम रहीम ने जो है मुझे टीचर के पोस्ट पे रखने के लिए बोला था, और इन्होंने मुझे जो है टेलीफोन एक्सचेंज में रख दिया। और टेलीफोन एक्सचेंज में रख दिया, मैं वहाँ पे जॉब करने लगा, और जो हमारे साथ काम करने वाले बंदे थे वो मुझसे बहुत जलते थे। तो मैं बाथरूम में जाता था, गाना वाना गुनगुनाता था कि बात पड़ गई। तो उन्होंने बोला कि कमल किशोर जी आप जो है जॉब करना चाहते हो या नहीं? हम बोले मैं जॉब करना चाहता तो हूँ, पर मैं जॉब किसी के दबाव में नहीं करना चाहता हूँ। बोला ऐसा क्यों? मैं कहा भाई कोई जॉब है ये 7,000 रुपए की है, और मेरी डिग्री है बीएड और एमएड, ये 7,000 में तो मेरा पानी भी गर्म नहीं होता भाई, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बोला मिस्टर केकी then you will leave this institute. हमने कहा कि I will leave this institute. You have not purchased me, okay? For 7,000, it's not sufficient for me. तो मैं वहाँ से भगाया और जॉब छोड़ दिया। अब जॉब छोड़ने के बाद क्या हुआ कि मैं अपने मिसे अपनी बहन को कैसे बताऊं कि मैं जॉब छोड़ दिया हूँ, मैं नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख भी गया हूँ। और एक मेरा दोस्त था अभिनव मिश्रा, वो वहीं पे जॉब करता था, वो गेस्ट टीचर का ही सिरसा में ही। तो क्या हुआ कि मेरी बहन ने जब मुझे डांटा तो मैं वहां से भाग गया, अपने बहन के यहाँ से भाग गया, और भाग के जो है चौकटा में एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मैंने कभी सुना था किसी के मुंह से, तो भटक के मैं वहीं चला गया इंस्टीट्यूट में। जब मैं चला गया तो मेरे घर वाले सब घबरा गए, मेरी बहन बोले कि मैं इनको डांट के भगा दिया, ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया। अभिनव मेरा दोस्त फोन किया गया, अभिनव तुम्हारे पास तो नहीं गया? तो नहीं। अब मेरी मम्मी पापा सब लोग मेरी बहन से लड़ने लगे, मेरा जो है मेरा बेटा को घर से भगा दिए, वो कहाँ भाग गया, मेरा सोना जिसका बेटा है ब्लाइंड है तो क्या हुआ, तुमको नहीं रखना था तो मेरे पास भेज देती, तुम भगा क्यों दी, ये वो दुनिया भर की बात है। तो फिर जो है अभिनव किसी तरह से पता किया, और वो इंस्टीट्यूट में जाके मेरे को ढूंढ, और ढूंढने के बाद मेरे को बोला कि दोस्त चलो जो है दिल्ली तुम्हारा इंतजार कर रही है नौकरी की। उन्होंने कहा कैसी नौकरी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और साले ने उसने जो क्या किया कि मेरे फॉर्म वॉर्म सब भर रखे थे उसने, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास थे, फोटोकॉपी वगैरह। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो मुझे दिल्ली ले आया, और तब से मैं दिल्ली रहने लग गया, जॉब करने लग गया, और फिर दोबारा मुड़के मैं कहीं नहीं देखा जी सर।
1: क्या बात है। तो कमल भाई आप सुनते हैं ये कार्यक्रम हमराही, आपने जैसा कि बताया
2: सर, मैं आपके प्रोग्राम हमराही बहुत सुनते हैं, पर इधर कुछ दिनों से कुछ व्यस्तताएं बढ़ चुकी हैं। आपको शायद जो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े होंगे उनसे पता करिएगा,
1: जी जी
2: दिनों इतना काम बहुत लोड बढ़ गया है, तो सुनना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं कर पाते।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं
2: जी, लेकिन फिर भी समय निकाल के हम सुनते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है स्कूल में भी या घर में भी तो हम सुनते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब
2: जी।
1: तो अपनी जिंदगी के अनुभव से कमल भाई क्या कहना चाहते हैं अब आज के हमारे श्रोताओं के लिए?
2: सर देखो अनुभव अनुभव मेरे इतने हैं कि अगर उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करूँ, समराइज करने की कोशिश करूँ, तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चूंकि सर मैं आपको बताऊं, मैंने बीए में ग्रेजुएशन में मेरी फिलोसॉफी थी, ग्रेजुएशन में इंग्लिश हिंदी फिलोसॉफी, और चूंकि बीएड और एमएड में मेरी साइकोलॉजी रही है, और साइकोलॉजी और फिलोसॉफी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो और भी तगड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो पौराणिक काल में जो पढ़े हैं कि कलयुग में द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, इन बातों को अगर थोड़ा सा विचार के अपनी जिंदगी से जोड़ के चले, तो चूंकि मुझे याद है और आपने भी सब सुना होगा कि त्रेता युग जो होता है उस युग में धर्म के केवल 3 पद रह जाते हैं और 1 पद जो है और वो पाप के होते हैं, और उन्हीं पद त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था उस समय रावण जो बैरी था, जो दानव राक्षस था, उनको स्वयं दानव होते हुए भी शिव भक्त था और उन्हीं के घर में विभीषण जैसा राम का भक्त हुआ करता था, तो वो युग था जब कृष्ण भगवान ने जो है वो समझाया, अपने उपदेश में बताया भीष्म पितामह को कि भाई देखो द्वापर युग में जो है, त्रेता युग में तो ये था कि 3 पैर थे धर्म के, 1 पैर थे पाप के, तो इसकी वजह से रावण भी शिव भक्त बना, लेकिन जब द्वापर आया तो उससे भी बुरा हुआ क्योंकि शकुनी से लेकर के कौरव से लेकर के सारे विपक्ष में आ गए और बेचारे 5 पांडव अकेले बच गए, क्योंकि जबकि 2 धर्म के 2 पैर पाप के हैं तो बराबर होने चाहिए, तो परिस्थितियां बदल गई। ये तो कलयुग है, यहाँ तो 3 पद पाप के और 1 पद पुण्य के हैं, इनमें से आप जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनमें हिस्सा लगा लीजिए कि 3 पद आपका नेगेटिव में जा रहा है, या अगर आप 100% ऑनेस्ट हैं तो 75% आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धोखा खाओगे, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे जज हो, इंजीनियर हो, आज के दौर पे देख लीजिए टीचर हो, प्रोफेसर हो, एडवोकेट हो, जो भी हो, अगर आप वाकई ईमानदारी से काम करते हैं 100%, तो निश्चित रूप से 75% आपको माइनस में जाना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब जिंदगी जिए तो नेगेटिविटी को अवॉइड करें, प्लस हम उनको स्टडी जरूर करें कि हम उनसे बचें कैसे, और पॉजिटिविटी जितना हो सके, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया, पामेस्ट्री ने बताया, फिलोसॉफी ने बताया, और हमारी जो साइंस कहता है उनके अकॉर्डिंगली जो आप निष्कर्ष निकल पाते हैं उनके अकॉर्डिंगली आप जिंदगी जिए।
1: बहुत खूब, बहुत बढ़िया कमल भाई, काफी मजा आया आपसे बात करके। तो ममता जी हैं
2: जी?
1: जी ममता जी, तो आप कार्यक्रम के लगभग बिल्कुल अंत में हैं, हम हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे ममता जी? जी कोई संदेश देना चाहेंगे आप
0: सुनने वाले को? यही बोलेंगे श्रोता को कि मतलब ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करना चाहिए, आंख वाला को भी किसी किसी का होता है कि हाँ भाई आंख वाले से शादी करेंगे, और किसी किसी का होता है कि ब्लाइंड से करेंगे, लेकिन ब्लाइंड ब्लाइंड को दुख समझता है, इसलिए ब्लाइंड को दुख ब्लाइंड से शादी करना चाहिए।
1: जी जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद। तो कमल भाई और ममता जी, आप लोग हमारे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, समय दिया, तो उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी सर, धन्यवाद। मैं सुनने वाले श्रोताओं से ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे बातचीत के दौरान अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम दोनों ही क्षमा प्रार्थी हैं कि ह्यूमन इज द एरर ऑफ सोसाइटी। थैंक यू।
1: जी जी जी, तो श्रोताओं ये था हमारा आज का हमराही कार्यक्रम। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें हमेशा की तरह, और रेडियो मधुबन को सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, और कॉल करते रहें 94-14-15-14-15 पर, वहां पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बता सकते हैं, और भी रेडियो मधुबन के किसी भी कार्यक्रम पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना, या किसी को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और आप सबका स्वागत है। देखिए, आप सबके योगदान से ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और नहीं तो जो आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम है, जिसको आप सब अपना समझ करके इतना प्यार देते हैं, सुनते हैं, हो सकता है आने वाले समय में फिर बहुत लंबे समय तक शायद हम जारी ना रख पाए इस कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा रेडियो मधुबन के ही नाम से। आप ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। इंतजार रहेगा आप सबकी प्रतिक्रियाओं का, मैसेजेस का, आज के इस कार्यक्रम में। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। वैसे जिंदगी को एंजॉय करने के काफी सारे तरीके हैं और सबके पास अपना अपना कुछ जरूर होता है। मैंने एक गाना सुना था, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। अब कभी कभी हम कुछ ऐसा भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जो रियलिटी से बहुत दूर होता है और वो हमें बहुत परेशान कर देता है। कभी कभी अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाते, कभी कभी दूसरों के इमोशंस को गलत समझ लेते हैं। तो आइए जिंदगी से प्यार थोड़ा और बढ़ाते हैं और रियलिटी चेक देते हैं खुद को। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं कल्पना जी, सीधे ग्लोबल अस्पताल से, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया, शुक्रिया आरुषि, और एक बार आपके साथ जुड़ के बहुत बहुत मजा आ रहा है।
0: थैंक यू सो मच दीदी, मैं भी बहुत अच्छा लग रहा है आपने टाइम निकाला। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जिनको आप पहचानते हैं क्योंकि जाने माने रेडियो मधुबन के आरजे भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, नमस्कार कल्पना जी, आपको भी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को। और लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आते हैं तो जिंदगी से प्यार करने के नए तरीकों के बारे में जानने का हमें भी मौका मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स हैं तो हम आपको बताने आए हैं, मगर इस बातचीत में हम कुछ ऐसी नई चीजें सीखते हैं जिससे हमें भी बहुत कुछ नया सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है और खुद की जिंदगी को बेहतर नजरिए से देखने का एक अनूठा मौका।
0: बिल्कुल, और ये मौका सबको मिलना चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़े, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। दीदी मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इमोशंस बोलते ही ऐसा लगता है बड़े कॉम्प्लेक्स महसूस होता है कि क्या हम फील कर रहे हैं, और आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात होती है, बहुत वर्ड सुनते हैं, पर ऐसे तो आसान है, दुखी होते हैं पता चलता है, सुखी होते हैं पता चलता है, हंसते हैं रोते हैं, लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी हम जब बड़े होते जाते हैं तभी आ जाती है या बचपन से होती है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी।
1: इमोशंस तो बचपन से ही हम एक्सप्रेस करते आए हैं
0: जी।
1: जैसे छोटे बच्चे भी जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, छोटा बच्चा जिसे बात भी करने नहीं आता है, जो पालने में लेटा हुआ है, वो भी कभी मुस्कुराता है और कभी रोने लगता है। तो अगर छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो उसकी किस तरह की इमोशंस होगी? नेचुरली कुछ चाहिए,
0: चाहिए।
1: तो उसके इमोशंस हैं। अगर छोटे बच्चे के हाथ से कोई खिलौना छीन ले तो उसकी क्या इमोशंस होगी?
0: गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा,
1: गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन अंदर सोच क्या चल रही होगी कि ये मेरा है,
0: मेरा टॉय,
1: मुझे खेलना है और आपने मुझे छीन लिया। तो इमोशन हो गया एंगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हैप्पीनेस है, लव है, ये सारी इमोशंस हैं जो हम मनुष्य होने के नाते समय प्रति समय पैदा होने से लेकर मृत्यु तक फील करते ही हैं। हम कभी सैड होते हैं, सैड किस लिए होते हैं कि भाई कुछ तो बुरा हो रहा है, हम मैं एग्जाम में फेल हो गई या मुझे कम मार्क्स मिले, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी एंड कम मार्क्स मिले, तो मुझे दुख होता है, सैडनेस होती है। एंड देन गुस्सा आता है, कभी कभी मेरे साथ कोई मिसबिहेव करता है, इरिटेट होते हैं, समझो कि आप रास्ते में चल रहे हो, आजकल ये सारी बातें देखने सुनने को लोगों को मिल रही है कि रास्ते में चल रहे हो, किसी ने आपको छेड़ लिया और आप कुछ कर नहीं पाए, तो आपको क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा, बहुत बुरा भी लगेगा और ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या चीज है, ये कितनी लाचारी है, कितनी गलत बात है। तो एक जोश भी आएगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, परंतु कुछ कर नहीं सकते हैं तो अगेन फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। तो ये सारी इमोशंस हम कभी ना कभी अपने लाइफ में, इनफैक्ट हर रोज एक्सपीरियंस करते ही हैं,
0: एक साथ भी फील करते हैं दीदी सब कुछ।
1: हाँ जी।
0: तो ओके, जैसा आपने कहा कि बचपन से जब बच्चा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो इमोशंस हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो अवेयरनेस की जरूरत कहाँ पड़ने लगती है? मतलब हमें बचपन में समझ में आ रहा है कि बच्चा ये फील कर रहा है, इस वक्त ये फील कर रहा है, क्लियर है, लेकिन बड़े होते होते ऐसा क्या हो जाता है कि हमें समझ में आना बंद हो जाता है या फिर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कि वो इमोशंस को समझ ही नहीं पाते कभी कभी? श्रीनिधि जी आप आंसर करना चाहेंगे?
2: मैं समझता हूँ, अभी कल परसों ही हम एक चर्चा में हिस्सा ले रहे थे और वह ये चीज एक प्रश्न के रूप में उभर कर आएगी। जब हम सभी जानते हैं कि हम सब भावनात्मक जीव हैं, हम सब अलग अलग प्रकार के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब हम बचपन से इन अनेक एक्सपीरियंसेस को, इन भावनाओं को महसूस करते आए हैं, जैसे विकल्पना जी कह रहे थे कि हम कभी सैड फील करते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, कभी एंग्शियस फील करते हैं, अलग अलग प्रकार के इमोशंस को महसूस करते आए हैं, तो जब ये अनुभवी हो चुके हैं हम, तो क्यों जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम इन्हीं इमोशंस को डील करने में स्ट्रगल करने लगते हैं। और ये स्वाभाविक रीति से ये प्रश्न उठता भी है। जैसे बच्चों का उदाहरण दे रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि कई बार बच्चे अपने इमोशंस को स्वाभाविक समझ लेते हैं, यानी गुस्सा होना या इरिटेट होना हम मान लेते हैं कि स्वाभाविक है, और मुझे चॉकलेट नहीं मिला तो गुस्सा होना और मुझे टैंट्रम्स दिखाना और चिड़चिड़ा होना ये होना ही चाहिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं बच्चे। और जब तक आप बच्चों को इस विषय पर सही तरीके से काउंसिल न करें, या उनके अपने इस इमोशन को समझने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करें, या उस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए उस इमोशन को सही तरीके से आप ये कहें कि उसको हम अलग अलग तरीकों से उस इमोशन को ब्रेक करके ये क्या इमोशन है, इसे कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, ये समझाते नहीं या डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते पेरेंट्स या उनके आसपास जो बड़े हैं वो ये चीजें नहीं करते, तो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करके चलने लगता है कि भाई ये ठीक ही है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ऐसे घरों में या ऐसे परिवारों में जहाँ पर बच्चों को इस प्रकार की इमोशनल एजुकेशन नहीं दी जाती, या बच्चे जो कर रहे हैं उनके टैंट्रम्स को चुपचाप सह लिया जाता है, तो कई सालों बाद हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे उसी स्वभाव के हो जाते हैं। और कई बार पब्लिक में लोग ये कहते भी है कि क्या इनके माँ बाप ने इनको इतना भी नहीं समझाया कि पब्लिक में भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, और हम देखने लगते हैं कि बच्चे उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है, कि हम उन बच्चों को ऐसा कह के डिस्क्राइब भी करने लगते हैं, अरे भाई इसके तो टैंट्रम्स बहुत होते हैं, अरे ये तो बड़ा नखरे वाला बच्चा है भैया, इसके तो बचपन से इसको जैसे पाल पोस के बड़ा किया भगवान ही जाने, ये इसको जो चीज चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए तो मतलब ये सारा घर से पे उठा लेगा। तो ये चीजें होती हैं कि अगर हम इन इमोशंस को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में एजुकेट न करें बच्चों को, तो आगे बढ़ के एक समय ऐसा आ जाता है जब वो सोशल इंटरेक्शंस में इमोशंस को कैसे प्रोसेस किया जाना चाहिए, उसके उसको प्रोसेस करने का पॉजिटिव तरीका क्या है, वो न जानने के कारण वो लाइफ में चैलेंजेस महसूस करते हैं। इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पियर का है, और ये एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है। नेपोलियन को हम सभी नेपोलियन द ग्रेट के नाम से इतिहास में जानते आए हैं, फ्रांस के बहुत बड़े मिलिट्री कमांडर हुए हैं, मगर बचपन में उनके मन पर बिल्लियों के प्रति एक ऐसा डर बैठा हुआ था जिसके कारण वाटरलू का युद्ध उन्हें हारना पड़ा। ब्रिटेन के साथ युद्ध में हारने की वजह कोई कमजोर रणनीति नहीं थी, जिस समय वो रणनीति बना रहे थे उस युद्ध के लिए, उस समय पर किसी ने उनके शिविर में बिल्ली छोड़ दिया, और क्योंकि वो बिल्ली वहां से गुजर गई तो नेपोलियन का सारा ध्यान उस बिल्ली पर था, वो सही निर्णय नहीं कर पाए, और उस समय पर उनका मन बिल्ली के भय से ही आक्रांत था, जिसके कारण वो सही रणनीति नहीं कर सके, जिसकी वजह से युद्ध में हार हुई। ये बात अक्सर हिस्ट्री में कोट की जाती है। तो ये पता चलता है कि आप फियर हो, एंग्जाइटी हो, या इरिटेशन हो, या अनेक प्रकार के हेट्रेड हो, जेलसी हो, बच्चे ये स्वाभाविक रीति से इमोशंस उभर कर आते हैं, बट इन इमोशंस को मैनेज करने के तरीके या इन इमोशंस के प्रति हमारी अवेयरनेस होना कि हाँ ये इमोशन ये है, इस इमोशन का ये नाम है, और ये प्रोसेस करने का एक पॉजिटिव तरीका है, या दूसरे तरीके से भी मैं इसको हैंडल या मैनेज कर सकता हूँ, अगर ये नहीं समझाया जाता या उस प्रकार की अवेयरनेस नहीं होती, तो आगे चल के ये चीजें व्यक्ति इन्हीं इमोशंस के कारण, खुद के ही इमोशंस के कारण सकम करने लगता है, उन इमोशंस के कारण सफर करने लगता है,
0: सफर करते हैं। जी कल्पना जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जैसा सफर करने लगते हैं हम, मुझे लगता है सबको एक्सपीरियंस है, सफर करते हैं इमोशंस के कारण, भावनाएं कई बार कंट्रोल में ही नहीं आ पाती, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम राइट भावना को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो क्या वो वही फील कर रहा है उस वक्त, या वो पेन फील कर रहा है और दिखा कुछ और रहा है, या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इमोशन अंदर कुछ और है और हम एक्सप्रेस कुछ और कर रहे हैं, क्या ये कंफ्यूजन्स होते हैं या फिर वो इमोशन पता चलता है कि कौन सा है?
1: कोई भी इमोशन जो है वो बिना रीजन के नहीं होता है। अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी ने मुझे जो चाहिए वो नहीं दिया है। जो भी रीजन है मेरे इमोशन के पीछे, वो मुझे पता होता है क्यों मेरा ये इमोशन है। अगर मुझे किसी से नफरत है या मुझे किसी से प्यार है तो क्यों है। सो ये हर इमोशन के पीछे का रीजन तो पता होता है हमें, और वो औरों को भी पता होना चाहिए। जहां तक इमोशनल अवेयरनेस की बात आते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को समझने की बात आते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है उनको सडनली उदास क्यों फील हो रहा है, क्यों उनका मूड खराब हो रहा है, क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही। कोई रीजन नहीं, छोटा सा कारण बनता है और चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। सो जब हम उनको पूछते हैं कई सारे प्रश्न, जैसे कि आपकी नींद पूरी हुई है क्या, कितने दिनों से आप सही तरह से सोए नहीं, क्या आपको भूख सही लगती है, क्या कुछ दिनों से आपकी भूख कम हुई है, या फिर आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, क्या बात है, या कहीं कोई ट्रिगर ऐसा हुआ है, हर्ट हुआ है, क्यों आपको सैडनेस फील हो रही है। तो जब ये सारी बातें हम पूछते हैं तो कई बार पता चलता है कि नींद हुई नहीं है, काफी दिनों से नींद ही नहीं आई। कई बार पता चलता है कि खाना से ठीक से नहीं मिला है। कई बार ये पता चलता है कि उनके घर में किसी की सडन डेथ हुई है। सो नेचुरली रीजन तो है, परंतु कई बार कारण पता नहीं चलता है कि क्यों। कई बार और भी एक है, हमारा जो मूड है ना, फीलिंग्स और मूड है, वो हमारी गट हेल्थ के साथ बहुत जुड़ी हुई। जो भी हमारा भोजन हम करते हैं, अगर उसका सही तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका एलिमिनेशन नहीं हो रहा है टाइम पर, अर्थात हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है काफी दिनों से, वो भी हमारे मूड पर असर करता है। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है कि मेरी फीलिंग्स जो इस समय है वो क्यों है, किस लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे हैं, हम तीनों मिलके आपस में बात कर रहे हैं, श्री जी है, आप है, मैं हूँ। अगर मैं इसी समय अपने आप से पूछूं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, है ना, अगर उस मीटर को मैं चेक करूं, इमोशनल मीटर को, कि 0 से 10 के बीच में मैं इस समय कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव फील कर रही हूँ। अगर हम 10 को नेगेटिव समझे और 0 को पॉजिटिव समझे, तो कहाँ तक मैं रिलैक्स हूँ, कहाँ तक मैं खुश हूँ, कहाँ तक मैं ओरिएंटेड हूँ, ये मुझे अगर समझ में आ रहा है तो उसे कहेंगे हम इमोशनल अवेयरनेस।
0: ओके। अगर मैं फिगर आउट कर पा रही हूँ कुछ करते हुए या बात करते हुए भी अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर हम जब रो रहे होते हैं तब समझ में आता है हम उदास हैं, या फिर बुरा फील हो रहा होता है तब समझ में आता है उदास हैं, पर बात करते करते ऐसे तो शायद रैंडम नहीं सोचा कि क्या फील कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करना होगा शायद हमें थोड़ा और अपने इमोशंस को, कि किसी से बात करते वक्त भी क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये दीदी।
1: एक जरूरी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो मुझे अभी याद आई, मैं भूल ना जाऊँ, कि कई बार कहा जाता है गर्ल्स के पास सिक्स सेंस होता है, है ना। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति से, तो हमें फील होता है, हमें रियलाइज होता है कि इस व्यक्ति के साथ बात करते समय मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो इमोशंस है, वो थोड़ी डिस्टर्ब है।
0: बिल्कुल,
1: इंट्यूशन आता है। सो जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, ये सही नहीं है, उसी समय अगर हम उस चीज को हैंडल कर पाते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए उस व्यक्ति के सामने से हट जाते हैं, या फिर अवॉइड करते हैं, या फिर अपने आप को बचाने का कोई तरीका सोचते हैं, तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
0: मतलब हम बेटर हैंडल कर पाएंगे सिचुएशंस को और खुद को अगर हम इमोशनली अवेयर हैं तो।
1: जी,
0: वंडरफुल। श्रीनिधि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज आप बहुत सारे यूथ से इंटरैक्ट करते हैं, कभी क्या आपको लगता है कि हर बार वो सही इमोशंस या हम उस एज में आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या उसको मिसइंटरप्रेट भी कर लेते हैं, गलत भी समझ लेते हैं?
2: ये बहुत ही मजेदार बात है जब आप पूछ रहे हैं आरुषि जी, और युवाओं के सिलसिले में जब आप ये बात पूछते हैं तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी अपने इमोशंस को लेबल करना नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ एक्चुअल में क्या चीज है।
0: ओके,
2: मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे एक जानकार थे, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में जेलेसी के इमोशन को फील नहीं किया था।
0: अच्छा।
2: जब उन्होंने ये चीज देखा कि कोई उनके किसी चीज पर जेलस हो रहा है कि भाई उनको ये चीज मिल गई है और इसके कारण वो उनसे नफरत कर रहे हैं या उनसे एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो मेरे पास आए बोल रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैंने उनको कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं। तो मुझे उनको ये समझाने में काफी मेहनत लगी कि आपने और उन्होंने दोनों ने मिलकर एक चीज के लिए अप्लाई किया, आपको ये चीज मिली, उनको ये चीज नहीं मिली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर चूंकि वो चीज आपको मिली और उनको नहीं मिली है इसलिए वो आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उन्हें एक जेलसी फील हो रही है इस मोमेंट पे, वो एक डिसकम्फर्टिंग फीलिंग है उनके लिए भी, और क्योंकि वो एक डिसकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं और वो आपसे बातचीत करेंगे तो आप इस बात की खुशी का इजहार करेंगे कि देखो मुझे तो ये चीज मिल गई, और इसलिए वो आपको अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता से ये बात कही कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ।
0: अच्छा।
2: मैंने कहा बिल्कुल आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, हो सकता है ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए नहीं हो, या हो सकता है आपके घर में पहले से परवरिश ऐसी दी गई हो कि किसी को कोई चीज मिलती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करना आपको सिखा दिया गया है, आप शायद कंपेयर ही नहीं करते अपने आप को कि उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ये क्वेश्चन ही आप रेज नहीं करते, शायद बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, घर में आपके घर में ज्यादा बच्चे रहे होंगे तो आप शेयरिंग करना सीख चुके होंगे, या किसी को कोई चीज मिलती है तो ना मिलने पर भी उसका बुरा ना मानना आप स्वाभाविक रीति से अनुभव करते आए होंगे। तो ऐसा बहुत सारे इमोशंस के साथ होता है, और युवा काल एक ऐसा काल होता है कि जहां पर आप अभी अभी चीजों को एक एडल्टहुड में एक्सप्लोर करने लगे हैं, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप वयस्क जैसा बर्ताव करें, आप एक मैच्योर इंडिविजुअल जैसा बर्ताव करें, और कभी कभार इस प्रेशर के चलते भी आप अपने इमोशंस को सेग्रीगेट नहीं कर पाते। जैसे कल्पना जी कह रहे थे कि भाई एक्टिविटी जो अक्सर वर्कशॉप्स में हम लोग कराते हैं वो ये है कि शुरुआत में हम कहते हैं कि एट द मोमेंट हाउ आर यू फीलिंग, तो लोगों को अलग अलग चीजें बताने का, उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका।

0: होता है। कभी कभार उस फीलिंग के ऊपर ही आपको, जब कल्पना जी कह रहे थे कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ हैप्पी आर यू फीलिंग, हाउ एक्साइटेड आर यू फीलिंग, हाउ एंग्शियस आर यू फीलिंग, आप इन चीजों को पूछते हैं तो पहली दफे लोग कभी इस बारे में सोचते हैं कि हाँ यार, मतलब ऑन अ स्केल भी मैं अपने आप को माप सकता हूँ।
1: बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है।
0: हाँ, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले कभी किया नहीं होता, इससे पहले किसी ने उस चीज पर बातचीत नहीं की हुई होती, और इसलिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानना आवश्यक है। कई बार बच्चे लफ्जों में चीजों को समझने लगते हैं, कई बार आजकल मैं बच्चों को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। मैंने पूछा, भाई किस बात के लिए डिप्रेस्ड फील कर रहे हो? तो बोलता है, आज मैं इतना सब कुछ पढ़ना है मेरे को और मेरे को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो हालांकि कोई 11-12 साल का बच्चा अगर आपसे ये कहे कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो हमें लग सकता है कि ये तो होना नहीं चाहिए, कि 12 साल की उम्र में तुम्हें किस बात का डिप्रेशन होना चाहिए, किस बात के लिए तुम्हें डिप्रेस्ड फील करना चाहिए। अब वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, या वो पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर महसूस हो रहा है, उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और वो उस चीज को डिप्रेस्ड फील कर रहा है। कई बार हम इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना भी नहीं जानते, क्योंकि हम कुछ शब्दों को सुन लिए होते हैं टेलीविजन में, मीडिया में, या हमारे टीचर्स या बड़ों को, घर वालों को बातचीत करते सुन लेते, तो हमको लगता है कि भाई ये सैड होना ही डिप्रेस्ड होना है, या मूड ठीक नहीं होना ही डिप्रेस्ड होना है। तो इसलिए इमोशनल अवेयरनेस बहुत आवश्यक है कि हम इमोशंस को समझें। आज मैं इस घड़ी कैसा महसूस कर रहा हूँ, उस इमोशन का एक नाम है, वो क्या चीज है। अगर मुझे वो समझ आ जाए, वो अवेयरनेस आ जाए, तो फिर शायद मैं उसे बेहतर तरीके से मैनेज करने के बारे में भी सोच पाऊंगा।
1: एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और हमारे पास इस एपिसोड में टाइम कम बचा है, लेकिन हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे इस पे बातचीत करना। मैं कल्पना जी से भी आने वाले एपिसोड्स में ये जानना चाहूंगी कि क्या जैसे हम जेलस फील कर रहे हैं तो 2 नंबर पे हैं कि 10 नंबर पे हैं, वो रेटिंग क्या हमें करनी चाहिए और उससे क्या फर्क करता है डील करने पे, ये सब कुछ जानेंगे। फिलहाल दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी प्रेजेंटली जो भी हमने बातें सुनी उससे हम अपने करंट इमोशन को समझ पाए या उसको अनुभव कर पाए, उसके लिए क्या कुछ मेडिटेशन हम कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो हमें मदद करे?
2: बिल्कुल, जैसे कि मेडिटेशन का मतलब ही है कि अपने अंदर में जाकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करना, तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हम चारों तरफ से अपने अटेंशन को कट ऑफ करके उसको पूरी तरह से खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, कितना इंटेंसिटी है उस फीलिंग की, क्या वो फीलिंग सही है या नहीं है, या वो फीलिंग जैसा मुझे फील हो रहा है वही है या कुछ और है,
1: कुछ और है।
2: जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, ये हम ओपन अप करके फिर छोड़ देंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, कि जैसे हम कहते हैं कि मुझे इससे प्यार हो गया है, वो आकर्षण हो सकती है, इन्फैचुएशन हो सकता है, वो प्यार हो जरूरी नहीं है, तो उस चीज को समझना। तो चलिए इस चीज के लिए हम थोड़े से,
1: मुझे लगता है दीदी ये बहुत लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि फील करते हैं कि प्यार है पर वो सच में है या नहीं, ये बहुत लोग जानना जरूर जाएंगे, तो अगले बार में जाने को मिलेगा।
2: सो चलिए हम अपने भीतर चलते हैं और थोड़ा सा चारों तरफ से अपने अटेंशन को कलेक्ट करके अपने ऊपर एकाग्र करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी श्रोताओं से कि वो गहरी और लंबी सांस लें, जहां भी हैं 2 मिनट के लिए रुक जाएं, आराम से बैठ जाएं। ये 2 मिनट का अभ्यास हमें आने वाले 2 घंटे के लिए बहुत पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी देकर जाने वाला है। अपनी आंखों को आराम से बंद करें, सांसों पर ध्यान दें, गहरी और लंबी सांसें लें, सांस के स्पर्श को नाक के भीतर महसूस करें, थोड़ा सा अपने आप से मेंटली डिटैच हो जाए, जैसे हम दूर से रोड पर चलने वाली गाड़ियों को देखते हैं। वैसे दूर से अपने मन में चलने वाले विचारों को देखे, केवल देखे, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करे, भावनाओं में न बहे, जस्ट विचारों को आते हुए जाते हुए देखते रहे, किसी विचार को पकड़े नहीं, जाने दे। अब एक सुंदर विचार को अपने मन में दोहराए, आज मैं बहुत खुश हूं, इस समय आज मैं बहुत खुश हूं। रिपीट करें इस विचार को अपने मन में 2 बार 3 बार 4 बार, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। और देखिए उस विचार से ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही, मेरा मन अपने आप खुशी का कारण ढूंढ रहा है। गर्मी के इन दिनों में ठंडी हवा चल रही, चारों ओर हरे भरे पेड़ पत्ते फूल और उनकी खुशबुएं हैं। मेरी खुशी के कई सारे कारण हैं, परंतु मैं बिना कारण के भी खुश होना जानती हूं, मुस्कुराना जानती हूं। गहरी और लंबी सांस ले, इसी विचार के साथ आज सारा दिन व्यतीत करें, मैं खुश हूं। कारण ढूंढे खुशी के लिए, और ना हो तो बिना कारण के भी खुश होना अपनी आदत बना ले। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। एक थॉट में हम कैसे स्थित हो सकते हैं, अपने और मल्टीपल आने वाले थॉट से अवेयर होते हुए जाते हुए भी कैसे देख सकते हैं और कैसे टिक सकते हैं उस इमोशन में जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम चाहते भी हैं, तो उसका प्रोसेस आपने बताया, एक्सपीरियंस भी कराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर और राज जानना चाहते हैं, अपने इमोशंस को और बेहतर पहचानना चाहते हैं, अपने जीवन को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो जुड़ना मत भूलिए लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल से कहिए लव यू जिंदगी।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम

0: था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ वड्डा किया जाए?
4: कोई सुझाव हो तो बताओ,
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गईं। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सकें।
4: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहां से कलकत्ता पहुंचेंगे।
4: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
4: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे? गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वार्याम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
5: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभल कर विद्रोह का निर्णय लेना है।
6: आपने क्या सोचा है?
5: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
6: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
7: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
8: What is their plan? Tell me.
7: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
8: Don't test my patience. Just tell their plan.
7: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
8: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की मुखबिरी के कारण 19 फरवरी को ही बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देशी सैनिकों को निहत्था कर दिया। इससे विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे, उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया।
4: मुझे कहाँ जाना है सोहन सिंह जी?
3: आप हरनाम सिंह तुंदिलाद, जगत सिंह और कुछ अन्य साथी अफगानिस्तान जाएंगे। ईश्वर सिंह चीन जाएंगे।
0: सोहन सिंह ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन करतार सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार, हरनाम सिंह तुंदिलाद और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
2: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
2: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
0: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे, उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी, जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
8: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी, जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
0: करतार सिंह की अपनी दलील थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
8: आप अपनी करो, मैं अपनी। सारा दोष मेरा है।
9: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
0: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
8: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
0: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
4: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
10: कौन करेगा हमारी मदद?
4: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
10: ठीक है, देखता हूँ।
0: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया, जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए, लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
11: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
12: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
13: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दो कोड़े लगा देना।
12: ओह यू फूलिश, चलो देखता हूँ।
0: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुंचता है और ताला खोलने को कहता है।
12: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
6: जी जनाब।
4: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
6: सर जी, ये देखिए इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
12: औजार चप कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
0: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार फिर से सभी जज के सामने थे।
14: करतार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
11: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
9: Then I must announce the judgment.
14: करतार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
0: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी, लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
1: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
2: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
1: देश को तो उन पर नाज है, उनके परिवार वालों को भी बेटे पर फक्र होगा।
2: तुम जानना चाहोगी कि करतार सिंह ने भावी क्रांतिकारियों के सामने कितनी बड़ी मिसाल पेश की? यहां तक कि शहीद भगत सिंह भी उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पास से करतार सिंह सरबा की तस्वीर बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे।
0: ये थी एक महान युवा क्रांतिकारी के शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहाँ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में उन्हें बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया। हालांकि उनके वहां अध्ययन के भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उल्लेख है कि जब वो दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। जो भी हो, वंदे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। हर रोज आपको जब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम मेरा गांव मेरा अंचल होता है इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है भाई हर रोज इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि कोई नया हमारा श्रोता सुन रहा है उसको तो भी मालूम पड़े। आप तो जो सुनते हो तो 14 साल 12 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जो नया हमारा लिसनर आता है उनको भी थोड़ा परिचय हो जाना चाहिए। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए उसका जो टैग लाइन हो चाहे उसका प्रोमो हो उसको करने के लिए रेडियो मधुबन का जो स्टार्टिंग हमको प्रोग्राम के बारे में बताना पड़ता है। तो आप जानते हैं और हमें कुछ भी होते हैं तो आप समझते हैं, हमारा इशारा से आप काफी समझ जाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हर रोज की तरफ हम पहुँचे हैं आपका साथ कुछ रूबरू कराने के लिए और हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाएंगे जैसे हर रोज की तरफ आज भी हम आए हैं आपका पास देने के लिए। तो पर्यावरण के बारे में चर्चा हो रहा था पिछला एपिसोड में, जो कि एनवायरनमेंट कितना गहरा मुद्दा है जो कि बहुत जानकारियां रखना चाहिए, जो कि पर्यावरण हमारा लिए कितना आवश्यकता हम भली भांति जानते हैं। जैसे हम पिछला लिंक में सर से हम बात की जो कि भोपाल राम पुरोहित जी जो कि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी में सिरोही जिले के थे और काफी दिन से हम लोग परिचित थे और हमको मौका नहीं मिल रहा था तो थोड़ा टाइम के लिए हम करते थे, लेकिन आज मौका मिला दोनों को सेवानिवृत्त होने के बाद। वो सेवानिवृत्त नहीं है, वो ईश्वरीय सर्विस में लग गए, गवर्नमेंट सर्विस पहले करते थे अभी गॉडली सर्विस में लगे हुए, ये हमारा लिए बहुत खुशी का बात है। उनका प्रमोशन हुआ है हम कहेंगे,
1: प्रमोशन हुआ, आध्यात्मिक प्रमोशन हो गया,
0: सार को स्वागत करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस से बड़ा गॉडली सर्विस। तो ईश्वरीय सेवा में अपना ऐसे तन मन धन को लगा रहे हैं ये तो कम बात नहीं, एक पुनित काम है और दुआएं का पात्र है। तो सर जी को आपको स्वागत करते
1: हैं। रेडियो मधुबन के द्वारा मुझे जो अवसर प्रदान किया गया
0: जी,
1: आपसे तो बहुत पुरानी मुलाकात है, लेकिन रेडियो मधुबन के जो हेड है आपके प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने मुख्यालय आबू रोड में
0: जी,
1: वहाँ पर जो बीके कृष्णा दीदी
0: जी
1: आरुषि दीदी के माध्यम से आपके द्वारा उसे जब मिला तब मुझे बहुत बड़ी उत्सुकता हुई कि रेडियो मधुबन कम्युनिटी सर्विसेज में इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाता है। तो पर्यावरण के बारे में जो मेरी समझ है पवित्रा भाई जानते थे, तो उस समझ को हम सब लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।
0: शुक्रगुजार तो मेरे पास नहीं क्योंकि समय तो पहले भी था, आप भी थे और हम भी थे, लेकिन जो समय आना चाहिए जिसका पार्ट खोलना चाहिए वो समय खोलेगा
1: समय।
0: हम कितना भी प्रयास किए, हम याद है मुझे जैसे आपने बताया
1: जी,
0: इसका पहले भी हम आपको कोशिश किए जब हमारा एनुअल फंक्शन में स्पेशल इन्विटेशन भी किया था, देखो हुआ
1: अभी
0: तो बिना इन्विटेशन में
1: शिखर सम्मेलन में आपने दो बार मुझे
0: रेडियो मधुबन
1: दो बार बुलाया
0: सर, रेडियो मधुबन का वार्षिक उत्सव था उसमें
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: जो कि इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन आपको चीफ रखे थे क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: तो उस समय भी इतना व्यस्त माहौल में आप नहीं आप सॉरी मांगे थे, लेकिन आज वो समय और आज समय में कितना अंतर है, तो ये हमारा खुशी का
1: विषय
0: बात है,
1: खुशी का विषय है।
0: तो इसलिए मुझे याद आया बोले सर समय समय की बात, मैंने समय का बलिहारी है हम आपका नहीं, जैसे आपने मुझे धन्यवाद दिए लेकिन ये धन्यवाद का पात्र तो समय को जाता है ड्रामा को जो पार्ट
1: अवसर प्रदान करता है,
0: हाँ, वो अवसर प्रदान करता है, इसलिए अवसर को इंतजार करना पड़ता है सर कब वो आएगा, वो अपॉर्चुनिटी है ना वो आज आया है। तो पिछला लिंक में जैसे हम इनर और आउटर
1: बिल्कुल पर्यावरण की परिभाषा
0: में था,
1: जैसे परिभाषित किया है कि पर्यावरण होना क्या चाहिए, क्या है
0: जो बाहर देखते हैं ये हमारा आउटर है ना, इनर एक जो वो भी एक सोचने की बात है ना, जैसे मन बुद्धि और संस्कार का बात है जो विचार आया है, तो ये जो आंतरिक सशक्तिकरण तब होगा जब हमारा बाह्य सशक्तिकरण को अच्छा से देख पा रहे हैं, इस चक्षु से हम तो देख पा रहे हैं सर जी
1: सही से,
0: लेकिन अंदर एक और चक्षु है जो इनर तरफ जाता है, तो उसके बारे में आपसे क्या आपका विचार है।
1: जी हाँ सर, अगले एपिसोड में हमने पर्यावरण को अच्छे से समझने के लिए प्रयास किया था
0: जी,
1: कि ये पर्यावरण बाहर से किस तरह से व्यक्ति को जीव के उत्पत्ति विकास और उसकी मृत्यु तीनों पर प्रभाव डालता है
0: जी।
1: तो ये बाहरी जो आवरण है हम उसको समझ ये कर रहे हैं कि उसके साथ साथ इसका जो प्रदूषण है, बाहरी वातावरण का जो प्रदूषण अभी अपने सामने जो आ रहा है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इनसे मिलकर के जो जैव मंडल बना है और इन पर इसका जो दुष्प्रभाव असंतुलन की वजह से पड़ रहा है, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, फिर एक एक बिंदु पर अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में कल बात निकल के आई जो आपने पूछा कि बाहरी पर्यावरण को ठीक करने के लिए अंतः पर्यावरण, ये मेरी अपनी खोज है, ये शब्द मैं अपने तरीके से इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो अंतः चेतना की बात सामान्य तौर पे की जाती है, लेकिन जब पर्यावरण की बात करते हैं बाहरी पर्यावरण की ही बात होती है, तो इसको मैं यूं अंतः चेतना से जोड़ना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक शब्द रात को खूब विचार किया, मैंने कहा भाई साहब का फोन है, बात करनी पड़ेगी, तो मुझे इसके लिए एक शब्द देना पड़े, क्योंकि अब तक जो मैंने पढ़ा है, मेरी स्टडी रही है काफी
0: जी,
1: लंबी स्टडी रही है, पर कहीं पर जब ये बात करते हैं तो आध्यात्म जब बात करता है तो बात तो बिल्कुल अलग है, वो तो करता ही करता है, वो तो मन की शुद्धि की बात करता ही करता है, लेकिन जब सामान्य तौर पे सामान्य लोग जब ये बात करते हैं तब बाहरी पर्यावरण को लेकर के ही बात होती है कि भाई वो बिल्कुल अशुद्ध हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, सबको पता है, लेकिन इसके लिए जानकारी सबको है, लंबे समय से सम्मेलन होते रहे हैं, काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम हो रहा है, विदेशी पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, बहुत काम हो रहा है, अपने यहाँ भी पर्यावरण मित्र सब जगह काम कर रहे हैं, शिखर सम्मेलन और सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ये कब सफल होगा, जब हम अंतः प्रेरित होकर के, इसको मैंने शब्द देने की कोशिश की है, इसको विचार शुद्धि से जोड़ना चाहिए।
0: अरे वाह क्या बात है, विचार शुद्धि कितना,
1: क्योंकि जब विचार शुद्धि होगी अंदर की, अब ये इसको मैं अंतः पर्यावरण का नाम देना चाह रहा था, पर वो पर्यावरण फिर बाहर की बात कर देता है, तो इसमें सब बड़े चिंतन के बाद में ख्याल आया कि जो मनुष्य का जो शरीर है, जैसा सामान्य बताया जाता है कि इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर भी बताया गया है
0: जी जी।
1: तो जो सूक्ष्म शरीर का जो आवरण है, जो बाह्य शरीर स्थूल शरीर के अंदर होना चाहिए, तो उसकी शुद्धि करना, वो विचारों की शुद्धि कैसे होगी, जो आपने बात बताई कि तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, तो ये तीसरा नेत्र खुलने वाली ही बात है, जिसमें आप अगर प्रकृति के मध्य में अगर आप ध्यान और चिंतन करते हैं और इसी प्राणवायु से अंदर
0: जब झांकते हैं,
1: अंदर झांकते हैं तब शांति के लिए जो प्रयास करते हैं, वो सारा प्रयास आपके अंतःकरण को जब शुद्ध करेगा, तब सब अंतः पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, तब जाकर के उस बाह्य पर्यावरण के लिए आप प्रेरित होंगे, ये बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, और इस काम को विश्व शांति के लिए हमारे कई एनजीओ के साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो विश्वविद्यालय है
0: जी सर,
1: यहाँ कितने कैंपस है, इसमें भाई साहब के साथ में कई बार बैठा, यान सरोवर भी बैठा, अबू पर्वत में भी जो भी है, पांडव भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल, मनमोहिनी हॉल यहाँ भी बैठे, तो इस तरह से ये सारे स्थानों पर बैठ करके इस तृतीय चक्षु को खोलने का प्रयास, यानी कि राजयोग के माध्यम से अंतः शुद्धि का जो प्रयास हो रहा है, ये वाकई बहुत ही सराहनीय है,
0: और सही में सबके पास है,
1: जिसे
0: नहीं हम कहाँ से, हमारा अंदर में जो चीज है वो चीज को सही ढंग से जानेंगे और उसको सही ढंग से समय पर यदि यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हमारा फायदा ही फायदा। जैसे आपने स्थूल चक्षु से हम तो बाह्य दुनिया को, बाह्य पर्यावरण को देखते हैं, अनुभव करते हैं, और उसके साथ हम मित्रता रखने के लिए कोशिश करते हैं, और कभी शत्रुता भी होता है, कभी मित्रता होता है,
1: वो तो
0: ठीक अपना जगह में।
1: लेकिन
0: जो नई बात हमें डिस्कशन निकल कर आए हैं, जो हम बाह्य जब आए तो अंतर, बाह्य एक है और एक इनर, जो अंत अंतःकरण जिसको कहते हैं
1: अंतःकरण शुद्धिकरण,
0: तो वो चीज जो आया, ये तो आध्यात्मिक, हम तो आध्यात्मिक में, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, तो जब बात निकलता है ये तो बाहर सभी लोग देते हैं, अंतर जो पर्यावरण है
1: जी,
0: जिसे शरीर पांच तत्व है
1: जी हाँ,
0: तो अंदर में जो तत्व है जिसको हम कहते हैं मन
1: विचार,
0: बुद्धि विचार, चित्त वृत्ति, दृष्टि कृति, इसको अदृश्य है
1: बिल्कुल,
0: इसको स्थूल चक्षु से नहीं देख सकते,
1: देख नहीं सकते,
0: विचार को नहीं देख सकते,
1: नहीं देख सकते,
0: जैसे हवा को देख नहीं सकते, फील करते हैं
1: जी हाँ,
0: करंट को नहीं देख सकते, फील करते हैं, तो विचार आपका, विचार आपका फेस से पता चलता है, क्या विचार, किस तरह का सात्विक की तामसिक पता
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो अंतरकरण, तो अंतर चक्षु जिसको हम डिवाइन आई कहते हैं,
1: डिवाइन आई,
0: तो उसी से ही हम फील कर सकते हैं,
1: अंत है पर्यावरण को फील करते हुए,
0: बात बताया कि शरीर भी एक सूक्ष्म शरीर जिसको, ये स्थूल शरीर है
1: जी हाँ,
0: सूक्ष्म शरीर जिसको परी कहते, फरिश्ता कहते
1: जी हाँ,
0: छाया सदृश आकार
1: हाँ,
0: आकारी
1: बिल्कुल,
0: जैसे छाया कोई पेड़ का जो धूप होता है तो उसका आकार एज इट इज,
1: एज इट इज वो आगे छाया आ जाती है।
0: स्थूल है वो सूक्ष्म है
1: जी हाँ,
0: उसको पानी देंगे तो पिएगा नहीं, स्थूल को देंगे तो पानी पिएगा, घन है मतलब
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम जहाँ पर बैठे हैं पेड़ है तो उसका छाया दिखाई देता, तो वो हो गया सूक्ष्म
1: जी हाँ।
0: तो अंदर में भी सूक्ष्म शरीर है जिसको हम चेतना कहते हैं
1: जी हाँ जी हाँ,
0: उसका अंदर उसको मालिक, उसका बारे में आप रिसर्च किए होंगे, वो पर्यावरण का बारे में थोड़ा सा बताइए
1: जी। जो अंतः चेतना है, आप अब ये अंतः पर्यावरण इसको कह दिया
0: जी जी,
1: अब अंतः चेतना को जगाना शांति के लिए, जब ये सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो वायु है प्राण वायु वो शरीर में जाकर के अंदर के जब विचार शुद्धि करेगा, विचार शुद्धि के बाद में वह बाह्य कर्म के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बाहरी वातावरण को शुद्ध करने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाएगा, और इसकी हम सबको आवश्यकता है
0: जी जी,
1: हम सभी को। जैसे एक सामान्य तौर पर बात आती है कि पर्यावरण के लिए कोई बड़ा एनजीओ काम कर रहा है,
0: बराबर
1: सरकारें काम कर रही है, तो रिजल्ट आ रहा है लेकिन जितना तेजी से आना चाहिए वो नहीं आ रहा,
0: बराबर राइट बात, सब तो प्रयास कर रहे हैं,
1: तो हम सबको करना पड़ेगा
0: तब जाकर।
1: और ये कितना आवश्यक है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये इतना आवश्यक है जैसा शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उतना ही शुद्धि के साथ में प्रतिदिन पर्यावरण के लिए दोनों समय, पूरे समय सोचने की बात तो है ही है, लेकिन कम से कम सुबह और शाम हमको फिजिकल रूप से आधा आधा घंटा तो दीजिए, फिर अपने आप ही आपको उसमें लगेगा कि उससे अगर आपको कहीं ना कहीं असंतुलन से तकलीफें हो रही है मानव समाज को, तो हम सब प्रयास करेंगे तब जाकर के ये चले, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम ज्ञान, जैसे शिक्षा में हम कह रहे हैं, मैं जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहा हूँ इसको कहते हैं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एंड देन डेवलप्स स्किल। तो जहाँ पर ज्ञान है, ज्ञान तो हो जाता है, बात हो जाती है, लेकिन अब समझ विकसित हो गई है आप सबकी, क्योंकि ये हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहा है
0: जी जी।
1: तो अब उसका एप्लीकेशन फील्ड में होना चाहिए, वो आप और हम सब मिलकर के करेंगे, कोई एक संस्था एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमको समय देना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको काम करना पड़ेगा, जिस तरह से दो समय भोजन कर रहे हैं, आपको दो समय कम से कम निकाल करके प्रकृति का काम करेंगे, निश्चित रूप से उस प्रदूषण को हटाने का जितना भी जैसा भी आपका प्रयास हो सकता है वो करेंगे, तभी हम इसको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
0: बहुत अच्छा विचार है सर का, और मनन चिंतन है, जब मनन चिंतन करते जैसे विचार सागर मंथन करते तो मक्खन निकलता है, तो आप सब भी करते होंगे हमारे श्रोता मित्र, और उनका भी प्रयास होता है जो हम भी कुछ करें, लेकिन इस तरह माध्यम जब मिलता है हर समय समय की जो सोच है विचार है परिवर्तन भी होता है। और अभी जैसे हमने सामने से बात की है, ये जो विचार जो अंतरकरण अंदर में जो उम्मा जैसे अधंडा निकालने के लिए कौन निकालेगा, खुद
1: जी आप हाँ,
0: हम
1: जी हाँ, जी
0: आप
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: हम निकालेंगे, तो ये भावना जो भाव निकालने के लिए जो भावना कौन निकालेगा, सबके पास है भावना करेंगे लेकिन निकल नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता है, उसका जो दृढ़ता
1: जी
0: करेंगे बोल के उसका दृढ़ एक दिन का, तो फिर बोला अरे कुछ छोड़ो,
1: बिल्कुल दृढ़ विचार होना
0: चाहिए, फिर उसका कुछ पीछे खींचता है
1: जी हाँ,
0: अंदर में करने के लिए सभी लोग चाहते,
1: सब चाहते होना चाहिए, सब चाहते हैं लंबे समय से चाहते हैं,
0: क्योंकि हो नहीं पा रहा मतलब उतना दुर्बल
1: सोच,
0: सोच थोड़ा डाउन हो चुका है, बैटरी थोड़ा डाउन है, चार्ज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा,
1: उसको चार्ज करना पड़ेगा तब जल्दी,
0: जैसे आपका मोबाइल में जो चार्ज नहीं होता तो कैसे चार्ज तुरंत करते है, तो हमारा विचार में भी चार्जिंग कैसे करेंगे, विचार को नियंत्रण करने वाला विचार हमारे सात्विक को कैसे हो, कहाँ से उत्पन्न होगा
1: जी हाँ,
0: जैसे आपका अंदर में है
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
0: और सभी का पास आपका जैसे केवली गांव है, केवली गांव सभी लोग तो है,
1: सब चाहते हैं पर्यावरण अच्छा हो,
0: लेकिन आपका जैसे विचार मंथन करेंगे तो जल्दी होगा ना,
1: आगे बढ़ना पड़ेगा,
0: पड़ेगा
1: खुद आगे आना पड़ेगा, उनको प्रेरित भी करना पड़ेगा, उनके सामने काम भी करना पड़ेगा, मेरा यही लक्ष्य,
0: वेरी गुड,
1: आप करेंगे तो ही होगा, आपने मंच दिया हम यहाँ बढ़े तो ही होगा,
0: नहीं तो नहीं होगा,
1: नहीं तो फिर कैसे होगा,
0: बचपन में रह जाएगा,
1: करते रहो,
0: कर्म में नहीं आएगा,
1: कर्म होना चाहिए,
0: वचन और कर्म
1: इसी पर जोर दे रहा हूँ कि काम होना चाहिए,
0: काम होना चाहिए,
1: खूब साहित्य है अपने पास, मैं भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये चीज एक बार समझ लो और फिर करने लग जाओ,
0: ठीक है। जैसे आपने बताया भाई कर्म मेहनत कर्म योगी है, कर्म भोगी नहीं कर्म योगी, क्योंकि कर्म योगी तब होगा जब हमारा वचन कथनी और करनी जैसे होना चाहिए, जो कहे उसको करे,
1: करे हम करे
0: करे
1: करे
0: तो उसमें करेंगे करेंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे उसमें
1: जी हाँ,
0: प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट,
1: परफेक्ट
0: तो हम बन पाएंगे, लेकिन सर जैसे आपने अच्छा बात को रखा, ये ही मेन मुद्दा है, इससे तो बहुत कुछ बनेगा, क्योंकि बाह्य का बारे में प्राय सभी का पास 190% है
1: नॉलेज,
0: जो इनर जो अपना अंतरकरण, वो जो जागरूक जो मेन मालिक है जिसका विचार का रचयिता है
1: जी हाँ,
0: वो कुछ सब कुछ करता है। शरीर तो गाड़ी है, जैसे चलाएंगे तो चला जाएगा,
1: चलाएंगे उधर जाएगी।
0: चलाने वाला जो शक्ति है, ऊर्जा है, प्राण है, जीवन है,
1: सही दिशा में उसको चलाने,
0: वो उसको इतना दुर्बल हो चुका है, उसे सबल करना है, उसको ताकतवर बनाएगा तो आपका जैसे विचार, हमारा जैसे विचार हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर ब्रेक का पहले जैसे आप इनर और आउटर दो शब्द, बाह्य शुद्धिकरण और अंत शुद्धिकरण पर्यावरण को लेकर
1: जी हाँ,
0: अच्छा विषय फाउंडेशन अच्छा मजबूत होगा, उसका ऊपर हम पिलर देकर और मंजिल बना सकते हैं
1: जी हाँ।
0: इसका ऊपर और क्या आप ऐसे छूट गया जो कि पर्यावरण का ऊपर में परिभाषा में?
1: सर अब ये बात तो हो गई, अब जैसे परिभाषा में मैंने वो जो बताया था अगले एपिसोड में, जीव की उत्पत्ति विकास और मृत्यु को प्रभावित करता है,
0: पिछले
1: एपिसोड में जिसमें भौतिक और जैविक शक्तियों से, भौतिक जैसे जल थल जितनी भी भौतिक शक्तियां हैं और जैविक शक्तियां हैं, उनसे जीव की उत्पत्ति और विकास प्रभावित होता है। इसका मतलब आप सबका, हमारा मानवता की उत्पत्ति और विकास इससे प्रभावित हो रहा है। ये तो है पर्यावरण। तो ये तो थी इसकी, हमने उसको थोड़ा सा उन शब्दों में कहा, एक सामान्य शब्दों में बताऊं, प्राकृतिक संरचना जिससे पृथ्वी घिरी हुई है उसको हम पर्यावरण कहेंगे।
0: क्या बात,
1: जितनी भी प्राकृतिक संरचना है और जो मनुष्य को प्रभावित कर रही है,
0: चाहे नेगेटिव मनुष्य पॉजिटिव है,
1: वो बिल्कुल वो सही कहा आपने, नकारात्मक
0: भी करता है,
1: क्यों
0: सर जैसे बाढ़ आ गया,
1: बिल्कुल वहीं पर जा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है वो, और इम्बैलेंस होने से ये हमको नुकसान कर रहा है, सभी को नुकसान कर रहा है
0: जी जी। तो इसका जो इम्बैलेंस होता है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक कभी कभी प्रकृति पर्यावरण हमको सहयोगी होता है, कभी कभी कभी कभी का विपरीत,
1: बिल्कुल विपरीत होता है ना सर। देखिए ये अभी जैसे ये अखबार के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, हमारे पर्यावरणविद है सुनीता नारायण
0: जी जी,
1: इन्होंने ये नोट कराया है कि इस वर्ष ही क्लाइमेटिक चेंज की बात है,
0: 2025 का बात,
1: 2025 के अगस्त के महीने में पंजाब में 31 में से 24 दिन भारी और अत्यंत भारी वर्षा हुई। तो जो 204 mm से अत्यधिक भारी बरसात हुई, इसका कारण कई जगह पर बादल विस्फोट हुए, क्योंकि पर्यावरण इम्बैलेंस हो रहा है। कितना नुकसान हुआ आपने देखा,
0: बहुत
1: हम अपना नुकसान देख ही रहे हैं, केदारनाथ का कुछ समय पहले देखा था,
0: कुछ ना कुछ
1: ये सब जगह, अभी धराली का देखा, तो इस तरह से इतना बड़ा ये जो नुकसान हो रहा है,
0: कहीं होते रहता है, प्रकृति अपना खेल तक खेल।
1: इस बार सरकारी आंकड़ों के अनुसार बादल फटने से बाढ़ आने की 13 घटनाएं हुई जून और अगस्त के महीने में, पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में सामान्य से लगभग 50% अधिक बारिश हुई, और पंजाब में अगस्त में अंतिम पखवाड़े में सामान्य से 400% अधिक बारिश हुई। ये बिल्कुल आंकड़ा, जो बिल्कुल पक्का आंकड़ा, उस आधार से अपन बात करते, तो इसकी वजह यही है कि पर्यावरण इम्बैलेंस हो रहा है, और इम्बैलेंस हो रहा है, इसको आपने हमने सभी ने मिल करके अगर उस पर काम नहीं किया तो फिर हमारी क्या स्थिति हो सकती है।
0: ये तो जैसे हम अगस्त महीना 2025 का बात कर रहे, जो अखबार में जो आया है 19 अगस्त का
1: जी जी,
0: जो आज आप, ये तो हर रोज होते रहता है, और ये तो हमें एक आपको ऐसे सैंपल दिए,
1: सैंपल सैंपल कितना
0: भयावह है,
1: कितना भयावह, इसकी भयावहता को दिखाना चाहते हैं।
0: तो हमें उससे पहले सतर्क होना चाहिए, और ये तो और अधिक होते जा रहा है, जितना हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे जितना हॉस्पिटल खोल रहा है, मरीज का संख्या भी बढ़ते जा रहा है,
1: बढ़ते ही जा रहा है,
0: तो इतना प्रयास करने के बावजूद भी,
1: आपने बहुत अच्छी बात की भाई साहब, कि इस मूल पर प्रयास करना है, हॉस्पिटल खुलने हैं, खुल रहे हैं, खुलते जाएंगे, खुलना भी चाहिए, लेकिन कम से कम मूल पर काम करो कि हॉस्पिटल
0: काम हो,
1: बनाना नहीं पड़े,
0: बनाना नहीं पड़े,
1: मानवता तो बनाएगी, बनाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम
0: हमारी संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब
1: अच्छा वो बढ़ रहा है अपने कारण से,
0: जो तो कारण बाद में सोचेंगे, लेकिन कौन है, मतलब पर्यावरण का जो बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन, वो तो हमारा अगला टॉपिक में आएगा
1: जी हाँ,
0: लेकिन
1: जी हाँ।
0: ये जो चीज है पर्यावरण क्या है, और क्यों उसका स्थिति अभी का क्या है, और इसको कैसे हम सब मिलकर उसको स्वस्थ स्थिति में लाना है,
1: बहुत बहुत बढ़िया,
0: अभी स्वस्थ स्थिति नहीं है, इसलिए तो कभी कभी हमारा नुकसान करा दे, नहीं तो कभी वो नुकसान करने,
1: पर्यावरण नुकसान के लिए नहीं था,
0: लेकिन हम उसका साथ यदि खिलवाड़ करेंगे वो छोड़ेगा,
1: बस बस बस हमने अतिक्रमण कर लिया हर जगह,
0: बस वही इसका तो आएगा समय, सबको पता है, फिर भी जानेंगे, लेकिन और एक ब्रेक लेते हैं
1: जी,
0: ब्रेक के बाद और कुछ बात सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, अभी गए अभी आए

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में पर्यावरण को लेकर हम जब बात कर रहे हैं
2: प्रदूषण,
1: इसको ही आगे बढ़ाते हुए हमारा तो ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे जो करने वाला कराने वाला, हम शरीर का माध्यम से हम करते हैं लेकिन कराता है अंदर में जो अंदर नित एक शक्ति है जिसका हम ऊर्जा कहे, प्राण कहे, चाहे विवेक कहे, चाहे विचार कहे, ये सब देखने को नहीं आता है। बाह्य चीज हमारा शरीर तो देखे, हाथ तो हम करते, तो ये तो बाह्य पर्यावरण का साथ हम
2: जी हाँ
1: सब मित्रता और शत्रुता हम ही करते, शत्रुता हमारा हाथ में, मित्रता भी
2: हमारे हाथ में।
1: तो ये मित्रता शत्रुता कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारा बुद्धि से,
2: बुद्धि से होती है।
1: बुद्धि से मुझे प्राण, जिसको मन और बुद्धि, मन तो कहता है मैं मत काटो पेड़, बुद्धि कहता भाई
2: बुद्धि कहता काट लो काम आएगा, अच्छा मजा आएगा,
1: मजा आएगा। तो इसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में मन बुद्धि जो एक वकील और एक जज,
2: जी जी
1: जज का काम करेगा तो जज हमेशा राइट आंसर देगा
2: जी,
1: जब बुद्धि स्वच्छ होगा
2: तो राइट आंसर देगा,
1: नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा। कभी गलत आंसर इसलिए होता है क्योंकि मन जो है वकील वो बहुत पावरफुल हो जाता है और जज को बहुत लॉजिक देकर, बहुत प्रूफ देकर, झूठ को भी सत्य,
2: वो सत्य प्रस्तुत कर
1: देता है, बुद्धि मन का ऊपर में हावी हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता उनका। तो आज हम उसके बारे में जो चल रहा था, आउटर और इनर, अंतर

0: अजब,
1: ठीक है, जिसे पत्थर है,
0: जिसका प्राण नहीं है, जीवन नहीं है,
1: हाँ वैसा, जिसके अंदर जीवन नहीं है,
0: प्राण नहीं है
1: और जैव
0: नहीं है, जैव जिसमें प्राण है, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा,
1: वनस्पति है, ठीक है, जैसे जीव जंतु है,
0: पशु पंछी,
1: ये सारे के सारी चीजें
0: जैसे
1: प्रभावित होती है, ठीक है सर। अब इसको जो प्रदूषित ये सब कुछ होता है, अब ये कैसे होता है, अब इसके कई तरीके हैं, इसको प्रदूषकों को कई भागों में अपन बांट सकते हैं या उस पर बात कर सकते हैं। जैसे सर प्रदूषक होता है एक तो जैव निम्नीकरण से, यानी कि सूक्ष्म जीवों से अपघटन बढ़ जाता है,
0: सूक्ष्म जीवों से अपघटन
1: बढ़ जाता है, कैसे, जैसे आपने रसोई का जो वेस्ट है, खाना बच गया
0: जी,
1: जब बच गया तो वो जो बचा हुआ है, देखिए यहीं पर अपन इम्बेलेंस करें, जो है उतना ही बनना चाहिए, उतना उपभोग हो जाना चाहिए सामान्य तौर पे, लेकिन जब वो बच जाता है किसी कारणवश बच गया तो हम क्या करेंगे, उसको वेस्ट करेंगे, जब वो वेस्ट जाएगा तो उसको अगर सही तरीके से आपने जैसे हाँ सही तरीके से उसको
0: यूज किया,
1: हाँ उसको यूज नहीं किया, उसका सही उपयोग नहीं किया
0: तो उसका
1: तो उसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, और वो सूक्ष्म जीव जो उसका अपघटन करते हैं इसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। अब वो जो अपघटन होगा वो दुर्गंध पैदा करेगा, वातावरण को खराब करेगा,
0: कीड़ा भी
1: और जो भी है, अब इसके जितने दुष्प्रभाव है आप सोच सकते हो, सब जगह
0: उसका वृक्ष बन जाए,
1: तो ये हर घर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर व्यक्ति जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जो इस पर काम नहीं कर रहा सही तरीके से, वो उसको वेस्ट जब छोड़ता है तो वो अपघटित होता है और फिर जैव जो छोटे छोटे कीटाणु हैं वो उसको अपघटित करते हैं, तो वो नुकसान
0: पर्यावरण के लिए,
1: पर्यावरण के लिए, अब आपके तो पर्यावरण खराब ही होगा ना उससे, तो यहाँ अगर अपन संयमित हो जाते हैं,
0: एक छोटा सा एग्जांपल दिए आपने,
1: कितनी बड़ी चीज है,
0: बड़ी चीज
1: ये सर, छोटी
0: बीज,
1: बहुत
0: जैसे थोड़ा बीज है उसका फल बढ़ जाता, वृक्ष बन जाता है, मतलब पर्यावरण को
1: हर व्यक्ति
0: हानि कर,
1: मैं भोजन कर रहा हूँ, आप स्वयं भोजन कर रहे हैं
0: जी,
1: अब भोजन आपको उतना ही लेना है जितना आवश्यक है,
0: ना कम
1: भोजन, आप भूख से कम खाइए ऐसा बताया गया है, आप स्वस्थ रहेंगे, पर भोजन में अगर कुछ बच जाता है, अब जैसे पशु या पक्षी के लिए निकालते हैं वो तो अलग बात है, क्योंकि वो उपयोग कर रहा है, वो गलत नहीं है, वो तो सही है, लेकिन बच जाता है तो आप उसको वेस्ट अगर डाल देते हैं तो निश्चित रूप से वो अपघटित होकर के प्रत्येक व्यक्ति इस पर्यावरण के इम्बेलेंस में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, ये बात समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ही माइक्रो चीज है,
0: उत्तरदायी है उसके लिए, खुददायी
1: उत्तरदायी है, तो हम कितना बड़ा, देखो अनायास हम नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल अनायास ही हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का, समाज का, इस पर्यावरण का।
0: सर जैसे आपने बताया कर रहे हैं, सभी लोग तो नहीं है, जैसे आप जैसे जो विचारशील है और पर्यावरण को संरक्षण करने, तो कुछ लोग इसका प्रति जागरूक है,
1: कुछ जागरूक
0: 5% होंगे,
1: कम परसेंट,
0: लेकिन
1: बहुत कम,
0: नहीं से बराबर है,
1: बहुत कम
0: है, लेकिन जैसे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम देखें लोग
1: बिल्कुल
0: उसको विवेकशील आदमी है,
1: बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया है,
0: नहीं सभी जगह में, जैसे हमारा
1: बहुत जगह लगे सर,
0: बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग जो अवेयरनेस है, जैसे आप जैसे जैसे कोई सुनकर भी करते हैं, लेकिन उसमें भी पर्यावरण मैंने सुरक्षित नहीं होगा, और सबका
1: हाँ हाँ हाँ यही मूल बात यही है कि ये कर रहे हैं किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट। सर मैंने निवेदन किया था,
0: परसेंटेज देखेंगे तो ज्यादा लोग उसको वेस्टेज करते, मैंने
1: हाँ कोई 1% अगर ठीक कर रहा है तो वो कहाँ 99% जो कर रहे हैं वो रिजल्ट तो वो सामने आएगा।
0: जैसे छोड़िए ना किसको सर, पहले हम देखेंगे, जैसे आपने कर रहे हैं
1: जी हाँ,
0: तो आप एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे
1: जी हाँ,
0: क्योंकि आप कर दूसरा करने का उसका स्थिति अलग हो सकता
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल,
0: उनका विचार अलग हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: उसका बुद्धि अलग हो सकता है, लेकिन आप कर रहे हैं, आप खुद बोले भाई हमको जितना आवश्यकता है उतना ले रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: और कम लेंगे तो और बेटर है,
1: वो शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है,
0: तो इसको आपसे प्रेरणा लेंगे, आप इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं
1: जी हाँ,
0: क्योंकि खुद का जो अनुभव है ना
1: जी
0: वो
1: हाँ,
0: दूसरे को प्रभाव करेगा
1: जी हाँ,
0: स्व परिवर्तन
1: जी हाँ, स्व परिवर्तन से होगा,
0: दूसरे कहेंगे तो हमारा पहले हम खुद करके देखें, हम कर रहे हैं तो हम दूसरों हम ऐसे करते भाई करने के उनका हाथ में, लेकिन आप इस माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, और उसको जागरूक कराने के लिए आप दूसरे को पास आए रेडियो का माध्यम
1: जी हाँ, जी हाँ,
0: मेरा कहने का मतलब आप इतना विचारशील हो और पर्यावरण का ऊपर में एक भी क्षति मेरे तरफ से कोई भी 1% भी क्षति न हो, वो विचार
1: जी हाँ जी हाँ,
0: ये विचार सबका अंदर में आए
1: जी हाँ,
0: तो वो विचार को आप कैसे लाते हैं
1: राइट सर, अब जैसे ये इसका एक ही बिंदु है।

0: दूसरे बिंदु पर अपन जाएंगे धीरे धीरे
1: जी।
0: अब इसमें जैसे ये छोटी सी बात आपने उठाई, तो हम इसको जागरूक करने के लिए मैन टू मैन आपको संपर्क करना पड़ेगा, या जहां ये काम हो रहा है, जैसे हमारे क्षेत्र में वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट बनाया है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा, उसको हम उन लोगों को ले जा करके दिखाएंगे कि भैया देखो इस तरह से मैनेज हो सकता है। पहली बात तो करना, वेस्ट तो नहीं करना, लेकिन अगर करते
1: तो उसको
0: हो जाता है, बाय द वे हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है,
1: होता है इतना बड़ा
0: भाई 1000 लोग को बुलाया है ठीक है, और उसमें 700 ही आए
1: पाएंगे तो क्या करें,
0: तो 300 का भोजन तो बन चुका। अब एक तो प्लानिंग उसकी बहुत तरीके से होती है, करते ही है, लेकिन कभी नहीं हो पाती तो वो जो वेस्ट
1: अल्टरनेट व्यवस्था होना चाहिए,
0: उसकी अल्टरनेट तो वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जहाँ लगे हैं उसको देखें
1: जाकर के गांव में भी कर सकते हैं छोटा शुरू।
0: सर ये मेरा निवेदन था, मैंने आरुषि बहन को यही कहा था कि मेरे दिमाग में दीदी ये आ रहा है कि उस प्लांट को हम देखें कि वो कैसे काम कर, तो सर हर गांव में हो सकता है।
1: हाँ, सरकार भी उसको सबसे बहुत कुछ है, अगले करना चाहेंगे
0: सब। सरकार सर बिल्कुल तैयार है सर, सरकार क्या इंटरनेशनल संस्थान सरकार तक सब देने को तैयार है।
1: मैंने देख रहा था, लोग का फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है, जो गाड़ी जो आएगा उसका मेंटेनेंस 60 रुपया।
0: जी जी
1: भाई, आपका गांव में जैसे केबल का बात कर लिया और आपका बात कर रहे हैं।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
1: आप जैसे शिक्षित आदमी अपना बहुत सारा बैकग्राउंड होता है सर, सब लोग एक जैसे नहीं सर।
0: नहीं ठीक है ठीक है,
1: विचार भी एक जैसे नहीं,
0: बिल्कुल
1: फाइनेंशियल भी एक जैसे नहीं है,
0: एक जैसे नहीं
1: है, हो नहीं सकता है, विचार भी एक नहीं सम, लेकिन हम चाहते सभी का विचार मिल, भले थोड़ा 5-10 उधर नीचे होगा तभी चलेगा, लेकिन सबका मनोबल होगा चाहेंगे। गांव में 100 लोग हैं, 70 लोग चाहेंगे तो हो जाएगा,
0: तब ना होगा,
1: 50-50 होगा तो होगा नहीं,
0: नहीं होगा,
1: और 30% रह गया नहीं चाहते उसको हम कवर कर देंगे, 70 लोग का पॉजिटिव हो जाएगा
0: वो बिल्कुल,
1: कुछ नहीं देगा ना फाइनेंस
0: उनके लिए। सर एडवोकेसी प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जैसे आप चला रहे हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विसेज चला रहे हैं, हमको जा करके बताना पड़ेगा।
1: हाँ, अवेयरनेस
0: तो अवेयरनेस जैसे, अब अवेयरनेस कहाँ से, आपने एक प्रश्न करा, अवेयरनेस सबसे बढ़िया माध्यम है, हम बाकी जगह लोगों में कम्युनिटी समुदाय के अंदर जा करके हम बात कर रहे हैं, हम लोग स्कूलों में जाएं और वहाँ ये विषय जैसे पढ़ाया जा रहा है, मेरा इस पर बहुत बड़ा वोर सर रहा कि जो ये विषय पढ़ा रहा है, प्रत्येक कक्षा के बच्चों से, शिक्षक से जो इस पर काम कर रहा है, उसको ये जाकर के बताएं कि आप ज्ञान तो दे रहे हैं, मेरा प्रश्न यही है, आप ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन क्या वो बच्चा कर रहा है कुछ, करे
1: उसके लिए प्रोत्साहन, क्या
0: ज्ञान तो है,
1: क्या उसका दिक्कत है, उसको
0: ज्ञान तो है उसको, लेकिन वो करे उस काम को, तो निश्चित रूप से वो भी उसी हिसाब से लेगा, उसी हिसाब से मतलब वेस्ट नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। प्रत्येक कक्षा तक, प्रत्येक बच्चे तक अपने को जाकर के ये सारी चीजें समझानी पड़ेगी, और समझाना ही नहीं वो करे, उसका फॉलोअप करना पड़ेगा, जैसे आप कर रहे हैं,
1: करके उनको कराने के लिए बोले, पहले खुद करिए।
0: अच्छा, प्रत्येक गांव में सर, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है अपने यहाँ का ब्रह्मा कुमारी, प्रत्येक गांव का सरपंच, वार्ड पंच बॉडी अगर चाहे, कौन नहीं चाहेगा,
1: सब चाहेंगे ना,
0: सरकार दे रही है, सरकार सहयोग दे रही है, तो आप देखिए मॉडल को, और जब ये इतना बड़ा संस्थान इसके वेस्ट का मैनेजमेंट करा तो मेरा गांव क्यों नहीं कर सकता,
1: ये पैदा होना चाहिए,
0: तो सभी गांव कर सकते हैं,
1: तो शुरुआत
0: सभी गांव कर सकते हैं,
1: शुरुआत
0: हमारे गांव से ही हो शुरुआत तो हमसे ही होगी,
1: वेरी गुड,
0: शुरुआत हमसे ही होगी,
1: आपसे ही होगा, वेरी गुड,
0: शुरुआत हमसे ही होगी,
1: वेरी गुड, तो क्योंकि एक मॉडल बनेगा ना भाई, ब्रह्मा कुमारी आप
0: जब इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी दिखाएंगे कि भाई साहब ये है, और इसका
1: हम तो
0: जब ये कर रहे हैं तो तुम भी करो। अच्छा, फाइनेंस गवर्नमेंट देती है, पंचायत के पास में कई तरीके हैं, तो सर वो करेगी, तो वो चीज देख करके करो, देख करके सीखो, तो कम से कम वो मैनेज तो हो जाएगा, नहीं तो आप गांव गली में जहां भी,
1: सर कोई
0: असंभव कुछ भी नहीं है, गांव गली में जहां भी सर आप पधारते हैं ना, वहां सब जगह इधर उधर कचरे बिखरे हुए पड़े रहते, तो ये किसका दायित्व है, किसी और का थोड़ी, हमारा ही है, खुद का है ना, तो और उसको देखो कि ये कैसे मैनेज करते हैं। आज आप मानसरोवर में बैठे हैं, कितना मैनेजमेंट बढ़िया है, तो ये कौन कौन करेगा, हम करेंगे तब ना,
1: विवेकशील है ना, जो आध्यात्मिक,
0: ये अंत है प्रेरणा ही तो काम करेगी,
1: ये अंत प्रेरणा जब आएगा तब ब्रह्मा कुमारी में क्या है,
0: अंत प्रेरणा नहीं है,
1: 1 किलोमीटर के बाद तो भाई उमरी है, दानवाव है,
0: जी हाँ जी,
1: मानपुर है, मानपुर शहर है, मानपुर ग्रामीण है, तो यहाँ पर केवल है, तो इस गांव में क्यों नहीं हो पा रहा, अब यहाँ पर जो आ रहा है तो आध्यात्मिक स्थल है, जहाँ की ऊर्जा का डेली वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनका मन और बुद्धि श्रेष्ठ है,
0: और रोज करना पड़ेगा, इसका रोज,
1: और हम लोग चाहते तो आप गाँव
0: दर्पण पे जब कोई काली खा जाती है तो उसको रोज साफ करना पड़ता है, नहीं धूल जम जाती है ना, रोज साफ करना पड़ेगा।
1: दोनों जो पर्यावरण का बात हुई उसी में सब चीज आ जाता है।
0: जी हाँ,
1: उसमें बहुत भास्ट बने उसका चैप्टर है, जितना भी एपिसोड बने कम ही पड़ेगा।
0: जी हाँ,
1: मैंने दो है
0: जी हाँ,
1: इन और आउट,
0: इन और आउट,
1: अंत और बाह्य,
0: ये दोनों को देखना पड़ेगा। भाई को खूब देखा है, अंत को नहीं देख रहे।
1: अंत और बाह्य ये दोनों का बीज जो है ना, ये दोनों का बीज है
0: जी हाँ।
1: जैसे बाह्य का संचालन कर मनुष्य है
0: जी हाँ,
1: जीवात्मा, ये दोनों को थोड़ा गहरे में हमारा मैंने पूरा डीपली
0: जी हाँ,
1: गहरा से सोचिए, तब यही फाउंडेशन यहाँ से ही सब। जैसे आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो ब्रह्मा कुमारी कर रहा है
0: जी
1: हाँ, इनर को ज्यादा देते हैं,
0: इनर को ज्यादा देता है, वही
1: बाह्य को नहीं देते। बाह्य तो ऑटोमेटिक हो जाएगा,
0: वही चाहिए बाह्य, लेकिन इनर ठीक है तो हो जाएगा।
1: इनर को देने के लिए इतना एक्सपोर्ट जैसे आध्यात्मिक संस्था ही दे सकता, कोई भी आध्यात्मिक संस्था, मैंने नहीं बोला
0: कोई भी, कोई भी
1: धार्मिक
0: कोई भी आध्यात्मिक संस्था,
1: भक्ति भावना जो करते
0: जो भक्ति करते हैं
1: वो जो अनुयायी भगवान के देवता।
0: इसमें एक चीज बड़ी छोटी सी, मैं अगर भक्ति की आपने बात की तो मैं भी कर लूं, ज्ञान नॉलेज उसको समझना, जैसे समझते सब है हम, इसको भी समझते हैं पर्यावरण के प्रति ज्ञान, फिर पर्यावरण के प्रति भक्ति, मतलब ये हमारे दिमाग में 24 घंटे रहना है। और वैराग्य, इसके लिए आप जब नहीं कहते कि बस इसके पीछे दृढ़ होकर के पड़ जाना पड़ेगा, तो ऐसा वैराग्य हो जाए तो और हर संस्था इसके लिए अवसर प्रदान करती है, किसी के भी माध्यम से, अच्छे संस्थान के माध्यम से, किसी व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
1: आज जो भी महान बने, जो भी फाउंडर बने हैं संस्था के, धर्म स्थापक जितना बने, उनका भी विचार ऐसे ही आया सर, जैसे हमारा जैसे व्यक्ति थे
0: ऐसे ही व्यक्ति,
1: उनका जैसे जिज्ञासा हुआ और उसका उन्होंने वैराग्य आ गया और कुछ करने के लिए एज नहीं देखा, जिस समय उनका बुद्धि में आया
0: चल पड़े
1: तो आगे जाकर बहुत फॉलोअर बन
0: चल पड़े।
1: तो
0: इसमें सर हमने एक कविता लिखी है,
1: और क्या बात सुना, लास्ट में कविता सुनाकर हम रखते हैं, लेकिन अगला एपिसोड इसी का ऊपर में, इनर और आउटर जो पर्यावरण है, और इसके बाद तो चलेंगे किस तरह में उसको शुद्धिकरण करेंगे, और नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या है, और वो कारण को निवारण करने के लिए
0: जो
1: कारण है तो निवारण तो जरूर होगा।
0: बिल्कुल जो बिल्कुल निवारण तो है, निवारण है,
1: निवारण बिना कारण नहीं आएगा, तो कारण है तो निवारण भी होगा। हर चीज का सत्व रज तम अवस्था होता है, फिर सत्व आ जाता है। तो एक कविता का माध्यम से हम रोकेंगे इस एपिसोड को।
0: अच्छा अच्छा ठीक है
1: सर, शुरू करिए कविता का माध्यम से।
0: अच्छा सर, कोशिश ये हुई है
1: जी सर,
0: भोर हुई अब चले चलो, धीरे धीरे अब चले चलो, धीरे
1: धीरे धीरे, ओके,
0: अब एकदम तो दौड़ नहीं पाएंगे, कारवा बनाना है हमको। ठंडी बयार में मन सोता है, पर अब तो जागे जागो चले चलो,
1: जागे और जागे
0: चलो, जागे तो आपको तो सोने की इच्छा है, ऐसा तो भाई नहीं चलेगा, चले चलो, भोर हुई अब चले चलो, एक अकेला नहीं कर पाएगा, पर्यावरण के लिए कह रहे हैं, समझो अब तो चले चलो, भाइयों के साथ अब चले चलो, जगाओ बहना को चले चलो, सभी मिलकर के चलो, भाई बहन सब
1: जी सर,
0: संदेश पुरातन चले चलो, परिवार के साथ अब चले चलो, गांव के साथ अब चले चलो, भोर हुई अब चले चलो,
1: क्या बात,
0: पर्यावरण शुद्ध हुआ अब तो भैया चले चलो, शुद्ध बयार में चले चलो, व्यायाम कर लो चले चलो, योग कर लो चले चलो, जीना है तो अब चले चलो, भोर हुई अब चले चलो,
1: क्या बात, मजा आ गया, चले चलो भाई, रुकना नहीं, जा रुक गए तो तला बन जाएगी, चलेंगे तो नदी होगा, निर्मल जल होगा,
0: बहते रहो
1: बहते रहो, चलो रुकना नहीं, झुकना नहीं, हर कदम आपका साथ ऊपर वाला है ही है, लेकिन उसीलिए जागरूकता रखकर सोए, जो सोया वो खोया
0: चलो
1: चलो
0: चल पड़ो,
1: चल पड़ो, जो भी पड़ो, तो हम जैसे रेडियो मधुबन चल पड़ा, आज तो 14 साल पार करके 2025 में
0: चल पड़ा
1: तो इसलिए आया विघ्न आया, लेकिन अपना काम पर नहीं रुका, अपना साइड होकर चल गया, जो पत्थर आता है
0: जी,
1: तो पानी क्या करता है नदी में, वो किनारे होकर निकल जाता है, होना चाहिए, और बहुत अच्छा संदेश है, और इस कविता में सोचने वाला सोचते रह जाएंगे भाई क्या है, और सही में हर चीज में सिर्फ पर्यावरण हर चीज में चले पड़ो,
0: धीरे धीरे
1: चल पड़ो,
0: जैसा अवसर कदम जैसा मिल रहा है
1: चल पड़ो,
0: आगे रास्ता मिलता जाएगा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर
0: धन्यवाद,
1: तो कविता का माध्यम से आपने तो सबका बुद्धि को ऊपर चक्कर लगा दिए, और उसमें चक्कर क्या है, उसमें चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे जब सोने का। तो सर ये था कुछ की मैसेज, और अगला एपिसोड में जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो उसमें हम और कुछ बात करेंगे सर, जाते जाते बहुत बदल क्या सस्पेंस देकर जाएंगे
0: जी हाँ, जी
1: सस्पेंस रहेगा, अगला एपिसोड में हम जो कर रहे हैं, जैसे इनर आउटर कर रहे हैं, बाह्य और अंतर, अंतर जगत को भी देखना है। बाह्य जगत को हम तो दिखाई दे रहा है स्थूल चक्षु से, अंतर चक्षु को देखने, जैसे आप अंतर चक्षु से देख कर इस विचार आया।
0: जी हाँ,
1: भले आप तो आध्यात्मिक प्रेमी है, आदि भक्ति भावना अगरवत सब करते हैं, लेकिन उसी में ही वो जुड़ा हुआ है अंतर जो सात्विक विचार।
0: जी, सात्विक विचार
1: आना, कलयुग युग में जो सात्विक विचार आना मीन्स देवत्व, जैसे गुण वाला है। कलयुग युग इतना वातावरण भ्रष्टाचार का दुनिया में,
0: जी हाँ,
1: सब जगह में पोल्यूशन, सब जगह में वृत्ति का पोल्यूशन, शब्द का पोल्यूशन, सब में पोल्यूशन,
0: हर बात में पोल्यूशन,
1: तो उसी में आप उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? पोल्यूशन को सोल्यूशन करने का जो रास्ता निकलेगा आपका बुद्धि से निकलेगा, और बुद्धि का मालिक, बुद्धि का बुद्धिमान ऊपर वाला जिसको आप मानते भगवान, तो उसके बारे में थोड़ा और डीपली जानेंगे। क्योंकि इनर आउटर तो हम बहुत कुछ नहीं करें, आउटर तो आप जानते हैं,
0: जी हाँ,
1: सब कुछ देख रहे हैं,
0: हाँ,
1: हो रहा है सब पर, लेकिन इस सब का जो जिम्मेदारी कौन है? भगवान तो नहीं है और खुद स्वयं है,
0: हम स्वयं है,
1: वो स्वयं कौन है और कैसे है वो, और कहाँ पर होता है, उसका विचार क्यों ऐसे हो रहा है, उसको कौन प्रेरित करता है,
0: ठीक बात है,
1: वो चीज जानेंगे इनर में ही, लेकिन कल नहीं तो अगला एपिसोड में।
0: जी हाँ जी हाँ जी,
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खास कर पर्यावरण को लेकर हमारा जो मनन चिंतन चल रहा है और सर का जो विचार था आज उसका पास सीमित क्यों रहे, पर इस माध्यम से सब तक पहुंचे और जितना आवश्यकता जितना फायदा आप ले, जो आपको आवश्यक नहीं उसको छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं जबरदस्त नहीं, सुनना आपका काम है, नहीं सुनना आपका काम है, हमारा काम है बोलने का,
0: बस
1: इसके बाद भाग्य आप आपका हाथ में, भाग्य का कलम है, जितना लिखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो इन बातों के साथ हमें और हमारा जो आज का साजक जो सजाए गोपाल राम पुरोहित जी, जो कि सेवानिवृत्त जो जिला शिक्षा अधिकारी जो केवली का निवासी है, उनका परिचय सबको मालूम है, सीबीओ थे अब रोड में भी हम देखे बहुत परिचय थे, तो उनको मिलेंगे अगला एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता मित्र की तरफ से।
0: धन्यवाद साहब, रेडियो मधुबन को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान, हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है, हमारा भारत में वो राजस्थान में विवाह जन्मदिन लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं, हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोक गीतों का कार्यक्रम देते हैं, शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं, हमारी संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमाकर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश, राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूँ, थाल भरूं गज मोतिया ऊपर नैन धरूं, साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ, केसरिया बालम पधारो मारे देश।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। दोस्तों, संगीत का सफर जब शुरू होता है ना तो खत्म नहीं होता। वैसे कोई भी सफर हो तो लगता है अरे मंजिल कब आएगी इंतजार रहता है, लेकिन संगीत का सफर अपने आप में मंजिल बन जाता है, क्योंकि इतनी खुशी मिलती है, इतना कुछ मिलता है कि पूरी दुनिया भूल जाती है। कई बार अगर हम उदास होते हैं तो उदास मन को थोड़ा दिलासा मिल जाता है, खुश होते हैं तो खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। ऐसे ही गाने हर ओकेजन के लिए बने हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या हॉलीवुड के हों, या फिर हमारा लोक संगीत हो। और लोक संगीत तो सच में दोस्तों दिल के तार छू जाता है। आपके एरिया का भी कोई ना कोई संगीत ऐसा जरूर होगा जो आपके दिल से निकलता होगा, है ना दोस्तों? आपकी यादें, आपकी संस्कृति सभी से जुड़ा होगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे आज की गेस्ट, जिनका नाम है सरोज देवी जी, जो कि पानीपत से आए हैं और बचपन से उन्हें गाने का शौक है, खासतौर से लोक संगीत उनके अति प्रिय है और बहुत सुंदर वो गीत की रचना भी करती हैं और बुलंद उनकी आवाज है। तो आइए उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं, यानी मिलवाते हैं। सरोज जी, आपका रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी दीदी,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे
0: हैं?
1: बहुत अच्छे
0: बहुत अच्छे हैं। सरोज जी, वैसे तो ये गाने का ही प्रोग्राम है तो आपसे गीत तो सुनेंगे ही, लेकिन पहले जो हमारे श्रोता मित्र, क्योंकि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ अपने बारे में आप बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें आप।
1: मेरा नाम सरोज है जी, मैं पानीपत से, प्रकाश नगर से, और पहले मैं गांव में रहती थी और जैसे स्कूल से ही मेरे गाने को शौक था तो वहीं से मेरी शुरुआत गाने की हुई थी।
0: अच्छा।
1: वहीं फिर जो सर थे वो कहते थे भाई माँ आगे ले जाना चाहूँ, तो घर वाले थोड़े से नहीं जाने देते थे उस टाइम, मेरे को सहमत नहीं थे वो इस चीज से भाई लड़की गाए कहीं, इसलिए मेरी ये चीज रुक गई वहीं पे। तो फिर मैंने अपनी शुरुआत जारी रखी, मैंने गाना नहीं छोड़ा।
0: हाँ। आप कितने बड़े थे तब जब आपको स्कूल में आप थे, गाना गाते थे?
1: उस टाइम तो दीदी मैं 8-9 साल।
0: 8-9 साल के थे। तो आपको बुरा तो लगा होगा कि गाने के लिए आगे परमिशन नहीं मिली?
1: दीदी बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। ये एक बार नहीं हुआ दीदी, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी ना, उसी टाइम मतलब रोक दिया जाता था, या भगवान की मर्जी लाओ या किसी की भी लाओ, क्योंकि मेरे को योगा है ना, मैं योगा करती थी, उसमें भी मेरी स्वरूप मैं फर्स्ट आई वहाँ स्कूल में, उस टाइम में 13 साल की थी।
0: अच्छा।
1: तो उसी 13 साल के बीच में फिर मैं योगा में फिर गई, तो मेरी 12 जिला में वहाँ हिसार में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो वहाँ मेरिट आई, लेकिन वहाँ भी मेरे को फिर गोवा के लिए या त्यार तो मेरे को रोक दिया गया,
0: लड़कियों को नहीं जाना।
1: बस इसी वजह से फिर रुकता ही चला गया।
0: लड़कों को मिलती थी परमिशन?
1: हाँ, परमिशन लड़कों को मिलती थी। मेरे को सब शौक था, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, हर चीज का शौक था, लेकिन काम सारे आते हैं। खेत का भी करते थे, जैसे जमींदार है 18-20 किले ज्यादा भी मतलब 80 किले की खेती करते थे, वो काम भी सारा आता, लेकिन और सारा प्यार मिला, प्यार में कोई कमी नहीं थी माँ बाप का, लेकिन बस यहीं पर रुक जाती थी,
0: बाहर नहीं जाने दिया।
1: हम 4 बहनें हैं, इसलिए किसी को लगता था भाई ऐसे भेजेगा तो माता पिता देखो गाँव में तो होती है रूढ़िवादी समाज होता, तो वो बोलते थे भाई लड़की को आगे भेज रहे पैसे के लिए, तो वहीं से बाप फिर हो जाता था भाई बेटे नहीं जाना, उसका मन था आगे लेकिन नहीं जाना।
0: आपके माता पिता का भी मन था?
1: बहुत था दीदी, बहुत मन था मेरे बाप का, वो तो ये चाहता था कि मेरी बेटी पता नहीं क्या करे, ये सब बोलता था, लेकिन वो मजबूर था समाज के।
0: समाज? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि समाज कुछ भी सोचे हम करेंगे या?
1: दीदी जो मतलब जो बाप ने कहा ना वही स्वीकार कर लिया।
0: स्वीकार कर लिया?
1: वो सोचती थी मैं, मेरा बाप ही जैसे भगवान है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, बहुत प्यार करती।
0: उनकी तो भावना भी थी और आपको?
1: बहुत भावना थी दीदी, उसको तो मैं ऐसे बोलती थी मेरी शादी नहीं करनी, तो कहता था बेटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं तुम्हें कहीं भेज दू, उसको ये पता होता ना ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं होती तो मेरे को यहीं भेज देते,
0: मतलब पूरा सपोर्ट करते थे,
1: पूरा सपोर्ट करते थे, हर चीज का सपोर्ट करते थे, कहते थे वे तो गाड़ी चला स्कूटी चला, तो भाई इस बात में ना जैसे गांव के लड़के होते हैं सोचो भाई इसकी बहन ये कर रही हो कर रही हो, भाई थोड़ा सा छियादत का है, बहुत प्यार प्रेम है बड़े भाइयों में, लेकिन उसकी बात भी देख कर मैं दूर हट जाती थी, दिल था मेरा हर चीज करने का, मेरे को ये मतलब जज्बा भी था मैं कर सकूं हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैं अपनी खुशी के लिए इनको नहीं परेशान कर सकती।
0: नहीं, आपका जज्बा ही है सरोजी जो गाने को आपने छोड़ा नहीं?
1: हाँ, ये चीज मैंने दी थी अकेले में। मैं जैसे रसोई में खाना बनाती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। देखो, इस पे तो मेरी कोई रोक नहीं थी, ये तो मैं घर में भी करती थी। घर में कोई रोक नहीं थी, घर में तो गा, कोई रोक क्या नहीं जाता था, बल्कि माँ सुनती है, कहेगी बेटी यू मेरे को सुना ये चीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। बस फिर वो यहीं तक रहेगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी।
0: लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और अब मुझे लगता है जो सुनने वाले होंगे उनको भी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि ये जो आपकी कहानी है ये बहुत सी महिलाओं की कहानी है ना। हाँ। तो कई बार मौका नहीं मिलता, दुख होता है, लेकिन फिर भी आपने आपकी हाँ। हिम्मत से प्रेरणा जरूर मिलेगी और लोगों को भी। सरोज जी, मैं चाहूंगी कोई एक आपका पसंदीदा गाना आप हमें गा के सुनाए आज।
1: ठीक है दीदी
0: जी।
1: ओम शांति।

0: சாரி சூக்ஷம் வத்தனம யோகலகாவ சூக்ஷம் வத்தனம யோகலகாவ பரமதாம பிந்து பண ஜாவ பரமதாம பிந்து பண ஜாவ ஹே தரி ஹோ ஜா மன கி சாஹி தம யோகலகாவோ சார்.
1: ரேடியோ மதுபன் 107.8 FM சுன் ரஹே ஹே அஹம் காரியக்ரம் ஹே மதுபன் அன்பிளக்ட். ஔர் தோஸ்தோ ஏக் பஹத் சுந்தர் சா ஆப்னே கீத் சுனா சரோஜ் ஜி கி ஆவாஸ் மே. सरोज जी, ये गीत आपने लिखा है, आपने बनाया है?
2: हाँ दीदी,
1: है ना. क्या क्या गीत है ये, क्या आपने सोच के से बनाया, क्या मन में आया आपके?
2: ये दीदी मैं बस बैठे बैठे गुनगुना रही थी और मेरे को भगवान ने मेरे को टच किया तो ये शब्द निकले मेरे मुख से.
1: अच्छा.
2: तो ये गुनगुनाते गुनगुनाते ये गीत बन गया.
1: क्या बात है.
2: जैसे अंदर से संगीत तो निकलता ही, फिर शब्दों से संगीत बनता है.
1: सही बात है, शब्दों से संगीत,
2: शब्दों से संगीत बनता है.
1: भावना ईश्वर से,
2: ईश्वर के लिए, मतलब कुछ गाना चाहती थी तो वो शब्द निकले, उसका संगीत बन गया.
1: क्या बात है. अच्छा सरोची, जैसा आपको गाने से बहुत प्यार है, तो आप क्या घर में रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या सुनते हैं गाने?
2: दीदी मैं जो गाना गाती हूँ मतलब दिल से गाती हूँ, मुझे रियाज करने की, रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब देखती हूँ गा देती हूँ.
1: बचपन से भी आप ऐसे ही गाते थे?
2: हाँ बचपन से ही, जैसे माँ है ना दूध बिलोती थी ना, पहले गांव में दूध बिलोते बिलोते तो भजन गाते थे लोग, लोकगीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे. तो पहले आटा पीसती थी, मेरी माँ ऐसे करती थी तो उसके पास बैठ जाती थी छोटी सी.
1: अच्छा.
2: तो ऐसे ही बस मेरे को उसी से मतलब शुरुआत होगी. हाँ मनाया मेरे को, मैं गाने लगी बस.
1: अच्छा. तो आपकी माँ कोई गीत गाते थे, कोई याद है आपको बचपन में जो आप सुनते थे?
2: जी
1: याद है
2: जी.
1: तो क्या आप हमें सुनाएंगे कोई ऐसा गीत जो आपको याद हो?
2: जी दीदी
1: जरूर. हाँ जी,
2: मैं आपको एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ, सुनिए.

0: जाता।
1: क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है एक तो पहली बार ये गीत बहुत सुंदर है, माँ को डेडिकेटेड है। माँ का कर्ज सच में चुकाया नहीं जा सकता कभी,
0: जी दीदी,
1: कभी जब
0: कभी
1: चुकाया
0: नहीं
1: नहीं
0: चुका,
1: जा
0: कोई नहीं चुका
1: सकता,
0: सकता।
1: कोई नहीं चुका सकता। और आपने गाया बहुत अच्छा, ऐसा बुलंद आवाज है आपकी एकदम, और भावना से भरी आवाज है आपकी एकदम। ये गीत क्यों चुना आपने, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
0: दीदी मेरी माँ है ना,
1: हाँ
0: मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरी माँ ने कदे मतलब हाँ एक अंगुली लग नहीं लगाई आज तक हमारे को, जैसे धमका या कुछ। मतलब मेरी माँ इतनी शीतल है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहती।
1: हाँ
0: तो माँ से ऊपर मैंने ऐसा लगता है, मतलब भगवान क्या कहता है कि माँ की भक्ति करने से भगवान मिल जाते हैं, ठीक है ना। भगवान की भक्ति करने से माँ नहीं मिल सकती, ये चीज मेरे को अंदर बैठी है कभी से। देखो माँ की भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाते हैं, अगर माँ चली गई ना, जब कितनी भक्ति कर लिया किसी की, वो माँ वापिस नहीं आओगे।
1: माँ की सेवा।
0: माँ की सेवा,
1: आजकल हम देखते हैं सरोज जी, बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो कई बार उनके लिए ना समय निकालते हैं, बिजी हो जाते हैं जॉब में, परिवार में, दोस्तों में,
0: जी
1: अलग
0: दी
1: अलग चीज़ों में। और कई बार तो उनसे हमारा व्यवहार भी बदल जाता है,
0: जी दी
1: कई बार उनकी सेवा करना बोझ लगने लगता है, या लगता है हमने तो अपना कर्तव्य कह दिया, कर दिया। और कई बच्चे ऐसा भी कह देते हैं कि ऐसा आपने किया क्या है हमारे लिए।
0: दीदी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है। जो मेरा भाई है ना, उसको मेरी माँ तो ऐसे बोलती है कि मेरा बेटा एक मतलब अनमोल चीज है। जैसे माँ का अनमोल लिया ना शब्द, मेरी माँ भी उसको ऐसे बोलती है, मेरा बेटा एक अनमोल है। वो है ना जिस टाइम भी घर पा होगा ना, या
1: बंद हो गया। हाँ
0: मतलब वो बाहर जाता है, जैसे पहले तो सरपंच था तो उसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो किसी टाइम आओ, कितनी ही देर क्यों नहीं जाओ, लेकिन मेरी माँ को बोले बिना वो ऊपर नहीं जा सकता, वो सोएगा नहीं,
1: अच्छा
0: इतना वो सोए नहीं गा। लेखो देखो मैंने तो अपने घर में ऐसा ही देखा, मतलब मैंने एक माँ बेटे का प्यार ऐसा कहीं नहीं देखा जो मैंने अपने घर में देखा।
1: अपने घर में देखा आपने।
0: बहुत अच्छा
1: माँ की सेवा करने से क्या मिलता है?
0: दीदी, माँ की सेवा करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। उसके लिए शब्द नहीं है,
1: छप नहीं है।
0: शब्द नहीं है। वो तो एक सेवा करने वाला नो समझो, जो सेवा करेगा ना उसको फिर माँ की सेवा करने के बाद कुछ रहता ही नहीं इच्छा
1: इच्छा ही
0: कि
1: नहीं
0: और
1: रहती
0: किसी की
1: है।
0: सेवा करें। और वो मैंने अपने घर में खुद देखा
1: महसूस किया।
0: महसूस। हाँ मैंने अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है भाई, माँ की सेवा नहीं हो रही घर में। वो एक चीज बोलेगी ना

0: बोलिया होगा। और ऐसी ही भाभी घर में आ गई, मतलब घर सवर गए, बहुत प्यार करती हर, मतलब आने वाले से भी, कोई घर चला जाता है मेहमान आते हैं तो वो कभी ये नहीं देखती कि भाई तेरे को ये काम करना पड़ेगा, भाई ये इतने आए हैं, नहीं, भावना से, ऐसे भावना से भाभी बोर हो जाती है, ऐसी भाभी है।
1: कितनी लक की भी बात है कि ऐसे
0: हाँ,
1: परिवार
0: ऐसा
1: है
0: परिवार
1: ना,
0: नहीं मिलता, ऐसी भाभी नहीं मिलती।
1: ऐसी भाभी नहीं मिल रही।
0: मैं सुनती हूँ गाँव में, हमारे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाई भाभी जैसा कोई है ही नहीं,
1: अच्छा।
0: मतलब पूरा गांव में हमारी चाची ताई मेरी माँ को ये कहती है, तने एक जम्या, एक जण्या, मतलब जण्या हमारी भाषा में जण्या कहते हैं ना, एक जम्या, तो तने नु समझ ले दसा के बरोबर जान दिया ये,
1: अच्छा।
0: जो तेरी इतनी करता है।
1: 1:10 के बराबर है।
0: हाँ, 1:10 के बराबर है।
1: क्या बात है। सच में जो दुआएं माता पिता
0: हाँ
1: की बुजुर्गों की सेवा से मिलती है,
0: दीदी, हमारे घर
1: किसी
0: में
1: और
0: ना,
1: चीज से
0: मैं
1: नहीं मिल
0: आपको
1: सकती
0: एक छोटी
1: कभी।
0: सी बात बताऊं, हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी
1: अच्छा।
0: कदे, तो वो तो इस वजह से नहीं थी क्योंकि हमारे कोई चलाने वाला नहीं था, पापा को टाइम ही नहीं रहता था, तो उस साइकिल भी नहीं थी ना, तो बाबा मैं नुकू, मेरा भाई इतना बागवान है, इतनी बाग वाली वाली लक्ष्मी आई हमारे घर में, हमारा सब कुछ हो गया, सब कुछ, दो दो गाड़ी, तो पांच पांच मोटरसाइकिल, तो मत बोल तीन तीन ट्रैक्टर। मैं ये
1: कोई
0: बताऊं
1: कमी
0: कि
1: नहीं।
0: किस चीज की कमी ही नहीं रही। घर बहुत बढ़िया हमारा, बहुत टूटा फूटा सा घर था, मैं ऐसे बोलती थी हमारा घर पता नहीं कब बनेगा, आज भगवान ने उस भाई की वजह, भाभी की वजह, हमारा सब कुछ दे दिया, भगवान ने इज्जत भी दे दी। देखो गांव का एक राजा बनता है, जब भाई कोई सरपंच बनता है तो राजा ही बनता है, उसने कभी किसी की बददुआ नहीं ली,
1: मदद की ना उन्होंने
0: मदद की
1: सबके।
0: लोगों की, वो कभी नू नहीं देखता। अभी तेरे घर में देखो, मेरी थोड़ी आदत थी, बल्कि मैं थोड़ी कह देती थी तो सब कुछ नुए लुटा देगा, मैं थोड़ी अभी गुस्सा हो जाती हूँ उससे, लेकिन मेरे को है ना दिल से बहुत प्यार है अपने भाई से, मतलब मैं कब ना जान जिगर जो माँ दूध पिलाओ ना, लेकिन मैंने भी अपने भाई से इतना ही प्रेम है।
1: इतना ही प्यार है।
0: हाँ, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ दीदी।
1: आपका बड़ा भाई है कि छोटा?
0: मेरा छोटा भाई है,
1: कितना छोटा है
0: मेरे
1: आपसे?
0: से 5-6 साल छोटा उसका।
1: 5-6 साल
0: हाँ,
1: छोटे हैं। नहीं।
0: लेकिन भाई के वो बाप का भी फर्ज निभा रहा है, वो माँ का भी फर्ज निभाता है, ऐसा भाई संसार में देखो, मैं ये तो नहीं कहती होगा नहीं, होगा किसी का, लेकिन उस जैसा मैंने नहीं देखा,
1: देखा नहीं आपने?
0: क्योंकि मैंने कम से कम हमारे गांव की कम से कम 20 लड़कियों ने ऐसा कहा है कि तेरे भाई जैसा कोई नहीं है, औरों को भी करता है, और बहन भी कोई मिल जाओ उसको ये लगता कि मेरी बहन
1: मेरी बहन है,
0: है। अब जैसे मैं
1: इसलिए
0: आपको,
1: उन्होंने
0: हाँ
1: दुआएं भी बहुत
0: हाँ
1: कमाई
0: तो
1: ना।
0: मैं ऐसे आपको बोल दूं दीदी, हमारे घर चलो, तो कई बार सोचना पड़ता है ना कि अपने घर ले जाने के लिए वे आपको भाई अच्छे से बोलेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे को कोई डर नहीं, आप अकेले भी जाओगे ना, अरे भाई ये मतलब ये भी नहीं कहना पड़ता कि भाई मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे को ये पता है मेरे भाभी भाई बहुत प्यार देंगे, वो ये भी नहीं पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बस आए हैं
1: बस आए हैं,
0: भाई,
1: उतना ही
0: वो ये कहते
1: काफी
0: हैं
1: है।
0: कि हमारे ऊपर है ना जो मेहमान अपने घर आता है ना, वो एहसान करता है, आजकल किसी को आने जाने का टाइम नहीं है, जो हमारे घर आते हैं ना, और आते भी बहुत हैं, ऐसा कोई दिन
1: इतना
0: नहीं है,
1: प्यार मिलेगा तो कौन नहीं आना
0: ऐसा
1: चाहेगा।
0: कोई दिन नहीं है। देखो हमारे घर में ना जो छुट्टियां पड़ती थी ना, उस टाइम 22-24 बच्चे आते थे,
1: अच्छा।
0: तो देखो उनको खाना पीना बनाने में मजा भी आता था,
1: हाँ,
0: लेकिन जब ज्यादा हो जाता
1: कितना
0: था तो
1: सारा
0: थोड़ा
1: काम हो
0: सा,
1: जाता
0: हाँ
1: है।
0: बहुत, हम उसको ना मतलब भाभी कभी उसने ऐसे नाक नहीं चढ़ाया, अभी इतने बच्चे हैं, हमें
1: हाँ,
0: सारी बहनों के 11 बच्चे सब
1: सब आ
0: छुट्टी
1: जाते
0: में,
1: होंगे साथ
0: तो
1: में।
0: उसके बहन भाई सब
1: हाँ।
0: उसकी, मतलब इतना प्यार वहां मिलता था, मेरी माँ भी ऐसे थी, दोनों मतलब सास बहू बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी, आप देखो 24 बच्चे रखने, तो क्या
1: बहुत
0: आज के टाइम में तो दो
1: बहुत
0: बच्चे भी रखने मुश्किल है
1: बहुत काम होता है
0: ना,
1: उसमें।
0: और मेरे
1: लेकिन
0: बच्चे तो दोनों वहीं पढ़े, उन्हीं ने पाले हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, अब ये शादी हुई है ना, जब आया 3 महीने पहले,
1: अच्छा
0: बस मेरे बच्चे दोनों ने,
1: उनको भी कितना प्यार होगा अपने मामा मामी से
0: वो
1: और सबसे।
0: छोटा लड़का तो ऐसे बोलता था, मामा नू नहीं कह दे ना, आए सागरी आ जा सो जा, नुका मैंने नींद ही नहीं आती थी
1: अच्छा।
0: उसके बगैर, नींद ही नहीं आती थी दीदी,
1: हाँ,
0: उनका
1: इतना
0: खाना,
1: प्यार।
0: मतलब भाभी है ना, चार चार मैस दूध देती थी हमारे घर में, भाभी ने कभी ये ही नहीं कहा कि भाई क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं।
1: बड़ा दिल ना,
0: हाँ, बड़े दिल
1: बड़ा
0: वाले,
1: दिल,
0: फरोख दिल
1: क्या बात है। तो उन लोगों को भी गाने का शौक है
0: दीदी,
1: किसी को,
0: मतलब
1: या
0: बहन
1: आप गा गा के सुनाते हैं सबको?
0: वो सुनती है मेरे गाने,
1: सुनते
0: मेरी
1: हैं।
0: माँ को बहुत शौक है दीदी।
1: आपकी माँ कौन सा गाना सुनना पसंद करती है? कोई और गीत है ऐसा जो आपकी माँ को पसंद है, आपको भी पसंद है? कोई ऐसा गीत, कोई लोकगीत, कोई भजन जो हमारी
0: हाँ
1: श्रोताओं को
0: दीदी
1: आज आप
0: है, जो
1: सुनाए?
0: मेरे से सुनती है वो,
1: जरूर, फिर हम भी सुनना चाहेंगे आज वो।
0: ठीक दीदी मैं सुना रही हूँ। इसमें दीदी जैसे गीत के बोल है नहीं, ऐसे अपनी काया के ऊपर है सारे,
1: अच्छा
0: ठीक है,
1: जी।
0: ये माँ सुनना चाहती है बहुत खुश होके, मैं उसको सुनाती हूँ।

0: रचदी। ओमशन।
1: क्या बात क्या बात क्या बात, फिर से आपकी दमदार आवाज में बहुत ही कमाल का गीत आपने सुनाया सरोज जी, बहुत मजा आया। तो एक बार थोड़ा मैं श्रोताओं के लिए बताएंगे इस गाने का मतलब, थोड़ा आप समझाएंगे।
0: हाँ दीदी जी। जैसे मैं लौकिक में कैसे भी आप भी गाते भी हैं, अच्छे गाने भी बुरे भी, बुरे शब्द भी बोल देते हैं, जैसे भी लौकिक में जिस टाइम आप ज्ञान में नहीं होते तो वहां पर आप सारे ढाल की बात कर लेते हैं भाई, अच्छी बुरी। लेकिन भगवान तो ये कह रहा है ना भाई, तुम अपना वेस्ट ना करो इसमें, भाई भगवान की बातें करो, भगवान के भजन करो। तो इसलिए इसमें ये कह रही है कि मैं वधि करण तक बचगी, मैंने कोई बुरा कर्म करण तक बचगी मैं।
1: अच्छा।
0: वधि है ना ये बुरा अच्छा। कर्म करण तक बचगी, या ऐसी माया कोई भगवान ने रच दी जो मैं भगवान का सिमरण करने लगी।
1: क्या बात, तो ये आपकी माता जी को बहुत पसंद है।
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा,
0: मेरी माँ सुनती है बार बार।
1: अच्छा क्या बात है, और सच में बहुत गहरी भी बात है।
0: हाँ, हाँ,
1: कि वो समय हाँ, कहते हैं ना जो हाँ, समय की कीमत नहीं समझता फिर हाँ, समय हाँ, उसकी कीमत भी
0: दीदी फिर ये जैसे अपन पता नहीं है ना, इबे दुनिया में भी पता नहीं है कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, तो उसमें यही तो कहते हैं ना वो परम धाम से जो ज्योति उतरी ना, लेकिन उसका किसी ने पता नहीं चल रहा, लौकिक में किसी ने पता नहीं चल रहा, लेकिन प्यासे बहुत हैं।

0: कैसे इस्तेमाल करना, आपकी दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा अपने बारे में बताएं।
1: दीदी जैसे मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ।
0: अच्छा।
1: हाँ, 3 बजे उठ कर ही घंटा योग करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और भगवान से शक्ति लेती हूँ। तो ऐसे ही भी भगवान मुझे शक्ति दो, जैसे भी फिर जो मैं सुबह सुबह उठकर ना अपने पृथ्वी को भी, क्योंकि जो हम धरती माँ को ऊपर पैर रखते हैं उसको भी पहले चुचकारा जाता है, हे धरती माँ देखो मैं तेरे ऊपर इतना वजन डाल रही हूँ, ऐसे सब कुछ दे रही है धरती माँ, अपने खाने को भी दे रही है, चलने को भी दे रही है, पीने को भी दे रही है, प्रकृति पांचों तत्व प्रकृति के, तो उनको भी सकाश देती हूँ।
0: ओके, सकाश माना क्या?
1: सकाश माना मतलब उनसे जैसे हम अपने बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ उनसे प्यार से बातें करते हैं, हे धरती माँ आपने मेरे को इतना कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, उसका शुक्रिया करते हैं,
0: शुक्रिया
1: है ना। जैसे जल है, हे जल देवता आपने मुझे मेरी प्यास बुझाई, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, है ना। ऐसे वायु, जैसे हवा चल रही है, हवा नहीं चलेगी तो आप देखो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो जैसे हवा है, हे वायु देव मैं तेरा शुक्रिया करती हूँ, है ना। तो ऐसे अग्निदेव जैसे खाना बनाते हैं तो उसको अग्निदेव को भी पहले नमस्कार करो, अग्निदेव को
0: शुक्रिया करो,
1: शुक्रिया शुक्रिया करो, हे अग्निदेव जैसे आप देखो मेरे को खाना पकवा रहे हो तो आप का मैं शुक्रिया करती हूँ अग्नि का। सूर्य देव है, हे सूर्य देव जैसे सुबह सूर्य देव निकलते हैं तो उनको शुक्रिया करते हैं, हे सूर्य देव देखो कहीं भी आप है ना, तो जो रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी जा सकता है ना वहां पर वैसे नहीं जा सकती, तो सूर्य की रोशनी जहां जा भी भगवान को ये पता है कि भी वहां वहां उसको जरूरत है, तो उससे उसका शुक्रिया करते हैं,
0: शुक्रिया करते हैं आप,
1: है ना।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो। शुक्रिया करना कितना जरूरी है तत्वों का,
1: क्योंकि
0: जो हमें
1: वायुमंडल है ना,
0: प्रकृति
1: उससे वायुमंडल
0: का
1: अच्छा होता है, जब
0: जीवन
1: हम इन
0: देते
1: चीजों
0: हैं।
1: का शुक्रिया करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना, तो उसमें फिर भगवान का सिमरण रहता है, अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा लगेगा, जिस
0: खुशी
1: दिन
0: रहती है,
1: खुशी रहती है मन में, जिस दिन आप ये नहीं करेंगे ना उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खोया खोया सा,
0: कुछ खाली है।
1: हाँ जो खाली है आज कुछ, कई बार हो जाता है दीदी, कई बार है ना, जैसे कोई कुछ बात हो जाए तो उसमें भूल भी जाते हैं एक आधी बार, तो जिस दिन भूल गए ना तो फिर उस दिन सारा दिन मतलब खाली खाली
0: खाली
1: खाली
0: खाली
1: लगेगा,
0: लगता
1: हाँ
0: रहता है,
1: वो अच्छा नहीं लगेगा उस
0: अच्छा नहीं
1: दिन।
0: लगता। अच्छा, कभी कोई ऐसा गीत है आपके पास रुचि, जो आपको लगता है कि मन अच्छा ना भी हो लेकिन वो गा के या सुन के बहुत अच्छा लगने लगता है,
1: हाँ दीदी
0: कोई ऐसा है?
1: जैसे दीदी मतलब कभी बार है ना, कभी अपने पास ना कठिनाई आ जाती है और उसमें फिर आप उस सब चीज को बोल के अरे उसमें अपने मगन हो जाते हैं, मैं आपको वो गीत सुना,
0: जरूर जरूर, मैं सुनना चाहती हूँ ऐसा गीत।

पहुंच गई है मनवाज सुने मुरली की, ए साबण छोड़ी सोटी छोड़ी ए साड़ी छोड़ी तन की, ऐसी लगी है।

0: दीदी जब मैं मतलब कभी परेशान हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ किसी चीज से, मतलब कोई भी घर की हलचल से, तो मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं ये गीत दिल से गाती हूँ।
1: दिल से गाते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है गाने के बाद?
0: मेरे को गाने के बाद एहसास ही नहीं होता उस दुख का।
1: अच्छा,
0: ऐसा हो जाती हूँ मैं फ्री होगी, फ्री माइंड।
1: क्या बात है, मतलब ईश्वर की शक्ति और संगीत की शक्ति साथ में आ गई ना जैसे। और वैसे संगीत को साधना कहा भी जाता है।
0: संगीत साधना भी है और संगीत से जो बोल निकलते हैं ना, वो भगवान के मन के तार मन से जुड़ जाते हैं, है ना। उसके तार जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। जब तक तार नहीं जुड़ेगा ना भगवान के साथ, जब तक संगीत का कोई मतलब नहीं, उसका रोम रोम उसमें
1: समा जाए।
0: गाना भी एक सागर है, इसमें कितना ही डूबता चले जाओ, सागर गहराई में चले जाओ, उसका पार ही नहीं मिलेगा। ऐसा संगीत एक ऐसी दुनिया,
1: ऐसी दुनिया है। तो आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं गाना गाओ तुम भी?
0: हाँ दीदी, मेरा बच्चा, बड़ा बच्चा गाता है, बड़ा लड़का बहुत अच्छा गाता है।
1: अच्छा,
0: एक बार की बात है, अभी किसी ने उसको बोला, भाई आधा घंटा मैं और तेरे को एक गाना बना के देना है, मतलब शिवरात्रि पे कावड़ लेने जा रहे थे ना, किसी ने बोला भाई गणे नहीं तो चार लाइन तो दे ही दे, कोई आधा घंटा में। तो उसने आधा घंटा बोला था ना, उसने 10 मिनट में ही पूरी 4 लाइन दे दी उसको।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसकी मुझे याद नहीं है क्या।
1: हाँ कोई बात नहीं, लेकिन देखिए कमाल है आपकी। जो संगीत से आपकी विरासत आपको मिली, वो आपने भी आगे फॉरवर्ड की, उनको एंकरेज किया,
0: उसको भी दीदी है ना। जैसे वो है ना, यहाँ पे हमारा पांडु भंडारा धाम है, वहाँ पे मेरा भाई है ना आश्रम है उसका, उसको सब जानते भी, चंद्रानंद जी महाराज की, मतलब वहाँ पर धर्मशाला है। पहले हमारा भाई बड़ा था सूर्यानंद, और वो जो दूसरा भाई है ना, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास। तो उस भाई के पास मैंने छोड़ दिया था बड़े लड़के को,
1: अच्छा,
0: भाई शास्त्री पढ़ने के लिए। तो जो भाई है ना, ये पसंद नहीं करता फिर, मतलब पढ़ताई करने, तो ये उसको वापिस ले आता था, मैं छोड़ के आती थी वापिस ले आता था। तो उसको श्लोक सारे कंठ हो गए थे, बहुत अच्छे श्लोक बोलता था। तो उसके बाद फिर जैसे उसको है ना गाना गा रहा था वो उस भाई के ऊपर, मतलब मेरे भाई का नाम चंद्रानंद है ना, तो उस पे ये गाना बोल रहा था, मैं तो चंद्रानंद का प्यारा मुझे कौन मार दे, जैसे आप शिव बाबा का बोलते हैं। तो उसमें उसने बहुत अच्छा गाना बनाया था। तो किसी ने देख लिया, कोई मतलब सेठ था बाहर से आ रहा था, और उसको कोई होगा ये चीज, उसकी चैनल चलता हो या भाई पता नहीं, वो वैसे उन्हें गोद में उठा लिया था उसको।
1: अच्छा,
0: तो कह रहा था इसको मैं है ना भाई, इसको संगीत में लेकर जाऊंगा।
1: अच्छा,
0: तो फिर दीदी पता नहीं माँ बच्चों की कोई कैसी किस्मत हमारी, बहुत लायक है, बहुत लायक हर चीज में दीदी। खाना बनवा लो उस पर कैसा ही, भगवान की याद में खाना बनाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर नहीं खाती ना, तो उन्हें भी सब कुछ हो गया, मतलब माँ बच्चे ने इतना समझ है उसको कि मेरी माँ है,
1: समझ है, भावना,
0: हाँ भावना की समझ है उसको। अब जैसे मैं गाती हूँ तो मेरी पोती शुरू होगी अब।
1: अच्छा, अरे वाह, कितनी बड़ी है वो
0: पोती, 5वें साल में लग गई है।
1: हाँ, बहुत छोटी सी है अभी।
0: तो वह पूरा श्लोक बोला है कि गायत्री मंत्र, इसका एक श्लोक उसने आता है, जैसे तीन होते हैं ना उसमें एक आता है,
1: कितने अच्छे संस्कार कृष्णाय
0: वासुदेवाय, बल्कि मेरे को नहीं आता ये, वो उसको आता है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे संस्कार बच्चों को
0: जो अब ये,
1: तो बच्चों का कितना अच्छा पालन पोषण होता है। वैसे तो हमारा वक्त हो चला है इजाजत लेने का, सरोज जी बहुत सारी बातें आपसे की, भावनात्मक भी, ईश्वर की भी, और साथ साथ हमने बहुत सुंदर गाने भी सुने। जाते जाते क्या कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? कोई भी चंद लाइनें, कोई गीत जो आपको बहुत पसंदीदा हो।
0: शिव

0: चुनरी।
1: जाते जाते बहुत ही सुंदर मधुर संगीत के साथ तो आप हमें छोड़ के जा ही रहे हैं सरोज जी, लेकिन हमारी श्रोताओं से भी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: जी दीदी, मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी भाई, जैसे संगीत है ना, उसको ये ना समझो कि ये गाना है। संगीत को गहराई से लो, क्योंकि संगीत में सब कुछ बसा हुआ। संगीत में जैसे मेरा संसार बसता ना, जो कोई संगीत के मतलब गहराई से करेगा ना, तो उसको बहुत मजा आएगा, उसकी सब टेंशन भी दूर हो जाएगी,
1: आनंद आएगा जी,
0: आनंद आएगा जीवन में, आनंद ही आनंद होगा। संगीत एक ऐसी चीज है,
1: इसलिए संगीत है तो पकड़ के रखें,
0: पकड़ के रखो उसको। अगर किसी को आता है ना, हिम्मत करो,
1: हिम्मत करो
0: गाने की, हिम्मत करो। कई बार है ना, आता बहुत कुछ है किसी को, बहुत ऐसी ऐसी माताएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन वे बेचारी हिम्मत नहीं कर पाती, उनके अंदर जज्बा नहीं है। तो अपने अंदर के जज्बे को जगाओ,
1: जगाओ,
0: जगाओ। संगीत कोई माड़ी चीज नहीं है, उसको दिल खोल के गाओ,
1: दिल खोल के,
0: दिल खोल के। ये सोचो ना, तेरे पास कोई खड़ा है, कोई
1: कैसा सुन रहा होगा, क्या लग रहा होगा,
0: क्या सुन रहा, कुछ नहीं,
1: कुछ
0: बस दिल से,
1: बस दिल से गाओ,
0: जो निकले वो दिल से गाओ।
1: क्या बात, संगीत दिल है, रूह
0: हाँ,
1: है,
0: दिल है,
1: तो आप उसको दिल से ही गाएं, जहाँ दिमाग आता है हाँ, फिर वो दिल पीछे हो जाता है ना। बहुत सुंदर बात आपने कही, संगीत
0: इसमें दिमाग लगाओ ही ना,
1: लगाओ
0: ही। संगीत के पीछे पागल हो जाओ, हाँ, कहते हैं ना पागल होना भी एक अलग अलग तरह की कला है। अब जैसे मैं संगीत के पीछे पागल हूँ, है ना, इसी चीज के लिए पीछे पागल हो जाओ, जो कोई अपने आगे बढ़ने का काम करे। संगीत को देखो, संगीत के कारण तो लता मंगेशकर हुई, है ना,
1: बिल्कुल,
0: कितने
1: लेजेंड्स हुए, और वो तो स्वर कोकिला भारत की,
0: हाँ कोकिला,
1: बिल्कुल,
0: देखो उसका स्वर कितना अच्छा था, गायक तो थी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन अपने बड़ों को देखो, है ना, अनुराधा, अनुराधा, मैं उसके गाने सुनती थी, तो मुझे उसी से मतलब इम्प्रेस हुई मैं,
1: हाँ,
0: कि भाई अच्छा संगीत,
1: अच्छा संगीत,
0: हाँ
1: अच्छा संगीत सुनिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, और जैसा कि सरोज जी ने कहा, अगर संगीत है तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए संगीत को मौका जरूर दीजिए और संगीत में समा जाइए।
0: खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी
1: है, खाने के साथ साथ संगीत भी बहुत जरूरी है। दोस्तों फिलहाल तो वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन अगर आप ये हिम्मत करते, एक कदम आप बढ़ाने को तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। आप अगर संगीत के साथी हैं तो आप जरूर इस सफर पर हमारे साथ चलिए, यानी मधुबन अनप्लग्ड से जुड़िए, रेडियो मधुबन से जुड़िए, और हमें मैसेज कर दीजिए हमारे नंबर पर, जो कि है 94 14 15 14 15, यानी कि 9414151415। हम भी चाहेंगे कि आपकी आवाज जरूर गुनगुनाए, जरूर गूंजे रेडियो मधुबन पर, क्योंकि ये आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। फिलहाल देते हैं इजाजत, मुलाकात होगी अगले रविवार को रात 8 बजे। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

ओम शांति, मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सोच के समझ के अपने हर कदम को आगे बढ़ाता है, वो न केवल सफल होता है लेकिन कईयों को सफलता का मार्ग दिखा सकता है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक हृदय स्पर्शी व्यक्ति का हर कर्म, हर कर्तव्य लोगों के दिल को छूता है, लोगों को मार्ग दिखाता है और कईयों को आने वाले समय तक प्रेरित करता रहता है कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ उम्दा करने के लिए। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत, और मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ डॉक्टर शरद काले जी के साथ। डॉक्टर शरद काले जी को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया उनके कई विशेष वैज्ञानिक योगदानों की वजह से। उनमें से एक विशेष योगदान है निसर्ग किरण, जिसमें बायोगैस के द्वारा किस प्रकार से ईंधन की उत्पत्ति होती है, फ्यूल गैस जो कि हमारे काम में आता है, बट साथ ही उसी बायोगैस के द्वारा विद्युत की उत्पत्ति, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये भी करामात करके दिखाया है काले जी ने। आइए बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं डॉक्टर शरद काले जी के साथ। डॉक्टर शरद काले जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में दोबारा स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप जो कहानी पहले आपके माता जी के सुना रहे थे, जहां पर वो उन्होंने अलक्ष्मी और लक्ष्मी का जिक्र किया था, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों में ज्ञान नहीं होने की वजह से वो ज्यादा गलतियां करते हैं।
1: सही
0: जो
1: बात।
0: अवेयरनेस फैक्टर है, वो अवेयरनेस फैक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हम जो श्रोता सुन रहे हैं, जो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई स्कूल में टीचर होगा, अलग अलग प्रोफेशन में जिनका प्रोफेशन अनुसंधान भी नहीं है और अवेयरनेस लाना उनको पता भी नहीं है, खुद भी अवेयर नहीं होंगे, तो पहले वो जागृति कैसे लाए, वो अवेयरनेस कैसे लाए और फिर उस अवेयरनेस को आगे कैसे बढ़ाए?
1: बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है मेरे पास। ये तीन प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस विश्व के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए। एक होती है शिक्षक प्रवृत्ति, एक होती है किसान प्रवृत्ति और एक होती है अनुसंधान प्रवृत्ति। और ये तीनों जिसे क्रिएटिव कहते हैं, सृजनशील कहते हैं, ये तीनों प्रवृत्ति, और हर आदमी ने ये तीनों प्रवृत्ति खुद में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इतनी अच्छी तरह से इंटरव्यू ले रहे हो, मधुबन रेडियो चला रहे हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप रोज नए लोगों को बुलाएं। आप बुलाते भी होंगे, नॉट दैट यू आर नॉट डूइंग, बट मैं ये चाहूंगा कि आप नए लोगों को बुलाएं, उनके जो नए सृजनशील आइडियाज हैं उनको लोगों से के साथ शेयर करें। अगर जिसको वो लेने जैसे लगेगा वो ले लेगा, क्योंकि ये तो महासागर है। जैसे मैंने कहा लोगों को, गूगल मिला मतलब ये मत समझो कि तुम्हारे पास सारा ज्ञान आ गया, क्योंकि गूगल तो वैसे वो विश्व बुक्स की किताब स्वरूप में महासागर तो था ही, तो ये महासागर अभी गूगल में आ गया, छोटा कर दिया उसे, लेकिन जब तक आप उसे समझते नहीं तब तक कोई मायना नहीं उसका। क्योंकि गूगल पे तो सारा डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन आप अगर वो डेफिनेशन पढ़े बिना कुछ आप कहेंगे कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्न पूरा पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन वो बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग फूड, देन अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, अगर नहीं होता है तो फिर उसका फायदा नहीं। तो आप ये प्रवृत्ति सिर्फ पहले मन में लाइए कि मुझे जो मालूम है वो मैं किसी हद तक किसी को पढ़ा सकता हूँ क्या। अगर अच्छी तरह से आप पढ़ा सकते हो, ये सोसाइटी में काफी आगे जाने की ताकत पैदा होगी। क्योंकि हम ये नहीं करते, हम सिखाने की कोशिश करते, सीखने की कोशिश नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। तो सीखने की कोशिश करना कि टू बी ए स्टूडेंट एंड टू बी ए टीचर, सेकंड इज टू बी ए रिसर्चर। लाइक योर प्रोबेबली द सबसे उपेक्षित हमारा देश का वैज्ञानिक है हमारी माता रोहिणी, इतने अच्छे पदार्थ करके देती है। कभी कहते हो कि अच्छा बना है आज, अगर बोलेगी तो वो बोलेगी क्या इतने दिन खराब होता था क्या, उसको भी आदत नहीं है अपनी सोच सुनने की। ऐसी
0: जी
1: स्थिति हमने लाके पैदा की है। तो किसान हमारा एक अच्छा उपेक्षित साइंटिस्ट रहा है, इतने अच्छे मेहनत करके अनेक क्रॉप्स बनाए उसने। तो इनके तो ये जो सृजनशील प्रवृत्ति खुद में कैसे आए, इसके लिए अगेन पढ़ना, ये सबसे शुरू में। इसलिए मुझे, मैं हमेशा अभी जिस स्कूल में जाता हूँ रोज, तो वहां वो एक उनको मैं अपनी किताब, उनको बोलता हूँ कि रोज आपको किताब पढ़ना ही है, और जब तक आप किताब नहीं पढ़ते और मोबाइल दूर नहीं रखते, कम से कम आज अभी आपको इतनी आदत हो गई है कि मोबाइल अगर सुबह हाथ नहीं लगा तो वो परेशान हो जाता है आदमी,
0: उसे पसंद कहाँ गया, कहाँ गया फोन।
1: ये जब ये कम हो जाएगा ना, आपको एक एहसास होने लगेगा कि मेरे में प्रतिभा जाग रही है, तो ये डिपेंड निकाल दो आप, ये होना जरूरी है। मैं मेरे भी मोबाइल रखता हूँ इसलिए आपको कॉन्टेक्ट कर सके, अगर मोबाइल नहीं रखता तो कॉन्टेक्ट नहीं होता था, तो कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, लेकिन उसका मतलब उतना ही है, पढ़ाना नहीं है मोबाइल। हम मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं, नहीं गलत कहते हो, आप कभी मोबाइल पे पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मोबाइल ऑन करते हो तो एडवर्टाइज आती है, आपका ध्यान एकलव्य था, वो द्रोणाचार्य से सीखा कैसे, पुतला बनाया था वो, और पुतला बना एक के पीछे एक, दिन भर बाण छोड़ता तीर छोड़ता रहा, तभी वो अच्छा धनुर्धर बना था। उतनी ये लक्ष्य में
0: साधन का इस्तेमाल करना है साधन के जैसे, लेकिन साधन को साधना से बड़ा नहीं बनाना है,
1: नहीं बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और खुद की को तरक्की होनी चाहिए, ये तरक्की मैं अभी भी बच्चों को कहता हूँ, टेबल आपको आने चाहिए, आपको कविताएं बाय हार्ट आनी चाहिए, ये पाठांतर नहीं है, ये आपका समझने का तरीका होता है। आज मैं आपको मेरे स्कूल में पढ़ी हुई 300-350 कविताएं बिल्कुल बिना रोके मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वो शिक्षकों ने उसमें जान डाली थी। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मुझे याद है जैसे कि तैसे, क्योंकि वो जान डाली थी सर, क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, एक एक शब्द, और यही मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप नहीं समझ रहे हो कि आपने क्या मिस कर रहे हो, क्यों आप सुमित्रा नंदन पंत जी का, आप गुलशन नंदा का, आप महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं पढ़ोगे तो आपने क्या पढ़ा, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। कितनी हिंदी कविता, हिंदी साहित्य कितना बड़ा है, इंग्लिश लिटरेचर वर्ड्सवर्थ की कविता है, डैफोडिल जी से नहीं आता है, मतलब मेरे हिसाब से वो बड़ा रईस होके भी बहुत पोर आदमी है, गरीब आदमी है, बस मन की श्रीमंती होनी चाहिए, रईस की होनी चाहिए।
0: तो ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि मन की श्रीमंती होनी चाहिए, रईसी मन का होना चाहिए, मन में साहूकारी अगर है तो फिर चाहे आप साधारण जीवन भी जीते हैं लेकिन आपको एक रिच एक्सपीरियंस एवरी डे होता रहेगा, एक आपको बहुमूल्य अनुभव रोज गिफ्ट में मिलेगा। एक सवाल मन में उठता है, जब आप निसर्गग्रहण की जर्नी को शुरुआत किया, मतलब जब आपने शुरुआत किया एक्सपेरिमेंट करना और जब निसर्गग्रहण सामने आया, तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निसर्गग्रहण जो है डॉक्टर शरद काले जी का एक ऐसा अनुसंधान है जिसके माध्यम से बायोगैस प्लांट और जिसके तहत जो गीला कचरा होता है उसको वो न केवल ईंधन में परिवर्तन करते हैं लेकिन ईंधन के साथ साथ उसका जो मैन्योर है खाद में भी परिवर्तन होता है। तो एक निसर्गग्रहण के तहत वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, एक तो कचड़े को ईंधन में और ईंधन से आगे उसको खाद में परिवर्तित कर रहे हैं, और ये जो अनुसंधान है आज भारत देश में कई जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है जिसका श्रेय डॉक्टर शरद काले जी को जाता है। तो डॉक्टर शरद काले जी, ये जो निसर्गग्रहण जब आप इसका अनुसंधान कर रहे थे तो इसको करते समय आपके सामने कुछ परीक्षाएं आई और इसको एस्टैब्लिश करने में भी कुछ परीक्षाएं आई, उन परीक्षाओं को तो आपने पार किया ही तब आज हमारे सामने निसर्गग्रहण है, उसको पार करते समय आपने कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया, कौन सी वो शक्तियां थी या कौन से वो वैल्यूज थे जिनका आपने इस्तेमाल करके इन परीक्षाओं को पार किया?
1: जैसे मैंने कहा कि मेरे माता जी का एक बहुत अच्छा बहुत अच्छी नसीहत मुझे याद है, मेरे माता जी ने, उनका जो दूध के दही बनाने का कल्चर है 50 साल से ज्यादा संभाल के रखा है, और वो मेरे पास आज भी 50 साल मैंने रखा है, तो 100 साल का मेरा कल्चर है, तो माइक्रोबियल कल्चर में कितनी ताकत होती है ये तो मुझे पता था, तो यही माइक्रोबियल कल्चर मैंने इस्तेमाल किया निसर्गग्रहण में। तो दिक्कतें कब आई कि वो जो दिक्कतें आई, वो कचरा अलग नहीं रखते थे, कचरा एक उसमें, और भारत में बहुत कुछ समस्याएं गंभीर है जैसे गुटखा खाने की, और छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसके। मैं कभी वो एक दिन का पंतप्रधान बना तो ये गुटखा मैं बंद करूँ, ये गुटखा बहुत तकलीफ देने वाली बात है, शरीर को भी तकलीफ देती है और पर्यावरण को भी बहुत तकलीफ देती है, ये जैसे पैकेट पैकेट निकालेंगे, इतने भारे छोटे छोटे टुकड़े, ये मैंने कहा दूध की थैली के टुकड़े, तो वेफर्स की थैली के टुकड़े, वो कैसे निकलते, और वो जब जाते हैं तब उसमें वो फाइनली वो बायोलॉजिकल डाइजेस्टर है, उसमें प्लास्टिक जाएगा। अगर शरीर में मुझे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, कोविड का इन्फेक्शन भी हुआ, तो मेरा शरीर लड़ सकता है, प्लास्टिक से नहीं लड़ सकता, प्लास्टिक बंद कर देता है, मेरा फ्लो बंद कर देता है और हार्ट अटैक आता है। तो ये जो समस्या वहाँ भी होती है मेरे बायोडाइजेस्टर में, प्लास्टिक जब जाता है तब बायोगैस प्लांट बंद हो जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि अरे इसका टेक्निक तो चलता नहीं है, टेक्निक नहीं है, टेक्निक में गलती नहीं है, गलती आपके वो सेग्रेगेट नहीं,
0: रॉ मटेरियल है, जो आपने रॉ मटेरियल पहले डाला उसमें
1: गलती। एक कोई कंपनी फ्रूट जूस बनाती है तो उसके फ्रूट्स तो सारे अच्छे आते हैं, वैसा हमारा रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आता ना, सारा मिक्स आता है, और जितने प्लास्टिक उसमें आएगा, और ये जो काम करने वाले लोग ये भी दूध के थैली को स्मेल आएगी तो आप 24 घंटे घर में नहीं रख सकते उसको, सारे गांव की थैलियां इकट्ठा आ रही है एंड यू एक्सपेक्ट दैट दैट पर्सन विल डू ऑल द सेग्रीगेशन एंड देन प्रोसेस द वेस्ट। इतनी अमानवीय अपेक्षा हम कर रहे हैं क्योंकि हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम उसे अलग रखे घर में और फिर वो गीले कचरे में ना जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये अवेयरनेस पैदा करने में जो सवाल आपको आपने मुझे कहा काकोड़कर साहब ने किया था, ये अवेयरनेस का काम कितना चलेगा, मैंने कहा सर दो जनरेशन लगेंगे, अभी एक तो खत्म हो रही है मेरी, अभी और एक जनरेशन, अगर ऊपर जाके कहूंगा भाई और एक जनरेशन देता है तो दे दो, नहीं तो आगे किसी के हाथ में बैटन बैटन देना है और उसे चलाना ही है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। बहुत आसानी से लोग कहते हैं नहीं नहीं सर सुनने में तो बातें अच्छी लगती, लेकिन घर जाके वो प्लास्टिक की थैली कोना काटते समय आप में से कितने लोग जो सुन रहे हैं कितना कोना काटेंगे, देखिए बिना काट के भी हम खोल सकते हैं, इसे सिर्फ एक छेद लेना है और फिर पूरा ओपन करना है तो कोना कटेगा नहीं, और फिर वॉश करके रखना है, इतना ही काम करना है, उसमें ना तो समय लगने वाला ना कोई पैसे लगने वाले, लेकिन
0: अगर अगर ध्यान से और अगर दिल से अगर हम उस चीज को करते तो मैं समझता हूँ 5 सेकंड अधिक ही काम होगा उसमें, उससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला।
1: और जो मैंने खाद बनाने की रीत भी बताई 10 मिनट लगते हैं एक मिक्सर लग, बस उससे ज्यादा नहीं लग, और घर में 10 मिनट तो आप आसानी से निकाल सकते।
0: ये इस विषय पे मुझे ये चीज जानना था, जैसे मान लीजिए मैं एक श्रोता हूँ रेडियो मधुबन का जो आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में डॉक्टर शरद काले जी से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे घर में कचड़े को अलग करूंगा और खुद का जो गीला कचड़ा है जो बायो वेस्ट है उसको मैं खुद ही डिकम्पोज करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ से मैं शुरुआत करूँ और कैसे उस चीज को अंजाम तक?
1: बहुत सिंपल चीज है, आप एक बकेट ले लीजिए, आपके घर में 3-4 लोग है तो एक 15 लीटर की आप बकेट लीजिए, प्लास्टिक की बकेट लीजिए या कोई जो पुराना डब्बा है कलर का वगैरह वो डब्बा ले लीजिए,
0: एशियन पेंट्स का डब्बा होता है बड़ा सा, एशियन पेंट का डब्बा
1: जी जी डब्बे आते हैं, तो ऐसे तेल के कभी 5 लीटर के डब्बे आते हैं वो भी चलेगा, वो डब्बा लीजिए 10 लीटर का लीजिए, थोड़ा बड़ा लीजिए या दो रखिए तो आसान आएगा, और उसे नीचे छेद डालिए, एक 0.5 मिलीमीटर के ड्रिल्स बना दीजिए, एक 20-25 फुट बना दीजिए, उसके ऊपर नारियल की छिलके बिछा दीजिए और उसके ऊपर एक जाली मिलती है स्टेनलेस स्टील की, उस हिसाब से काट के वो जाली उसमें लगा दीजिए ताकि अगले ऑपरेशन में वो नीचे की छिलके डिस्टर्ब ना हो। इतना ये इसको कोई पैसा नहीं लगने वाला, पुरानी बकेट ली आपने, ये सिर्फ जाली खरीदनी है, शायद घर में वो जाली भी मिल जाती है, नहीं तो जाली खरीद के लाए उतना, बस उतना ही खर्चा है, और नारियल के छिलके, वो तो आपके नारियल से निकलते छिलके डाल दीजिए, तो क्या हो गया आपका रेडीमेड बकेट तैयार हो गया, जो निसर्ग लक्ष्मी बकेट तैयार हो।
0: तो बकेट बकेट में सबसे पहले नीचे में छेद और छेद के ऊपर जाली, जाली के ऊपर फिर नारियल के छिलके, या नारियल के छिलके उसके ऊपर जाली,
1: जाली बस, नीचे जाली नहीं होगी, छिलके में तो भी चलेगा, जाली से ऊपर, उसके ऊपर जो बाजार में सेंद्रीय खाद मिलता है वो बहुत सारे नर्सरी बेचते हैं, तो सीव्ड किया हुआ चाहिए, अच्छा बारीक चाहिए, तो 2 किलो के आसपास वो खरीद के ले आए, बस एक ही बार खरीदना पड़ेगा, कभी कभी 150 रुपए किलो भी बेचते हैं, कभी 30 रुपए किलो भी बेचते हैं, उतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, तो 2 किलो सेंद्रीय खाद लेके आइए और वो खाद इसके ऊपर डाल दीजिए। उसके ऊपर घर में जो चास बनाया है, घर में जो दही लगा के, बाजार से दही ला के नहीं, घर में दही लगा के चास बनाया, वो चास एक 200 ml चास उसके ऊपर छिड़क दीजिए और थोड़ा सा पानी, जैसे गार्डन वेट सॉइल जितनी वेट होती है उतना पानी, तो वो बना के 2 दिन छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप जो भी आपके केले के छिलके, आजकल आम चल रहा है आम के छिलके, कलिंग वाटरमेलन चल रहा है, खरबूजा चल रहा है, सब्जी के बैंगन है उसका पीछे वाला पार्ट काट देते हैं, कोरिएंडर है उसके डंडी काट देते हैं, पालक की डंडी काट देते हैं, वो सारी डंडी डंडी वगैरह लेके एक कटिंग बोर्ड पे लेके उसे पहले बारीक टुकड़े टुकड़े कर दो, और एक मिक्सर का एक पॉट, ड्राई पॉट मतलब पानी नहीं डालने वाला, चटनी वाला, वो ड्राई पॉट एक अलग रखिए कि ताकि आपकी बीवी में झगड़ा ना हो जाए कि हम ये देंगे। एक पॉट तो एक खरीद सकते हो, तो एक पॉट ले लीजिए, वो पॉट में ये सारी मिक्स जो पेस्ट बना हुआ है वो डाल दीजिए, और 2 किलो ऑर्गेनिक मैन्योर सेव किया हुआ डाल दीजिए, फिर बटर मिक्स छिड़के, फिर मॉइस्चर करिए, फिर आपने जो भी मटेरियल रखा है उसमें केले के छिलके, आम के छिलके, सब्जी के पार्ट्स, उसे बारीक बारीक टुकड़े करके कटिंग बोर्ड पे एक पॉट उसको मिक्सर का अलग रखिए, और मिक्सर में चटनी बना दीजिए। डोंट ऐड वाटर, एक्सटर्नल वाटर, उतना जो उसके पानी होगा उतना रहने दो, और वो जो एक बार वो चटनी हो गई ना, वो पूरी चटनी दिन की लेने की, और वो इसमें घोल देने की, हाथ से, दोनों हाथ से घोल देने की। पहले आपको गंदा लगेगा, तो हाथ में चाहिए तो सॉक्स पहनिए, जो ग्लोव्स डालते हैं, लेकिन मैं तो कभी मेरी जिंदगी में ग्लोव नहीं, हाथ से ही करता हूँ, क्योंकि मेरे ही घर का, मैंने ही खाया हुआ केले का छिलका है, तो उसमें गंदगी क्या है, तो मैं उसे, लेकिन वो ऐसे दोनों हाथ रब करके, दोनों हाथ ऐसा रब करके, मतलब वो मटेरियल लेने का और वो खाद में ऐसा मिक्स कर देने का, तो पूरा घोल घोल दिया जाए, तो शाम तक आपको अच्छा खाद बनेगा। 12 घंटे में भी बनता है, अगर सुबह किया तो 24 घंटे में बनता ही बनता है।
0: तो ये जो अभी आपने बताया, इसमें सारे आपने सब्जियों और फलों के बारे में बताया, क्या इसमें कुक्ड मटेरियल भी डाल सकते हैं, पका हुआ भोजन भी डाल सकते हैं?
1: यूजुअली क्या है कि मैंने कहा कि पका हुआ भोजन हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो शपथ लेनी है, और अगर बाय चांस अगर कोई बच्चे ने छोड़ दिया और नहीं खा पा रहे, कोई गलत तरीके से बाहर रख गया, धूप की वजह से खराब हो गया, तो इसे आप प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन उसमें जो छलनी से निकाल के सिर्फ सॉलिड पार्ट आप मिक्सर में डालिए और उसका उसको घोल दीजिए, जाएगा। उसमें सांभर मत डालिए, मतलब नो लिक्विड गो इनटू दिस, लिक्विड गया तो फिर कीड़े आते हैं, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बाकी सारा खाना जो पका हुआ भोजन भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं नहीं डालना चाहता हूँ। तो अगर हम कम करें, और अगर खराब हुआ जो मटेरियल है वो आप डाल सकते हो, या किसी ने गिरा दिया नीचे हम नहीं खा सकेंगे, तो उठा के उसे मिक्सर के पॉट में डालिए और हमारे इस निसर्ग लक्ष्मी में डाल दीजिए, वो आपको दूसरा दिन उसका खाद बना के दे देगी।
0: जी, और कई परिवार में जहाँ पर लोग नॉन वेज आदि खाते हैं, क्या वो नॉन वेज का?
1: मेरा कल्चर नॉन वेज है, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरा कल्चर कुछ भी खा लेता है, उसे कोई चिंता नहीं है।
0: जी, ये बहुत मतलब बारीक चीजें हैं जो लोग सोचते हैं कि बहुत भारी चीजें हैं, बट एक्चुअल में ये केवल ध्यान देने वाली चीजें होती है, और चीजें बड़ी आसान सी होती
1: है, और 10 मिनट लगते हैं। मैं रोज करता हूँ, श्रीमती जी से अलग से पूछिए मैं झूठ बोल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो आपको बताएगी। नहीं नहीं वो बहुत प्यार से, मैं व्रत जैसे रोज शाम को जितना भी मटेरियल उन्होंने जमा करके रखा है पूरा प्रोसेस कर।
0: जी, झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता जब आपको सत्यमेव जयते जैसे प्लेटफॉर्म में बुलाया जाता है, जहाँ सच की बात दम लगा करके बोली जाती है। वहां पर मुझे याद है टेलीविजन में जब ये शो आया, उसमें आप एक छोटा सा ग्लास जार लेकर के आए थे, जिसमें 14 इयर्स से आप 14 वर्षों से लगभग,
1: अभी 25 साल हो गए उसे,
0: 25 साल हो गए, तो जरा उसके बारे में लोगों को बताइए।
1: हाँ, मैंने एक ग्लास का डेसिकेटर लिया था, डेसिकेटर मतलब एक कांच का बर्तन समझिए आप, उसे ढक्कन लगा रहता है, तो हंडी होती है वैसे, वो कांच का बर्तन हमारे लैब में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मैंने लोगों से पूछा मैंने ले लू क्या, तो हाँ बोले ले लो आप। मैंने ऐसे क्लीन किया, उसमें 800 ग्राम मिट्टी और 100 ग्राम खाद 1 जून 1999 पे डाला और उसमें 540 ml पानी डाला और एक मनी प्लांट हाथ को लगा, पौधा उधर था वो निकाल के उसका टुकड़ा उधर लगा दिया और पश्चिम दिशा में रखा वो बर्तन और पश्चिम दिशा से डूबती हुई सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती थी, फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, प्रकाश संश्लेषण, और वो पेड़ बढ़ना शुरू हो गया। अभी वो पेड़ बढ़ते बढ़ते 3, 4, 5, 6 पत्ते हो गए तो 31 अगस्त 1999 का दिन आया, उस दिन मैंने वो बंद कर दिया, ढक्कन लेके अरंडाइट से सील कर दिया। आज तक मैंने, अभी 25 साल हो गए, अभी भी वो पौधा बीआरसी में पड़ा हुआ है, वो मैंने आज तक खोला नहीं है और वो अभी भी हरा भरा है, ग्रीन है, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम बन गई। जो मैंने 540 ml पानी शुरू में डाला था, आज भी वो 540 ml पानी उस डेसिकेटर में है। वो पत्ते लेते हैं, रात शाम को छोड़ते हैं और वो फिर कंडेंस होके मेरे डेसिकेटर में रोज सुबह बारिश होती है, तो ये जल चक्र शुरू है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से CO2 और O2 उनका चक्र चालू है। जब पत्ता गलता है तब उसका विघटन होके उसके सारे मूल द्रव्य, जो 23 मूल द्रव्य शरीर में होते हैं हमारे शरीर में और पौधे के शरीर में, वो सारे मट्टी में गल जाते हैं और वो सूक्ष्म जीव फिर नए पत्ते को देते हैं। तो ये पूरा चक्र उसमें चल रहा है। मैं निकल जाऊंगा लेकिन ये डेसिकेटर जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये चलता रहेगा सिस्टम। तो अभी इसकी अगर आप तुलना पृथ्वी माता से करो तो पृथ्वी माता भी एक क्लोज डेसिकेटर है। ये पृथ्वी माता जब बनी थी तो जितना सोडियम बना था, जितना कार्बन बना था, उतना ही कार्बन आज है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो ये जो पुनर्चक्रांकन है ये सृष्टि का नियम है, ये कालेश्वर का नियम नहीं है, ये सृष्टि का नियम है, ये सदियों से चलता आ रहा नियम है। और ये धरती भी बंद की है किसी ने, ये डेसिकेटर शरद काले ने बंद किया। वो धरती किसने बंद की, आपके पास 33 करोड़ ऑप्शंस है, किसी का भी नाम लिखिए आप, उसी ने बंद किया। तो ये लेकिन बंद तो है, यहाँ से पानी बाहर नहीं जाता। तो ये पुनर्चक्रांकन इसका नियम है, ये समझने के लिए, ये कचरा नहीं है। अगर मेरे इसमें गलने वाला पत्ता कचरा था तो आज तक वो खत्म हो जाता था सिस्टम, लेकिन वो सिस्टम खत्म नहीं हुआ, ना कोई कचरा उधर दिखता है। मैं वही मैंने कहा कि प्रकृति के विश्वकोश में कोई कचरा शब्द नहीं है, वो शब्द हमने ला, जो चीज हमें गलत नहीं चाहिए उसे हमने कचरा कहा, लेकिन वो इतनी हद तक लेके गए कि पूरे देश को वो भुगतना पड़ रहा है डंपिंग यार्ड की तरफ से। लेकिन वो कचरा जो है
0: वो बेसिकली एक मानसिकता का शिकार है, और मानसिकता अगर हम वो मानसिकता को बदल सके तो हम कचड़े को कचड़ा ना समझ करके उसको हम एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे, एक साधन समझेंगे, कुछ और नया करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: यहाँ पर एक और मजेदार सवाल मेरे मन में ये आता है कि जब आप विज्ञान सुधा के द्वारा बहुत सारे बच्चों को प्रतिवर्ष मिलते, मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में आप बच्चों से मिलते हैं जो विद्यार्थी हैं और देश का वर्तमान भी है तो कल का भारत भी वही है, जब आप उनसे मिलते हैं तो कौन सी एक चीज आपने अब तक पाई है इन सभी बच्चों में जो कि आपको अंदर ही अंदर बहुत खुशी भर देता?
1: बच्चे जो है ना, अगर उनको समझ जाए तो वो अपनाते हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम यही होती है कि सर थाली में खाना फेंकना नहीं है किसी ने हमें बताया नहीं है, मम्मी सिर्फ डांटती है क्योंकि वो उठा के कचरे में डालना पड़ता है, लेकिन आपने पीछे उसके जो कारण बताए अभी हम जाके बताएंगे और बहुत आनंद से प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम थाली में खाना नहीं फेंकेंगे और किसी को नहीं फेंकने देंगे, ये भी बोलते हैं और घर में जाके बोलते हैं। तो ये जो बच्चों का ओरिएंटेशन है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये ओरिएंटेशन करना बहुत जरूरी है। मैं टीचर्स को वही बताता हूँ कि हमारे स्कूल में पिकनिक लिए जाया करते थे। कहाँ पिकनिक जाती थी आपको पता नहीं, आप आश्चर्य होगा, मेरी पिकनिक बैंक में गई थी, रेलवे स्टेशन पे गई थी और बैंक में बैंक के सारे व्यवहार समझाए थे, जेल में लेके गए थे अपराधियों से। सातवीं में हमने बातें की थी तो जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए वो लेसन हमें उस पिकनिक में मिला था। तो डंपिंग यार्ड पे मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों को डंपिंग यार्ड पे ले जाए, उनको दिखाए हमने क्या किया है धरती माता को, कितना तकलीफ दे रहे हैं हम। अब तो घर में आके बच्चे अलग अलग रखते हैं, एम्बेसडर, एनवायरमेंटल एम्बेसडर बन जाते हैं और बहुत प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। मैं कई मेरे पास मैसेज ऐसे आते हैं उनके लिखे हुए, बस बहुत सुंदर लिखते हैं बच्चे कि सर हम ये हमारे जिंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे कचरे को कचरा कहने की।
0: ये जो बात आपने बताई कि बच्चों को देखकर के आपको दिल में ये सुकून आता है कि बच्चे एक बार जो बात समझ लेते हैं उसको वो जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, वो समझ अपना लेते हैं। तो ये दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर आपके आसपास में बच्चे हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करें कि क्या वो गलत कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसमें गलत क्या है। तो अगर आप उनको समझाएंगे दोस्तों तो वो जरूर समझेंगे, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है वो कभी दूषित नहीं होता है, वो पहले से ही साफ होता है। आपने देखा होगा अगर छोटे बच्चे हैं उनको आपने डांट भी दिया, अगले दिन वो फिर से आपके साथ दोस्त हो जाते हैं, आपस में भी वो लड़ते झगड़ते लेकिन वापस फिर से खेलने लग जाते हैं। लेकिन यही चीज अगर दो बड़ों में झगड़े हो जाए तो फिर वो कितने सालों तक याद रखते हैं, उनके जाने के बाद उनके परिवार वाले भी उस झगड़े को याद रखते हैं, लेकिन बच्चों का दिल जो साफ है। तो इसलिए डॉक्टर शरद काले जी का ये सुझाव बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो भी जीवन में नाने जैसी अच्छी बातें हैं उन्हें समय रहते बचपन में ही बच्चों को सिखाया जाए। एक और सवाल शरद जी आपसे ये जानने का मन करता है कि आपने देश विदेश दोनों का बड़ा विस्तार से भ्रमण किया है, ना केवल अपने काम के सिलसिले में लेकिन आपने यूं ही बहुत विजिट्स किए हैं। इन सभी ट्रैवल्स में, इन सभी यात्राओं में आपने बहुत कुछ देखा है, समझा है, भारत को भारत क्या बनाती है?
1: देखिए कि एक तो हमारा जो ये वसुधैव कुटुंबकम, ये कहीं ना कहीं हमारे मन में तो रहता ही है। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा घर है। अभी आजकल हम थोड़े से ज्यादा सेल्फिश हो गए, ये बात सही है, लेकिन जो हमारे जिसे ओरिजिनलिटी कहते हैं, मूल प्रवृत्ति जो है हमारी, एक आतिथ्यशील प्रवृत्ति है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी देना जानते हैं। अभी आजकल के जमाने में वो शायद थोड़ा कम हो गया है, या अति परिचयत अवज्ञा जैसे कहते हैं, वैसे व्हाट्सएप के इतनी बातें कर जाते कि सामने आने के बाद बात नहीं करते। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये सिर्फ टेम्पररी जैसे कि डिरेलमेंट है, ये टेम्पररी डिरेलमेंट नहीं रहने वाला। मैं बहुत सकारात्मक आदमी हूँ, मैंने कहा मुझे एटॉमिक एनर्जी ने सकारात्मकता सिखाई है, तो मैं यही ये भारतीय मेरा ये मैं देखता हूँ उसका, ये वसुधैव कुटुंबकम और ये प्रकृति के से लिया हुआ ऋण प्रकृति को वापस देना, ये जो मूलभूत कल्पना है भारत ने विश्व को दी है, ये भारतीय है और बहुत सारे देशों ने इसे अपनाई है। जापान में आपको अचरज होगा, तीसरी के बच्चे घर क्लास में आने के बाद ना तो प्रतिज्ञा लेते हैं जापान मेरा देश है, सारे जापानीज मेरे भाई बंद है, लेकिन वो क्या करते हैं अंदर आने के बाद पूरा जो क्लास है वो क्लासरूम साफ करते हैं, दो बच्चे फ्लोर साफ करते हैं, दो बच्चे विंडो साफ करते हैं और बाकी सारे बच्चे वो टर्न लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट पे क्लास शुरू होता है। ये जो मैं स्टोरी बताता हूँ ना भारतीय बच्चों को, कई बार मुझे फोन आते हैं हेडमास्टर से, सर आपने क्या जादू किया, हमारे बच्चे अभी हमारा स्कूल खुद साफ कर रहे हैं। ये होता है, तो ये मूल प्रवृत्ति अगर है हमारे यहाँ तो उसे बढ़ावा देने का सिर्फ सवाल है, वो याद दिलाने का जरूरी है, जागृति करने की जरूरत है। अरे ये हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, हम कोई अलग बात नहीं कर रहे, हम ये धरती माता को माता कहते हैं। हम सुबह जब ये धरती पर पाँव रखते हैं तो उसकी क्षमा मांगते हैं कि भाई धरती पे माता मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। तो अगर ये जो हमारी परंपरा रही है, और इसे धर्म मत कहिए, ये परंपरा है, भारतीय परंपरा है, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है, यहाँ ना तो कोई धर्म की बात आती है ना किसी भगवान की बात आती है। मेरे लिए भगवान विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में मुझे सब उत्तर मिल जाते हैं। तो वैसे आप मैंने भगवान को विज्ञान कहा, आपने तुझे आपके ब्रह्म कुमारी में आप इसे वो चक्र में डालते हो या आप कॉन्सेंट्रेट करने, आप क्या करते हो, आप कॉन्सेंट्रेट ही करते हो। तो ये कॉन्सेंट्रेट करना, और ये विश्व में आया हूं मैं, मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, ये भावना मन में रखना, ये भारतीय है। और ये भारतीयत्व जो है ये कई प्रदेश में विदेश में मुझे नहीं देखने को मिली। जब मैं ये उनको इस भाषा में समझाता हूँ तो बड़े अचरज से देखते हैं कि अरे सर, हमने तो इसके ऊपर कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि आपको ये धरती और सुंदर करके

0: ये संवेदनाएं।
1: ये जो संवेदनाएं हैं ये मनुष्य को मनुष्य बनाती है, लेकिन संवेदनाएं भी अगर सही जगह पे सही मात्रा में लगाई जाए तभी वो मनुष्य जो है सही मनुष्य बन पाता है। कई बार हमारी संवेदनाएं जो है हमें हमारे भूतकाल में लटका देती है या हमारे भविष्य में अटका देती है, और वर्तमान में जो हमारे सामने जो मुद्दे हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन डॉक्टर शरद काले जी जैसे लोग जो हैं वो भारत का ध्यान बार बार उसके वर्तमान पे लेकर के आते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्तमान से ही जुड़ा हुआ है हमारे भविष्य का सुनहरा कल। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर शरद काले जी से हम पूछेंगे कुछ रैपिड सवाल, कुछ सवाल ऐसे जिनका जवाब उन्हें एक एक शब्द में देना है। तो डॉक्टर शरद जी, आर यू रेडी?
0: Yeah, I am sure. Before that, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, एक श्री कृष्ण जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने गीता के विज्ञान के बारे में एक किताब लिखी हुई, एक मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा अहंकार जरूर होना चाहिए, लेकिन अहंकार खुद से होना चाहिए, कॉम्पिटिशन खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं होनी चाहिए। मैं खुद कितना अच्छा था, आज उससे ज्यादा अच्छा बनना चाहता हूँ, ये कॉम्पिटिशन अगर आपके मन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अहंकार होना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन वो अहंकार को इतना मत बढ़ाओ कि आप सामने वाले से झगड़ा कर बैठे, मोल बैठे। कई बार कई मैं तो ये कहता हूं कि आप 10% आपका अहंकार पीछे रखो, आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये मुझे श्री कृष्ण जी से बहुत अच्छी नसीहत मिली भगवद्गीता से।
1: जी, ये जो खुद से प्रतियोगिता करने की बात है ये व्यक्ति तभी कर सकता जब वो खुद के लिए समय निकाले, जो आपने शुरुआत में कही थी कि इस वजह से लोगों को आप ये नसीहत दे रहे हैं कि दिन में कम से कम कोई एक चीज नया सीख करके सोने जाए या एक चीज नई पढ़ करके सोने जाए। खुद के प्रति अगर आप समय निकालेंगे तो खुद से प्रतियोगिता कर ही रहे हैं। अगर आप कुछ नया पढ़ रहे हैं तो अपने कल से प्रतियोगिता कर रहे हैं और आज आप अच्छा बन रहे हैं, एक नई बात सीख रहे हैं। कल जब आप दोबारा कोई नई चीज पढ़ेंगे तो आप आज से बेहतर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों रोज पढ़ने का ये जो सुंदर आदत डॉक्टर शरद काले जी ने अपने जीवन में साझा किया है और हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है वो जरूर कीजिएगा। तो डॉक्टर शरद जी, आपसे पहला सवाल।
0: हाँ जी बोलिए।
1: शुरुआत वहीं से करते जो आपको बहुत पसंदीदा है, विज्ञान क्या है?
0: विज्ञान जीवन जीने का तरीका है। जीवन विज्ञान ना तो फिजिक्स है ना केमिस्ट्री है, जीवन जीने का तरीका विज्ञान है।
1: ज्ञान क्या है?
0: ज्ञान का महासागर हमारे आजू बाजू में है, लेकिन ज्ञान जो हमें समझे वो ज्ञान होता है। जो जैसे महासागर में आप तैर रहे हो लेकिन पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलेगा, तो ज्ञान के महासागर में आप रहोगे लेकिन आपके जिन में जो है वो ज्ञान है।
1: सेवा क्या है?
0: सेवा ये जो भावना है कि मानव के प्रति एक सेवा की भावना होनी चाहिए, पृथ्वी माता के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए, और सेवा ये मानव का धर्म है। मानव धर्म के जो रास्ता है वो सेवा है।
1: तो सेवा जो है मानव धर्म है। धर्म क्या है?
0: धर्म ये जीवन जीने का तरीका है। विज्ञान और धर्म में कोई फर्क नहीं है।
1: धर्म जो है धारणा है, जीवन जीने का तरीका है।
0: तरीका।
1: जीवन क्या है?
0: जीवन ये जो जैसे हम कहते हैं कि ऐहिक, जैसे फिजिकल शरीर मिला है, उस शरीर में ऊर्जा है, चेतना है, और वो चेतना जब तक है तब तक जीवन है। जिस चेतना जब खत्म होती है तब जीवन खत्म हो जाता है। तो ये जीवन का जो काल होता है, जीवन का काल हम तय नहीं कर सकते, किसी और ने तय किया हुआ है। लेकिन वो जो काल के जो क्षण है वो हमारे होते हैं, और हर जो वर्तमान क्षण होता है तो अपना होता है। जो पुराना क्षण है वो ऐतिहासिक हो गया, उसके हम कोई चेंज नहीं कर सकते। आने वाले क्षण पे हमारा अधिकार नहीं होता, लेकिन वर्तमान क्षण पे अधिकार होता है, वही जीवन है।
1: निसर्ग ऋण क्या है एक शब्द में?
0: प्रकृति से जो कर्जा हमने लिया है वो वापस देना है, वही निसर्ग ऋण।
1: एक प्रकार से मातृ ऋण कहेंगे, जो प्रकृति माँ से हमारा ऋण है उसको चुका।
0: मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, निसर्ग ऋण है, वो शिक्षक ऋण है, स्पोर्ट्स ऋण है, सचिन तेंदुलकर का ऋण है, मधुबाला जी का ऋण है। कई में अपने जीवन में इतने आनंददायक क्षण हमारे लिए पैदा किए, तो ताकि करोड़ों भारतीय उसमें से आनंद लेते हैं, तो वो ऋण ही होता है।
1: जी, भारत क्या है?
0: भारत एक, जैसे हम कहते हैं कि भारत एक सोच है,

0: भारत देश नहीं है, भारत एक सोच है। और मैं भारतीय हूं इसका मतलब मैं वही मानव हूं, ये बहुत बड़ी सोच है। अगर ये हम हर एक अभी भी रोमांच आ रहे मेरे शरीर पे जब मैं कहता हूं कि भारत एक सोच है। हमने उससे देश कहा, हमने कुछ गलती की, हमने उसे कहा कि ये अलग अलग धर्मों से बना हुआ नहीं, भारत एक सोच है, भारत जीने का जीने की राह बताता है आपको। भारत के हर कोने से कोई नई जीवन की राह, जीने की राह मिलेगी, जीवन की राह मिलेगी, ऐसे अनेक राहें हमें मिलते रहेंगे और हमारा जीवन सुंदर बनता रहेगा, यही भारत।
1: बहुत सुंदर। भारत एक सोच है जो कि जीवन को सुंदर बनाने वाला सोच है। आखिरी सवाल, डॉक्टर शरद काले कौन है?
0: मैं एक जैसे पंचतत्व से निकला हुआ आत्मतत्व हूँ, ना तो मेरी खुद की पहचान है ना मैं पहचान चाहता हूँ, लेकिन जो काम मुझे दिया है, मेरे शरीर को दिया है, मेरे मन को दिया है, वो मैं अंत तक करता रहूं। और अगर अंत तक करता रहूं और अगले लास्ट प्रीत तक वो मरते समय मैं बच्चों के साथ बात कर रहा हूं, तो मैं शरद काले होने का सार्थक किया ऐसे लगेगा, नहीं तो मैं एक तुच्छ आत्मा हूं।
1: ये आपने कहने का ये प्रयास किया कि डॉक्टर शरद काले की पहचान उनके सेवा से है, उनकी भावना
0: सेवा
1: से है। जी
0: नाम से नहीं है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर शरद काले जी, आपके साथ बात करते करते समय का पता नहीं चलता, और इसलिए बातें जो है और करने का मन करता है, क्योंकि समय फिर खींचता नहीं है आपको। लेकिन हम सोचते हैं कि फिर कभी आपसे जरूर मुलाकात होगी, दोबारा आप हमें
0: जरूर
1: समय देंगे और दोबारा हम आपसे बात कर सकेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि आपके जैसे बुद्धिजीवी, जब भारत के ऐसे सुपुत्र जब सामने इकट्ठे होते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो आपके जैसे दो तीन अगर हमारे साथ हो, जुड़े एक पैनल डिस्कशन हो, और उस डिस्कशन के दौरान कई ऐसे बहुमूल्य रत्न निकल के आएंगे सागर मंथन की तरह, जो कि हमारे सभी श्रोता साथियों को बहुत बहुत ज्यादा गौरवान्वित करेंगे, बहुत ज्यादा उनको प्रेरित करेंगे। ऐसे समय के लिए हम जरूर आगे देखते रहेंगे, इंतजार करते
0: जरूर
1: रहेंगे।
0: जरूर, आप कभी भी बुलाइए, मैं कभी आपके इनविटेशन, कृष्णा बहन को मालूम है मैं आपके साथ काफी जुड़ा हूँ, और जब भी वो बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ।
1: जी, आपके साथ समय बिता करके बड़ा ही सुकून अनुभव हो रहा है, ना केवल मुझे, हमारे श्रोताओं को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने समय से हमारे लिए बेशकीमती कुछ पल निकाले और अपने ज्ञान के भंडार से हमें भरपूर किया। आपका और आपके कार्य के लिए, आप दोनों के सेहत और सफलता के लिए हमारी तरफ से ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे आज के हमारे मेहमान, यशस्वी भारत कार्यक्रम के बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर श्री शरद। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आप सुन रहे थे डॉक्टर शरद काले जी को। डॉक्टर शरद काले जी भारत के जाने माने वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कचड़े के समाधान को बहुत ही अनुसंधान के द्वारा एक ऐसा समाधान निकाला जो कि ना केवल कचरे का समाधान करता है, लेकिन भारत को कई चीजों से नवाजता भी। एक कचड़ा जिसके समाधान से ईंधन मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, जैविक खाद निकलता है और लोगों को रोजगार मिलता है। निसर्ग ग्रिड, इस सुंदर से अनुसंधान को जन्म दिया डॉक्टर श्री शरद काले जी ने। लेकिन वो इसका श्रेय खुद को नहीं, अपने माता पिता और अपने उन 68 शिक्षकों को देते हैं जिनका उन्हें नाम तक याद है। दोस्तों, मेरे और आपके जीवन में कितने शिक्षक आए, लेकिन उनका शायद हमें नाम भी नहीं याद। थोड़ा थोड़ा शायद रूप याद होगा, स्वरूप याद होगा, कुछ बातें याद होंगी, लेकिन शिक्षकों को इतने दिल से याद रखना तभी मुमकिन है जब आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और उनसे कुछ सीखने को आप सदैव तत्पर रहते हैं। जब आप हमेशा सीखते हैं, आप एक विद्यार्थी बने रहते हैं। और जैसे डॉक्टर शरद काले जी ने आज के एपिसोड में कहा कि जीवन जीने का तरीका ही ये है कि जब आप सदा एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जीवन जीते हैं, रोज कुछ नया सीखने का आप में जज्बा रहता, तब आपका जीवन सफल कहला सकता है। आज के हमारे एपिसोड से हमने कई चीजें सीखी, और मैं मानता हूं कि आप सबसे पहले जो चीज अपनाएंगे वो ये कि भोजन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, और घर में जो भी गीला कचड़ा है उस गीले कचड़े को आप एक प्रॉपर संस्कार समाधान देंगे, उसका आप खुद ही निवारण कर सकेंगे, इसका भी टिप आपको डॉक्टर शरद काले जी ने सुनाया, जिसे उन्होंने बहुत सुंदर नाम दिया निसर्ग लक्ष्मी। तो मैं कहूंगा आप भी अपने घर में एक निसर्ग लक्ष्मी का तैयारी कर लीजिए, दिवाली के पहले दिवाली की तैयारी कर लीजिए और निसर्ग लक्ष्मी के द्वारा अपने घर के कचड़े का समाधान जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में हम आपके बीच में एक और ऐसे खास शख्सियत को लेकर के मौजूद होंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको अपने से और हर एक से एक प्रॉमिस जरूर करनी कि आप कचड़े का समाधान सम्मान से करेंगे, कचड़े को कचरा ना समझ करके उसको साधन समझ करके उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे, मुस्कुराते

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स, यू नो, नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

0: ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस बातें मिलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान डाइटिशियन सीमा मनी कोत जी हमारे साथ उपस्थित हैं। पिछले बार भी हमने काफ़ी अच्छा एपिसोड इनके साथ किया था जिसमें हमने नेचुरोपैथी या नेचुरल हीलिंग के बारे में बात की थी। आज हम लोग ऐसे ही कुछ एक एपिसोड जो हमारे वर्तमान समय को देखते हुए नीड क्या है उसको देखते हुए और फाइव एलिमेंट्स कैसे हमारे लिए काम करता है और हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं एयर एज ए फूड इसके बारे में भी और स्किन कैसे हम जो है तत्वों के साथ जुड़ा रहता है वो सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। और फूड हमारा जो है कैसा होना चाहिए इस पर काफ़ी बातें होती हैं। फूड हैज़ पर नेचुरल हेल्थ साइंस प्रिंसिपल के रूप में हम लोग देखेंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा खाना जो पक जाता है और जो खाना हम बनाते हैं उन्हीं चीज़ों को खाना है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाँचों तत्व भी आपके, क्योंकि शरीर आपका पाँच तत्वों से बना हुआ है तो पाँच तत्व भी हमारे लिए फूड का काम कैसे करता है समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी की तरफ से डाइटिशियन सीमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति जी।
1: ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच।
0: और बताइए आज फाइव एलिमेंट्स कैसे हमारे फूड प्रिंसिपल बनते हैं इस विषय पे क्यों बात करना चाहते हैं, इसका मेन मकसद क्या है आपका वो बताइए जी।
1: हाँ, सबसे पहला
0: धर्म नारायण दुबे जी भी जुड़ गए हैं। ओम शांति रमेश भाई जी, डॉक्टर सीमा जी करके मैसेज किया जी, स्वागत है आपका जी।
1: हाँ, थैंक यू भाई जी। ये हमें बहुत सबको पता है, कॉमन नॉलेज है कि हमारा ये शरीर पांच तत्व से बना है। तो आप बता सकेंगे पांच तत्व क्या क्या है जिससे ये शरीर बना है?
0: जी जी जी, जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, ये हमारे पांचों एलिमेंट्स है।
1: करेक्ट, ये पांचों एलिमेंट्स हैं। एंड हम स्पेशली हम जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़े हैं हमको पता है कि जितना ज्यादा सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा पावरफुल। करेक्ट, बाबा सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सबसे ज्यादा पावरफुल बाबा। ये पांच तत्व एंड हमारा, हम एज आत्मा, ये शरीर में आत्मा सबसे ज्यादा पावरफुल। करेक्ट, आत्मा अगर जो सोचेगा वो शरीर कर लेगा। आत्मा नेगेटिव सोचेगा तो शरीर नेगेटिव करेगा, आत्मा पॉजिटिव सोचेगा शरीर पॉजिटिव करेगा। करेक्ट, तो ये जो फाइव एलिमेंट्स है, ये फाइव एलिमेंट्स का ऑर्डर जानना हमें बहुत जरूरी है। हम सबको, पूरा वर्ल्ड को सबको पता है व्हाट आर द फाइव एलिमेंट्स। आकाश, आकाश जैसा आपने बोला, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये फाइव। इंग्लिश में बोलेंगे तो ईथर एयर सन वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। तो ये जो मैंने पांच चीजें बोला ये एक्चुअली दोनों बार आपने नोटिस किया होगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बोला। सबसे पहले मैंने बोला ईथर, आकाश, फिर वायु, फिर आया अग्नि, फिर आया जल, फिर आया पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। सो क्या है, अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा ग्रॉस, सबसे ज्यादा स्थूल, सबसे ज्यादा स्थूल अर्थ एलिमेंट, सबसे ज्यादा सूक्ष्म आकाश
0: जी।
1: आकाश, आकाश से जल बनता है, आकाश एंड जल मिलके अग्नि बनता है, ये तीनों मिलके जल बनता है, ये चारों मिलके पृथ्वी बनता है। पृथ्वी को अगर तोड़ेंगे, ये डायरेक्टली तोड़ना समटाइम्स थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है, बट अगर हम पानी को ब्रेक करेंगे, पानी से ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनती है, एंड ऑक्सीजन भी पानी H2O। करेक्ट, पानी का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, H2O है, दो टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसको ब्रेक करेंगे दोनों गैस है, दोनों वायु है। पानी को तोड़ेंगे तो वायु बनती है, पानी से वायु बनती है, एयर बनता है, एंड हाइड्रोजन बाय इटसेल्फ ऑक्सीजन की वजह से फायर होती है। तो व्हेन, यही एक प्रमाण है दैट दैट फ्रॉम आकाश एयर बनता है, आकाश एंड एयर टुगेदर फायर बनता है, फायर ये तीनों मिला के वॉटर, ये चारों मिला के पृथ्वी, एंड पृथ्वी इज द स्थूल ग्रॉस एंड आकाश इज द मोस्ट सूक्ष्म. तो ये जो फाइव एलिमेंट्स है, ये फाइव एलिमेंट्स का हम सब ने ये भी सुना है, जैसा ये पिंड वैसा ब्रह्मांड, हम सबको ये पता है जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड. तो पिंड को हमने सीखा नहीं कैसा झांकना है अंदर, पिंड में क्या चल रहा है, हम हमें किसी ने एडुकेट नहीं किया. बट ब्रह्मांड तो दिखता, एटलीस्ट थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा बहुत सीखा भी है. साइंस में हमने स्पेस वैक्यूम, स्पेस में जो एयरलेस स्टेज होता है, एंड देन अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर, ये तो हमने सीखा है ना. तो ये परसेंटेज जब हम देखते हैं तब हमें पता चल जाता है पूरा सृष्टि में वायु कितना ज्यादा है, एयर हर एक प्लैनेट के अराउंड एयर होता ही होता है, लिक्विड एलिमेंट भी होता है, एंड हर किसी प्लैनेट में उसका खुद का स्टार, दैट इज खुद का सन भी होता है. कोई कोई प्लैनेट्स सिर्फ गैस का ही बना है, कोई कोई प्लैनेट में रॉक्स है. वी ऑल वो बाहर का तो दुनिया हमने देखा है, इसको ज्यादा हमने सीखा नहीं. ओके, स्कूल कॉलेज की बात बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं बोल रही हूँ, है ना. बट वो तो हमने सीखा है, उससे हमें अंदाजा मिल जाना चाहिए कि पिंड कैसा बना है, ब्रह्मांड कैसा बना है, एंड उसी से हमें वो बैलेंस समझ में आ जाना चाहिए. हम जो दिन भर ये खाओ मीन्स हम सिर्फ स्थूल खाने की बात करते हैं, हम सिर्फ स्थूल खाने की बात करते हैं, केला खाओ, एप्पल खाओ, काकड़ी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सिर्फ हम ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं, वाटर है, हवा, हम क्या कभी बोलते हैं चलो अभी हवा खाने जाना है, चलो टाइम हो गया अभी धूप खाने जाना है, चलो अभी टाइम हो गया हमें अभी आकाश खाना है. कभी आकाश खाने को खाना बोलते हैं, अरे यार आज सुबह से मैं भूखा हूं. जब भी फास्टिंग की बात आती है हम बोलते हैं सुबह से हम भूखे हैं, करेक्ट. तो हमारा इस तरह का बिलीफ सिस्टम बैठ गया है कि सिर्फ स्थूल जो खाते हैं उसको, एंड ये पांचों तत्व में से लिक्विड एंड दैट इज वाटर एंड अर्थ एलिमेंट को मोरलेस हम खाने पीने की कैटेगरी में मानते हैं, बाकी तीन जो सूक्ष्म है, एंड जैसा मैंने शुरुआत में बोला था जो जितना ज्यादा सूक्ष्म हो उतना ज्यादा पावरफुल. बाबा इससे ज्यादा, इसीलिए बाबा सबसे ज्यादा पावरफुल, इसीलिए एटम बॉम्ब सबसे ज्यादा पावरफुल, बिकॉज वो एटम से बना है, करेक्ट. तो हम ये सबसे जो कम लीस्ट पावरफुल है इसी के बीच में हम फंसे रह गए हैं, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में, लाइक वाटर एंड अर्थ एलिमेंट के बीच में. ना एयर एलिमेंट की बात करते हैं, ना सन एलिमेंट की बात करते हैं, ना ईथर या आकाश या फास्टिंग की ज्यादा बात हो बातें आजकल फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा में आ रहा है, बट उसका पोटेंशियल, उसका पावर कितना है ये अभी तक हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, एंड कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए उसमें भी कंफ्यूजन है. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन. The creation happened this way. First, it was space. It was Akash. Akash se air bana. Akash and air milke agni bana. Akash, air and agni milke pani bana. And ye charo milke prithvi bana. So, this is one very important thing. And ye agar balance karna humne seekh liya, to नो क्वेश्चन बीमारी का तो सवाल ही नहीं है इस सृष्टि में. कोई यूनिवर्स, कैन द यूनिवर्स एवर फॉल सिक? यूनिवर्स में कभी कुछ बीमारी हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, बिकॉज यूनिवर्स में कोई टैम्परिंग, कोई कुछ टैम्परिंग नहीं करता है. टैम्परिंग इन द सेंस उसमें कोई हम मनुष्य कोई जाके छेड़खानी नहीं करते. जैसा अनादिकाल से आता अनादिकाल से या आदिकाल से जैसा सृष्टि का लॉ है, सृष्टि का एक एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सिर्फ हम या ये एग्जिस्टेंस में ह्यूमन बींग्स, सिर्फ हम ही ने दुनिया भर की गड़बड़ी करना शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट स्पीशीज, है ना। इवन जंगलों में घना जंगल।
0: जी जी, यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं और थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। आई डिफर विथ यू ऑन दिस, इट्स द ब्रेन विच कंट्रोल्स अवर माइंड एंड फिजिकल मूवमेंट्स, एक ये विचार आया है, सुविता जी ने लिख के भेजा है। सुविता जी स्वागत है आपका। और मानसी जी ने याद किया है पूना से, ओम शांति मानसी जी, स्वागत है आपका। इट्स द वुमेन हु क्रिएट्स द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ द यूनिवर्स अफेक्ट अस, दिस इज नो प्रैक्टिकल एविडेंस, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। और यू आर अ गुड स्टोरी सेलर की भी लिखा है। जी जी बताइए।
1: ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, इवन इफ वी डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेट अस टेक एनीथिंग दैट इज देयर नेचुरली इन नेचर, वॉट एवर वी आर, यू नो, एनी food, any vegetable you take, any fruit you take, if you just take it in your hand, you'll be able to see that the percentage of water in this in that fruit or in that vegetable. Okay, any fruit you take, any vegetable you take, without us tampering it, without us meddling with it, it will have water content anything between 70% to 95%. Do you agree with this? Any fruit, any vegetable, whoever was disputing with what I said, can I? Or Ramesh bhai, aap answer kariye, koi bhi fruit, koi bhi vegetable agar lenge, to koi bhi fruit, koi bhi vegetable nature mein jo milta hai, usme 70% se leke 95%, 98% tak pani hota hai. Watermelon agar dekh le, usme 95-98% tak pani hai, baki paste bana denge to itna sa, itna bada watermelon ka itna sa kuch niklega, to maximum pani hi tha.
0: Ji ji,
1: correct. If we look at Mother Earth, agar
0: message kiya, seeds are tempered and hybrid fruits are created.
1: Yeah, I told you, unless and until we are tampering, I'm talking about natural. Hum log jab tamper karne lagte hain na, tab duniya bhar ka gadbadi karte hain. Jab mother nature ke through aata hai, it's all absolutely in this percentage. Agar hum mother nature, agar hum earth ko bhi dekh le, earth mein bhi कितना परसेंटेज पानी है, कितना परसेंटेज मिट्टी है, आप बताइए। अर्थ में भी 2/3 इज वाटर, 1/3 इज लैंड, करेक्ट। दिस इटसेल्फ शोज इन द स्थूल, इन द स्थूल एस्पेक्ट, हाउ मच वाज यू नो द लास्ट टू एलिमेंट्स, वाटर एंड अर्थ। So anything in existence, if you see, it pick up any animal, every species, even our body is 70% approximately water, liquid, and 30% real solid material. We are all made this way. So are we consuming in that manner? How much we are breathing? Our breath does not stop even a second. If I try to stop my breath, I can stop eating for a few days, I will still live. I can stop drinking water for a few days, I can still live. If I stop breathing, I will not even live for more than 3 minutes or 5 minutes. So not even 3 minutes. If we are extremely pranayama karte karte itna expert ban gaye, to shayad naak band karke 5 minute, 3 minute kya 2 minute bhi hum zinda nahi bachenge agar naak band kar diya to hamara. So this shows the importance of air in our existence. To hum kaisa, hum kya wo वो परसेंटेज में हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? Whoever asked this question, I wanted to answer that.
0: तो
1: we need to understand, are we, and these are the two स्थूल elements which we are in, two स्थूल and one air element, because we are breathing. ये तीनों से हमें पता चल जाता है. But sun के बिना हम कैसा जी, it's impossible to live. Within 15 minutes, the full world will finish. will die if sun is completely blocked from our existence. So, and all these things, I'm telling this from the book Practical Nature Cure, written by Acharya Lakshmana Sharma. Acharya Lakshmana Sharma is considered to be the father of nature cure in India. And all that he's talking about is, it's all there taken. He's Acharya Lakshmana Sharma. Dikhai de raha hai? He's Acharya Lakshmana Sharma. And all whatever he's taken, it's all picked up from our Shastras and Vedas. Everything completely from our Shastras and Vedas, he picked up all this and he's written this book. So it's not randomly, I'm not just telling stories. I'm telling facts. It's good to be a storyteller. Though I keep repeating to myself, it's time we stop telling stories to ourselves. Because when we tell good stories, we will also have negative stories. So let us not have any stories. There is life, jo jahan zindagi hai, jeena hai, jo eternal laws ke anusar chal raha hai, wo bas karte jao, karte jao, karte jao. No, koi kahani nahi yahan pe. No stories.
0: जी चलिए, सुधा जी आ गए हैं। सुधा जी, एक सुंदर गीत आप सुनाइए, उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। जी
1: नमस्ते सुधा जी, इट्स सो अमेजिंग टू सी यू।
2: थैंक यू, सेम फ्रॉम माय साइड टू।
1: थैंक यू।
2: ओम शांति। ईश्वर से हमने

0: ओम शांति सुधर जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। अनु सहनी जी याद कर रहे हैं यहाँ पर, अनुराधा गर्ग जी भी याद कर रहे हैं, वहाँ करके मैसेज किया है। अनुराधा जी स्वागत है आप।
1: थैंक यू अनुराधा जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और सुविता जी जो है वैज्ञानिक तरीके से अपने सवाल उनको दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक जो सवाल यहाँ पर है, जैसे कि हम लोग पांचों एलिमेंट को किस परिमाण में लेते लाइफ में अडॉप्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी।
1: हाँ, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि हम एग्जिस्टेंस को देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि एग्जिस्टेंस में कौन सा एलिमेंट कितना कितना परसेंटेज में है। एंड वी आर एग्जिस्टेंस, हम ही सृष्टि हैं, हम ही नेचर हैं। तो बिकॉज हमें एक एक्स्ट्रा पावर मिल गई है चूज करने का कि हमें क्या खाना चाहिए। एक एक टाइगर को चॉइस नहीं है कि वो वेजिटेरियन होगा कि मांस खाएगा कि फल खाएगा। एक गाय को चॉइस नहीं है कि वो वेजिटेरियन फूड खाएगा, घास घास फल डायरेक्टली खाएगा। कि हमें भगवान ने एक एक्स्ट्रा पावर दे दिया कि हम चूज कर सकते हैं। क्योंकि हम चूज कर सकते हैं, हमने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है। अगर हम सृष्टि के लॉ अनुसार चले, हमारे आते हमारी दांत बहुत कुछ हमारे हमारे इस शरीर के बारे में बोलता है। एंड नेचर बाय इट्सेल्फ, हमारे आसपास जो फॉरेस्ट है, ट्रीज है, प्लांट्स है, वो भी हमें एक कहानी सुनाता है कि हमारे लिए क्या एक्चुअली बना है। वी आर थिन लिटिल टाइनी क्रिएचर्स। तो हमारे हमारे लिए जो खाना है वो 10 फीट टॉल ट्री टॉप में नहीं, 10 फीट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एक जिराफ जितना हाइट का पहुंच सकता है, वहां पे हमारे लिए फूड नहीं होगा। हमारे लिए फूड तभी होगा जो, अच्छा, हमारे लिए फूड फूड वही होगा जो पकने के बाद नीचे आए ऑटोमेटिकली। आम पकने से पहले ग्रीन ग्रीन ग्रीन आम किधर है, पत्ते किधर है, दिखाई नहीं देता है। बट वो जब पक जाता है, लाल होके बिल्कुल झुकने लगता है, जैसे कि हमें बोल रहा हो मुझे प्लक करो, मुझे तोड़ो, ब्रांच से तोड़ के खाओ, है ना। तो हमारे लिए सृष्टि ने सर्टेन फूड बना के रखा हुआ है। तो वो फूड हमें चूज करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, इवन दी अदर एलिमेंट्स, वो बाकी आपका क्वेश्चन है, हम इसका चॉइस कैसा करें, कैसा इनकॉर्पोरेट करें खाना, वही पूछा ना आपने भाई जी। ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट यू आस्क्ड।
0: यस यस, हाँ जी, सीमा जी मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, और हाँ, यहाँ पर उदयपुर से माया सालवी जी ने याद भेजा है, ओम शांति लिख के भेजा है। सीमा बहन याद कर रही हैं आपके लिए अनुराधा जी, एक गीत आप भी गाइए करके शायद। अच्छा, टू मी ऑन हाउ बीन इन्फ्लुएंस, व्हाई डिड नॉट यू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कम बैक एंड टेल अस व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, शरीरी का अनुभव। Have you seen Lord Vishnu's our belief? Yes, in different organization we have priest or religious leaders.
1: Different topic, some other day please, आज नहीं, ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक है। फाइव फोल्ड फूड के बारे में नहीं है, फाइव एलिमेंट्स के बारे में नहीं है। So obviously I cannot answer this. So it's about how we incorporate this food. So first of all, we have to observe the हमारी nature. हम तो in ये सृष्टि में air कितना दिखता है? अच्छा, outer space हमें नहीं दिखाई देता है, वो छोड़े। Air कितना दिखता है? वो air, पानी कितना दिख रहा है, स्थूल लैंड कितना दिख रहा है, वो परसेंटेज में हमें हमारा शरीर में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है खाना। तो सबसे ज्यादा स्पेस है तो हम लोग जरूरत से बहुत ज्यादा, दिन में 3-3 बार यू नो फुल मील, ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट भी फुल मील होता है, लंच भी फुल मील होता है, डिनर भी फुल मील होता है, विद टू थ्री फोर फाइव वेराइटीज ऑफ फूड. इसके अलावा बीच में स्नैक्स का टाइम होता है, बीच में चाय का टाइम होता है, मतलब चार पांच बार दिन में तो सिर्फ ठूसते रहते हैं, ठूसते रहते हैं. करेक्ट. सो दिस यू नो बहुत ज्यादा हम खाते पीते हैं. इवन एग्जिस्टेंस को देख लें, हम धूप की तरफ आजकल एसी लगा के बैठ जाते हैं. धूप धूप धूप सेकते ही नहीं, धूप शरीर में जा रहा है, मैं काली हो जाऊंगी, अले ये हो जाऊंगा. क्या क्या क्या क्या हम धूप को खाने के मतलब धूप एक्सपोजर करना जरूरी है. हमारा ब्रेथ, हमारा ब्रेथ को यू नो कॉन्शियसली बीच बीच में कभी कभी एंड करेक्ट काइंड ऑफ ब्रीदिंग, इसीलिए प्राणायामा बोला गया है, प्राणायामा करना जरूरी है. इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आज फास्टिंग के लिए तो व्हाट इज द जापानीज साइंटिस्ट, आई थिंक सो इट वाज इमोटो, द साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो हु वन ट्वाइस ही वन नोबेल प्राइज जस्ट बिकॉज ही स्पोक अबाउट फास्टिंग. जितना फास्टिंग के थ्रू कैंसर के टाइप ऑफ डिजीजेस हम दूर कर सकते हैं. फास्टिंग इज वॉट, फास्टिंग इज ईटिंग ईथर, आकाश तत्व खा रहे हैं जब हम फास्टिंग कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, सिर्फ पानी. ऑफकोर्स हम लोग नेचुरल हेल्थ साइंस मतलब जो आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने सिखाया है उनके जी, उनके उनके नॉलेज अनुसार वो एयर फास्टिंग मतलब बिना पानी का फास्टिंग वो ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वो ज्यादा उसका एनकरेजमेंट नहीं करते हैं, कम से कम पानी पीना है वो बोलते हैं. तो
0: जी,
1: उस अनुसार हम यू नो तो इमोटो ने भी ये प्रूफ
0: किया. यहाँ पर एक और विचार सवाल है कि इन पांच तत्वों को खाए कैसे, इन अदर वर्ड्स इनकॉर्पोरेट कैसे करें.
1: हाँ, तो वी नो दैट हम हमारी बॉडी ऑटोमेटेड मोड में है, तो श्वास तो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, बट कॉन्शियसली तो मतलब एयर तत्व, पानी तत्व और पृथ्वी तत्व, ये तीनों हमारे शरीर में चल रहा है. सन, बहुत बार हम खुद को सन में एक्सपोज नहीं करते हैं, एंड ईथर का तो बात ही नहीं है. ईथर आकाश का तो हम इनकॉर्पोरेट करते ही नहीं है. ओके, तो हमें अभी लकीली अवेयरनेस इंटरमिटेंट फास्टिंग होने लगा है, तो कम से कम नॉर्मल लाइफ में कम से कम 12 घंटा कुछ ना खाएं, कम से कम 12 घंटा. 7 बजे शाम को 7 बजे से पहले खत्म कर दें, और अगले दिन चाहे 7 बजे आप कुछ खाए, माइल्ड समथिंग से, लिक्विड से आप स्टार्ट कर सकते हो. 7 बजे से लेके रात के 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक सिर्फ पानी पिए, ये कम से कम ये कर सकते हैं. एंड डिजीज कंडीशन के अनुसार हम इसको हम हमारी क्या फास्टिंग का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, बट ओनली अंडर प्रॉपर गाइडेंस. खुद से ना करें, बिकॉज शरीर रिवोल्ट करता है, डिटॉक्स सिम्टम्स दिखाता है, उसके लिए उसको हम डिटॉक्स क्राइसिस लाइक सिचुएशंस दिखाता है, तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं, एंड देन यू विल बी इन अ वेरी बैड स्टेट. तो अकेला खुद से ना करें, बट अकेला जो कर सकते हैं 12 घंटा कम से कम, एवरी पर्सन कैन डू इट. फिर प्राणायामा, प्राणायामा अपनी जिंदगी में जरूर करें, वो भी कभी करना चाहिए. अर्ली मॉर्निंग वातावरण अच्छा होता है, ओपन स्पेस में प्राणायामा करें, आसपास में गार्डन है तो गार्डन में जाके आप प्राणायामा करें, एंड ओनली माइल्ड प्राणायामा. मैं प्राणायामा मींस मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर बेसिक्स. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कपाल भाती एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर मोर फॉर वेरियस अदर कंडीशंस. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर बेसिक प्राणायामा. वो प्राणायामा करना शुरू करें, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट. आचार्य जी तो ये भी बोलते हैं, ब्रीदिंग इन होल्ड, ब्रीद आउट होल्ड, ये करना जरूरी है. सिंगल सिंगल एक एक एक नॉस्ट्रल में, देयर इज अ प्रोसीजर टू दैट ऑल्सो, बट इन लेमैन्स लैंग्वेज बेयर बेसिक्स जो है, ब्रीद इन होल्ड, ब्रीद आउट होल्ड, ये हमें करना है 15-20 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग में. सो दैट विल एटलीस्ट हेल्प अस यू नो टेक इन टेक इन एयर एज फूड, जब हम वॉकिंग कर रहे हैं, जब हम जॉगिंग करें, कॉन्शियसली नाक से ब्रीथ करना है. इट इज सो कॉमन. मैं रोज, हमारे घर के नजदीक ही है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो मैं रोज जाती हूँ. मुझे हैरानी होती है कितने लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस बोल के वो जाते हैं, अदरवाइज वो ये वहां पे नहीं जाते. कॉन्शियस लोग हैं वहां जाते हैं, बट दिखता है क्लियरली सब लोग मुंह से सांस ले रहे हैं, नाक से नहीं ले रहे. बट हमें कॉन्शियसली, हमारा नाक है श्वास लेने का अपैरेटस, मुंह नहीं है. नाक के थ्रू जब जाता है इंटरनली बहुत कुछ अलग अलग अलग अलग चीजें भगवान के भगवान ने बना के भेजा है कि वो एयर को फिल्टर करे एंड वेरियस अदर काम जो होना चाहिए नाक से. एंड मुंह से जब श्वास लेते हैं तब यहाँ गला सूखता है, हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं. नाक से श्वास लेने से हम जल्दी टायर्ड नहीं होंगे एंड सूखता भी नहीं है, बार बार प्यास लगने लगता है. एंड एक्सरसाइज करते वक्त बीच बीच में पानी पीना इज नॉट अ गुड आइडिया. बॉडी एक तरफ हीट, आप चाहे दौड़ने से पहले पानी पी लो, पानी पी के दौड़ना खत्म करने के बाद 5 मिनट बाद पानी पी लो, ये इनमें ये कॉन्ट्रास्ट इज नॉट गुड फॉर अवर इंटरनल सिस्टम. तो मुंह से श्वास नहीं लेंगे तो प्यास भी नहीं लगेगा. इवन हम जब अर्ली मॉर्निंग जब योगा करते हैं वो भी कॉन्शियसली, हमारी हर एक योगा पोस्चर्स इतना ब्रिलियंटली

0: ये धूप में अपने आप को धूप सिखाना चाहिए, इफ पॉसिबल विदाउट, अगर आपको प्राइवेसी है, विदाउट एनीथिंग ऑन योर बॉडी एट ऑल, कम से कम 10-15 मिनट धूप का लाइट जरूरी है, गर्मी अच्छा नहीं है। अगर गर्म फील हो रहा है आप पोस्चर चेंज कर दीजिए, या अगर जलन जलन हो रही है, गर्मी तो होगा मतलब पसीना तो निकलेगा, जलन नहीं होना चाहिए। जलन अगर हो रहा है तो वो हम एक्सट्रीम करें, कोई भी चीज एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता है। तो इफ नॉट पॉसिबल, इफ प्राइवेसी नहीं है, वेयर थिन व्हाइट क्लोथ, व्हाइट कॉटन मेटेरियल इज द बेस्ट। एंड हमारा स्किन के थ्रू भी हम ब्रीद करते हैं, इसीलिए टाइट फिटिंग क्लोथ्स ना पहने, लूज क्लोथ्स पहने, नेचुरल फाइबर पहने, कॉटन, सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर्स, पॉलिस्टर, पॉली फाइबर, ये सब अच्छा नहीं है। एंड
1: पेट्रोलियम वाला था
0: हाँ, वो सब चीज पेट्रोलियम वाला मटेरियल अच्छा
1: हाँ
0: नहीं है। नेचुरल फाइबर यूज करें, जूट है, कॉटन ऑफ कोर्स, देयर इज हेम्प, हेम्प का भी मटेरियल का अच्छा बनता है कपड़े, तो दीज आर वेरी गुड मटेरियल मटेरियल फॉर आवर इन
1: जी।
0: कोल्ड
1: सीमा
0: कंट्री।
1: जी, यहाँ पर कुछ और विचार आए हैं, हमारे सभी ने याद किया है। मानसी जी लिखती है, यस मैम, माय ट्रीटमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन फास्टिंग करके, क्योंकि आप कैंसर पेशेंट हैं, पिछले 6 महीने से ट्रीटमेंट करा रही हैं। और नीलम ठाकुर जी लिख रहे हैं, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का। शांताराम जी लिखते हैं, व्हाट्स गुड एडवांटेज ऑफ फास्टिंग इन 1 month, हाउ मेनी डेज फास्टिंग नेसेसरी, 1 महीने में कितना फास्टिंग करना चाहिए और उससे क्या एडवांटेज मिलता है। और फिर यहाँ पर नाम नहीं आया है, यूट्यूब चैनल का नाम है नाइस करके मैं लिखा है, और सुंदर आयोजन और चर्चा का विषय अच्छा है करके लिखा है। और नीलम जी लिखती हैं, वेरी नाइस मैम, बट जिनकी योगा क्लासेस इवनिंग में चलते हैं वो कैसे करे इसको, ऐसा उन्होंने लिखा है। और विच आजार यानी विच डिजीज फास्टिंग करने से जल्दी कवर क्योर होता है, ये उनका सह कहना है। और फिर उन्होंने ये भी लिखा है, डिपेंड्स ऑन इफ यू आर क्लॉस्ट्रोबिक देन फिटिंग क्लोथ्स नॉट गुड, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी सुविता जी, नाइस टॉक, अनुराधा जी याद कर रहे हैं। और यहाँ पर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिविंग आर्ट इंस्टीट्यूट योगा एंड यू सेइंग दैट योगा, तो योग में भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को उन्होंने बीज बताया है। और सच सो मच लेक्चरिंग, वी डू नॉट नीड टू विजिट एनी क्लिनिक, वी शुड कॉन्टेक्ट यू एव सम। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा एक्सरसाइज का, फास्टिंग फास्टिंग वाली पहली बात बता दीजिए कि 1 महीने में कितना फास्टिंग करने से और फास्टिंग से कौन सी बीमारियाँ जल्दी क्योर होती हैं, उसके बारे में बताइए। जी
0: हाँ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने अपने शास्त्रों में से लिख लेकर बताया है,
1: जी
0: नेचुरल हेल्थ साइंस प्रिंसिपल्स के अनुसार, डिजीज, ऑल डिजीजेस आर वन, बिकॉज ऑल डिजीजेस आर वन, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस आर वन। ओके, व्हाई ऑल डिजीजेस आर वन, चाहे हम उसको अस्थमा बुलाएं, चाहे ग्लाकोमा बुलाएं, चाहे लिवर सिरोसिस बुलाएं। ओके, गंदगी, शरीर में गंदगी गया है, जहां जहां गंदगी जमा हुआ है, डॉक्टर्स ने उस अनुसार एक नाम दे दिया है। ग्लाकोमा बोल दिया है जब गंदगी आंखों के पीछे जमा हो गया, लिवर सिरोसिस बोल दिया जब गंदगी लिवर में जमा हो गया, अस्थमा बोल दिया जब गंदगी लंग्स में जमा हो गया। अच्छा, गंदगी साफ, अगर घर में गंदगी जमा हुआ है, हम क्या करेंगे? साफ सफाई करेंगे। हाँ, कबड़ के नीचे गंदगी जमा है तो उसको कबड़ कबड़ साइसिस टाइसिस बोल देंगे, खाट के नीचे जमा है खाटाइसिस बोल देंगे, एंड एसी डक्ट के ऊपर गंदगी जमा है उसको एसीआइटिस बोल देंगे। एंड हर एक का अलग अलग इलाज थोड़ी हो
1: नाम
0: सकता
1: होगा
0: है, गंदगी हुआ है ना, साफ करना है। तो साफ कैसे करते हैं? वहां से चीजों को हटा के, मतलब अगर अगर खाट के नीचे सामान पड़ा है एंड सामान के साथ गंदगी जमा है, मुझे क्या करना है? खाट के नीचे का सामान हटाना है, खाट के नीचे का सामान हटा नहीं तब

0: अंदर का गंदगी साफ होगा ना। खाट के नीचे हम सूटकेस वगैरह कभी कभी रखते हैं, कबड़ कबड़ के नीचे, कबड़ के ऊपर सब रखते हैं ना सामान, तो वो क्या हटाना है, तो हमें क्या करना है, फास्टिंग करना है। नया चीज मत डालो। तो फास्टिंग से क्या क्या बीमारी ठीक होती है? फास्टिंग से हर बीमारी ठीक होती है, हर बीमारी ठीक होती है। नाउ फास्टिंग, किस तरह का फास्टिंग आपको करना है, ये आपके बीमारी का, बीमारी कितना ग्रेव है, कितना ज्यादा, मतलब देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ डिजीजेस। एक है विच इज कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस, कुछ दिनों के लिए आते हैं, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आता है। दैट इज समथिंग लाइक फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, छोटे टाइम के लिए आता है। उसके बाद होता है अक्यूट डिजीजेस, जैसा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, ये सब अक्यूट डिजीज। जब हम लोग ये अक्यूट डिजीज को हम दवाई खा के दबाते हैं, तब अक्यूट डिजीजेस क्यों होता है, जो छोटी मोटी गंदगी हुआ है उसको शरीर से निकालने के लिए अक्यूट अक्यूट डिजीजेस होता है। वो अगर हमने दवाई से बंद कर दिया, फिर आ, न, आ, फिर आ, वो जमा होते होते क्रॉनिक डिजीजेस बन जाता है। तो वो क्रॉनिक डिजीजेस को भी हमने दवाई खा खा के अगर बंद किया, तब बन जाता है डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस, लाइक कैंसर, लाइक किडनी फेलियर, ऑल दीज थिंग्स। इट गोज टू द क्रॉनिक स्टेज। तो हमें ये दोनों स्टेज में नहीं आना है। तो जब अक्यूट डिजीजेस होता है, उस टाइम पे हमें विदाउट एनी मेडिसिन, देर आर नेचुरल वेज, वन ऑफ द इजिएस्ट एंड द बेस्ट वेज, गो फॉर फास्टिंग। अगेन वेरियस टाइप ऑफ फास्टिंग, यू कैन डू फ्रूट फास्टिंग, यू कैन डू, दो वी डोंट कॉल फ्रूट फास्टिंग एज फास्टिंग, दे आर कॉल्ड फ्रूट डाइट, दे आर कॉल्ड रॉ वेजिटेबल्स डाइट, दे आर कॉल्ड कोकोनट वाटर डाइट, दे आर कॉल्ड सिट्रस फ्रूट जूस डाइट। सो देर आर दीज वेरियस काइंड ऑफ डाइट विद दिस 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग, मीन्स ओनली वॉटर, नथिंग एल्स। सो एंड ये स्टेज में अगर ठीक हो गया तो ये दोनों स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं। बट अगर आपने ये स्टेज में आपने दवाई खा के उसको सप्रेस कर दिया, तो सेकेंड स्टेज तक आएगा। सेकेंड स्टेज में भी हम यही सब प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके, या ये करके हम जड़ से गंदगी को निकाल सकते हैं। तो आवर शरीर, आवर बॉडी इज डिजाइंड टू लिव इन अ हेल्दी मैनर। हमारा डिजाइन में हेल्थ ही, गुड हेल्थ ही लिखा है, हमने इंटरवेंशन करके गड़बड़ कर दिया। हम अगर नेचुरल लॉस के हिसाब से चलते तो हमारा शरीर बीमार पड़ने के लिए बना ही नहीं है। तो ये हो गया उधर भी फास्टिंग, एंड वहां से ये स्टेज में अगर क्रॉनिक से हमने अगर डिस्ट्रक्टिव स्टेज में आ गया, तो फास्टिंग का ड्यूरेशन और लंबा होता जाएगा। वो तो इट डिपेंड्स अपॉन डिजीज टू डिजीज, बट ऑन एन एवरेज वॉट वी रिकमेंड इज वीकली वंस डू, एवरी डे डू 12 आवर्स फास्टिंग मिनिमम एवरी डे, बट अदरवाइज वीकली वंस डू अलोंग विद दैट, अलोंग नॉट अदरवाइज, अलोंग विद दैट वाटर फास्टिंग। वो धीरे धीरे धीरे धीरे 4 o'clock तक ले जाना है। शुरुआत में यू कैन स्टार्ट विथ 10 बजे तक वाटर फास्टिंग किया, तो जो भी ब्रेकफास्ट हम लोग सुबह 7 बजे 8 बजे खा लेते थे, उस टाइम पे नहीं खाना है, 10 बजे खाना है। 2-3 हफ्ता वो किया, वो करके करके अगर फीलिंग बेटर हो रहा है तो फिर 10 बजे तक रुकने को हो गया, फिर 11 बजे तक, फिर धीरे धीरे 12 बजे तक, ऐसा करके करके करके करके 4 o'clock तक वीकली वंस वी शुड डू फास्टिंग। एंड देर आर या सो इफ यू हैव सम असिस्टेंस इट विल बी बेटर, अलोंग विद दैट लिटिल बिट ऑफ सम अदर प्रोटोकॉल्स वी ऑल्सो हैव, इट विल हेल्प अस। सो वीकली वंस फास्टिंग, इफ नॉट दैट, हमारा तो एकादशी है ही, एकादशी के दिन जब बहुत लोग साथ में एज यू नो करते हैं, हमको संगठन, संगठन का एक बल होता है। बहुत लोग एकादशी का फास्टिंग कर रहे हैं, एकादशी का फास्टिंग आप भी करिए। आप अगर हिंदू हैं, हिंदू रिलीजन, रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग तिथियां आती हैं, जब 10 दिन फास्टिंग करते हैं, 5 दिन फास्टिंग करते हैं, गणपति के टाइम, दुर्गोत्सव, नवरात्रि के टाइम तब करिए। इफ यू आर अ मुस्लिम, रमजान है उस टाइम पे फास्टिंग करिए, बट यूजिंग नेचुरल लॉस प्रिंसिपल। दैट ऐसा नहीं पूरा दिन फास्टिंग किया, शाम को बैठ के बहुत सारे तला हुआ ये वो खा लिया, वैसा नहीं। फास्टिंग मीन्स नो दिस काइंड ऑफ फूड। इवन एकादशी में भी एकादशी के नाम पे साबुदाना वडे ये वो खा रहे, नो, वी शुड हैव दिस नेचुरल फूड डाइट, इट इज इंपॉर्टेंट। वो किस तरह का फास्टिंग कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारा भाषा में फास्टिंग मीन्स सिर्फ पानी पीना, तो एकादशी का फास्टिंग में सिर्फ पानी पिया, शाम को एक टाइम में कुछ फ्रूट्स या कुछ जूसेस या नारियल पानी या व्हाटएवर दिस ऐसा पी लिया, तो उस तरह का तो फास्टिंग कर।
1: आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ याद कर रहे हैं यहाँ पर। We should clear all thrust from our mind. जी, और यहाँ पर सुशील जी लिखते हैं ओम शांति, स्वागत है सुशील जी आपका। निवेदिता जी ओडिशा से लिखती हैं ओम शांति, स्वागत है निवेदिता जी आपका। नॉविस एनी स्टडी दैट बिकॉज ऑफ फास्टिंग कैंसर रिकवर, क्या कोई ऐसा स्टडी आपने देखा है या पता करा है आपने, तो ये उन्होंने पूछा है। और मानसी देवकर जी, आई एम ऑन 14 आवर फास्टिंग डेली। अच्छा, चलिए बढ़िया है, आप कैंसर क्योर करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वीकली वंस, बहुत सुंदर प्राकृतिक उपचार हफ्ते में एक बार फास्टिंग, ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। टू मच फास्टिंग हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन अवर बॉडी, इट विल मेक अस एनोक्सिया। जी, टू मच माना आप कंसल्टिंग के साथ करेंगे तो शायद वो चीज़ें सेट हो जाएगी, आप बिना कंसल्ट के या डॉक्टर के परामर्श या किसी नेचुरोपैथी के परामर्श के अनुसार ही करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता नहीं है और हमें जो है किसी एक गाइड ट्रेनर या कोच के साथ ठीक से डॉक्टर के साथ मिलके इन चीज़ों को प्लान करना है। आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ों पर वर्कआउट करना चाहते हैं, आप फास्टिंग आपके लिए कितना और कैसे कर सकते हैं। Any records of how many cancer patient recovered? अच्छा, कुछ है आपके पास ऐसा कुछ information, डॉक्टर सीमा जी?
0: नोबेल प्राइज विनिंग टॉपिक है ये, डॉक्टर इमोटो, आई जस्ट आई थिंक इट इज डॉक्टर इमोटो, आई जस्ट चेक, Doctor, I think it was Dr. Emoto who did this thing, and he twice, दो बार उनको Nobel Prize विना, yes, yeah, Dr. Yoshinori, Dr. Yoshinori, उनको 2016 में उनको Nobel Prize विना एक मिला था latest. इसके पहले भी I think around 1990s में एक और बार किसी को मिला है, और शायद इन्हीं को मिला है, I'm not sure. तो ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है कि कैंसर फास्टिंग से ठीक हुआ है. सो इट्स ऑल देयर ऑन द इंटरनेट, आप प्लीज इंटरनेट में ढूंढ लीजिए, आपको सबूत चाहिए तो फास्टिंग से इंसान ठीक हो सकता है नहीं, तो बिना सबूत के तो नोबेल प्राइज तो नहीं मिल सकता है ना, आप इतना तो आई थिंक सो भरोसा होता है हमको नोबेल प्राइज के ऊपर. तो या सो एंड एनी अदर, व्हाट वाज अदर क्वेश्चन, आपने एक और क्वेश्चन कुछ बोला था ना, एक सो सबूत है क्या पूछा ना किसी ने, किस कोई ठीक हुआ है कि नहीं है.
1: हाँ, शांताराम जी का सवाल था कि कोई रिकॉर्ड है क्या कैंसर पेशेंट रिकॉर्ड हुआ है, वो आपने हाँ हाँ बताया.
0: अच्छा, मेरे हमारे हमारे ही साथ एक, मैं इमाना IMANAH इमाना वेबसाइट में आप जाइए, डॉक्टर सुनीता करके है एक जन, उन्होंने अपना कैंसर उन्होंने ठीक किया है यूजिंग दिस प्रिंसिपल, उन्होंने अपना टॉक बताया है, वो रिसेंटली मैंने देखा, तो शी इज पार्ट ऑफ आवर आई मीन आवर टीम, मीन्स वो अपने हमारे टीम में अभी आ गई है अपना कैंसर ठीक होने के बाद, शी इज ऑल्सो अ हेल्थ कोच नाउ, सो ही हेल्प कर. तो आप इमाना वेबसाइट में जाइए, IMANAH इमाना वेबसाइट में जाइए, वहां पे आपको डॉक्टर सुनीता का टॉक मिल जाएगा. मैं शेयर करूं क्या, मैं शेयर करूं क्या उनका,
1: यहां किसी और ने भी भेजा है मेरे को, एक का नाम है डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो, डायरेक्टर ऑफ Longevity Institute at the University of Southern California, USC. Dr. Longo is one of the world's leading researchers on fasting and cancer, especially pioneer. ठीक है, बहुत बढ़िया. जी जी जी, चलिए. What record you with you? आपके पास कोई ऐसा record है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा है.
0: Yes, yes, I have had patients who have recovered. Yes.
1: जी जी जी. चलिए, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे.
0: हाँ, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू, लाइक मेनी पीपल टेल दैट आई मीन वी जो भी हम, जैसे मैंने बताया कि सृष्टि व्हाट आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो सिटीज में वगैरह रह रहे हैं, यहाँ पे हम ये हवा ब्रीद इन कर रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू ये जो ब्रीद इन कर रहे हैं ये हम अर्ली मॉर्निंग्स ओपन स्पेस में इफ पॉसिबल वहां जाके हमें करना है, एंड हमारी तरफ से हमें स्किन में मतलब लूज क्लोथ्स पहनना है, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, मेकअप वगैरह, ईच एंड एवरी मेकअप, आवर स्किन ब्रीथ, हमारे स्किन के थ्रू श्वास लेता है हमारा, ये एक जेम्स बॉन्ड मोडी मूवी भी था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, गोल्ड गोल्ड समथिंग ऐसा कुछ जेम, वहां पे मर्डर मर्डर होता है गोल्ड पेंट करके, ये जो मतलब वो जेम्स बॉन्ड मूवी में ऐसा दिखाया, एंड दिस इज ट्रू, एक बच्चे को बच्चा जीसस क्राइस्ट ऐसा मतलब उनका इसके रिक्रिएशन के हिसाब से पेंट करके उन्होंने रखा था, आफ्टर अ फ्यू आवर्स द बच्चा डिड नॉट लिव, लाइक हैड लेफ्ट द बॉडी, तो इन द मूवी ऑल्सो दे शोड द सेम थिंग दैट जस्ट गोल्ड पेंट कर देता था जिसको मर्डर करना है, एंड 1964 में ये मूवी रिलीज हुआ था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, गोल्ड समथिंग ऐसा कुछ मूवी था, जेम्स बॉन्ड मूवी,
1: जी जी जी,
0: उनके थ्रू ब्रेथ होता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सम ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम आवर आवर एस्पेक्ट से, हम जितना हम ट्रीज प्लांटेशंस को बढ़ाना चाहिए ताकि ट्रीज वातावरण को क्लीन करे, हमारे तरफ से फैक्ट्रीज वगैरह जितना ज्यादा नेचुरल लिव कर सकते हैं, नेचुरल लाइफ लीड कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है, कॉन्शियसली वी हैव टू रिमेम्बर दैट हम सिर्फ मैं करके हमने इतना ज्यादा खराब कर दिया वातावरण को, हम इतना भी कॉन्शियस नहीं है कि वातावरण अगर गंदा है उसमें मैं डूबूंगी, वातावरण अगर डूब रहा है मैं नहीं बच सकती हूँ, है ना, तो मैं इतना अगर मैं कर रहे तो मेरे लिए तो कम से कम वातावरण को ठीक रखो, सोसाइटी को ठीक रखो, दुनिया को ठीक रखो,
1: चलिए सीमा जी काफी अच्छी बात है आपने बता दिया, और वक्त और इजाजत नहीं देता हमें, हमारा शो का टाइम पूरा हुआ, और यहाँ पर रजनी धवन जी लिखते हैं, सो मेनी डिजीज हैव बीन क्योर्ड ऑन, आई एम 76 इयर्स, आई हैव रिजर्व स्मॉल प्रॉब्लम्स विथ डाइट एंड इंटरमीटेंट फास्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनी धवन, थैंक यू टू सीमा जी करके मैसेज किया है। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। फास्टिंग को लेकर अभी भी रिसर्च और कई लोग प्रयोग करके अपने आप को ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है व्यक्ति टू व्यक्ति, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
0: नो नो नो, आई विल टेल यू समथिंग, फास्टिंग जी, फास्टिंग हम कर रहे हैं, यहाँ से फास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली खाना खाना खाना खाना, उसको खा रहा है वो खा रहा है, ये सोचेंगे तो ये फास्टिंग नहीं है, ये फास्टिंग नहीं है, आई शुड डू इट हैप्पीली। यहाँ पे डिप्रेवेशन फील किया, यहाँ पे डिप्राइव्ड फील किया कि वो खा रहा है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो दुनिया भर का कचरा खा रहा है, उसको तो मुझे क्यों ऐसा, खुशी खुशी करना है, तो वो हम डिप्राइव्ड फील होकर करेंगे तो नहीं फास्टिंग आपको काम करेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैड टू पुट द सेंटेंस।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमें फास्टिंग को भी ठीक से समझने की जरूरत है, और जब भी आप करें तो छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं, वैसे हफ्ते में एक बार, लेकिन आप किसी बीमारी को लिए करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से जो है किसी अच्छे डाइटिशियन या नेचुरोपैथ या फिर डॉक्टर के कंसल्टिंग में आप इन चीज़ों को करें और फिर उसका रिजल्ट देखें, निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर हमने देखे हैं जहाँ पर लोग फास्टिंग ही कराते हैं ज़्यादातर, एक बार उनको खाना देते हैं, कई जगह पे वाटर पे भी फास्टिंग किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको करते हैं और कितना आपका मन और शरीर से आप तैयार हैं उन चीज़ों को करने के लिए। तो प्रयोग करके अनुभव करिए, यही इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल देने के बावजूद भी हो सकता है कि कभी कभी आपके मन को वो स्वीकार ना हो। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें। एक बार सीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सुधा जी को भी थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं बातें मुलाकातें सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: हाय मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बस खुशियाँ मनाइए।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आज हमारे सामने ऐसी नारी शक्ति विराजमान है जिनका नाम है अयोध्या शर्मा। आप आबू रोड सातपुर के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 62 वर्ष है और आपने पढ़ाई बीए की हुई है और आप लेखिका है, संगीत का शौक रखती है, डांस भी आप बहुत अच्छा कर लेती है, आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई सबका शौक है और किसी ज़माने में आप भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग भी लेते थे और इस कंपटीशन को आप जीत करके फर्स्ट भी आते थे। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वैसे हम इनको हाउस मेकर कह सकते हैं कि एक गृहिणी है, लेकिन साथ ही साथ इतनी प्रतिभाओं की धनी है। तो ऐसी नारी शक्ति से आज हम बातचीत करेंगे, आपसे मिलवाएंगे और इनका अनुभव भी सुनेंगे। तो अयोध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। बहुत अच्छा लगा, देखिए आप आज स्टूडियो में पधारे हैं आपके अनुभव शेयर करने के लिए और आपके चेहरे की स्माइल देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमेशा इसी तरह खुश मिजाज रहती है।
1: जी, मुस्कुराती रहती हूँ मैं सबको देखकर, ताकि मेरे को देख के और भी लोग मुस्कुराए, क्योंकि सबके दिलों में कितनी तरह की उलझने रहती है, लोग मुस्कुराना ही भूल गए, लेकिन अपन एक स्माइल देंगे तो उधर से भी एक स्माइल तो आएगी, ये मेरी कोशिश रहती है।
0: क्या बात है बहुत अच्छी कोशिश है कि खुश रहना और खुशियां बांटना।
1: दुखों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन कम से कम मुस्कुराने के तो पैसे नहीं लगते ना
0: जी।
1: और नहीं मुस्कुराएंगे तो भी दुख तो कटने वाला नहीं है, वो तो चलेगा, तो फिर क्यों नहीं अपन मुस्कुराए, क्यों अपने दिल की वो चीज लोगों को क्यों बताए कि मैं दुखी हूँ के क्या हूँ, मुस्कुराओ ना, इसमें क्या जाता है, हमेशा मुस्कुराते रहो
0: बहुत ही सुंदर और अच्छी सोच है आप कि अगर दुख है तो ऐसे भागने वाले नहीं है
1: जी,
0: तो चेहरे पर लाने से कोई फायदा भी नहीं है
1: जी,
0: इसलिए मुस्कुराना जरूरी है। बहुत सुंदर आपने बात कही है और कहते ना कि जो हकीकत में ऐसा जीवन जीते वो ही बोल पाते हैं
1: जी।
0: तो चलिए, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं?
1: अभी घर पर ही हूँ, बस यही लेखन कार्य और काव्य गोष्ठी से जुड़ी हूँ। अभी मैं 4-5 महीने से काव्य गोष्ठी से जुड़ी हूँ, उसमें हमारी सभी बहनें जुड़ी हुई है, ऑनलाइन काव्य गोष्ठी चलती है। हमारी अध्यक्ष एडवोकेट अर्चना शर्मा है, जो अपने आबू रोड में ही रहती है, आबू रोड की अध्यक्ष वो है। तो महीने के लास्ट तारीख को हमारी एक काव्य गोष्ठी होती है, उसमें सभी भी स्टेटों के जितने भी जो लोग हैं कुछ बोलना चाहते हैं, लेखन कार्य करते हैं या संगीत से जुड़े हुए हैं, कोई भी कुछ अपनी रचना बोल सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है, अपनी स्वरचित हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और स्वरचित नहीं है या किसी कवि की कोई कविता आपको बहुत पसंद है या आपके मन को मतलब मनोबल बढ़ाती है तो वो भी आप उसमें बोल सकते हो। ये पूरी छुट्टी है उसमें, किसी कवि की कोई कविता आपको बहुत पसंद है और आपका मनोबल बढ़ाती है तो आप औरों को भी सुनाकर प्रेरणा दे सकते हो।
0: अच्छा, तो ये कोई आप पर्सनल समाज मिलकर के कर रहा है या फिर सभी के लिए?
1: सभी के लिए है ये, ये गांधी धाम, बड़ोदरा, ये आबू रोड, कितने शहर जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, और भी लोगों को जोड़ो जो संगीत पसंद करते हैं और किसी भी तरह का मतलब गा सकते हैं, सुना सकते हैं, अच्छी बातें अच्छे विचार आजकल इसी की जरूरत है लोगों के लिए
0: जी,
1: क्योंकि सब लोगों में तनाव बहुत ज्यादा है।
0: तो इसमें महिलाएं जुड़ती है या पुरुष लोग?
1: नहीं,
0: भी जुड़ते
1: हैं? पुरुष भी, बच्चे भी, जो कोई भी हो गा सकते हैं
0: जी। जी
1: जी,
0: और इससे मतलब आप किस तरह इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या सिस्टम रहता है इसका?
1: इसका सिस्टम ये है कि महीने की जो एक लास्ट तारीख होती है उसको चाहे कोई सा भी वार पड़े, संडे पड़े तो बहुत ही अच्छा होता है, सभी के लिए सुविधा रहती है। अगर संडे नहीं, आपके सैटरडे पड़ा था, शनिवार था 30 तारीख का, तो हुई मीटिंग तो वो एक लिंक देते हैं, उस लिंक से जुड़ना पड़ता है, उस लिंक पे सभी की फ़ोटोएं आ जाती है और सभी एक दूसरों का वेलकम करते हैं। फिर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है और जैसे जिसका नाम बोलता है और जिसको जो कविता जो भी कुछ बोलना अपना कार्यक्रम, उसकी 2 लाइनें पहले एक दिन पहले लिख के डालनी होती है व्हाट्सएप पे कि मैं इस विषय पर ये बोलूँगी, तो उनको पता रहता है तो वो आगे होके बोलते हैं आप सुनाइए अपनी रचना, इस तरह से होता है।
0: टाइमिंग क्या रहता है?
1: टाइमिंग जितने ज़्यादा लोग उतना ही टाइम, अगर वो किसी काम के वजह से बाहर गए हुए हैं, नहीं जुड़ पा रहे, उस दिन कहीं गए हैं, सबको घर गृहस्थी में काम रहता है तो नहीं हो पाता है। जैसे जितने लोग हैं, अगर ज़्यादा हो गए तो डेढ़ दो घंटा भी हो जाता है, और कम लोग आए हैं आज तो कम टाइम लगता है, एक घंटे।
0: तो ये रात का समय रहता है, दिन का समय रहता है?
1: शाम का 5:30।
0: अच्छा, 5:30
1: शाम का टाइम।
0: फिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है?
1: इससे अभी देख रहे हैं समय, फिर जो सबसे अच्छा गाते हैं करते हैं उनको अलग से छांट कर और फिर उनका वहाँ नाम वगैरह देंगे, सम्मानित करेंगे। दिल्ली में इसका बड़ा वो है कार्यालय, वहाँ सभी नाम वाम जाएंगे। अभी देख रहे हैं कौन अच्छा गाते हैं करते हैं, फिर उनको सम्मान करेंगे।
0: दिल्ली में?
1: दिल्ली में।
0: तो फिर आप लोग भी जाते हो या फिर दिल्ली में आपकी टीम है वो सम्मान करती है?
1: दिल्ली बुलाया जाएगा बाद में, जब कभी भी उनका प्रोग्राम होगा बड़ा। अभी तो ये ऑनलाइन चल रहा है।
0: अच्छा, तो कितना समय हुआ है ये?
1: ये अभी 5-6 महीने हुए।
0: अच्छा, तो हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी मान लीजिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं?
1: जरूर जरूर।
0: अच्छा,
1: तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी गा सकते हैं।
0: तो या हर कुछ भी सुना रहा है और आप उसको पसंद करते हैं या सेलेक्टेड गीत कविताएं होते हैं?
1: नहीं, पहले उनका वो कराते हैं, अगर अच्छा गाया है तो उनको सराहना करते हैं कि भाई अच्छा गाया है, आगे और भी अच्छा गाओगे आप, प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे शुरुआत होती है, चलता है, थोड़ा बहुत अगर कोई वो है तो उसमें सुधार कराने का बोल देते हैं कि आप थोड़ा और अच्छा गाइए, अच्छे उससे बोलिए, तो सभी को लेते हैं।
0: अच्छा,
1: ताकि सबका मनोबल बढ़े कि भाई अबकी बार थोड़ा ढंग से नहीं गा पाए तो अगली बार थोड़ा इसमें ये सुधार करना, फिर जब फाइनल होगा तब उसमें फिर अच्छे लोगों को छांटेंगे।
0: हाँ, वो फिर छटनी हो जाती है। धीरे-धीरे
1: छटनी हो जाती है। अभी तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है और कोई भी भाग ले सकता है।
0: अच्छा, इसमें कोई फीस वगैरह?
1: नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री एकदम।
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: ग्रुप से जुड़ना होता है, क्या करना होता है?
1: लिंक देते हैं, वो लिंक पे अपना नाम, फोटो, एड्रेस, आधार कार्ड, सब तरह के वो मतलब फॉर्मेलिटी होती है, वो पूरी करनी पड़ती है।
0: ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, ताकि किसी को बड़ा मंच मिले ना मिले
1: जी,
0: यहाँ से शुरुआत होती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है
1: जी,
0: तो उनका सपना भी पूरा होता है
1: जी। एक बात बताऊं कि बचपन से मुझे कोई भी अच्छी चीज हो ना, कहीं भी पढ़ने को सुनने को मिलती है तो उसको आके मैं कॉपी में उतार लिया करती थी। ऐसे करते करते मेरी पूरी डायरी भर गई। फिर मैंने सोचा क्या होगा इसका, एक दिन क्या करेंगे, कभी इच्छा होती पढ़ लेते हैं, मन खुश हो जाता है कोई अच्छी रचना पढ़कर। इस तरह से चलता रहा और अब देखो बाबा की कृपा, ये कार्यक्रम शुरू हुआ काव्य गोष्ठी, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह का प्रोग्राम होगा। तो इसमें अभी पूरी डायरी मेरे काम आ रही है, और इसमें ऐसा है कि ये नहीं कि बिना देखे आप गाओ, कागज पर देखकर डायरी में भी गा सकते हो आप। सबसे अच्छी बात ये, अब देखो एज का भी वो है, थोड़ा भूल भी जाते हैं अपन गाते गाते, प्रैक्टिस है नहीं
0: जी।
1: अचानक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ तो आप कागज में देख के, किताब में देख के गा सकते हो। तो वो मैंने जो इतना सारा लेखन कार्य इकट्ठा किया है लिख लिख के, और वो मेरे काम आ रहा है, एक से एक गीत गाकर और सब प्रेरणादायक ऐसे गाती हूँ। हमेशा वाहवाही होती है, सरस्वती वंदना से कार्यक्रम शुरू होता है, सबका नंबर आता है। अभी 4-5 बार सरस्वती वंदना मैंने गई।
0: अच्छा, इसमें कोई थीम देते हैं आप या हर प्रकार के गा सकते हैं, जैसे राजस्थानी, हिंदी?
1: हर प्रकार के। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एज वाले हैं, वो भजन गाते हैं तो भजन भी गा सकते हैं, किसी भी भगवान का हो, वो भोले बाबा का हो, वो गणेश जी का हो, किसी का भी हो,
0: जिसको जो आता है वो सुना सकता है।
1: सुना सकता है, संगीत से जुड़ा होना चाहिए
0: जी।
1: संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। संगीत में वो शक्ति है कि कितना ही बीमार आदमी हो, उसकी आप कितना ही दवा सब कुछ कर लो, देखभाल कर लो, जब तक अच्छे विचार और संगीत उनको नहीं सुना दोगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। अभी डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, एक डॉक्टर तो होता है देखता है ऐसा हो गया नहीं है, टाइम लगेगा वो है, और एकदम पॉजिटिव बोलता कुछ नहीं, अभी होते हो आप रेडी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये विचारों का ही वो है, तो एकदम पेशेंट में स्टेमिना आ जाती है।
0: जी जी, बिल्कुल। हाँ, आपने सही कहा है। और संगीत के बहुत ही अच्छे आपने शायरी बोल के सुनाई है कि रोगी को वास्तव में संगीत सुना दिया जाए तो आदत तो उसी समय ठीक हो जाएगा।
1: कम से कम हर स्वस्थ व्यक्ति को भी आधा एक घंटे रोज संगीत सुनना चाहिए
0: जी।
1: मैं भी टीवी पे गाने सुनती हूँ मस्ती पर, पुराने गाने फिल्मों के।
0: चलिए तो हम आपसे दो लाइन जरूर सुनेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, इसलिए कहीं भी जाइएगा नहीं। अयोध्या जी हमारे साथ बने हुए हैं, इनके अनुभव अभी भी सुनने बहुत सारे बाकी है। आइए सुनेंगे एक गीत, उसके बाद पुणे लौट करके आ रहे हैं। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। माँ बहन बेटी बहू सभी के चरण स्पर्श करो। आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में अयोध्या जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं कि किस तरह इनके पिताजी यात्रा निकालते थे और ट्रेन में ये लोग यात्रा करते थे। तीन तीन चार चार महीना ट्रेन में ही इनका गुजरता था। तो अयोध्या जी, फिर आप कह रहे थे कि बच्चे का जन्म भी ट्रेन में हो गया
2: जी।
1: तो ऐसे बड़े बुजुर्ग बच्चे हर एज वर्ग होता था या फिर इसमें कुछ कंडीशन होती थी?
2: नहीं, हर एज होती थी। यहाँ तक कि गांव के लोग तो ये मानते हैं जो आत्मा इस दुनिया में नहीं है कि हमारे देवता हैं, पूर्वज हैं, उनको भी यात्रा करानी पड़ती है। आप मेरे कभी अनुभव सुनना, साक्षात ऐसी ऐसी बातें हैं। तो वो कहते भाई हमारे पितरों को हमको यात्रा लेके चलनी है। कहते हैं रोंगटे थोड़े खड़े हो, बोले पितरों को यात्रा करानी है तो उनका कैसे? तो मेरे पिताजी को मालूम नहीं था, उन्होंने कहा वो तो देवता समान है, उनके क्या पैसे लेने, ले चलो यात्रा में उनको। लेकिन वहीं स्टेशन पे जैसे वो आए ना तो उनके शरीर में वो आ गए और उनका मेरी जगह कहाँ है, मेरा टिकट लो तब मैं बैठूंगा गाड़ी में। सबके टिकट हैं, बिना टिकट के मैं नहीं चलूंगा। फिर 125 रुपया उस जमाने में चलता था, 1 रुपया और 54, आपने देखी होगी।
1: हाँ जी बिल्कुल,
2: अभी भी रखे हैं मेरे पास 25 पैसे
1: जी। तो हमने भी कर रखा है स्टोर
2: जी। तो 125 रुपये का टिकट लिया उनका और उनकी इतनी सी जगह छोड़ के और फिर बैठा करते थे। एक बार कोई उनकी जगह खिसक गया, बैठ गया, ध्यान नहीं रहता है तो फटाक से उनके घर के सदस्य के शरीर में आके बोला कि मेरी जगह छोड़ के बैठा करो। और डिलीवरी हुई, डेथ हुई, कितने ही लोगों की डेथ हो जाती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी, कहाँ जाना है, किसको वो करना है, क्या करना है। फिर स्टेशन मास्टर जी से सब कुछ पूछते थे कैसे क्या करना है। फिर उनका अंतिम संस्कार भी होता था काशी में, उज्जैन में, कई जगह 8-10 डेथें भी हुई थी। बहुत बहुत बुजुर्ग लोगों को ले गए। अब आते थे टिकट और उस टाइम इतने बिजी होते थे, कहते भैया मेरे 8 टिकट काटना, मेरे 5 काटना। तो हम सब लोग होते थे, जगह जगह एजेंट बैठे हुए थे, सबको रसीद बुक दे रखी थी, पैसे ले लेते थे और रसीद काट के, मेरे 5 सदस्य है और ये एज है, अब वो कौन सी कंडीशन में है, कौन सा है। और एज का तो आजकल कोई भी नहीं है
1: जी,
2: किसी भी एज में व्यक्ति कभी भी जा सकता है
1: जी।
2: एज का वो नहीं है कि इसी एज में व्यक्ति जाएगा करेगा।
1: तो जैसे आप 8 भाई बहनों इस तरह हर साल यात्रा पर 3-4 महीना बाहर रहते थे
2: जी,
1: तो स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी?
2: मिल जाती थी उस जमाने में।
1: अच्छा।
2: बहुत खुश होती थी टीचर, बहुत ही खुश होती थी, जाओ यात्रा में जाओ आराम से। और भगवान की दया से पास हो ही जाते थे, बस सेकंड एंड थर्ड या कभी कभी फर्स्ट बॉकम इस
1: जी,
2: तरह
1: जी।
2: से कर करके और ग्रेजुएशन किया।
1: तो हर साल वो स्थान पर जाते थे या चेंज करते रहते थे?
2: चेंज भी होता रहता था, जैसे ये गंगा सागर वगैरह जाते थे तो थोड़ा चेंज होता था कभी। और तीनों धाम की जो यात्रा है उसमें तो वही सब आते थे, रामेश्वरम, जगदीश, जगन्नाथपुरी, ये सारे सब माउंट आबू। तो कितनी बार आके गई हूँ शादी में, रेलवे स्टेशन पे खूब टोस्ट खारी खाई है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट स्टेशन मेरा आबू रोड ही होगा।
1: शादी करके आप आबू रोड ही आ जाएंगे।
2: आबू रोड आ जाएंगे
1: जी जी जी। तो जैसे आपने कहा कि आपको कढ़ाई सिलाई बुनाई सभी का शौक है
2: जी,
1: तो ये किनसे सीखा आपने?
2: ये घर में ही, आठ पड़ोस की औरतें होती थी सभी, जैसे स्वेटर बुनना है। और स्कूल में भी मेरे वो होम साइंस थी तो कुकिंग करना मुझे बहुत शौक है, गुलाब जामुन वगैरह सब अपने हाथों से बनाना करना, गाजर का हलवा। तो इसका भी एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में आता था दाल के पकौड़े बनाने, गाजर का हलवा बनाना है, फिर नंबर मिलते थे। सब मैडम वगैरह टेस्ट करती थी कितने नंबर आए कितने क्या। होम साइंस थी मेरे पास सब्जेक्ट,
1: होम साइंस में तो
2: सभी आ जाते हैं, कपड़े धोना, किस तरह से नील देना, टीना पोल देना, कपड़े के दाग कैसे छुड़ाना, सब चीज की एग्जाम होती थी।
1: तो आपके लास्ट तक आपने बीए फाइनल किया था तब तक होम साइंस थी या फिर 11-12 तक?
2: नहीं, 11-12 तक। फिर मेरे थे हिंदी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स बीए तक।
1: अच्छा।
2: हाँ, 12वीं से जो सब्जेक्ट होते हैं ना तीन
1: जी,
2: तो हिंदी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र।
1: हाँ, उसके बाद आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया।
2: चेंज कर लिया
1: जी।
2: फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई 21 साल की उम्र में, 21 से 22 में लगी जब शादी हो गई।
1: जी जी, जैसे आप बता रहे थे कि पूरा परिवार मिलकर के आप यात्रा पर जाते थे, तो 3-4 महीना घर बंद रहता था?
2: घर बंद रहता था, केवल एक रूम है बहुत बड़ा, जो मंदिर है, मेरे पिताजी पंडित है जैसे मैंने बताया, तो मंदिर है बहुत बड़ा, तो वो पड़ोसियों को देखे जाते थे उसकी चाबी कि आप इनकी पूजा करना भगवान के रोज, तो वो संभालते थे पूजा जब तक हम नहीं आते थे। पहले पड़ोस भी परिवार की तरह होते थे, एकदम घर की तरह पूरा, और न कोई चोरी होती थी ना कुछ, भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के ताला देके चले जाते थे। आजकल तो जाने से पहले घर की 10 बार सोचते हैं और

0: एंजॉय खराब
1: जी,
0: हो
1: जी, बिल्कुल
0: इतना पैसा खर्च किया है अभी जाके आए हम वहाँ शिमला तो बिल्कुल मैं तो घर की याद ही नहीं आती जाके वहाँ सब सारा सब देख कर आराम से घर में आते हैं भगवान की कृपा है सब कुछ पहले जैसा ही सब कुछ मिलता है
1: जी जी
0: तो बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ अगर वो अपने ऊपर कृपा कर रखी है तो किसी की जरूरत नहीं है एक की जगह 1000 को ला के खड़ा कर देगा और उसकी वो नहीं है कृपा तो सारा खेल बिगाड़ देगा ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है प्रभु विश्वास करना
1: जी
0: भगवान पे
1: तो जैसे आप बता रहे थे कि 3-4 महीना यात्रा पर जाते आप 8 भाई बहनों कभी किसी की शादी भी हुई होगी तो यात्रा के दौरान अगर शादी करनी होती तो फिर कैसे क्या करता है
0: नहीं उस हिसाब से करते थे शादी अब जैसे भाभियाँ वगैरह आ गई तो उनको भी लेके जाते थे मेरी भाभी 1.25 महीना हुआ था डिलीवरी थी भतीजा हुआ 1.25 महीने की थी और मेरे पिताजी की हमेशा जिद रहती थी कि सारे घर के चलो मेरा भी यही नारा है हमारे घर में पता कहीं भी जा अब मेरे बच्चों का भी यही नारा हो गया अभी जैसे हिल स्टेशन शिमला जाना था पहले हम मंसूरी गए गई बार तो एकदम माउंट आबू जैसे ही सारा राउंड राउंड रास्ता तो अब थोड़ी एज वेज हो गई तो थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है तो मैंने कहा बेटा तुम जाओ दोनों तीनों जने पापा और मैं घर पे रह जाएंगे तो इसने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे आपको छोड़ के तो मैंने कहा दोनों जने का खाना तो मैं बना लूंगी नहीं है तो टिफिन मंगा लूंगी सारी व्यवस्था है और सब काम वाली आती है सारा काम करने वाली तो मैंने कहा बोले नहीं जाएंगे तो उस टाइम तो मतलब कि कम रेट में थे रूम वगैरह और ये सारा सब मैंने मना कर दिया तो इसने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया फिर 10-15 दिन बाद मुझे याद आया मैंने कहा तुम नहीं जा रहे क्या बोले नहीं आप नहीं चल रहे तो हम भी नहीं चल रहे फिर मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं मेरे जैसे तो मैंने कहा कि लो चलो चलते हैं होगा सो देखा जाएगा जो भी तबीयत बिगड़ेगी करेगी कुछ भी होगा नहीं बोले आपको लेके इस तरह से चलूंगा तबीयत बिगड़ेगी कैसे मसूरी पे तो सुविधा नहीं थी और शिमला में क्या ट्रेन जाती पहाड़ियों के बीच में होके 103 तो गुफाई थी कभी आप गए हो शिमला में देख के आना बहुत गजब का नजारा है 103 तो गुफाएं हैं इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी अंधेरा गुप सब लोग ट्रेन वाले चिल्लाए और वो ट्रेन जिसमें आराधना पिक्चर थी ना जिसमें शर्मिला टैगोर थी गाड़ी में बैठी बुक पढ़ती है और राजेश खन्ना नीचे रोड पे चलते हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उस वाली ट्रेन में हम बैठे जो शूटिंग हुई थी और वो ट्रेन चली इतना सा भी नहीं लगा कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे कब चढ़ गए और इतना मजा और चारों तरफ इतने फूल प्रकृति के अपन तो लगाते हैं एक पेड़ पौधा भी तो उसको कितना संभालते हैं कितना करते हैं तब कोई फलता है या फूल देता है प्राकृतिक सौंदर्य इतना हजारों फूल बेल लताएं इतना सब कुछ नज़ारा देखने में पूरा कब समय भी बीत गया पता ही नहीं चला 4-5 दिन तक वहाँ शिमला जाके
1: जी जी तो जैसे आप बता रहे थे कि आप पूरा परिवार जाते थे
0: जी
1: ट्रेन से और आपने कुछ बताया था कि आपके भाभी को भी
0: डिलीवरी हुई थी
1: वही ट्रेन में
0: जी नहीं घर पे हो गई थी डिलीवरी 1.25 महीने की हो चुकी थी हमारे 1.25 महीने तक सूतक मानते हैं कि 1.25 महीने तक चूल्हे परिंडे कहीं लग नहीं सकते पवित्र नहीं मानते 1.25 महीने के बाद जब जलवा हो जाता है पूजा हो जाती कुआ पूजन होता है हमारे फंक्शन होता है वो फंक्शन हो जाता है उसके बाद वो कहीं भी जा सकती करती तो मेरी मम्मी ने मना किया कि भाई बहू को नहीं लेके चलेंगे बच्चा बहुत छोटा है रोज ये गंगाओं में नहाएगी सब जगह गंगा जी में नहाना पड़ता है तो बच्चा छोटा है दूध पीता है माँ का तो बीमार बीमार हो नहीं बोले भगवान है सब कुछ सब बात वो भगवान पे छोड़ते थे और उनके सब काम पूरे भी होते थे ऐसे ही मैं भी भगवान पे छोड़ती हूँ मेरे सब काम पूरे होते हैं मैं जो कह देती हूँ ना वो बात होती है फिर लेके गए उसको ले गए अब पिताजी की जिद के आ गए वो सभी गंगाओं में नहाई करी तो मेरे भतीजे को निमोनिया हो गया था निमोनिया हो गया छोटे बच्चों 1.25 महीने का बच्चा लड़का वो भी
1: कितना नाजुक
0: हाँ कितना नाजुक
1: चाहे तो लड़का हो चाहे लड़की हो वही
0: बराबर है वो तो
1: जी
0: जी बहुत छोटा था बहुत मना किया मेरी माँ ने कि देखो मत लेके चलो हर साल चलते हैं अगले साल चलेंगे थोड़ा बड़ा होने दो पर उनको तो बहुत अच्छा लगता था कि परिवार पूरा ही चले तो लेके गए तो भाभी हर गंगाओं में नहाती थी तो उसको भी थोड़ा बहुत तो नहलाते ही थे गंगा का पानी वगैरह तो नमोनिया हो गया बहुत बड़ा और इतना सीरियस हो गया कि पूछो मत तो मेरे भाई वगैरह डॉक्टरों को दिखाए करे वो मेरे पिताजी तो बस अपनी शक्ति को मानते थे 51 पंडित बिठाए और पता नहीं कौन सी पूजा करवाई वो कोई नाम है वो पूजा उन्होंने कराई
1: वो भी ट्रेन में ही
0: नहीं वो मतलब ट्रेन से नीचे उतर के ग्राउंड में
1: सफर में और कहाँ से लाए होंगे 51 पंडित
0: ट्रेन में ही मिल गए
1: अच्छा
0: हाँ ट्रेन में ही पूरा जनकपुर और ये जयपुर

0: में कौन सी जगह है, वो साधु महात्मा संत ये अजमेर के पास है, सलीमाबाद वहाँ के सर्वेश्वर जी महाराज, जनकपुर, अयोध्या, सब जगह
1: जी
0: के
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: चलिए तो
0: और फिर ठीक
1: हम
0: हो गया वो,
1: अच्छा,
0: पूजा
1: अरे
0: होते
1: वाह,
0: ही ठीक हो गया मेरा भतीजा
1: चलिए बहुत सुंदर। तो
0: जी।
1: आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: बहु रानी और सास माँ होती है, बहु रानी और सास माँ होती है। नारी के सम्मान की ऐसी कहानी होती है, नारी के सम्मान की ऐसी कहानी होती है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में अयोध्या जी हमारे साथ है। इनके काफी अनुभव सुने हैं कि किस तरह हर साल 3-4 महीना आप सफर में ट्रेन में ही रहते थे, बच्चे का जन्म भी ट्रेन में, तो बुजुर्गों की मृत्यु भी ट्रेन में, और कुछ हो गया है तो पूजा पाठ वगैरह भी सब ट्रेन में, मतलब आधी लाइफ इनके ट्रेन में ही गई। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है, और भी सुनेंगे। तो अयोध्या जी, आप कुछ बता रहे थे कि आपके पिताजी को अवार्ड भी मिला।
2: जी, हमेशा हर साल यात्राएं लेके जाते थे तो उनको बॉम्बे रेलवे से बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। ट्रेन के पास पूरे ट्रेन बनी हुई है सर्टिफिकेट के ऊपर, और उनके विचार लिखे हुए हैं कि एक आदमी ऐसे छोटे गांव से, राणुली गांव दौसा के पास, 4 क्लास पढ़े हुए उस जमाने में, लेकिन आज के PhD के सबसे बड़ी से बड़ी शिक्षा को मात दे सकते थे। इतना ज्ञान, इतना अनुभव उनको था। व्यवहारिक ज्ञान जो होता है पढ़ाई से भी ज्यादा होता है, किताबी ज्ञान कम होता है। किताबें पढ़ के डिग्रियां चाहे कोई कितना ले लो, अगर वो अच्छी भाषा नहीं बोल सकते, अच्छे से किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर उनकी पढ़ाई किस काम की है।
1: जी,
2: तो व्यवहारिक ज्ञान होना जीवन में बहुत ज्यादा है। तो आज उन्होंने देखो 4 क्लास पढ़े हुए थे, 4th क्लास की परीक्षा भी, जैसे आज हम कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो अपने गांव से दूसरे शहर में जाते हैं, सेंटर आता है, तो ऐसे ही उस जमाने में राणोली एक छोटा सा गांव है दौसा के पास, उसमें हमारे आमों के बगीचे वगैरह हैं, दादाजी ने लगा रखे हैं और ये सब। तो मेरे पिताजी 4th क्लास का एग्जाम देने के लिए दौसा आए थे।
1: अच्छा।
2: उस जमाने 4th क्लास के, और हम इतने पढ़ गए लिख गए, सारे बहन भाई सबको मात कर देते थे, हिसाब किताब सब में। इतने लोगों को यात्रा कराना ऐसे ही है क्या? आज अपना एक परिवार नहीं संभाल सकते,
1: बिल्कुल,
2: और वो भी एक बेटा एक बेटी आज के जमाने में। और आज की जनता तो केवल एक बच्चे पे आ रही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब हमारे देख लो, गुड़िया है एक, 5 साल की हो गई मेरी पोती, बेटे वो बिल्कुल ना बोलते हैं, बहुत है एक ही, और हम 8 बहन भाई थे। तो सोचो उन लोगों की, उन्होंने कैसे, और अच्छा खिलाया अच्छा पहनाया, हमको कोई शिकायत नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना है, वो जहाँ कहीं भी हो स्वर्ग में हो, और हर जन्म में हमको वही परिवार मिले, वही माता पिता मिले। इतना सुख उन्होंने हमको अच्छा दिया कि कभी ऐसे, और इतना प्रेम होता था। छोटे बच्चे के कपड़े हो गए, वो बड़ा हो रहा है तो उसको पहना दिए, उसके उसको पहना दिए। आजकल तो एक बार पहने फेंको हटाओ, और वो भी ब्रांडेड कपड़े होने से मैडम कुछ नहीं होता है।
1: जी,
2: ब्रांडेड सोच होनी चाहिए। कपड़े खराब हो तो शर्म नहीं करनी चाहिए, चोरी चकोरी से गलत कार्य से शर्म करनी चाहिए। अपना घर कैसा भी हो, कुछ भी हो, मंदिर है वो, झोंपड़ी हो चाहे कुछ, तो इस तरह के लोग आजकल शो ज्यादा देखते हैं, असलियत को वो नहीं पहचानते।
1: जी जी जी, नकली का जमाना है,
2: नकली का जमाना, दिखावे का, दिखावे का।
1: जी, तो फिर आपको शिक्षा संस्कार भी माता पिता से ट्रेन में ही मिलते थे?
2: ट्रेन में मिले, घर पे भी मिलते थे, हर बात पे रोका टोकी करते थे, जैसे कुछ गलत कर रहे हैं कुछ में, कोई नाक में उंगली डाल रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है, कोई आंख में कर रहा है, तो हमको ऐसे ऐसे फेर शायरियां चौपाइयां ये सब करके बताते थे। नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर। इस तरह से कह कह के समझाते थे, और इतना परिपक्व कर दिया हमको कि आज वो इस दुनिया में नहीं है तो भी वो 10 बार एक दो काम कर लेंगे, फिर हाथ धोने की आदत, एक दो काम करे फिर इतनी बार हाथ धोते हैं करते हैं। और अब मेरी वही आदत हो गई, परिवार में मैं कुछ देखती हूँ करती हूँ तो तुरंत टोकती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो बच्चों, ऐसा नहीं करना बेटा, बैठे बैठे कोई जैसे यूं कर रहा है, हाथ झूठे हो गए ना, तो बोले अब काम क्या करना है जो हाथ झूठे हो गए, नहीं मुँह में हाथ नहीं देने का। परिवार के लिए भी मैं बहुत रोका टोकी करती हूँ, ये मेरी थोड़ी गलत आदत है, सही है जो भी आप समझो। इतना
1: आपका समय अलग था, लेकिन अभी का समय अलग है, अभी थोड़ी रोका टोकी मतलब पसंद नहीं करते आज की जनरेशन।
2: लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं कहते, मेरे बच्चों की पूरे समाज में तारीफ है और मेरे पीयर वाले सब मेरे बच्चों को इतना मेरे पीयर जाते हैं सुबह उठते में मामाओं को प्रणाम करना मामी जी को प्रणाम करना सब सब कहते हैं अयोध्या भाई आपके बच्चे देखो कितने संस्कारिक है मतलब ता से बच्चे की पहचान नहीं होनी चाहिए कि भाई उनका पुत्र है ये पुत्र से पिता की पहचान होनी चाहिए अच्छा आप उनके बच्चे हो तो बच्चों से हमारी पहचान है बच्चों को भले ही इनको ऐसा लगा हो कभी मेरी बात का बुरा भी नहीं माना है लेकिन इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो मुझे पसंद है तो पूरा आबू रोड कहते हैं कि तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे होंगे जिन्होंने तुमको संस्कार दिए तो ये संस्कार पहले मैं लेके आई हूँ अपने घर से गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और गृहिणी चाहे तो घर को नर्क बना सकती ये गृहिणी के ऊपर डिपेंड है आदमी तो हमेशा बाहर रहता है जॉब पे लेकिन वो चाहे तो फिर बच्चे कहना मानने वाले भी होने चाहिए थे मैंने ऐसा जीवन जिया शादी के बाद अपना काम किया पहले तो इतने नौकर चाकर भी नहीं होते थे सब झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से करते थे हमारे जमाने में सारा सब कुछ कर करा के दोपहर में बच्चों को आते ही स्कूल से सिखाया खाना खा के कपड़े चेंज करके और अपना बैग लेके पहले होमवर्क पूरा करो और फिर दोपहर में सो जाओ ना मैं कहीं जाती थी इधर उधर मोहल्ले में औरतों के पास कोई ऐसी औरत हो जिसके पास बैठे शिक्षा मिले तो मेरा तो अलग ही जीने का तरीका है आपको पता है मेरे को तेरी मेरी ये फालतू का समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है अगर अपन पुण्य भी नहीं कमा सकते हैं तो क्यों किसी को अपना घर संभाल के ही बता दें तो वही सबसे बड़ी बात है मैं तो सबसे यही कहती हूँ मेरे किसी की नहीं सुननी मेरे तो बस मेरे घर की तारीफ हो जाए कि अच्छे से घर चल रहा है वही सबसे बड़ी बात है
1: बहुत सुंदर विचार है आपके और वो शिक्षा संस्कार जो बचपन से मिलते हैं उसका तो प्रभाव पूरे लाइफ टाइम पड़ता ही है और हर माँ की इच्छा रहती है कि अगर अच्छे शिक्षा संस्कार हमें मिले तो हम भी अपने बच्चों को उस अनुसार ढाले लेकिन हाँ सबके बच्चे ऐसे नहीं होते कि वो अपने माता पिता के अनुसार चलते हैं वो सारे अपने मन से भी चलते हैं
2: मन से चलते हैं लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं आज बैंक में जॉब करता है वाइफ आ गई बच्ची हो गई लेकिन आज भी ये बड़ा भी कितना भी बुड्ढा हो जाएगा मेरे लिए वही रहेगा मेरी छवि में मुझे वही दिखता है कि मेरा बच्चा है जब इतना सा था आज इतना बड़ा हो गया अभी भी मैं इसको डांट दूं कुछ भी कह देती हूं कभी कुछ नहीं कहता
1: माता पिता के लिए तो देखे बच्चे बच्चे ही रहेंगे
2: हां मेरा कहना मानते हैं अभी भी मैं कह देती हूँ ऐसे नहीं वैसे नहीं यूं नहीं मेरे हस्बैंड को भी कह देती हूँ मैं क्योंकि इनके बचपन में ही माता पिता ऑफ हो गए थे
1: अच्छा
2: दादी ने इनको पाला था बहुत ऐसी कंडीशन जिंदगी जी है इन्होंने तो मैं ना मेरी थोड़ी आदत खराब है इनको भी कह देती हूँ ऐसे नहीं आप इतने बड़े प्रिंसिपल हो ऐसे बैठने का ढंग हो ऐसे बात करना अभी जैसे गेट पे आए ना तो एक पुलिस वाले भैया आए और भाग के आए और बोले सीधी गाड़ी अंदर जाने दो हमने सोचा भाई ऐसे क्या बोले इन सर से मैं पड़ा हुआ हूँ बार गेट कीपर पे बैठे ना पुलिस वाले भैया नाम भी बताए बेटे को पता होगा तो उनका सीधी गाड़ी ले जाओ इस सर से पड़ा हुआ हूँ मैं अब इनके क्या तीन अटैक आ गए ना थोड़ा कम बोलते हैं हमेशा 100% रिजल्ट दिया इन्होंने कभी सुख की रोटी नहीं खाई टाइम हो गया रोटी छोड़ के चल देते थे लेकिन स्कूल में कभी शिकायत नहीं आई
1: कहाँ जॉब थी
2: 10 साल तो मूंगथला में रहे
1: जी
2: और 20 साल रेवदर में रहे और 5 साल पामेरा वहां से रिटायरमेंट हुआ VRS लिए 6 महीने पहले अटैक आ गया ना
1: जी जी जी
2: तो फिर VRS दिला दी हमने
1: प्रिंसिपल के पद पर थे
2: प्रिंसिपल के पद पर
1: चलिए बहुत अच्छी बात है आपके बहुत ही सुंदर अनुभव रहे हैं आप कार्यक्रम के अंत में हमारी जो बहनें सुन रही उनको क्या कहना चाहेंगे एक मैसेज
2: यही मैसेज देना चाहूंगी बहनों को कि नारी शक्ति एक ऐसी है जिसको भगवान ने इस तरह से बनाया है पियर और ससुराल दो दो घर को निभाती है छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातें तक उसको याद रहती है उसने मेरे को इस फंक्शन पे ऐसा दिया था वो दिया था मुझे ये करना है मुझे वो करना है नारी शक्ति को अपने आप पे इतना गर्व होना चाहिए उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं घर की नौकरानी हूँ मेरा तो यही जीवन है कि मैं उठूँ और सबको सेवाएं करूँ काम करूँ कोई कह रहा है चाय बना दो कोई कह खाना हो रहा है मेरे ऑफिस जाना है मेरे स्कूल जाना है सबका करके भी वो अपने लिए समय निकाले और अपनी पहचान अलग से बना के बताए
1: क्या बात है बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है नारी शक्ति को और ये बहुत ही जरूरी भी है
2: और आज मेरे बच्चों को मुझ पे गर्व है कि मैंने हाउस वाइफ होके भी नींव की ईंट बन के और कंगूरे झुकाए हैं और जो मेरे अंदर गुण थे वो कैसे लोगों को मालूम पड़ते अगर मैं लोगों से मिलती नहीं और ये बुक लिखती नहीं लोगों के हाथ में मेरी ये किताब जाती नहीं मेरा लेखन कार्य तो उनको कैसे पता पड़ता कि मैं घर के अंदर क्या करती हूँ कैसे रहती हूँ और क्या नहीं करती हूँ कैसे मेरी एबिलिटी मालूम पड़ती सब
1: जी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अयोध्या जी आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही कीमती समय स्वयं का भी दिया रेडियो मधुबन और श्रोता बंधुओं के लिए और बहुत ही सुंदर अनुभव सभी के साथ शेयर किए हैं, इसके लिए आभार आपका। आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में अयोध्या शर्मा, जो आप आबू रोड सातपुर के रहने वाले हैं, आपने बीए कर रखा है, उम्र आपकी 62 वर्ष है, और आपको किस तरह देखिए कढ़ाई सिलाई बुनाई का शौक है, और कैसे सफर में आपका जीवन बीता, किस तरह ट्रेन में यात्राओं पर आप जाते थे, कैसे आपको अपने माता पिता के द्वारा शिक्षा संस्कार मिले, और आपने किस तरह अपने बच्चों का शिक्षा संस्कार दिए, क्या आज आप एक हाउसवाइफ होकर के भी, का कहना है कि पूरे आबू रोड में आपकी पहचान अच्छी है, सभी आपको जानते हैं मानते हैं। सचमुच में एक गृहिणी से, वो कहते हैं ना कि उम्मीद बहुत ही कम रखते हैं लोग, लेकिन नारी शक्ति किसी से पीछे नहीं है, अगर वो ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि अयोध्या जी ने किया है। देखिए इनके अनुभव हमने काफी कम सुने हैं, बहुत सारे अनुभव है जो हम अगले रविवार को सुनेंगे और भी, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे अयोध्या जी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। हर रोज आपको जब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम मेरा गांव मेरा अंचल होता है, इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है भाई हर रोज इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि कोई नया हमारा श्रोता सुन रहा है उसको तो भी मालूम पड़े। आप तो जो सुनते हो तो 14 साल 12 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जो नया हमारा लिसनर आता है उनको भी थोड़ा परिचय हो जाना चाहिए, कौन बोल रहे है, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए उसका जो टैग लाइन हो चाहे उसका प्रोमो हो उसको करने के लिए रेडियो मधुबन का जो स्टार्टिंग हमको प्रोग्राम के बारे में बताना पड़ता है, तो आप जानते हैं और हमें कुछ भी होते हैं तो आप समझते, हमारा इशारा से आप काफी समझ जाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हर रोज की तरफ हम पहुंचे हैं आपका साथ कुछ रूबरू कराने के लिए, और हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाएंगे जैसे हर रोज की तरफ आज भी हम आए हैं आपका पास देने के लिए। तो पर्यावरण के बारे में चर्चा हो रहा था पिछला एपिसोड में, जो कि एनवायरनमेंट कितना गहर मुद्दा है, जो कि बहुत जानकारियां रखना चाहिए, जो कि पर्यावरण हमारा लिए कितना आवश्यकता हम भली भांति जानते हैं। जैसे हम पिछला लिंक में सर से हम बात किए, जो कि भोपाल राम पुरे जी, जो कि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी में सिरोही जिले के थे, और काफी दिन से हम लोग परिचित थे और हमको मौका नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा टाइम के लिए हम करते थे, लेकिन आज मौका मिला दोनों को सेवानिवृत्त होने के बाद। वो सेवानिवृत्त नहीं है, वो ईश्वरीय सर्विस में लग गए, गवर्नमेंट सर्विस पहले करते थे, अभी गवर्नली सर्विस में लगे हुए, ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात है। उनका प्रमोशन हुआ हम कहेंगे,
1: प्रमोशन हुआ, आध्यात्मिक प्रमोशन हुआ,
0: सबको स्वागत करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस से बड़ा गवर्नली सर्विस, तो ईश्वरीय सेवा में अपना ऐसे तन मन धन को लगा रहे हैं, ये तो कम बात नहीं, एक पुनित काम है और दुआएं क्या पात्र है। तो सर जी को आपको स्वागत करते
1: हैं। रेडियो मधुबन के द्वारा मुझे जो अवसर प्रदान किया गया
0: जी,
1: आपसे तो बहुत पुरानी मुलाकात है, लेकिन रेडियो मधुबन के जो हेड है आपके प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हाँ, अपने मुख्यालय आबू रोड में
0: जी,
1: वहाँ पर जो बीके कृष्णा दीदी
0: जी,
1: आरुषि दीदी के माध्यम से,
0: हाँ,
1: आपके द्वारा उसे जब मिला, तब मुझे बहुत बड़ी उत्सुकता हुई कि रेडियो मधुबन कम्युनिटी सर्विसेज में इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाता है। तो पर्यावरण के बारे में जो मेरी समझ है, पवित्रा भाई जानते थे, तो उस समझ को हम सब लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।
0: शुक्रगुजार तो मेरे पास नहीं, क्योंकि समय का समय तो पहले भी था, आप भी थे, हम भी थे, लेकिन जो समय आना चाहिए, जिसका पार्ट खोलना चाहिए, वो समय खोलेगा।
1: समय
0: कितना भी प्रयास किए, हम याद है मुझे जैसे आपने बताया
1: जी,
0: इसका पहले भी हम आपको कोशिश किए, जब हमारा एनुअल फंक्शन में स्पेशल इनविटेशन भी किया था, देखो हुआ
1: आपने अवसर प्रदान किया,
0: अभी तो बिना इनविटेशन में भी
1: शिखर सम्मेलन में आपने दो बार मुझे बुलाया,
0: रेडियो मधुबन
1: दो बार बुलाया
0: सर, रेडियो मधुबन का वार्षिक उत्सव था उसमें
1: जी, हाँ, जी हाँ।
0: जो कि इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन आपको चीफ रखे थे, क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: तो उस समय भी इतना व्यस्त माहौल में आप नहीं आप सॉरी मांगे थे, लेकिन आज वो समय और आज समय में कितना अंतर है, तो ये हमारा खुशी का बात है,
1: खुशी का विषय है।
0: तो इसलिए मुझे याद आया, बोले सर समय समय की बात, मैंने समय का बलिहारी है हम, आपका नहीं, जैसे आपने मुझे धन्यवाद दिए, लेकिन ये धन्यवाद का पात्र तो समय को जाता है, ड्रामा को जो पार्ट
1: अवसर प्रदान करता है,
0: हाँ, वो अवसर प्रदान, इसलिए अवसर को इंतजार करना पड़ता है सर, कब वो आएगा, वो अपॉर्चुनिटी है ना, वो आज आया है। तो पिछला लिंक में जैसे हम इनर और आउटर,
1: बिल्कुल, पर्यावरण की परिभाषा
0: में था,
1: पर्यावरण को परिभाषित किया है कि पर्यावरण होना क्या चाहिए, क्या है
0: जो बाहर देखते हैं, ये हमारा आउटर है ना, इनर एक जो वो भी एक सोचने की बात है ना
1: जी,
0: जैसे मन बुद्धि और संस्कार का बात आया है, जो विचार आया है, तो ये जो आंतरिक सशक्तिकरण तब होगा जब हमारा बाह्य सशक्तिकरण को अच्छा से देख पा रहे, इस चक्षु से हम तो देख पा रहे हैं सर जी,
1: सही से,
0: लेकिन अंदर एक और चक्षु है जो इनर तरफ जाता है, तो उसके बारे में आपसे क्या आपका विचार है
1: जी? हाँ सर, अगले एपिसोड में हमने पर्यावरण को अच्छे से समझने के लिए प्रयास किया था
0: जी,
1: कि ये पर्यावरण बाहर से किस तरह से व्यक्ति को, जीव के उत्पत्ति, विकास और उसकी मृत्यु, तीनों पर प्रभाव डालता है
0: जी।
1: तो ये बाहरी जो आवरण है, हम उसको समझ ये कर रहे हैं कि उसके साथ साथ इसका जो प्रदूषण है, बाहरी वातावरण का जो प्रदूषण अभी अपने सामने जो आ रहा है, जैसे थल मंडल, जल मंडल वायुमंडल और इनसे मिलकर के जो जैव मंडल बना है और इन पर इसका जो दुष्प्रभाव असंतुलन की वजह से पड़ रहा है ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, फिर एक एक बिंदु पर अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में कल बात निकल के आई जो आपने पूछा कि बाहरी पर्यावरण को ठीक करने के लिए अंतः पर्यावरण, ये मेरी अपनी खोज है, ये शब्द मैं अपने तरीके से इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो अंतः चेतना की बात सामान्य तौर पे की जाती है, लेकिन जब पर्यावरण की बात करते हैं बाहरी पर्यावरण की ही बात होती है, तो इसको मैं यूं अंतः चेतना से जोड़ना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक शब्द रात को खूब विचार किया, मैंने कहा भाई साहब का फोन है, बात करनी पड़ेगी, तो मुझे इसके लिए एक शब्द देना पड़े, क्योंकि अब तक जो मैंने पढ़ा है, मेरी स्टडी रही है काफी
0: जी,
1: लंबी स्टडी रही है, पर कहीं पर जब ये बात करते हैं तो आध्यात्म जब बात करता है तो बात तो बिल्कुल अलग है, वो तो करता ही करता है, वो तो मन की शुद्धि की बात करता ही करता है, लेकिन जब सामान्य तौर पे सामान्य लोग जब ये बात करते हैं तब बाहरी पर्यावरण को लेकर के ही बात होती है कि भाई वो बिल्कुल अशुद्ध हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, सबको पता है, लेकिन इसके लिए जानकारी सबको है, लंबे समय से सम्मेलन होते रहे हैं, काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम हो रहा है, विदेशी पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, बहुत काम हो रहा है, अपने यहाँ भी पर्यावरण मित्र सब जगह काम कर रहे हैं, शिखर सम्मेलन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ये कब सफल होगा, जब हम अंतः प्रेरित होकर के, इसको मैंने शब्द देने की कोशिश की है, इसको विचार शुद्धि से जोड़ना चाहिए।
0: अरे वाह क्या बात है, विचार शुद्धि कितना,
1: क्योंकि जब विचार शुद्धि होगी अंदर की, अब ये इसको मैं अंतः पर्यावरण का नाम देना चाह रहा था, पर वो पर्यावरण फिर बाहर की बात कर देता है, तो इसमें सब बड़े चिंतन के बाद में ख्याल आया कि जो मनुष्य का जो शरीर है, जैसा सामान्य बताया जाता है कि इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर भी बताया गया है
0: जी जी,
1: तो जो बाह्य शरीर, तो उस शुद्धि कैसे होगी, तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, जिसमें अगर आप ध्यान और वायु से अंदर शांति के लिए जो प्रयास करते हैं वो अंतः

0: को जब शुद्ध करेगा तब करेंगे, तब जा करके उस बाह्य पर्यावरण के लिए आप प्रेरित होंगे। ये बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। और इस काम को विश्व शांति के लिए हमारे कई एनजीओ के साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो विश्वविद्यालय है
1: जी सर,
0: यहाँ कितने कैंपस है, इसमें भाई साहब के साथ में कई बार बैठा, यहाँ सरोवर भी बैठा, अबू पर्वत में भी जो भी है, पांडव भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल, मनमोहिनी हॉल, यहाँ भी बैठे। तो इस तरह से ये सारे स्थानों पर बैठ करके इस तृतीय चक्षु को खोलने का प्रयास, यानी कि राजयोग के माध्यम से अंत शुद्धि का जो प्रयास हो रहा है, ये वाकई बहुत ही सराहनीय है।
1: और सही में सबके पास है, जिसे नहीं हम कहाँ से ले, हमारा अंदर में जो चीज है वो चीज को सही ढंग से जानेंगे और उसको सही ढंग से समय पर यदि यूज करेंगे, व्यवहार करेंगे तो हमारा फायदा ही फायदा। जैसे आपने स्थूल चक्षु से हम तो बाह्य दुनिया को, बाह्य पर्यावरण को देखते हैं, अनुभव करते हैं और उसके साथ हम मित्रता रखने के लिए कोशिश करते हैं, और कभी शत्रुता भी होता है, कभी मित्रता होता है,
0: होता
1: तो ठीक अपना जगह में।
0: लेकिन
1: जो नई बात हमें डिस्कशन निकल कर आए हैं, जो हम बाह्य जब आए तो अंतर, बाह्य एक है और एक इनर, जो अंत अंतःकरण जिसको कहते हैं,
0: अंतःकरण
1: शुद्धिकरण, तो वो चीज जो है, ये तो आध्यात्मिक, हम तो आध्यात्मिक में, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, तो जब बात निकलता है ये तो बाह्य सभी लोग देखते हैं, अंतर जो पर्यावरण है जिसे शरीर पांच तत्व है
0: जी हाँ,
1: तो अंदर में जो तत्व है जिसको हम कहते हैं मन,
0: मन
1: विचार, बुद्धि विचार, चित्त वृत्ति, दृष्टि कृति, ये सब अदृश्य है
0: बिल्कुल,
1: इसको स्थूल चक्षु से नहीं देख सकते,
0: देख नहीं सकते,
1: विचार को नहीं देख सकते,
0: नहीं देख सकते,
1: जैसे हवा को देख नहीं सकते फील करते हैं
0: जी हाँ,
1: करंट को नहीं देख सकते फील करते हैं,
0: फील कर सकते।
1: तो विचार आपका, विचार आपका फेस से पता चलता है क्या विचार, हाँ, कोश किस तरह का सात्विक की तामसिक पता
0: जी
1: चलता
0: जी
1: है। तो अंतरकरण, तो अंतर चक्षु जिसको हम डिवाइन आई कहते हैं,
0: डिवाइन आई,
1: तो उसी से ही हम फील कर सकते हैं,
0: अंत है पर्यावरण को फील करते हुए।
1: बात बताया का शरीर भी एक सूक्ष्म शरीर जिसको, ये स्थूल शरीर है
0: जी हाँ,
1: सूक्ष्म शरीर जिसको परी कहते, फरिश्ता कहते
0: जी हाँ,
1: छाया सदृश आकार, आकारी
0: बिल्कुल,
1: जैसे छाया कोई पेड़ का जो धूप होता है तो उसका आकार एज इट इज,
0: एज इट इज वो आगे छाया आ जाती है,
1: ये स्थूल है वो सूक्ष्म है
0: जी हाँ,
1: उसको पानी देंगे तो पिएगा नहीं, स्थूल को देंगे तो पानी पिएगा, गन है मतलब
0: बिल्कुल,
1: जहाँ पर बैठे हैं पेड़ है तो उसका छाया दिखाई देता, तो वो हो गया सूक्ष्म
0: जी हाँ,
1: तो अंदर में भी सूक्ष्म शरीर है जिसको हम चेतना कहते हैं
0: जी हाँ जी हाँ,
1: उसका अंदर उसको मालिक, उसका बारे में आप रिसर्च किए होंगे, वो पर्यावरण का बारे में थोड़ा सा बताइए
0: जी, जो अंत चेतना है, आप अब ये अंत पर्यावरण इसको कह दिया
1: जी जी,
0: अब अंत चेतना को जगाना शांति के लिए, जब ये सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो वायु है, प्राण वायु, वो शरीर में जा करके अंदर के जब विचार शुद्धि करेगा, विचार शुद्धि के बाद में वह बाह्य कर्म के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बाहरी वातावरण को शुद्ध करने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाएगा, और इसकी हम सबको आवश्यकता है
1: जी जी,
0: हम सभी को। जैसे एक सामान्य तौर पर बात आती है कि पर्यावरण के लिए कोई बड़ा एनजीओ काम कर रहा है,
1: बराबर
0: सरकारें काम कर रही है, तो रिजल्ट आ रहा है लेकिन जितना तेजी से आना चाहिए वो नहीं आ रहा,
1: बराबर राइट बात, सब तो प्रयास कर रहे हैं,
0: तो हम सबको करना पड़ेगा
1: तब जाकर,
0: और ये कितना आवश्यक है, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये इतना आवश्यक है, जैसा शरीर के लिए भोजन आवश्यक है उतना ही शुद्धि के साथ में प्रतिदिन पर्यावरण के लिए दोनों समय, पूरे समय सोचने की बात तो है ही है, लेकिन कम से कम सुबह और शाम हमको फिजिकल रूप से आधा आधा घंटा तो दीजिए, फिर अपने आप ही आपको उसमें लगेगा कि उससे अगर आपको कहीं ना कहीं असंतुलन से तकलीफें हो रही है मानव समाज को, तो हम सब प्रयास करेंगे तब जाकर के ये चले, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम ज्ञान, जैसे शिक्षा में हम कह रहे हैं, मैं जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहा हूँ, इसको कहते हैं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एंड देन डेवलप्स स्किल, तो जहाँ पर ज्ञान है, ज्ञान तो हो जाता है, बात हो जाती है, लेकिन अब समझ विकसित हो गई है आप सबकी, क्योंकि ये हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहा है
1: जी जी,
0: तो अब उसका एप्लीकेशन फील्ड में होना चाहिए, वो आप और हम सब मिलकर के करेंगे, कोई एक संस्था एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमको समय देना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको काम करना पड़ेगा, जिस तरह से दो समय भोजन कर रहे हैं, आपको दो समय कम से कम निकाल करके प्रकृति का काम करेंगे, निश्चित रूप से उस प्रदूषण को हटाने का जितना भी जैसा भी आपका प्रयास हो सकता है वो करेंगे, तभी हम इसको अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
1: बहुत अच्छा विचार है।

0: करके और मनन चिंतन है। जब मनन चिंतन करते से विचार सागर मंथन करते तो मक्खन निकलता है। तो आप सब भी करते होंगे, हमारे श्रोता मित्र, और उनका भी प्रयास होता है जो हम भी कुछ करें। लेकिन इस तरह माध्यम जब मिलता है और समय समय की जो सोच है विचार है परिवर्तन भी होता है। और अभी जैसे हमने सामने से बात की है, ये जो विचार जो अंतरकरण अंदर में जो उम्मा जैसे अधंडा निकालने के लिए कौन निकालेगा, खुद
1: जी
0: आप,
1: हाँ,
0: हम
1: जी हाँ, जी
0: आप
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: हम निकालेंगे। तो इस भावना जो भाव निकालने के लिए जो भावना
1: जी
0: कौन निकालेगा, सबके पास है भावना करेंगे लेकिन निकल नहीं पाते हैं। समय नहीं मिलता है। उसका जो दृढ़ता
1: जी
0: करेंगे बोल के उसका दृढ़ एक दिन करते फिर बोला अरे कुछ छोड़ो,
1: बिल्कुल दृढ़ विचार होना चाहिए।
0: फिर उसका कुछ पीछे खींचता है
1: जी हाँ,
0: अंदर में करने के लिए सभी लोग चाहते हैं,
1: सब चाहते होना चाहिए, सब चाहते हैं, लंबे समय से चाहते हैं
0: क्योंकि हो नहीं पा रहा, मतलब उतना दुर्बल
1: सोच
0: सोच थोड़ा डाउन हो चुका है, बैटरी थोड़ा डाउन है। चार्ज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा,
1: उसको चार्ज करना पड़ेगा तब जल्दी
0: जल्दी। जैसे आपका मोबाइल में जो चार्ज नहीं होता तो कैसे चार्ज तुरंत करते हैं, तो हमारा विचार में भी चार्जिंग कैसे करेंगे। विचार को नियंत्रण करने वाला विचार हमारे सात्विक कैसे हो, कहाँ से उत्पन्न होगा
1: जी हाँ,
0: जैसे आपका अंदर में है
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
0: और सभी का पास आपका जैसे केवल गाँव है, केवल गाँव सभी लोग तो है,
1: सब चाहते हैं पर्यावरण अच्छा होना,
0: लेकिन आपका जैसे विचार मंथन करेंगे तो जल्दी होगा ना,
1: आगे बढ़ना पड़ेगा,
0: पड़ेगा
1: खुद आगे आना पड़ेगा, उनको प्रेरित भी करना पड़ेगा, उनके सामने काम भी करना पड़ेगा। मेरा यही लक्ष्य है,
0: वेरी गुड,
1: आप करेंगे तो ही होगा। आपने मंच दिया हम यहाँ बढ़े तो ही होगा,
0: नहीं तो नहीं होगा,
1: नहीं तो फिर कैसे होगा,
0: वचन में रह जाएगा,
1: करते रहो,
0: कर्म में नहीं आएगा,
1: कर्म होना चाहिए,
0: वचन और कर्म
1: इसी पर जोर दे रहा हूँ, काम होना चाहिए,
0: काम होना चाहिए।
1: खूब साहित्य है अपने पास, मैं भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये चीज एक बार समझ लो और फिर करने लग जाओ।
0: ठीक है, से जैसे आपने बताया भाई, कर्म मैंने कर्म योगी है, कर्म भोगी नहीं कर्म योगी, क्योंकि कर्म योगी तब होगा जब हमारा वचन कथन और कर्मी एक जैसे होना चाहिए, जो कहे उसको करे,
1: करे हम करे
0: करे
1: करे हम,
0: तो उसमें करेंगे करेंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे उसमें
1: जी हाँ,
0: प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट,
1: परफेक्ट
0: तो हम बन पाएंगे। लेकिन सर जैसे आपने अच्छा बात को रखा, ये ही मेन मुद्दा है, इससे तो बहुत कुछ बनेगा, क्योंकि बाह्य का बारे में प्राय सभी का पास 190% है
1: नॉलेज,
0: जो इनर इनर जो अपना अंतरकरण वो जो जागरूक जो मेन मालिक है
1: जी,
0: जिसका विचार का रचयिता है
1: जी हाँ,
0: वो कुछ सब कुछ करता है। शरीर तो गाड़ी है, जैसे चलाएंगे तो चला जाएगा,
1: चलाएंगे उधर जाएगी,
0: चलाने वाला जो शक्ति है ऊर्जा है प्राण है जीवन है
1: सही दिशा में उसको चलाना
0: है, वो उसको इतना दुर्बल हो चुका है उसको सबल करना है, उसको ताकतवर बनाएगा तो आपका जैसे विचार हमारा जैसे विचार हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर ब्रेक का पहले जैसे आप इनर और आउटर दो को बाह्य शुद्धिकरण और अंत शुद्धिकरण पर्यावरण को लेकर
1: जी हाँ,
0: अच्छा विषय फाउंडेशन अच्छा मजबूत होगा उसका ऊपर हम पिलर देकर और मंजिल बना सकते हैं
1: जी हाँ।
0: इसका ऊपर और क्या ऐसे छूट गया जो कि पर्यावरण का ऊपर में परिभाषा में
1: सर, अब ये बात तो हो गई। अब जैसे परिभाषा में मैंने वो जो बताया था अगले एपिसोड में, जीव की उत्पत्ति विकास और मृत्यु को प्रभावित करता है,
0: पिछले
1: एपिसोड में जिसमें भौतिक और जैविक शक्तियों से, भौतिक जैसे जल थल जितनी भी भौतिक शक्तियां
0: ओके
1: और जैविक शक्तियां हैं उनसे जीव की उत्पत्ति और विकास प्रभावित होता है। इसका मतलब आप सबका हमारा मानवता की उत्पत्ति और विकास इससे प्रभावित हो रहा है, ये तो है पर्यावरण। तो ये तो थी इसकी, हमने उसको थोड़ा सा उन शब्दों में कहा, एक सामान्य शब्दों में बताऊं, प्राकृतिक संरचना जिससे पृथ्वी घिरी हुई है उसको हम पर्यावरण कहेंगे।
0: क्या बात,
1: जितनी भी प्राकृतिक संरचना है
0: वो
1: और जो मनुष्य को प्रभावित कर रही है,
0: चाहे नेगेटिव मनुष्य पॉजिटिव
1: हाँ वो बिल्कुल वो सही कहा आपने, नकारात्मक
0: भी करता है
1: क्यों
0: सर, जैसे बाढ़ आ गया
1: बिल्कुल वहीं पर जा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है वो हाँ। और इम्बैलेंस होने से ये हमको नुकसान कर रहा है, सभी को नुकसान कर रहा है
0: जी जी। तो इसका जो इम्बैलेंस होता है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सकारात्मक, कभी कभी प्रकृति जो पर्यावरण हमको सहयोगी होता है, कभी कभी कभी कभी का विपरीत,
1: बिल्कुल विपरीत होता है ना सर। देखिए ये अभी जैसे ये अखबार के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, हमारे पर्यावरणविद है सुनीता नारायण
0: जी जी,
1: इन्होंने ये नोट कराया है कि इस वर्ष ही क्लाइमेटिक चेंज की बात है
0: 2025 का बात
1: 2025 के अगस्त के महीने में पंजाब में 31 में से 24 दिन भारी और अत्यंत भारी वर्षा हुई। तो जो 204 mm से अत्यधिक भारी बरसात हुई इसका कारण कई जगह पर बादल विस्फोट हुए, क्यों हुआ? क्योंकि पर्यावरण इम्बैलेंस हो रहा है। कितना नुकसान हुआ आपने देखा, बहुत हम अपने नुकसान देख ही रहे हैं। केदारनाथ का कुछ समय पहले देखा था,
0: कुछ ना कुछ
1: ये सब देखे, अभी धराली का देखा, तो इस तरह से इतना बड़ा ये जो नुकसान हो रहा है
0: कहीं होते रहता है, प्रकृति अपना खेल तक खेल।
1: इस बार सरकारी आंकड़ों के अनुसार बादल फटने से बाढ़ आने की 13 घटनाएं हुई। जून और अगस्त के महीने में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सामान्य से लगभग 50% अधिक बारिश हुई और पंजाब में अगस्त में अंतिम पखवाड़े में सामान्य से 400% अधिक बारिश हुई। ये बिल्कुल आंकड़ा जो बिल्कुल पक्का आंकड़ा, उस आधार से अपन बात करते हैं। तो इसकी वजह यही है कि पर्यावरण इम्बेलेंस हो रहा है और इम्बेलेंस हो रहा है, इसको आपने हमने सभी ने मिल करके अगर उस पर काम नहीं किया तो फिर हमारी क्या स्थिति हो सकती है।
0: ये तो जैसे हम अगस्त महीना 2025 का बात कर रहे, जो अखबार में जो आया है 19 अगस्त का,
1: जी जी,
0: जो आज आप, ये तो हर रोज होते रहता है और ये तो हम आपको ऐसे सैंपल दिए,
1: सैंपल ये कितना भयावह है, कितना भयावह, इसकी भयावहता को दिखाना चाहते हैं।
0: तो हमें उससे पहले सतर्क होना चाहिए और ये तो और अधिक होते जा रहा है, जितना हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे जितना हॉस्पिटल खोल रहा है मरीज का संख्या भी बढ़ते जा रहा है,
1: बढ़ते ही जा रहा है।
0: तो इतना प्रयास करने के बावजूद भी
1: आपने बहुत अच्छी बात की भाई साहब कि इस मूल पर प्रयास करना है। हॉस्पिटल खुलने हैं, खुल रहे हैं, खुलते जाएंगे, खुलना भी चाहिए, लेकिन कम से कम मूल पर काम करो कि हॉस्पिटल
0: काम हो,
1: बनाना नहीं पड़ेगा,
0: बनाना नहीं पड़ेगा,
1: मानवता तो बनाएगी, बनाना पड़ेगा,
0: लेकिन कम से कम हमारी संख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब
1: अच्छा वो बढ़ रहा है अपने कारण से,
0: जो वो तो कारण बाद में सोचेंगे, लेकिन कौन है, मतलब तो पर्यावरण का जो बैलेंस इम्बेलेंस हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन, वो तो हमारा अगला टॉपिक में आएगा
1: जी हाँ,
0: लेकिन
1: जी हाँ।
0: ये जो चीज है पर्यावरण क्या है और क्यों उसका स्थिति अभी का क्या है और इसको कैसे हम सब मिलकर उसको स्वस्थ स्थिति में लाना है।
1: बहुत बहुत बढ़िया,
0: अभी स्वस्थ स्थिति नहीं है इसलिए तो कभी कभी हमारा नुकसान करा दे, नहीं तो कभी वो नुकसान करने
1: पर्यावरण कभी नुकसान करने के लिए नहीं, नहीं था,
0: लेकिन हम उसका साथ यदि खिलवाड़ करेंगे वो छोड़ेगा,
1: बस बस बस हमने अतिक्रमण कर लिया हर जगह,
0: बस वही उसका तो आएगा समय, सबको पता है, फिर भी जानेंगे, लेकिन और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ बात सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अभी गए अभी आए

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में पर्यावरण को लेकर हम जो बात कर रहे हैं और इसको ही आगे बढ़ाते हुए हमारा तो ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे जो करने वाला कराने वाला हम शरीर का माध्यम से हम करते हैं लेकिन कराता है अंदर में जो अंदर नित एक शक्ति है जिसको हम ऊर्जा कहे प्राण कहे चाहे विवेक कहे चाहे विचार कहे ये सब देखने को नहीं आता है। बाह्य चीज हमारा शरीर तो देखे हाथ तो हम करते तो ये तो बाह्य पर्यावरण का साथ हम
2: जी हाँ
1: मित्रता और शत्रुता हम ही करते हैं। शत्रुता हमारे हाथ में मित्रता भी
2: हमारे हाथ में
1: तो ये मित्रता शत्रुता कहाँ से उत्पन्न होती है हमारा बुद्धि से
2: होती है।
1: बुद्धि से मुझे प्राण जिसको मन और बुद्धि मन तो कहता है मैं मत काटो पेड़ बुद्धि कहता भाई
2: बुद्धि कहता काट लो काम आएगा अच्छा मजा आएगा।
1: तो इसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में मन बुद्धि जो एक वकील और एक जज
2: जी जी
1: जज का काम करेगा तो जज हमेशा राइट आंसर देगा
2: जी।
1: जब बुद्धि स्वच्छ होगा
2: तो राइट आंसर देगा
1: नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा। कभी गलत आंसर इसलिए होता है क्योंकि मन जो है वकील बहुत पावरफुल हो जाता है और जज को बहुत लॉजिक देकर बहुत प्रूफ देकर झूठ को भी सत्य
2: वो सत्य प्रस्तुत कर देता है।
1: बुद्धि मन का ऊपर में हावी हो जाता है मैंने कुछ नहीं कर पाता वो उनका। तो आज हम उसका बारे में जो चल रहा तो आउटर और इनर अंतर पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण के बारे में ही मुद्दा का बात करेंगे और उसमें भी और जो कुछ हमारे मन में जो चिंतन चल रहा है क्योंकि ये चीज बहुत गहरी मैंने पूरा डीपली हमको जानना है।
2: जी हाँ जी हाँ
1: क्यों हम इसे ऊपर तो सभी लोग जाते लेकिन
2: डीप
1: जाएंगे तो भले हमारा दो चार एपिसोड होगा लेकिन ध्यान से सुने। और ये जो पर्यावरण को लेकर सभी चिंतित है और पर्यावरण के साथ हम जो खेलवाल करे इधर तो दुष्प्रभाव उसका मिल रहा है तो उसके चलते क्या और रह गया छूट गया सर हमको इशारा कर रहे सर, क्या कहेंगे सर।
2: सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने अजैव घटक है
1: जैसे
2: अजैव घटक जैसे निर्जीव
1: ओके अजैव
2: ठीक है जैसे पत्थर है
1: जिसका प्राण नहीं है जीवन नहीं है
2: हाँ वैसा जिसके अंदर जीवन नहीं है
1: प्राण नहीं
2: और जैव
1: नहीं है जैव जिसमें प्राण है ओ वेरी गुड बहुत अच्छा
2: वनस्पति है ठीक है जैसे जीव जंतु है
1: पशु पंछी
2: ये सारे के सारी चीजें
1: जैसे
2: प्रभावित होती है ठीक है सर। अब इसको जो प्रदूषित ये सब कुछ होता है अब ये कैसे होता है अब इसके कई तरीके हैं इसको प्रदूषकों को कई भागों में अपन बांट सकते हैं या उस पर बात कर सकते हैं। जैसे सर प्रदूषक होता है एक तो जैव निम्नीकरण से यानी कि सूक्ष्म जीवों से अपघटन बढ़ जाता है
1: सूक्ष्म जीवों से अपघटन
2: बढ़ जाता है। कैसे जैसे आपने रसोई का जो वेस्ट है खाना बच गया
1: जी
2: जब बच गया तो वो जो बचा हुआ है देखिए यहीं पर अपन इम्बेलेंस करें जो है उतना ही बनना चाहिए उतना उपभोग हो जाना चाहिए सामान्य तौर पे लेकिन जब वो बच जाता है किसी कारणवश बच गया तो हम क्या करेंगे उसको वेस्ट करेंगे। जब वो वेस्ट जाएगा तो उसको अगर सही तरीके से आपने जैसे हाँ सही तरीके से उसको
1: यूज किया
2: हाँ उसको यूज नहीं किया उसका सही उपयोग नहीं किया
1: तो उसका
2: तो उसका क्या हो जाएगा अपघटन हो जाएगा और वो सूक्ष्म जीव जो उसका अपघटन करते हैं इसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। अब वो जो अपघटन होगा वो दुर्गंध पैदा करेगा वातावरण को खराब करेगा और जो भी है अब इसके जितने दुष्प्रभाव है आप सोच सकते हो सब जगह
1: उसका वृक्ष बन जाए
2: तो ये हर घर में हो रहा है हर जगह हो रहा है। हर व्यक्ति जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा जो इस पर काम नहीं कर रहा सही तरीके से वो उसको वेस्ट जब छोड़ता है तो वो अपघटित होता है और फिर जैव जो छोटे छोटे कीटाणु हैं वो उसको अपघटित करते हैं तो वो नुकसान
1: पर्यावरण के लिए
2: पर्यावरण की तो अब आपके तो पर्यावरण खराब ही होगा ना उससे। तो यहाँ अगर अपन संयमित हो जाते हैं तो
1: छोटा सा एग्जांपल दिए आपने
2: कितनी बड़ी चीज है
1: बड़ी चीज
2: ये सर छोटी
1: बीज बहुत जैसे थोड़ा बीज है उसका
2: माइक्रो
1: बहुत ज्यादा वृक्ष बन जाता है मैंने पर्यावरण को
2: हर व्यक्ति
1: हानि कर
2: मैं भोजन कर रहा हूँ आप स्वयं भोजन कर रहे हैं
1: जी।
2: अब भोजन आपको उतना ही लेना है जितना आवश्यक है
1: ना अति ना कम
2: भोजन आप भूख से कम खाइए ऐसा बताया गया है आप स्वस्थ रहेंगे पर भोजन में अगर कुछ बच जाता है अब जैसे पशु या पक्षी के लिए निकालते हैं वो तो अलग बात है क्योंकि वो उपयोग कर रहा है वो गलत नहीं है वो तो सही है लेकिन बच जाता है तो आप उसको वेस्ट अगर डाल देते हैं तो निश्चित रूप से वो अपघटित होकर के प्रत्येक व्यक्ति इस पर्यावरण के

0: बराबर है,
1: बहुत कम है।
0: लेकिन जैसे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम देखें लोग
1: बिल्कुल
0: उसको विवेकशील आदमी है संसार में,
1: बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया है।
0: नहीं सभी जगह में जैसे हमारा ईश्वर
1: बहुत जगह लगे सर,
0: बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग जो अवेयरनेस है जैसे आप जैसे जैसे कोई सुनकर भी करते हैं, लेकिन उसमें भी पर्यावरण मैंने सुरक्षित नहीं होगा और सबका।
1: हाँ हाँ यही मूल बात यही है कि ये कर रहे हैं किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट। सर मैंने निवेदन किया था
0: परसेंटेज देखेंगे तो ज्यादा लोग उसको वेस्टेज करते, मैंने
1: कोई 1% अगर ठीक कर रहा है तो वो कहाँ, 99% जो कर रहे हैं वो रिजल्ट तो वो सामने आएगा।
0: जैसे छोड़िए ना किसको सर, पहले हम देखेंगे जैसे आपने कर रहे हैं
1: जी हाँ,
0: तो आप एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे
1: जी हाँ,
0: क्योंकि
1: जी हाँ।
0: आप कर दूसरा करने का उसका स्थिति अलग हो सकता
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल,
0: उनका विचार अलग हो सकता
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: उसका बुद्धि अलग हो सकता है, लेकिन आप कर रहे हैं आप खुद बोले भाई हमको जितना आवश्यकता है उतना ले रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: और कम लेंगे तो और बेटर है,
1: वो शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है।
0: तो आप इसको आपसे प्रेरणा लेंगे जब आप इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं
1: जी हाँ,
0: क्योंकि खुद का जो अनुभव है ना
1: जी
0: वो दूसरे को प्रभाव करेगा स्व परिवर्तन
1: जी हाँ, स्व परिवर्तन से होगा।
0: दूसरे कहेंगे तो हमारा पहले हम खुद करके देखें, हम एक कर रहे हैं तो हम दूसरों हम ऐसे करते भाई करने के उनका हाथ में, लेकिन आप इस माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए काम करा और उसको जागरूक कराने के लिए आप दूसरे को पास आए रेडियो का माध्यम
1: जी हाँ, जी हाँ, जी।
0: मेरा कहना है मतलब आप इतना विचारशील हो और पर्यावरण का ऊपर में एक भी क्षति मेरे तरफ से कोई भी 1% भी क्षति न हो, वो विचार
1: जी हाँ जी हाँ,
0: ये विचार सबका अंदर में आए
1: जी हाँ,
0: तो
1: जी
0: वो विचार को आप कैसे लाते हैं।
1: राइट सर, अब जैसे ये इसका एक ही बिंदु है, दूसरे बिंदु पर अपन जाएंगे धीरे धीरे
0: जी।
1: अब इसमें जैसे ये छोटी सी बात आपने उठाई, तो हम इसको जागरूक करने के लिए मैन टू मैन आपको संपर्क करना पड़ेगा, या जहाँ ये काम हो रहा है जैसे हमारे क्षेत्र में वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट बनाया है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा, उसको हम उन लोगों को ले जाकर के दिखाएंगे कि भैया देखो इस तरह से मैनेज हो सकता है। पहली बात तो करना, वेस्ट तो नहीं करना, लेकिन अगर करते
0: तो उसको
1: हो जाता है, बाय द वे हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है,
0: होता है इतना बड़ा
1: भाई 1000 लोग को बुलाया है ठीक है, और उसमें 700
0: आए तो क्या करें,
1: तो 300 का भोजन तो बन चुका। अब एक तो प्लानिंग उसकी बहुत तरीके से होती है, करते ही हैं, लेकिन कभी नहीं हो पाती तो वो जो वेस्ट है,
0: अल्टरनेट व्यवस्था होना चाहिए,
1: जो उसकी अल्टरनेट तो वो वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट जहाँ लगे हैं उसको देखें,
0: देखें जाकर के गांव में भी कर सकते हैं छोटा शुरू।
1: सर ये मेरा निवेदन था, मैंने आरुषि बहन को यही कहा था कि मेरे दिमाग में दीदी ये आ रहा है कि उस प्लांट को हम देखें कि वो कैसे काम कर, तो सर हर गांव में हो सकता है।
0: हाँ सरकार भी उसको सबसे बहुत कुछ है, लेकिन करना चाहेंगे सब
1: सरकार सर बिल्कुल तैयार है
0: सर,
1: सरकार क्या इंटरनेशनल संस्थान सरकार तक सब देने को तैयार है।
0: मैंने देख रहा था लोग का फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है
1: सर,
0: जो गाड़ी जो आएगा उसका मेंटेनेंस 60 रुपया
1: जी जी
0: भाई, आपका गांव में जैसे केबल का बात कर
1: लें जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
0: आप जैसे शिक्षित आदमी अपना बहुत सारा बैकग्राउंड होता है सर, सभी लोग एक जैसे नहीं सर,
1: नहीं ठीक है ठीक है,
0: विचार भी एक जैसे नहीं,
1: बिल्कुल
0: फाइनेंशियल भी एक जैसे नहीं है,
1: एक जैसे नहीं
0: है, हो नहीं सकता है, विचार भी एक नहीं समझ, लेकिन हम चाहते सभी का विचार मिल, भले थोड़ा 5-10 उधर नीचे होगा तब चलेगा, लेकिन सबका मनोबल होगा
1: जी हाँ,
0: चाहेंगे
1: जी हाँ।
0: गांव में 100 लोग है, 70 लोग चाहेंगे तब हो जाएगा,
1: तब ना होगा,
0: 50-50 होगा तो होगा नहीं,
1: नहीं होगा,
0: और 30% रह गया नहीं चाहते उसको हम कवर कर देंगे, 70 लोग का पॉजिटिव हो जाएगा
1: वो बिल्कुल,
0: वो कुछ नहीं देगा ना फाइनेंस
1: उनके लिए सर, एडवोकेसी प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जैसे आप चला रहे हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विसेज चला रहे हैं, हमको जा करके बताना पड़ेगा
0: अवेयरनेस,
1: अवेयरनेस जैसे, अब अवेयरनेस कहाँ से, आपने एक प्रश्न करा, अवेयरनेस सबसे बढ़िया माध्यम है, हम बाकी जगह लोगों में कम्युनिटी समुदाय के अंदर जाकर के हम बात कर रहे हैं, हम लोग स्कूलों में जाएं और वहाँ ये विषय जैसे पढ़ाया जा रहा है, मेरा इस पर बहुत बड़ा वोर्सर रहा
0: जी जी।
1: कि जो ये विषय पढ़ा रहा है प्रत्येक कक्षा के बच्चों से शिक्षक से जो इस पर काम कर रहा है उसको ये जाकर के बताए कि आप ज्ञान तो दे रहे हैं, मेरा प्रश्न यही है, आप ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन क्या वो बच्चा कर रहा है कुछ, करे
0: करे उसके लिए प्रोत्साहन, क्या
1: ज्ञान तो है,
0: क्या उसका दिक्कत है, उसको
1: ज्ञान तो है उसको, लेकिन वो करे उस काम को तो निश्चित रूप से वो भी उसी हिसाब से लेगा, उसी हिसाब से मतलब वेस्ट नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। प्रत्येक कक्षा तक, प्रत्येक बच्चे तक अपने को जाकर के ये सारी चीजें समझानी पड़ेगी, और समझाना ही नहीं वो करे उसका फॉलोअप करना पड़ेगा, जैसे आप कर रहे हैं,
0: करके उनको कराने के लिए बोले पहले खुद करिए।
1: अच्छा, प्रत्येक गांव में सर ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है अपने यहाँ का ब्रह्मा कुमार जी, प्रत्येक गांव का सरपंच वार्ड पंच बॉडी अगर चाहे कौन नहीं चाहेगा,
0: सब चाहेंगे ना,
1: सरकार दे रही है, सरकार सहयोग दे रही है, तो आप देखिए मॉडल को।

0: और जब ये इतना बड़ा संस्थान इसके व्यस्त का मैनेजमेंट करता तो मेरा गांव क्यों नहीं कर सकता?
1: ये पैदा होना चाहिए
0: तो सभी गांव कर सकते हैं,
1: तो शुरुआत
0: सभी गांव कर सकते हैं।
1: शुरुआत
0: हमारे गांव से ही हो शुरुआत तो हमसे ही होगी।
1: वेरी गुड,
0: शुरुआत हमसे ही होगी,
1: वेरी गुड,
0: हमसे ही होगी,
1: वेरी गुड।
0: तो
1: क्योंकि

0: जैसे आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो ब्रह्मा कुमारी कर रहा है, इनर को ज्यादा देते हैं,
1: इनर को ज्यादा देता है, वही
0: बाह्य को नहीं देते, बाह्य तो ऑटोमेटिक हो जाएगा,
1: वही चाहिए बाह्य, लेकिन इनर ठीक है तो हो जाएगा।
0: इनर को देने के लिए इतना एक्सपोर्ट जैसे आध्यात्मिक संस्था ही दे सकता, कोई भी आध्यात्मिक संस्था, मैंने नहीं बोला
1: कोई भी, कोई भी
0: धार्मिक
1: कोई भी आध्यात्मिक संस्था
0: भक्ति भावना जो करते
1: जो भक्ति करते हैं
0: वो जो अनुयायी भगवान के
1: देवता। इसमें एक चीज बड़ी छोटी सी, मैं अगर भक्ति की आपने बात की तो मैं भी कर लूं, ज्ञान नॉलेज उसको समझना, जैसे समझते सब है हम इसको भी समझते हैं, पर्यावरण के प्रति ज्ञान, फिर पर्यावरण के प्रति भक्ति, मतलब ये हमारे दिमाग में 24 घंटे रहना है, और वैराग्य इसके लिए आप जब नहीं कहते कि बस इसके पीछे दृढ़ होकर के पड़ जाना पड़ेगा तो ऐसा वैराग्य हो जाए तो
0: जाकर,
1: और हर संस्था इसके लिए अवसर प्रदान करती है, किसी के भी माध्यम से, अच्छे संस्थान के माध्यम से, किसी व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
0: आज जो भी महान बने, जो भी फाउंडर बने हैं संस्था के, धर्म स्थापक जितना बने, उनका भी विचार ऐसे ही आया सर, जैसे हमारा जैसे व्यक्ति थे
1: ऐसे ही व्यक्ति,
0: ऐसे उनका जैसे जिज्ञासा हुआ और उसका मन वैराग्य आ गया और कुछ करने के लिए हेज नहीं देखा, जिस समय उनका बुद्धि में आया
1: चल पड़े
0: तो आगे जाकर बहुत फॉलोअर बन
1: चल पड़े।
0: तो
1: इसमें सर हमने एक कविता लिखी है,
0: और क्या बात है, लास्ट में कविता सुनाकर हम रखते हैं, लेकिन अगला एपिसोड इसी का ऊपर में इनर और आउटर जो पर्यावरण है और उसके बाद तो चलेंगे किस तरह में उसको शुद्धिकरण करेंगे और नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या है और वो कारण को निवारण करने के लिए जो कारण है तो निवारण तो जरूर होगा।
1: बिल्कुल जो बिल्कुल निवारण तो है, निवारण है,
0: निवारण बिना कारण नहीं आएगा, तो कारण है तो निवारण भी होगा। हर चीज का सत्व रज तम अवस्था होता है, फिर सत्व आ जाता है। तो एक कविता का माध्यम से हम
1: जी हमने एक प्रयास किया कि
0: रोकेंगे इस एपिसोड को।
1: अच्छा ठीक है
0: सर, शुरू करिए कविता का माध्यम से।
1: अच्छा सर, कोशिश ये हुई है
0: जी सर,
1: भोर हुई अब चले चलो, धीरे धीरे अब चले चलो, धीरे
0: धीरे धीरे ओके,
1: अब एकदम तो दौड़ नहीं पाएंगे, कारवा बनाना है हमको। ठंडी बयार में मन सोता है पर अब तो जागे, जागो चले चलो,
0: जागे और जागे
1: चलो, जागे तो आपको तो सोने की इच्छा है, ऐसा तो भाई नहीं चलेगा, चले चलो, भोर हुई अब चले चलो, एक अकेला नहीं कर पाएगा, पर्यावरण के लिए कह रहे हैं, समझो अब तो चले चलो, भाइयों के साथ अब चले चलो, जगाओ बहना को चले चलो, सभी मिलकर के चलो, भाई बहन सब
0: जी सर,
1: संदेश पुरातन चले चलो, परिवार के साथ अब चले चलो, गांव के साथ अब चले चलो, भोर हुई अब चले चलो,
0: क्या बात,
1: पर्यावरण शुद्ध हुआ अब तो भैया चले चलो, शुद्ध बयार में चले चलो, व्यायाम कर लो चले चलो, योग कर लो चले चलो, जीना है तो अब चले चलो, भोर हुई अब चले चलो,
0: क्या बात, मजा आ गया, चले चलो भाई, रुकना नहीं, जा रुक गए तो तला बन जाएगी, चलेंगे तो नदी होगा, निर्मल जल होगा,
1: बहते रहो।
0: चलो रुकना नहीं, झुकना नहीं, हर कदम आपका साथ ऊपर वाला है ही है, लेकिन उसीलिए जागरूकता रखकर सोए, जो सोया वो खोया
1: चलो चल पड़ो
0: जो भी, तो हम जैसे रेडियो मधुबन चल पड़ा, आज तो 14 साल पार करके 2025 में
1: चल पड़ा
0: तो इसलिए आया, विघ्न आया लेकिन अपना काम पर नहीं रुका, अपना साइड होकर चल गया, जो पत्थर आता है तो पानी क्या करता है, नदी में वो किनारे होकर निकल जाता है, होना चाहिए, और बहुत अच्छा संदेश है, और इस कविता में सोचने वाला सोचते रह जाएंगे भाई क्या है, और सही में हर चीज में, सिर्फ पर्यावरण हर चीज में चले पड़ो,
1: धीरे धीरे चल पड़ो जैसा अवसर मिल रहा है, जैसा मिल रहा है
0: चल पड़ो,
1: आगे रास्ता मिलता जाएगा।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर
1: धन्यवाद,
0: तो कविता का माध्यम से आपने तो सबका बुद्धि को ऊपर चक्कर लगा दिए, और उसमें चक्कर क्या है, उसमें चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे जब सुने तो सर ये था कुछ की मैसेज, और अगला एपिसोड में जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो उसमें हम और कुछ बात करेंगे सर, जाते जाते बहुत बदल क्या सस्पेंस देकर जाएंगे,
1: जी हाँ जी
0: सस्पेंस रहेगा कि अगला एपिसोड में हम जो कर रहे हैं जैसे इनर आउटर कर रहे हैं, बाह्य और अंतर, अंतर जगत को भी देखना है, बाह्य जगत को हम तो दिखाई दे रहे हैं स्थूल चक्षु से, अंतर चक्षु को देखने से आप अंतर चक्षु से देख कर इस विचार आया,
1: जी हाँ
0: भले आप तो आध्यात्मिक प्रेमी है, आदि भक्ति भावना अगरवत सब करते हैं, लेकिन उसी में ही वो जुड़ा हुआ है अंतर जो सात्विक विचार,
1: जी हाँ सात्विक
0: विचार आना, कॉलेज युग में जो सात्विक विचार आना मीन्स देवत्व जैसे गुण वाला है, कॉलेज युग इतना वातावरण भ्रष्टाचार का दुनिया में,
1: जी हाँ
0: सब जगह में पॉल्यूशन, सब जगह में वृत्ति का पॉल्यूशन, शब्द का पॉल्यूशन, सब में पॉल्यूशन,
1: हर बात में पॉल्यूशन,
0: तो उसी में आप उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पॉल्यूशन को सॉल्यूशन करने

0: जो रास्ता निकलेगा आपका बुद्धि से निकलेगा और बुद्धि का मालिक बुद्धि का बुद्धिमान ऊपर वाला है जिसको मानते भगवान, तो उसका बारे में थोड़ा और डीपली जानेंगे क्योंकि इनर आउटर तो हम बहुत कुछ नहीं कर रहे, आउटर तो आप जानते हैं
1: जी हाँ,
0: सब
1: जी
0: कुछ देख रहे हैं हो रहा है सब, लेकिन इस सब का जो जिम्मेदारी कौन है? भगवान तो नहीं है और खुद स्वयं है,
1: हम स्वयं
0: वो स्वयं कौन है और कैसे है वो और कहाँ पर रहता है, उसका विचार क्यों ऐसे हो रहा है, उसको कौन प्रेरित करता है?
1: ठीक बात है,
0: वो चीज जानेंगे इनर में ही, लेकिन कल नहीं तो अगला एपिसोड में।
1: जी हाँ जी हाँ जी,
0: सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खास कर पर्यावरण को लेकर हमारा जो मनन चिंतन चल रहा है और सर का जो विचार था आज उसका पास सीमित क्यों रहे, पर इस माध्यम से सब तक पहुंचे और जितना आवश्यकता जितना फायदा आप ले, जो आपको आवश्यक नहीं उसको छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं जबरदस्त नहीं, सुनना आपका काम है नहीं सुनना आपका काम है, हमारा काम है बोलने का
1: बस,
0: इसके बाद भाग्य आप आपका हाथ में भाग्य का कलम है, जितना लिखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो इन बातों के साथ हमें और हमारा जो आज का साजक जो सजाए गोपाल राम पुरोहित जी जो कि सेवानिवृत्त जो जिला शिक्षा अधिकारी जो केवली का निवासी है, उनका परिचय सबको मालूम है, सीबीओ थे अब रोड में भी हम देखे बहुत परिचय थे, तो उनको मिलेंगे अगला एपिसोड में। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता मित्र की तरफ से।
1: धन्यवाद साहब, रेडियो मधुबन को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान, हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है, हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह जन्मदिन लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं, हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं, शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं, हमारे संगीत का व गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमाकर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश, राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं, साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो मारे देश।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में बताया कि नियमित साधना से एक शिल्पी को सफलता सहजता से मिल सकती है। नियमित संगीत साधना या उसको रियाज कहें तो उसके द्वारा ही संगीत के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अपनी संतुष्टि भी तो होती है। नित्य गुरु के पास जाकर शिक्षा लेने से विजयी बन सकते हैं। इसलिए एकांत साधना की आवश्यकता है और साथ में चाहिए गणमान्यों का सानिध्य और अनुप्रेरणाएं। तो ऐसे ही संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए फिर से हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं दिल से सबको नमस्कार करती हूँ।
0: जी, जैसे हमने आज बताया कि संगीत सीखने की जो कला है,
1: हाँ जी,
0: इस कला में गणमान्यों का या कहो गुरुजनों का सानिध्य भी बहुत आवश्यक है। अपनी साधना तो है, अभ्यास है, मेहनत है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद भी उतना ही काम करता है।
1: जब तक गुरुजन का हो या गणमान्य का हो
0: जी,
1: उसका प्रेरणा बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसको कैसे लगता है, हम संगीत प्रेजेंट करते हैं, उपस्थापित करते हैं, उस टाइम उसको महसूस कैसे होते हैं, वो देख के इतना खुश हो जाते हैं।
0: इनकी दिल की दुआएं भी इतनी ही मायना रखती
1: हैं। किसी को जो बीमारी से भरा हुआ है, अगर संगीत सुनने के बाद वो पुनर्जीवित हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर हम औषधि, संगीत औषधि जैसी भी है, हम वो भी सुनाएंगे, औषधि का काम भी करते हैं बीमारी ऊपर।
0: जी जी, आज केदारनाथ में आगे क्या सिखाएंगे हमें?
1: आज क्या करेंगे, हमने पिछले एपिसोड में स्वरलिपि दे दिया, स्थाई अंतरा, आज उसके ऊपर बोल बैठाएंगे।
0: ओके,
1: अगर लिसनर बोल लिख लेते हैं तो अच्छा है, किताब पेन से रेडी हो जाते हैं तो अच्छा है।
0: जरूर,
1: तो मैं थोड़ा स्थाई अंतरा की बोल बोलती हूँ, उसके बाद मैं बैठा दूंगी, ठीक है
0: जी।
1: सोच समझ मन मीत प्यारे वा, सोच समझ मन मीत प्यारे वा, सदगुरु नाम करे सुमर।

0: जी।
1: उसके बाद जब वानप्रस्थी जीवन में होता है तो ईश्वर गुरु बन जाते हैं। तो गुरु बिना कैसे गुण गाऊं,
0: मतलब पूरे जीवन में हमको गुरु की आवश्यकता है ही है, हर पड़ाव में,
1: हर पड़ाव में। तो यही बोल रही हूँ, सोच समझ मन मीत प्यारवा, सद गुरु नाम करे सुमरनवा, घड़ी घड़ी पल पल उम्र घटते सब। अब देखिए वही बात आ गया ना, जितना बढ़ते जाएंगे उम्र बढ़ते जाएंगे और पल पल कम होते जाएंगे
0: जी,
1: ठीक है ना। आज हो चेत मति मंद चतुरवा, इसलिए तुरंत ईश्वर से या गुरु से नाम भजन करके दिन बिताते हैं, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं
0: जी, जी।
1: तो हमको क्या करना है, ऐसे बिताना है। तो आप ही ये करते हैं कि ये पहले जो हमने स्वर लिपि दिया है उसमें सजा देते हैं, ठीक है, ओके
0: जी।

शामली जी, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में बहुत ही सुंदर एक गीत सुनाना चाहते हैं। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने बहुत सुंदर गीत का आनंद लिया। ब्रेक के पहले केदार राग की बंदिश हमने सुनी। श्यामली जी, आगे आप हमें केदार राग से संबंधित क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हमने क्या किया, बंदिश के साथ छोटा विस्तार भी सिखाया है, थोड़ा कैसे होता है विस्तार। आज तो स्वर्गम नहीं दिया है, विस्तार को भी प्रैक्टिकली क्रिएटिविटी चाहिए ना, थोड़ा सीखना चाहिए ना, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रेरणा से करना है
0: जी।
1: तो हमने किया है थोड़ा छोटा छोटा विस्तार, उसके साथ आते हैं तो बहुत अच्छा सरगम साथ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, तान दे देंगे
0: जी।
1: 16 मात्रा, 8 मात्रा, साई अंतरा, अभी जैसी सिखाने के लिए, क्योंकि जो केदार राग जब से दिया है समझो थर्ड ईयर चल रहा है, अगर थर्ड ईयर तृतीय वर्ष चलते हैं, तीसरा वर्ष चलते हैं,
0: अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस ही,
1: प्रैक्टिकल करना है ना, उसको क्रिएटिविटी चाहिए, तो तान थोड़ा दे देते हैं। ठीक है
0: जी,
1: सुनाते हैं।

0: श्यामली जी इसी तान के साथ बहुत ही क्या कहे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है।
1: क्योंकि अगर एक बार अपना लेते हैं, अपनापन कर लेते हैं, तो उसका मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, शायद लिसनर ध्यान दिया है कि मैंने जिस लय से शुरू किया है
0: जी,
1: अचानक थोड़ा फास्ट कर दिया। जब तक ये फास्ट,
0: इसलिए मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा ऐसा
1: फिर थोड़ा फास्ट कर दिया, द्रुत कर दिया। इसलिए मध्य लय से हमको जो ये जो मध्य लय की जो बंदिश वो करना है, उसके बाद तान जब शुरू करेंगे उस टाइम में थोड़ा द्रुत के साथ करना है।
0: अच्छा,
1: पहले तो वो मैंने मध्य लय से तान वगैरह किया है, जितने सारे तान किया है मध्य लय से किया है, लेकिन उसके बाद जब हम आकार सहयोग से थोड़ा सरगम कर लेते वो उस टाइम में थोड़ा फास्ट कर दिया, मजा नहीं आते हैं
0: जी।
1: वो फास्ट करने में ही मजा आते हैं, थोड़ा द्रुत करने में ही मजा आते हैं। शास्त्रीय संगीत का जो बंदी जो है एक शास्त्रीय कोई राग के ऊपर वो संपूर्ण उसको
0: पकड़ सकते
1: है
0: जी। श्यामली जी, जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, आज भी एक बहुत सुंदर सुंदर से सुंदर एक गीत लाए हैं। इसमें थोड़ा सरारत भरा हुआ नटखटी है।
0: अच्छा,
1: लास्ट में ये तो आज किधर की लास्ट एपिसोड है, तो हम क्या करते हैं, घर फिल्म किशोर कुमार जी और लता जी एक गीत दोनों में एक साथ किया है, बहुत सुंदर गीत है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है,
0: वाह
1: बहुत सुंदर गीत है, आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा कि किधर के ऊपर ये गीत है। ठीक
0: जी,
1: है
0: जी जी जी।

0: आपकी भी गजब के अंदाज है। सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: कोशिश कर सकती हूँ।
0: जैसे आपने पहले भी बताया कि बहुत सुंदर गीत है, वैसे
1: नटखटी भी है।
0: जी जी, रमणीय गीत भी तो चाहिए ना। जी जी जी, श्यामली जी आपने सच में फिर से दिल को बाग बाग कर दिया। जाते जाते आपने हमें भी खुशहाल कर दिया।
1: थैंक यू।
0: इसी के साथ दिल तो करता है सुनते रहे, लेकिन समय देता है हमको इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए राग नए रंग के साथ संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-1415-1415। फिर से रिपीट करती हूँ, 94-1415-1415। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और उसमें घुली होती है फूलों की महक, धीमी धीमी बारिश, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और किशोर कुमार के गाने, ऐसे पल जिंदगी में सुकून देते हैं। वैसे सुकून के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन राठौड़ परिवार और सुकून चलिए देखते हैं कि राठौड़ परिवार में आज कौन सी हवा चल रही है।
1: ओ प्राण गटक्कम महोदय, कृपया प्रकट हो जाइए।
2: ये क्या बोले जा रही है शांति, किसे बुला रही है?
1: किशन जी महाराज को मम्मी, केवल नाम बुलाने से ये प्रकट कहाँ होते हैं?
2: ओहो, तुम दोनों भाई बहन पता नहीं कब बड़े होगे।
3: अरे आ गया दीदी, क्या हुआ, इतना क्यों गर्म हो रही हो?
4: आज जीजा जी आने वाले हैं, आजादी छीनने वाली है।
5: अरे रेस्पेक्ट से बात करो, शांति तुम्हारी छोटी बहन है राजनी।
1: थैंक यू भैया, आप मेरे अच्छे भाई हो।
5: वैसे आजादी और शांति तो जमाई सा की शादी के दिन ही छिन गई थी।
1: क्या भैया, आप भी जा रही हूँ मैं।
2: ये खीखी खीखी बाद में करते रहना तुम लोग, अभी जमाई सा शांति को लेने आ रहे हैं। चलो ये सब साफ करो। और ये राजकुमारी कहाँ गई? राजकुमारी कुछ खाने का अच्छा बना ले आज, मीठा भी देख दो तरह का होना चाहिए।
6: हाँ हाँ मासा, मैं ना गेहूँ के तेल में तेल डाल के भुने हुए संतरे के घी वाले लड्डू बना लेती हूँ।
1: गेहूँ का तेल, भुने हुए संतरे?
5: तेल से घी वाले लड्डू कैसे बनेंगे राजकुमारी?
2: अरे माता जी, दुनिया में कितनी महान राजकुमारियाँ हुई हैं, हमको यही वाली राजकुमारी देनी थी तुमको।
6: कुछ कहा मासा आपने?
5: माँ कह रही है कि राजकुमारी कोई पुरानी डिश बनाओ ना। देखो जमाई सा पुराने है ना, तो पुरानी रेसिपी बना लो आज। ये नई रेसिपी नए जमाई सा आएंगे ना, उनके लिए बचा के रखो।
1: रागिनी दीदी, तुम्हारे होने वाले पति की तो खैर नहीं।
0: अरे अरे अरे, ये कैसी भूल हो गई मुझसे, माफ करिएगा। राठौड़ परिवार के घोंसले के सबसे अनोखे पक्षी यानी जमाई जी से तो मिलवाए नहीं आपको। वैसे शादी के बाद बेटी हो जाती है पराई और दामाद होता है VIP, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप यही समझते हैं ना? लेकिन ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बल्कि वोल्केनो इन प्रोग्रेस, जो कभी भी फट सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ बात कुछ, अब भाई राठौड़ परिवार है तो कुछ तो अलग होगा ना। तो कैसे हैं राठौड़ परिवार के जमाई सा, आइए खुद जान जाइए।
7: घड़ी कमा मासा, घड़ी कमा पापा, घड़ी कमा,
8: खड़ी कमा जमाई सा, आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: पधारो सा, बैठिए बैठिए, थक गए होंगे आप।
1: थक क्यों गए होंगे, 15 मिनट का तो रास्ता है माँ।
2: चुप बैठ, जा पानी लेकर आ जमाई सा के लिए।
1: बैठू कि जाऊं? अच्छा अच्छा, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। दीदी तुम्हें नहीं लगता ये दामाद लोगों को कुछ ज्यादा ही इज्जत मिलती है?
4: मुझे लगता है कि ये बहू लोगों को इज्जत कम मिलती है।
1: हाँ बात तो सही है, चलो अब पानी लेकर नहीं गई ना तो बेटी लोगों की भी इज्जत का फालूदा बना दिया जाएगा मम्मी द्वारा।
4: हाँ वैसे माँ ना कभी कभी बड़ी इक्वालिटी दिखाती है, बेटा हो या बेटी दोनों की शामत आती है।
0: हाँ भाई, आजकल इक्वालिटी के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं। लेकिन जब तक हर शहर हर गांव के घर के किचन तक इक्वालिटी नहीं पहुंचेगी तब तक बात नहीं बनने वाली। अब आप कहेंगे कि अरे भाई पुरुष भी तो खाना बनाते हैं आजकल, लेकिन पुरुष एक बार खाना बनाकर शाबाशी इस तरह पाते हैं मानो उनसे अच्छा कुक और कोई नहीं, पर महिलाएं उन्हें क्या मिलता है ये तो आप भी जानते हैं। चलिए खैर, सूरजमल यानी कि जमाई सा बैठे हैं आज राठौड़ परिवार के आंगन में। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ तो धमाका होने वाला है, आइए आइए जान लेते हैं।
8: और बताइए जमाई सा, कैसे हैं आप?
7: भाभी जी वो मैं,
9: अरे पहले कुछ खिलाओ पिलाओ फिर बातें करना।
10: हाँ हाँ जमाई सा, खाइए कुछ, ये लीजिए समोसे, लड्डू भी लीजिए।
7: भैया वो मैं
6: हाँ हाँ खाइए जमाईसा, ये मैंने नहीं बनाया है।
7: मैं कह रहा था कि
9: जमाईसा आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
7: नहीं तो
11: भैया सही कह रहे हैं, आज आप कुछ खा भी नहीं रहे।
8: अरे अरे जमाईसा क्या बात है, और कुछ बना दें आपको खाना, ये पसंद नहीं आया कि माँ की याद आ गई आपको।
11: अरे आप क्यों इतना रो रहे हैं, क्या बात क्या हुई है?
12: आपने मुझे भी बताया नहीं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
11: बस
6: अरे जमाईसा
11: बात भी है तो बताइए हमें।
6: अरे क्या इतनी बड़ी परेशानी हो गई, रोने लगे, अरे अरे क्या हो रहा है
8: ये सब तो नहीं।
13: अरे बस
8: इस घर में,
6: हाँ इस घर में क्या,
13: चुप हो जाओ सर।
12: आपने मुझे भी नहीं बताया, क्या हुआ बोलो।
13: बस चुप हो जाओ सर। जमाई सर बताइए क्या बात।
7: बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, आपको तो पता ही है कि मैं और भैया मिलकर 10 साल से पापा का बिजनेस संभाल रहे हैं। आज तक मैंने कोशिश की है कि बिजनेस में चाहे जो हो, लेकिन उसका असर घर पर कभी नहीं पड़ना चाहिए, और बड़े भैया का सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन
14: क्या जीजा जी,
7: लेकिन इस बार बहुत बड़ा लॉस हो गया। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं है। काम का इतना प्रेशर था कि मैं कितने दिन से सोया भी नहीं हूं, और कुछ मामले में मेरी और भैया की सोच नहीं मिलती।
9: जमाईसा देखिए, बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, आप परेशान ना हो।
11: हाँ, और हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आपने पहले भी लॉस को मुनाफे में बदला है।
7: हाँ भैया, लेकिन इस बार बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है।
8: क्या बात है जमाईसा, खुल के कहिए।
14: जीजा जी, हम सब आपका अपना परिवार हैं, आप बेझिझक कहिए।
7: मैं जानता हूँ आप सभी मेरे स्वागत में बैठे हैं, ये सोचकर कि मैं शांति को घर लेने आया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी शांति को ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है।
6: क्या
14: क्या,
2: हे माता रानी, ये क्या सुन रही हूँ मैं?
7: माफ कीजिए मासा, मैंने आपको वचन दिया था कि शांति का ध्यान रखूंगा, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अपने भैया भाभी ने आज मुझे घर से निकाल दिया है।
8: मैं तो पहले से जानती थी जमाईसा की भाभी एकदम चालाक लोमड़ी है, पूरे बिजनेस पे ताक लगाए बैठी हैं।
9: चंद्रावती, कैसे समय पर कैसी बात करनी है, कब सीखोगी तुम?
8: मैं तो बस सच बोलती हूँ, सच बोलना गुनाह है क्या?
9: चंद्रावती बस।
11: भाई साहब कोई बात नहीं, जाने दीजिए, भाभी आप भी अभी जाने दीजिए प्लीज।
6: सूरज, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं यहाँ पार्टी कर रही थी और तुम वहाँ।
11: शांति, जमाईसा, देखिए आप दोनों परेशान मत होइए, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
4: जीजा जी, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं देखती हूँ कैसे घर से निकालते हैं आपको।
6: दीदी, उसके लिए तो आपको टाइम मशीन चाहिए होगी ना?
4: टाइम मशीन?
6: हाँ, मतलब वो लोग जमाईसा को ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना?
8: हाँ, हमको तो पहले से सब
6: घर से ही निकाल दिया। ऐसा कोई करता है क्या, अपने घर से निकालते अपने भाई को? कोई क्या जमाना आ गया, ऐसे ऐसी बातें करते हैं?
11: ऐसा जमाना
8: आ गया, बहुत गलत बात हुई।
13: बस चुप हो जाओ सारे।
14: पापा, जीजा जी को अपने साथ रख लें।
13: किशन, तुम नहीं जानते अभी कि सही क्या है और गलत क्या है?
14: लेकिन पापा, मैं अभी 20 साल का।
8: किशन, तुम इतने बड़े नहीं हुए अभी, अब कविता मत सुनाने लगना कि उम्र से नहीं दिल से बड़ा होना है बंदगी।
6: भाभी जी, बंदगी नहीं जिंदगी जिंदगी
8: क्या
6: उम्र से नहीं दिल से बड़ा होना है जिंदगी ये कविता की लाइन है मैंने ना बहुत बार सुनी है किशन भैया से
3: भाभी अब मेरी कविता कहाँ से बीच में आ गई
13: अब फैसला मैं करूँ एक दामाद का घर जमाई कहलाना गलत नहीं बल्कि बहुत गलत है समाज की नजर इसीलिए
0: तो हमारे यहाँ बादल से ज्यादा समाज बरसता है और बिजली से ज्यादा कड़कता भी है अब भगवत सिंह राठौर जमाई सा का क्या फैसला करेंगे ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा लेकिन तब तक जरा सोचिए कि आपके घर के फैसले कौन कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बोल आप रहे हैं और सोच उन चार लोगों की है जो कभी नजर नहीं आते जी बेटी को नहीं पढ़ा सकते चार लोग क्या कहेंगे अब जी लड़का खाना नहीं बना सकता चार लोग क्या कहेंगे सोचिए आपके घर में घर वालों की खुशी पर चार लोगों नामक काला बादल तो नहीं मंडरा रहा आप सोचिए तब तक मैं लेता हूं आपसे इजाजत मुलाकात होगी घर ऑन एयर की अगली कड़ी में तब तक के लिए अलविदा नमस्ते रहिए गाते हंसते
15: घर ऑन एयर पात्र परिचय दादाजी भगवत सिंह राठौर आरजे ज्ञानेश्वर दादी जी अंबिका देवी राठौर आरजे संध्या चाचा किशन सिंह राठौर आरजे श्रीनिधि ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर आरजे रोहित ताई जी चंद्रावती आरजे प्रभा बुआ रागनी राठौर आरजे कृष्णा बुआ शांति राठौर आरजे मोना वीरेंद्र राठौर आरजे विशाल राजकुमारी राठौर आरजे आरुषि बच्चे रूहानी अमीक्षा नैरेटर आरजे अमित रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: The power to accept. I visualize the swirling of a turquoise energy. It's as if I feel great relief. I experience this energy like the power of water in a river that flows within me.

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 29 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो बाबा कहते हैं, जो परवानों ने गीत तो सुना, परवाने कहो फूल कहो बात तो एक ही है। बाबा कहते परवाने भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात जीते जी मरने वाले, और दूसरे हैं जो फेरे पहनकर चले जाते हैं, अर्थात बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। यह बाप बैठ किसको समझा रहे हैं? परवानों को समझाते हैं, और परवाने भी नंबरवार है। श्रीमत पर जो चल सकते हो, लेकिन अगर कहां भी श्रीमत पर न चले तो बाबा कहे सावधान, माया बहुत पछाड़ेगी। श्रीमत का भक्ति मार्ग में भी बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है और उसकी भी पूजा करते हैं लोग। इसलिए जितना बाप की मत पर चलेंगे श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या श्रीमत देते हैं, बच्चे देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो और निरंतर याद करो। एक दूसरे को देखो तो देही स्वरूप में देखो, ये भी आत्मा है, तो आत्मा समझकर आत्मा से बात। तो बाबा कहे खुशबू आती रहेगी, बदबू नहीं आएगी। देह अभिमान की बदबू जब आती है तो वो ऊपर से नीचे की ओर गिराती है। इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को सच्चे सच्चे परवाने बनना है, फेरी पहनने वाले नहीं। दूसरा बाबा कहे तुम ही सच्चे सच्चे फूल हो, खुशबूदार फूल हो। देखना है अपने में कहां तक हमारे में खुशबू है। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। तो जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी, वो सदैव खुश रहेंगे। निशानी है उनकी अच्छे फूलों की, सदा खुश रहेंगे और औरों को भी आप समान फूल बनाएंगे या परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली तो बनाओ। बाबा कहे पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं, अर्थात ईश्वरीय औलाद बनते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए, श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। हर एक अपने दिल में ये तो जरूर समझते हैं कि हम परवाने बने हैं या फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? बाबा कहे देखो, अपने जैसा फूल किसको बनाया है?
ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी, वह सदैव खुश रहेंगे। अच्छे फूलों की निशानी एक तो अच्छी खुशबू आएगी, दूसरा वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। तीसरी निशानी, बाबा के फूल नहीं तो कली तो बनाएंगे। तो पहली निशानी अच्छे फूलों की, अच्छी खुशबू फैलाएंगे, सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे, फूल नहीं तो कली तो जरूर बनाएंगे। पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई शाहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस शाहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद शाहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। निर्वाण धाम जाना उसको ज्योति में ज्योत समा जाना नहीं कहा जाता या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े, क्या समझाना पड़े, जब कोई से भी मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग, यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और इस संगम में कल्प फिरता है। वह युग फिरता है सतयुग से त्रेता हुआ और ये संगम में कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते जब जब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूं। युग पूरा होता है तो पलाएं कम होती है, यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं। आधे में थोड़ी बाबा आएगा, बाबा के जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं, मैं युगे युगे नहीं आता हूं। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहां भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, भक्ति मार्ग में भी श्रीमत का बहुत गायन है। क्या गायन है? श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा श्री कृष्ण द्वापर में आया। ये क्यों लिखा श्री कृष्ण द्वापर में आया? क्योंकि बाबा कहे जिन्होंने भी शास्त्र बनाए उनकी बुद्धि रजो प्रधान थी, इसलिए कह दिया श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाबा कहते मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं। ये नहीं कि देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते, परंतु देवता धर्म वाले ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं,
यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। इतना बोझा है तो बाबा कहे उसको उतारना है, नहीं तो फिर त्राही त्राही करना पड़ेगा, इसलिए श्रीमत पर चलो। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। बाबा कहते अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे क्या समझाते हैं, क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। कर्म की गुह्य गति बाबा समझाते, भगवान दुख नहीं देते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कायदा ही नहीं है। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। हरेक आत्मा अपने कर्मों का ही दुख पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदायी खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है, इसी संगम पर ईश्वर की मत हमें मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है, बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते चलते क्या हुआ, 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल है वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। बाबा की मत पर चल करके सदैव उसी खुशी में मस्त रहेंगे, नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बने, श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। शाहूकारों को डर लगता है कि यहां हमारे पैसे ले न लेवे, सोचते हैं कहीं हमारे पैसे मांगे नहीं, लेवे नहीं। शाहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं गरीब निवास हूं, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है,
सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिया, चावल चपटी दिया और महल दे दिया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसा देते हैं, शाहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसीलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है। शाहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती है। क्यों ये कहते हैं हमको फुर्सत नहीं? कौन ये कहता है हमको फुर्सत नहीं? बाबा कहते क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। जब बाबा में निश्चय ही नहीं तो कहते हमारे पास फुर्सत नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहां शाहूकार बन जाते हैं और यहाँ के शाहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें ना, कई बाबा को कहते भी है हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। तो बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। बाबा कितना अच्छी तरह से कह देते तुम अपने कुटुंब की अच्छी तरह संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, शाहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते थे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आदि तुम सब बच्चों ने अपने लिए ही बनाए हैं। मधुबन में भी ये सारे मकान आदि जो भी बनाए हैं सब बाबा कहे तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनाए हैं, ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होंगे, जिसका बुद्धि का योग ठीक होगा, बाबा कहते वो लास्ट ट्रेन या लास्ट प्लेन पहुंच करके भी पहुंच जाएंगे और बाप के पास आकर विश्राम पाएंगे। उनको मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है, जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं बहुत नजदीक होते जाएंगे, जैसे अभी स्वर्ग पहुंचे कि पहुंचे इतने नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं, इसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूं। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलोप करेगी। बाबा देखते हैं किस अवस्था में रहते हैं और इनकी अवस्था कहाँ तक गैलोप करेगी। गैलोप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा, अर्थात जीते जी बाप पर बलि चढ़ गया होगा। तो अवस्था गैलोप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर उन आत्माओं को समझाता हूं। परंतु ये आत्मपन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ, मनुष्य को ही समझाते हैं। आत्मापने का निश्चय चाहिए। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूं, तुम आत्मा को सुनाते हो, ऐसे तुम देही अभिमानी होकर इसको सुनाएंगे
तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं, बाप कहते हम आत्माओं से यानी बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, बेअभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूं शरीर से नहीं, इतना आत्मा का पाठ अंदर में पक्का होना चाहिए। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए हैं, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। कैसे तीर लगाना है ये भी बाबा सिखाते हैं। आत्मा समझकर आत्मा भाई को समझा रही हो, इनको रास्ता बताना है, ये आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो। कौन सी वार्निंग दो? कि मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्माभिमानी बनने की बाबा के पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। सुबह सुबह बैठकर बाबा कहे विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है। दुश्मनी लगी पड़ी है, आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक है, एक तो हो न सके। अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहां बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाता है। परमात्मा का कार्य ही अपने लेवल का है। तो ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं या नहीं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहां अपना पैसा पाप के तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। देखना है, सावधान होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को

याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं को आत्म समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूरत भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूरत भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अंतिम समय, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपनी तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। अब आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आज का स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जहां बालक बनना है बालक बन जाओ, मालिक बन करके कोई राय देनी है तो मालिक बनकर राय दो, तो ये बैलेंस जरूरी है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना है, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान खबरदार होशियार रहना, बहुत सावधान खबरदार होशियार रहना। अच्छा, ओम शांति।